मन दोनों स्वस्थ रहते हैं। योग से पहले चेहरा हाथ पैर को धो लेना चाहिए, जिससे शरीर को ठंडक मिलती है और आराम जल्दी मिलता है और साथ ही साथ आलस भी कम होता है। ज्यादा देर खाली पेट ना रहें। पूरी तरह भूखे रहकर योग करने में कमजोरी महसूस हो सकती है। जरूरत हो तो आप सुबह एक केला या कुछ भीगे बादाम खा सकते हैं। नींद पूरी लें। कम नींद होने पर भी गर्मी में जल्दी थकान और चिड़चिड़ापन होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात, योग करने से पहले मेडिटेशन जरूर करें। ध्यान 5 से 10 मिनट ध्यान करने से मन शांत रहता है और स्ट्रेस कम होता है। सांसों पर ध्यान धीरे धीरे लगाएं, जैसे धीरे धीरे और गहरी सांस लेने से शरीर में ठंडक और ऊर्जा बनी रहती है। योग के तुरंत बाद ठंडा पानी बिल्कुल न पिए। सामान्य या हल्का ठंडा पानी शरीर के लिए बेहतर होता है। योग के बाद थोड़ा वॉक करना जरूरी होता है। यदि आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं तो अपने ही घर में छत पर या आगे कहीं पे भी आप अपने घर के आसपास थोड़ा सा वॉक कर सकते हैं, जिससे आपकी हल्की वॉक शरीर को रिलैक्स करती है और फ्रेशनेस भी देती है। गर्मी में ये चीजें आप ज्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, खीरा, तरबूज, पुदीना, दही और नारियल पानी। तरबूज के लिए मैं आपको एक बात बता दूं कि आप मार्केट से लेकर के आ रहे हैं तो तुरंत ही तरबूज को काट करके ना खाएं। उसे कुछ देर के लिए ठंडे पानी में या फिर किसी पानी नॉर्मल पानी में भी आप रख सकते हैं और उसके बाद ही आप उसका सेवन करें। ज्यादा चाय, कॉफी, जंक फूड, धूप में तुरंत एक्सरसाइज, बहुत टाइट कपड़े, इन सब चीजों से गर्मी में आप बच सकते हैं। 5 मिनट के लिए आप जो आपका समर योगा रूटीन होगा वो होने वाला है 5 मिनट डीप ब्रीथिंग, 10 मिनट हल्के आसन, 5 मिनट प्राणायाम, 5 मिनट मेडिटेशन और अंत में शवासन। योग केवल शरीर को नहीं मन को भी ठंडक देता है। इसीलिए इस दिनचर्या को हम पूरी गर्मी भर अपना करके अपने आप को स्वस्थ कर सकते हैं। तो दोस्तों फिर मिलेंगे एक नई जानकारी, एक नई सीरीज के साथ। तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, जब हम कोई भी स्थिति में होते हैं, जब हम परेशान होते हैं, जब हम बहुत मायूस होते हैं, तो हम हमेशा से अपने अंतर्मुखी बातों को सोचने और समझने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम सभी मिलकर के आज ध्यान करने जा रहे हैं। ध्यान उस प्रभु का, अपनी अंतर आत्मा को जानने के लिए हमें अपने अंतर्मुख में जानना जरूरी होता है। तो आइए हम सब मिलकर करते हैं ध्यान। सुप्रभात दोस्तों, योगशाला में आप सभी का स्वागत करते हैं। योग जो मस्तिष्क को लेकर के हमारे पूरे शरीर की देखभाल करता है। योग का अर्थ यही होता है कि शरीर को मस्तिष्क से जोड़ना, और उसके लिए जरूरी है हम अपने मस्तिष्क को सर्वप्रथम एकाग्र रख सके। और मस्तिष्क को एकाग्र रखने के लिए ध्यान योग बहुत जरूरी है। तो आइए योग की शुरुआत एक उच्चारण से करते हैं।

स्वास्थ्य को बनाने के लिए और अच्छा उत्तम और अपने आप को तंदुरुस्त बनाने के लिए हम रोज सवेरे करते हैं प्राणायाम और आसन। प्राणायाम और आसन नित सवेरे करने से हम स्वस्थ तो रहते हैं, जबकि हमारी मन की सारी क्रियाओं को एक ताकत मिलती है, एक सुकून मिलता है और हमें जीवन को जीने की नई कला मिलती है। तो आइए दोस्तों, हम शुरू करते हैं अपना प्राणायाम। नमस्कार दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि गर्मियों ने अपना रूप ले लिया है, यानी कि प्रचंड रूप में गर्मियाँ आ चुकी हैं। इसमें आप सभी को ऐसे योग आसन की जरूरत है जो हमारी बॉडी को डिहाइड्रेट के साथ में आपकी स्किन को भी एक तरोताजा रखे, क्योंकि ये कहा गया है कि स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। और साथ ही साथ में जब हमारा शरीर स्वस्थ होगा तो हमारा चेहरा खिल के आता है। और आज हम उस चेहरे के लिए ही आपको बहुत सारे योग प्राणायाम बताएंगे और साथ ही साथ में कुछ ऐसे घरेलू उपचार भी बताएंगे जिसको करने से आपकी स्किन के मुहासे हो, एक्निक हो या फिर छाइयां हो और बहुत सारे जो दाग धब्बे हो जाते हैं ना, वो भी ठीक हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताने जा रहे हैं एक फेस के एक्सरसाइज। जैसा कि हम हमेशा से सुनते आते हैं कि एक्सरसाइज हम करते हैं हाथों की, पैरों की, पेट की, गर्दन की, कंधे की, मतलब संपूर्ण शरीर की एक्सरसाइज हम करते हैं, ठीक वैसे ही शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी कभी न कभी व्यायाम की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहला व्यायाम हम अपने चेहरे को करने के लिए एकाग्रचित होकर के कहीं भी ऐसे स्थान पर बैठ जाएं जहां पर आपको शांति का वातावरण मिले। सबसे अच्छा समय व्यायाम करने का होता है सुबह, क्योंकि उस समय हम अंदर से भी और वातावरण भी बहुत ज्यादा शुद्ध और इस तरीके से होता है कि आप सब कुछ नया और पहली बार देख रहे हैं। आंतरिक शक्तियों का ध्यान रखते हुए हम कई बार ये सोचते हैं कि हम अपने लिए क्यों नहीं समय निकाल पाते, हम अपने लिए क्यों नहीं जी पाते। तो आज अपने चेहरे को सबसे पहले तरोताजगी करने के लिए सबसे पहला प्राणायाम और व्यायाम। वैसे तो प्राणायाम की श्रृंखला में हमने कई बार प्राणायाम बताए हैं कि चेहरे के लिए, आंखों के लिए सबसे अच्छा प्राणायाम होता है अनुलोम विलोम और कपालभाति, जो कि हमारे पूरे शरीर के साथ साथ हमारे चेहरे की भी सुंदरता को बाहर निखारने में काम करता है। साथ ही साथ अनुलोम विलोम का समय, अनुलोम विलोम की गति और अनुलोम विलोम का सही उच्चारण करने से मैं आपको बताऊंगी कि समय आपको क्या होना चाहिए। समय आपका 5 से 6 मिनट होना चाहिए और उसको करने के लिए आपको सबसे पहले अपने मन चित्त को शांत करके बैठ जाना होता है। साथ ही साथ में एक एक्सरसाइज आज हम आपको बताने जा रहे हैं जो कि ये लड़कियों में बहुत ज्यादा समस्या पाई जाती है, कम उम्र में हो या ज्यादा उम्र में हो, लड़कियों के गाल जो पिचके होते हैं, पिचके इन द सेंस अंदर धसे होते हैं, उन गालों को और उभारने के लिए आपको क्या करना है कि सबसे पहले अपने मुंह में पूरी तरीके से हवा भर लेनी है, जैसे आप कोई बैलून फुला रहे हो। पूरा मुंह में हवा भरने के बाद में 2 उंगलियों से अपने होठों पर रखें, टैप करें और फिर छोड़ें। टैप करें मतलब उसको दबाएं अपने फिंगर से अपने लिप्स को और फिर छोड़ दें, पहले दबाएं फिर छोड़ दें। ये करने से आपकी जो आंतरिक ग्रंथियां हैं, आपके चेहरे की ग्रंथियां हैं, वो खुलती हैं, जिसके कारण से जिनके भी चेहरे इस तरीके से डल होते हैं, गाल दबे हुए होते हैं, वो निकल के बाहर आते हैं और बहुत ही अच्छा सा एक चेहरा भी निखर के आता है। साथ ही साथ एक उंगली और अंगूठे की सहायता से जैसे हम किसी को बाय बाय करते हैं, ठीक वैसे ही वो अंगूठा अंदर और 4 उंगलियां बाहर की तरफ खोल करके वो 4 उंगलियां दोनों हाथों की, दोनों हाथ अपने चेहरे पर रखते हुए
अंदर से बाहर की ओर खींचे। जिन लड़कियों को, जिन महिलाओं को रिंकल्स की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि झुर्रियों की समस्या हो जाती है, यह प्राणायाम और आसन और एक्सरसाइज करने से समय से पहले झुर्रियां ठीक होती हैं। एक्सरसाइज 3, आपको क्या करना है, दोनों उंगलियों को, यानी कि 2 और 2 4, दोनों हाथों की उंगलियों को लेकर के अपनी आंखों के नीचे हल्के हाथों से बाहर से अंदर की ओर और अंदर से बाहर की ओर ले जाते हुए एक्सरसाइज करें। ये सारी एक्सरसाइज हमारे चेहरे की ग्रंथियों को ठीक करती है, उसे खुलने और उसे अच्छे से विकसित करने के लिए प्रभावित करती है। तो आइए अब हम आपको बताने जा रहे हैं कुछ ऐसे टिप्स जो कि आप सुबह उठ करके अपने स्किन को और सुंदर बना सकती हैं। योग प्राणायाम और एक्सरसाइज करने के साथ साथ यदि आप इस टिप्स को भी अपनाएंगे तो आपका चेहरा बिल्कुल खिल करके आएगा। सुबह उठ करके सादे पानी की बजाय यदि हम चावल के पानी से मुंह धोएं तो हमारा चेहरा बहुत ज्यादा चमकने लगेगा। इसके कई फायदे हैं, आइए हम आपको बताने जा रहे हैं इसके फायदे। सुबह उठने के बाद ताजे पानी से मुंह धोना एक हेल्दी केयर रूटीन का हिस्सा है, लेकिन यदि हम स्किन हमारी ठीक नहीं है तो आपको स्किन से जुड़ी समस्याएं भी हैं, जैसे टैनिंग, झाइयां, झुर्रियां या कोई समस्या और हो रही है, तो सिर्फ सादे पानी से काम नहीं चलेगा। आजकल लोगों को स्किन से जुड़ी समस्याएं होना आम बात है और समय व जानकारी के अभाव में महंगे महंगे स्किन केयर प्रोडक्ट्स इस्तेमाल करने लगते हैं, लेकिन कई बार प्रोडक्ट्स काम नहीं कर पाते हैं, यहाँ तक कि कुछ मामलों में तो साइड इफेक्ट्स भी होने लगते हैं। ऐसे में देसी नुस्खे इस्तेमाल करना ज्यादा फायदेमंद होता है। तो आइए हम बताने जा रहे हैं कि आपको सवेरे अपने स्किन को कैसे साफ करना है। स्किन के लिए चावल का पानी मानो रामबाण है। आप अपनी स्किन को हेल्दी रखने और निखार को बनाए रखने के लिए चावल के पानी का उपयोग कर सकते हैं। चावल के पानी में कई ऐसे खास तत्व पाए जाते हैं जो आपकी स्किन को कई तरह से अलग अलग फायदे पहुंचाते हैं और कई बार डैमेज होने से भी बचाते हैं। जिस तरीके से सादे पानी से मुंह धोने के बजाय अभी हमने आपको बताया कि चावल का पानी हमारी स्किन केयर के रूटीन का सबसे पहला काम होना चाहिए, लेकिन अगर आप सुबह सादे पानी की बजाय पानी को, यानी कि चावल को हम रात में भिगो दें और मॉर्निंग उठने के बाद में आपने अपनी फ्रेश होने के बाद में जब भी आपने कुछ खा पी लिया, अब आप फ्री हैं, उसके बाद में आपने उस चावल को छान लिया और वो पानी बहुत ही ज्यादा इतने ज्यादा तत्वों से मिलकर बना होता है जो कि आपकी सारी स्किन की प्रॉब्लम्स को दूर करता है। अगर आप धूप व पसीने के कारण स्किन टैनिंग होने लगी है, नेचुरल निखार जो है वो गायब होने लगा है, तो चावल का पानी चेहरे पर लगाने से समस्याएं दूर होने लगती हैं और नेचुरल निखार मिलने लगता है। साथ ही चावल के पानी के सही इस्तेमाल से ड्राई स्किन की समस्या भी दूर होती है। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ कि सादे चावल के पानी के साथ साथ अगर आप ये दो चीजें उसमें मिला दें, फिर तो सोने पे सुहागे वाली बात हो जाएगी। चावल के पानी में आप अगर एक विटामिन ई कैप्सूल और थोड़ा सा गुलाब जल मिला दें और इसको कॉटन की सहायता से अपने फेस पे लगाने के बाद में 10 से 15 मिनट रखने के बाद इसको सादे पानी से धुल दें, आपकी स्किन मानो कि उसे एक औषधि मिल गई है। तो साथ ही साथ आज हमने उपयोग भी बताया है और बहुत सारी समस्याओं का निवारण भी। बहुत सारी ऐसी फेस की एक्सरसाइजेस आज हमने आपको बताई जो कि हमारे चेहरे की कोशिकाओं को खोलती है। चेहरे की कोशिकाओं को खोलने के लिए ये जरूरी नहीं है कि हम कोई महंगी महंगी चीजों में जाकर के एक्सरसाइज करें, हम सिंपल से अपने घर में भी बैठ करके ये सारी एक्सरसाइज और प्राणायाम कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की प्रक्रिया में हमने अपने चेहरे की, यानी कि समर स्पेशल चेहरे की योग और स्किन टिप्स हमने जाने। आगे हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए करें योग, रहे निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग की योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। योगशाला में आप सभी के लिए हर बार कुछ न कुछ नया और कुछ न कुछ आप सभी के लिए बेहतर हम लेकर के आते हैं। जैसा कि
शरीर को स्वस्थ कैसे बनाया जा सकता है, अपने व्यक्तित्व को कैसे निखारा जा सकता है। साथ ही साथ हमारे शरीर में बहुत सारी ऐसी डिजीज, ऐसी बीमारियां जो अनचाहे में लग जाती हैं। अनचाहे का मतलब है हमें पता ही नहीं चलता है। उनका निवारण सिर्फ और सिर्फ आजकल सभी को पता है कि एक योग के माध्यम से बताया जाता है। आप सभी को पता है कि हम कितने भी बड़े बड़े डॉक्टर्स के पास चले जाएं, कभी ये होता है कि जब हमें कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं। जैसे अगर हमें कान में दिक्कत है तो हम कान के डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें आँख में दिक्कत है तो हम आँख वाले डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें दांत में दिक्कत है तो हम दांत वाले डॉक्टर के पास जाते हैं। पर आपने कभी ये सोचा है कि पूरे संपूर्ण शरीर का एक डॉक्टर मात्र एक आयुर्वेदिक उपाय और इलाज योग है। योग से जुड़ना हम सभी के लिए फायदेमंद और उपयोगी माना गया है। योग हम हर प्रकार से, हर समय और अपनी सुविधा अनुसार, जिस भी समय आपको लगे कि हमें योग की आवश्यकता है, आप आसन बनाकर कर सकते हैं। ठीक वैसे ही जैसे 12 ऋतुएं होती हैं, हर बार हर ऋतु अपना एक नया रूप लेके आती है। सर्दियां आती हैं तो सर्दियों में ठंडक का एहसास, गर्मियां आती हैं तो गर्मियों में भीषण गर्मी, पसीना और चिपचिप होती है। हर एक मौसम हमारे शरीर के लिए जिस तरीके से उपयोगी है, वैसे ही योग हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, जिसे हम कभी भी नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, चाहे हम अपने लिए या फिर अपनों के लिए। योग से जुड़ना अति आवश्यक है। तो आज का जो टॉपिक है, हम जो योग एक साथ अभी सभी मिलकर करेंगे, वो है ऋतुओं के साथ योग का अभ्यास। यानी कि हर एक ऋतु के लिए, हर एक मौसम के लिए एक योग जुड़ा हुआ है। महीनों के हिसाब से हम आज आपको योग क्या है और किस तरीके से करना चाहिए और उन महीने में आपको क्या खान पान करना चाहिए, सब पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो आइए महीने के हिसाब से, वसंत ऋतु फरवरी से लेकर के अप्रैल तक, ये मौसम इतना सुखद और इतना प्यारा होता है जिसमें ना सर्दी होती है और ना ही संपूर्ण रूप से गर्मी। ये वो एहसास होता है जिसमें हम कुछ भी खा लें, कहीं भी घूमने चले जाएं, हमारा मन प्रसन्न होता है। हल्की ठंड के बाद सुखद समय, प्रकृति में एक नयापन दिखने लगता है और जैसे जैसे गर्मियां अपना प्रकोप करने लगती हैं, फिर से हम परेशान होने लगते हैं। हल्की ठंडी के बाद ये सुखद समय प्रकृति में एक नयापन तो लाता ही है, साथ ही साथ हमारे व्यक्तित्व, हमारे हृदय और हमारी खुशियों में भी एक नयापन लाता है। तो ये तो रहा मौसम की जानकारी। अब योग अभ्यास हमें इस महीने में, यानी कि वसंत ऋतु में, फरवरी से लेकर के अप्रैल तक कौन सा ऐसा योग अभ्यास है जिसे करना चाहिए। फरवरी से अप्रैल के बीच में सबसे उपयोगी हमारे शरीर के लिए सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार के लिए हमने कई बार आपसे बात करी है, हम सभी लोगों ने मिलकर के सूर्य नमस्कार को किया भी है। 12 आसनों से मिलकर एक आसन बना जिसका नाम है सूर्य नमस्कार। दूसरा आसन आता है कपालभाति, जो कि हमारे पेट के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। कपालभाति हम सभी जानते हैं कि हमारी आंतरिक चीजों को किस तरीके से डिटॉक्स करता है, यानी हमें अगर गैस, एसिडिटी, अपच, पेट में जलन या अगर हम कुछ भी खाते हैं, हमें तुरंत पेट में दर्द होने लगता है या हमें सोच जाने की आवश्यकता होती है, तो कपालभाति नियमित रूप से करने से ये सारी परेशानियां दूर होती हैं। तीसरा अभ्यास आता है भस्त्रिका, जो कि हमारे पूरी शरीर को डिटॉक्स करता है। भस्त्रिका प्राणायाम श्वास से निर्मित और हमारी आंतरिक नलियों को साफ करता है। भस्त्रिका प्राणायाम को करने के लिए सर्वप्रथम हम किसी भी साफ और स्वस्थ
किसी भी साफ और स्वच्छ स्थान पर बैठ जाएंगे, क्योंकि यह एकमात्र ऐसा आसन है जो कि हमारे पूरे शरीर को डिटॉक्स करता है। अंदर की जितनी भी गंदगी होती है वह मल के माध्यम से बाहर आ जाती है। सक्रिय और तेज अभ्यास करें। ये महीना वो होता है यदि हम इसमें कुछ भी खा ले तो आसानी से पच जाता है, इसीलिए सक्रिय आप जिस भी दशा में अभ्यास करेंगे वह आपके लिए उपयोगी होगा। सक्रिय और तेज अभ्यास करने से हमारे शरीर में एक नई ऊर्जा का अभ्यास होता है। खानपान की बात अगर हम करें तो इस महीने में हल्का गर्म और सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए, और साथ ही साथ शहद हमारे लिए अत्यंत उपयोगी होता है, खास करके फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में। शहद का उपयोग हम कई बार कई रूपों में कर सकते हैं। सुबह योग के बाद गुनगुने पानी में एक चम्मच शहद को मिला करके पीने से जिन लोगों को लगता है हमारे शरीर में बहुत ज्यादा फैट है, चर्बी है, या फिर हमारा किसी भी काम को करने में मन नहीं लगता है, हमेशा उदासी बनी रहती है, शरीर को तंदुरुस्त और चुस्त फुस्त करने के लिए शहद का उपयोग फायदेमंद है। आइए अब सावधानी की ओर चलते हैं। कफ की अधिकता न हो इसलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने में हल्की ठंडी होती है और फिर हल्की सी गर्मी, जिसमें कफ की अधिकता बढ़ जाती है, इसीलिए भारी और ठंडा खाना न खाएं। तो ये था दोस्तों वसंत ऋतु, जो कि फरवरी से लेकर के अप्रैल के महीने तक के लिए एक आसन अभी हम लोगों ने मिलकर के किया जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण था, वह है सूर्य नमस्कार और कपालभाति, भस्त्रिका जो डिटॉक्स के लिए। अगले ऋतु यानी अगले मौसम के लिए हमें क्या करना चाहिए और कौन सा अभ्यास, हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए करें योग, रहें निरोग। सुप्रभात दोस्तों, मैं समता योग योग पाठशाला में आप सभी का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन करती हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि योग हमारे लिए, हमारे शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है। ठीक वैसे ही योग की क्रियाओं को करने के साथ साथ उसकी दिनचर्या भी आवश्यक है ना? तो आइए आज हम योग के साथ साथ दिनचर्या पर भी महत्व से एक प्रकाश डालते हैं। आज सुबह सुबह खाली पेट पानी पीने की कई छोटी छोटी आदतों को हम उनके फायदे बताएंगे। सबसे पहले तो एक छोटी सी आदत, जब हम उठते हैं तो खाली पेट पानी पीते हैं। कई लोगों की आदत होती है खाली पेट पानी पीना, यानी कि गुनगुना करके पीना, सिर्फ पानी पीना या पानी के साथ कुछ ऐसी औषधियों को लेना, पर उन्हें शायद ये नहीं पता होता है कि उसे पीने से, उसको लेने से महत्व क्या है, उसके फायदे क्या है। तो आइए आज हम आपको बताएंगे कि खाली पेट पानी पीना एक छोटी सी आदत, लेकिन आपके लिए काफी फायदे यानी बहुत बड़ा फायदा आपके जीवन के लिए हो सकता है। सबसे पहले तो हम जो पॉइंट बताने जा रहे हैं वो है शरीर को डिटॉक्स करना। जी हाँ, टॉक्सिन्स को बाहर निकालने में यह मदद करता है। किडनी और लीवर ठीक से काम करें, जिसके कारण से शरीर को ये डिटॉक्स करता है, बशर्ते पानी हल्का सा गुनगुना हो या फिर थोड़ा सा ताजा पानी, बिल्कुल ठंडा पानी बिल्कुल भी नहीं पीना है। सवेरे जब हम उठते हैं तो हमारी आंतरिक क्रियाएं, हम खुद, हमारा मन, हमारा शरीर बिल्कुल एक्टिव होता है, जो कि नए कामों को करने के लिए। ठीक वैसे ही जब हम सोते हैं तो हमारी सारी जो क्रियाएं होती हैं, शरीर के ऑर्गन्स होते हैं वे भी आराम करते हैं। जब हम सुबह उठते हैं तो हमें जरूरत पड़ती है शरीर को डिटॉक्स करने की, तो डिटॉक्स अगर गुनगुने पानी से हो तो बेहद लाभ मिलता है। दूसरा है कब्ज की समस्या में राहत। सुबह उठते ही पानी पीने से आंतें एक्टिव होती हैं, मल त्याग आसानी से होता है, गैस और एसिडिटी भी कम होती है। जिन लोगों को गैस और एसिडिटी की समस्या ज्यादा होती है, आंतें एक्टिव तो होती हैं, लेकिन आंतों में मल फंसा हुआ होता है,
जिसके कारण से ज्यादातर लोगों को भूख न लगना, गैस बनना, एसिडिटी होना, ये सारी समस्याएं होती हैं, जिसके कारण से आज हम आपको बताएंगे कि गुनगुने पानी के साथ अगर आपने एक कली या फिर दो कली आपकी एज के हिसाब से लहसुन को ले लिया और उसको थोड़ा सा चबा करके दांतों से और वो गुनगुना पानी पी लिया। आप आधे गिलास से शुरू करिए, मतलब आप आधा गिलास पानी ले सकती हैं, उसके बाद में आपने एक पूरा गिलास ले लेना है। इसी तरीके से जब हम उसको पानी को पिएंगे और लहसुन की एक या दो कली को हम कूच के

पुलिस की तरह मैंने भी यकीन कर लिया था कि आदमी एक हिंदुस्तानी जासूस है, लेकिन अब मैं जानता हूँ ये आदमी हिंदुस्तानी जासूस नहीं है। तो फिर कौन है ये आदमी? हमारे मुल्क में क्यों घुस आया? चाहता क्या है? बजरंगी, आपकी और मेरी

हर दिन की उम्दा शुरुआत आपके अपने आरजे अदनान के साथ। नई सुबह, नई बात, थॉट ऑफ द डे एंड व्हाट हैपेंड टू दिस डे। जिंदगी की बात, जिंदगानी की बात, गोंडा की बात और गोंडा वालों की बात। आपके अपने आरजे अदनान लेकर आते हैं गुड मॉर्निंग गोंडा। सुनिए हर सुबह 8 बजे ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

0: गाइस, इस बार फिनाले में मैं डुएट परफॉर्म करने वाला हूँ। आप ऐसे कोई अच्छा गाता है?
1: ब्रो, शी इज अ गुड सिंगर।
0: हे यू, कम हियर। इसको सॉन्ग भेज देना, कल रिहर्सल मिलते हैं।

भाई, जिंदगी में यूं तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। आप गुना सुनेगा अपना FM।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
2: डिलीशियस
1: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
2: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सोफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
2: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250-49-40-45।
3: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

0: मुझे शर्म आती है।
1: देखो तुम नहीं कहोगी तो मेरी जान निकल जाएगी।
0: आई लव यू।
2: Yeah!

हर साल लाखों लोग जल जनित बीमारियों से बीमार पड़ते हैं। क्या आप महफूज हैं? जल जनित बीमारियाँ यानी पानी से होने वाली बीमारियाँ, जिन्हें वाटर बोन डिजीज कहते हैं। ये बीमारियाँ वायरस, बैक्टीरिया, पैरासाइट जैसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से दूषित पानी के संपर्क में आने से या पीने से होती हैं। कुछ जल जनित बीमारियाँ हैं कॉलेरा, टाइफॉइड, हेपेटाइटिस, डायप्थीरिया, डायरिया आदि। इन रोगों से बचने के लिए अच्छी आदतें अपनाएं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण करवाएं। दूषित भोजन और पानी से बचें। कुछ भी खाने या पीने से पहले अपने हाथ जरूर धोएं। छत पर रखी टंकी को नियमित रूप से साफ करते रहें। पानी को गर्म करके पिएं। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें।

0: मैं छाया पटवार रानी बाजार से, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
1: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।

बीते साल 2023 में 173,000 लोगों ने रोड एक्सीडेंट में अपनी जान गंवाई है, यानी हर रोज 474 और हर मिनट एक मौत हो रही है। हर साल ये आंकड़ा बढ़ता ही जा रहा है। इस विषय में हम क्या कर सकते हैं? अगर हम यातायात नियमों का पालन करें तो

0: सुरक्षित हर रोज घर वापस आएंगे। जैसे बाइक चलाते समय हेलमेट और कार चलाते समय सीट बेल्ट का इस्तेमाल जरूर करें। तेज रफ्तार से गाड़ी ना चलाएं, केवल दाईं ओर से ओवरटेक करें। चौराहे व मोड़ पर ओवरटेक करने से बचें। वाहन अपनी ही दिशा में चलाएं और गलत दिशा में ना जाएं। थके होने पर, बीमार होने पर शराब पीकर गाड़ी ना चलाएं। अपने वाहन में बैकलाइट, हेडलाइट एवं इंडिकेटर का इस्तेमाल जरूर करें। गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें। छोटे बच्चों को वाहन चलाने के लिए बिल्कुल ना दें। साथ ही साथ सभी यातायात नियमों का पालन करें। याद रखें, घर पर आपका कोई इंतजार कर रहा है।
1: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
2: मतलब
1: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
2: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
3: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
4: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
3: सच में? क्या खास है वहाँ?
4: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
3: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
4: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है। मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
3: और फोटोग्राफी वगैरह?
4: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
3: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
4: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
3: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।

0: क्या बात है, क्या बात है। एक बार वापस से वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में आपका, आपके मॉर्निंग जॉकर जनान। चूंकि आपने ट्यून कर लिया है रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM और ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं आपका मॉर्निंग जॉकर जो अदनान, सिर्फ और सिर्फ आपके रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM के स्टूडियो में। सुभाई अब वक्त आ गया है आपका वेलकम करने के साथ ही साथ आप सभी का भी वेलकम करने का, यानी आप हमको सुनते हैं फ्रीक्वेंसी से, आप हमको सुनते हैं रेडियो गार्डन से, आप हमको सुनते हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन से। आप सभी का वेलकम करते हैं आपके अपने मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान। और फिलहाल आज मंडे तो है ही है, यानी आज वीक की शुरुआत हो रही है, लेकिन हम ये कैसे भूल सकते हैं कि आज ही इस पूरे मंथ की भी शुरुआत हो रही है। जी हाँ, आज है 1 जून, यानी आज से जून जो है वो शुरू हो चुका है। सो ऑब्वियस सी बात है कि भाई महीने की शुरुआत है तो अलग तरह से होनी चाहिए। फिलहाल साल का सबसे गर्म महीना माना जाता है, एंड यस, क्योंकि कहीं ना कहीं हर बार हम ये देखते हैं कि भाई जून में जो गर्मी पड़ती है वो सबसे रिकॉर्ड तोड़ पड़ती है, और कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिडिटी भी इसी मंथ में हमको फील होती है, इसीलिए इसको सबसे गर्म महीना भी माना जाता है। एंड चलिए अब आपको ले चलते हैं, चूँकि इस मंथ की शुरुआत हो गई है, सो ये मंथ आपके लिए क्या पैगाम ले करके आया है और वो हमें आप तक पहुंचाना है, जो कि हम आपको पहुंचाने वाले हैं। सो चलते हैं जानने के लिए कि भाई आज का थॉट ऑफ द डे क्या है, जो है जून स्पेशल, फर्स्ट ऑफ जून में आया आप तक आने के लिए आज का सुविचार, आज का थॉट ऑफ द डे।
1: Now you're listening. Good morning, Koda, with your favorite Ajay Khan.

हाँ जी, आज का थॉट ऑफ द डे आ चुका है और आप तक आने के लिए बेताब भी है। हालांकि आज का थॉट ऑफ द डे तो पहुंच जाएगा, लेकिन चूंकि मंथ की शुरुआत है इसलिए काफ़ी कुछ ऐसी बातें याद आ जाती हैं जो हमारा टारगेट होता है नेक्स्ट मंथ को लेकर के। सो कल तक यानी मई तक आपने जो भी टारगेट रखे हो इस मंथ अचीव करने के, सो कहीं ना कहीं आप शुरू कर सकते हैं। इससे सच में बहुत असर होता है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा ही सोचते रहते हैं और सिर्फ सोचते रहने की आदत तक ही सीमित रह जाते हैं। इसलिए स्टार्टिंग में अगर कहीं कुछ लिखना हो या नोट डाउन करना हो तो बहुत ज़्यादा असरदार होता है। सो अगर आपने भी लिखा है इस बार क्या क्या आपको अचीव करना है, सो चलिए ज़रूर कर सकते हैं आप। सो यस, आज का थॉट ऑफ द डे क्या कहता है? आज का थॉट ऑफ द डे कहता है कि हमें दूसरों का होने से पहले खुद को साबित करना होगा। हमें दूसरों का होने से पहले खुद को साबित करना होगा, ये है आज का थॉट ऑफ द डे। आज का थॉट ऑफ द डे कहता है कि भाई हमें दूसरों का होने से पहले पहले खुद को साबित करना होगा। सो फिलहाल हम हमेशा इस बात की वकालत करते हैं कि दूसरों का हो जाओ, लोगों के लिए जियो, हम ऐसी बातें करते हैं। लेकिन एक्चुअल में जो शख्स अपने लिए जीता है, जब वो अपने को जान लेता है तो उसके लिए इजी हो जाता है बाकी लोगों के भावनाओं को समझना, उनकी भावनाओं को रेस्पेक्ट देना। और कहीं ना कहीं ये चीज़ें ही फिर हमारे आसपास का जो एक्सपीरियंस होता है उसको बेहतर बनाता है। क्योंकि हम डायरेक्ट अगर कोई चीज़ करते हैं बिना जाने तो बस हम कुछ टाइम तक ही कर पाते हैं, उसके बाद हमको नज़र नहीं आता है क्योंकि हम उसके बारे में अवेयर होते ही नहीं हैं। तो इसलिए हम जान ही नहीं पाते हैं कि भाई करना क्या है। तो किसी का होने से पहले आपको खुद को साबित करना होगा, यही कह रहा है आज का थॉट ऑफ द डे का, और यही इस मंथ की शुरुआत आपसे कह रही है। फिलहाल इस जून महीने की बात करें तो क्या ये जून महीना आपके लिए कुछ ऐसी चीज़ें लेकर के आने वाला है जो आपने पहले से प्री डिसाइडेड आपकी रही हैं? क्या आपने इस मंथ में कहीं निकलने का सोचा है? क्या आपने इस मंथ कुछ नया सीखने का सोचा है? क्या आप कोई क्लास ज्वाइन करना चाह रहे हैं? क्या आप अपने ननिहाल जा रहे हैं, अपने कहीं दूर गांव के घर जा रहे हैं? क्या आपने इस बार गार्डनिंग करने का सोच लिया है? क्या कुछ भी ऐसा सोचा है जो ये जून आपकी लाइफ का ख़ास जून बन जाए? सो अगर ऐसा सोचा हो तो मुबारक है आपको, क्योंकि ऐसा सोचा जाना बड़ा ही खूबसूरत है। सो भाई ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप कुछ नया सोच रहे हैं तो जाहिर है कुछ नया करने के लिए आप इंस्पायर भी हो रहे होंगे। और डेफिनेटली करिए भाई कुछ ना कुछ नया, लाइफ में जब हम सोच के करते हैं तो होता है। और कहते हैं कि भाई जितनी बार हम लोगों को या खुद को बता देते हैं उतनी बार होता नहीं, ऐसा नहीं है। लोगों को नहीं गाना है, लेकिन आप खुद से चाहे तो आप शुरुआत कर सकते हैं, बस इतना ही कह रहे हैं, है ना। और जब कुछ अच्छा आप शुरू कर दें तो दूसरों तक ज़रूर पहुंचाएं, ताकि हो सकता है कहीं ना कहीं किसी को क्लिक करता है तो अगला शख्स भी शुरुआत कर ही देता है। फिलहाल आपने ट्यून कर लिया है गुड मॉर्निंग गुंडा मॉर्निंग जॉक आर जो अदनान के साथ, और इस वक्त मैं हूं आपके साथ लाइव आपके गुंडा एफएम पर। सो चलिए आइए इस खूबसूरत से गाने को एंजॉय करते हैं, वापस से आते हैं और एक बार वापस से आप सभी लोगों को हैप्पी हैप्पी जून।

0: हाँ जी, बड़ा ही खूबसूरत सा सॉन्ग था ये, इश्क है। सो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन, और आप सुन रहे हैं अपना रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening Good Morning Gonda with your favorite RJ Khan.

हाँ जी, तो चलिए भाई आते हैं और काफ़ी सारे मैसेजेस आ चुके हैं, चैट बॉक्स की तरफ रुख करते हैं, यानी वो लोग जो सुनते हैं 89.6 FM को एप्लीकेशन से, वो जो कुछ लिखते हैं वो आ जाता है मॉर्निंग वाले शो तक। सो नव्या का है, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू, एंड सविता दुबे जी हरखापुर से हैं, सुप्रभात सुप्रभात, आपको भी स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। हरीश चंद सविता जी मौजूद हैं, लिखते हैं गुड मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत करते हैं। और हरीश जी चूँकि मुंबई में काम करते हैं, उस दौरान भी गोंडा FM को लगातार आपका प्यार मिलता रहता है, बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं हम। प्रीति शुक्ल जी हैं फ्रॉम बहराइच से, लिखा है सर जी वेरी लवली मॉर्निंग, अ वेरी लवली मॉर्निंग टू यू, आपका स्वागत है, वेलकम है मॉर्निंग के स्पेशल शो में। जून मेरे लिए ख़ास है, अरे क्या बात है। सो जून अगर आपके लिए ख़ास है तो चलिए, आपका ख़ास मंथ आ गया है और ये ख़ास मंथ पूरी आपके ड्रीमी मंथ की तरह ही हो, हम ऐसी दुआ करते हैं, ऐसी हमें तवक्को है। और इसके बाद आप लोगों ने रिएक्शन भी दिया है थॉट ऑफ द डे पर। सविता जी बोलती हैं कि मैं तो अपने लिए जीती हूं, आज का सुविचार बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। ऑसम थॉट बोला है प्रीति जी ने, बहराइच से समझ से परे साबित करते करते पूरी उम्र बीत गई जाएगी, बट समझना नामुमकिन, बेशक। एंड राजेश जी हैं गोंडा से, गुड मॉर्निंग टू यू, एंड साथ ही साथ वेलकम करते हैं फ्रिक्वेंसी से मौजूद, रेडियो गार्डन से मौजूद और रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन पर मौजूद आप सभी का मॉर्निंग वाले शो में। सो भाई ये शो तो वैसे भी अब हिट होने वाला है क्योंकि आज है 1 तारीख, यानी प्रथम, यानी शुरुआत हो गई है 1 से। सो ये जून मुबारक, वो आम के पेड़ मुबारक, वो बाल्टी में रखा ठंडा आम मुबारक, और साथ ही साथ वो पोंपों की आवाज़ में गली से निकलती आइसक्रीम वाले भैया जी की जो लड़िया होती थी वो भी मुबारक, क्योंकि ये सब कुछ याद आता है जैसे ही जून आता है। जून बहुत सारी यादों को लेकर आता है जो गर्मी में भी ठंडक सी राहत देती है, वो यादें।

0: हाँ जी, और एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून किया है गोंडा एफएम रेडियो ज्ञानस्थल 89.6 एफएम। ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉकर चेतनान। सो भाई, अब सोचा है कि आपको ले चलते हैं किधर, गोंडा अपडेट की तरफ, यानी सिटी अपडेट की तरफ। सो क्या कुछ चल रहा है अपने शहर में, इस बात को जानना आपके लिए भी हो जाता है काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी। तो चलिए जानते हैं क्या कुछ है आज की सिटी अपडेट में।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

0: सो सबसे पहली सबसे बड़ी बात जो भाई, बारिश हो गई उससे गर्मी से तो सच में काफ़ी राहत मिल गई है, पारा काफ़ी नीचे आया है, लेकिन कहीं ना कहीं बिजली की जो प्रॉब्लम है वो भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है। सो जहां पर 40 के ऊपर पारा जा रहा था वो अब 34 डिग्री सेल्सियस रहा कल की अगर हम बात करें। सो कई जगह पे बारिश भी हुई थी जिसके बाद थोड़ा सा पानी भी भरा मिला। सो ये बारिश से जुड़ी हुई पहली अपडेट थी जो कि आप तक हमने बता दी। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ और आपको बता दें कि 36 उप निरीक्षकों का बहराइच ट्रांसफ़र हुआ है। सो पुलिस महानिरीक्षक अमित पाठक ने लंबे वक्त से ज़िले में तैनात रहे 36 उप निरीक्षकों का ट्रांसफ़र किया है। ज़िले को 8 नए उप निरीक्षक मिले हैं। उप निरीक्षक दिग्विजय यादव, परशुराम यादव, अखिलेश कुमार यादव, सुभाष यादव, राजेंद्र यादव, ज्ञानेश्वर प्रसाद, राजेश कुमार यादव, चंद्रिका यादव सहित बहराइच को अन्य ज़िले में भेजा गया है। श्रवण कुमार, कल्पना सिंह, जगन्नाथ यादव, ओंकार यादव, राजेश दुबे, गोपाल तिवारी, शैलेंद्र कुमार सोनकर और अहमद हुसैन को गोंडा में तैनाती दी गई है। इसके अलावा आपको बता दें कि ओम प्रकाश चंदन बनाए गए हैं नए DPRO। ये बलरामपुर की अपडेट है और शासन ने ज़िला पंचायत राज विभाग में ट्रांसफ़र आदेश जारी करते हुए बलरामपुर में तैनात ज़िला पंचायत अधिकारी यानी DPRO श्रेयापाध्याय का जो है ट्रांसफ़र हरदोई कर दिया और प्रतापगढ़ में तैनात DPRO ओम प्रकाश चंदन को बलरामपुर का नया ज़िला पंचायत राज अधिकारी नियुक्त किया गया है। इसके अलावा कोडीन युक्त कफ सिरप पकड़े जाने की जांच तेज़ हो गई है गोंडा में। जी हाँ, सो ज़िले में कोडीन युक्त कफ सिरप ने बड़ी खेप पकड़े जाने के बाद औषधि विभाग और पुलिस ने जांच तेज़ कर दी है। सो नोएडा से मंगाए गए 132 कार्टून यानी गत्तों में तकरीबन 19,790 शीशियों की खेप मिलने के बाद जो डिपार्टमेंट है वो काफ़ी अलर्ट हो गया है। फिलहाल इस खेप को खरीद बिक्री पर रोक लगा दी गई और पूरे मामले की जांच की जा रही है। औषधि निरीक्षक जो है सुमित वर्मा ने बताया कि कफ सिरप का नमूना जांच के लिए भेजा गया है। साथ ही ये भी पता लगाया जा रहा है कि गायत्री फार्मा को इतनी बड़ी मात्रा में कफ सिरप मंगाने की ज़रूरत आखिर क्यों पड़ी। दूसरी तरफ नोएडा की औषधि निरीक्षक जय सिंह ने बताया कि आपूर्तिकर्ता कंपनी लीला बको रेमेडीज प्राइवेट लिमिटेड पहुंचकर खरीद बिक्री से जुड़े दस्तावेजों की जांच की है और मामले को गंभीरता से लेते हुए विभाग ने कोडीन युक्त जो कफ सिरप के भंडारण और बिक्री थे उसको लेकर सख्त दिशा निर्देश जारी किया है। अब थोक दवा विक्रेता ज़्यादा से ज़्यादा 1,000 यूनिट तक ही स्टॉक रख सकेंगे और एक बार में 100 यूनिट से ज़्यादा की जो है आपूर्ति नहीं कर सकेंगे। खुदरा दुकानदारों को ज़्यादा से ज़्यादा 100 यूनिट तक का ही स्टॉक रखने की परमिशन होगी। इसके अलावा अब चलते हैं आगे की तरफ और 5 जून तक रिकॉर्ड पौधारोपण करने वाले हैं प्रधान। जी हाँ, सो ग्राम पंचायतों में प्रशासक की जिम्मेदारी मिलने के बाद निर्वर्तमान जो प्रधान हैं 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस और मुख्यमंत्री के जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए बड़े पैमाने पर पौधारोपण का निर्णय लिया गया है। प्रधान संघ के जिलाध्यक्ष ने सभी प्रधानों से ग्राम पंचायत स्तर पर धन्यवाद कार्यक्रम आयोजित करके पौधारोपण की अपील भी की है। इसके अलावा जो दिल्ली में एक हादसा हुआ है इमारत के गिरने का, 5 मंजिला इमारत, उसमें गोंडा के एक डॉक्टर की भी जान चली गई है। सो कस्बे के जो रामपुर निवासी हैं डॉक्टर रवि प्रकाश वर्मा, दिल्ली में हुए हादसे में इनकी मौत हो गई है और रवि प्रकाश जो है वो रूस से MBBS की डिग्री लेने के बाद दिल्ली में रहकर करीब 7 महीने से PG के साथ ही प्रैक्टिस सर्टिफिकेट के लिए तैयारी कर रहे थे। सो फादर ने बताया कि दिल्ली के मेहरौली एरिया में सैटरडे के नाइट दोस्तों के साथ कॉफ़ी पीने के लिए निकले थे, तभी ये 5 मंजिला इमारत अचानक ढह गई। मलबे के नीचे रवि सहित कई लोग दब गए। रेस्क्यू टीम ने मलबे के नीचे निकलने के बाद उन्हें अस्पताल पहुंचाया जहां पर डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सो ये एक दुखद समाचार था जो कि गोंडा के लिए था। और इसके साथ ही साथ आपको हम बता दें कि उतरौला अयोध्या राजमार्ग के लिए फ़िलहाल 18 करोड़ पास हो गए हैं। सो नेपाल को अयोध्या और तीर्थराज प्रयागराज से जोड़ने वाले उतरौला अयोध्या राजमार्ग के जो निर्माण है उसमें तेज़ी आई है। शासन ने 20 किलोमीटर लंबे इस रास्ते को चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 18 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त जारी की है। इससे निर्माण कार्यों को जल्दी गति मिलने के साथ ही लोगों को जल्द बेहतर आवागमन की सुविधा मिलने की उम्मीद है। पीडब्ल्यूडी के जो प्रांतीय खंड के अधिशासी अभियंता हैं, उन्होंने बताया है कि उतरौला अयोध्या सुल्तानपुर प्रयागराज राज्य मार्ग 9-7 से 10 मीटर तक चौड़ाकरण किया जा रहा है। पिछले वर्ष बलरामपुर सीमा से टिकरी जंगल तक करीब 20 किलोमीटर लंबे रास्ते को दोनों जंगल के करीब 1.5-1.5 मीटर चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए 63 करोड़ रुपये स्वीकृत हुए थे। इसके बाद कार्यदायी संस्था को नामित कर 13.9 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए थे, जिससे निर्माण कार्य शुरू कराया गया। अब शासन ने 18 करोड़ रुपए की दूसरी किश्त भी जारी कर दी है। सो कहीं ना कहीं इससे देवीपाटन मंडल में 13 जो सेतु निर्माण है उनको भी गति मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसके अलावा चलते हैं अगली अपडेट की तरफ और बताते हैं कि अगली अपडेट कहाँ से और क्या आ रही है। अगली जो अपडेट आ रही है वो है जनसुनवाई की। सुबह 10 बजे से नगर पालिका परिषद गोंडा के जो सभागार हैं वहाँ जनसुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। अगर आपको भी अपनी कोई सुनवाई का इंतज़ार है तो आप भी जा करके पता कर सकते हैं। इसके अलावा लैब टेक्नीशियन आरोग्य मेला उनके भरोसे लगाया गया। फिलहाल ये सारी जो अपडेट थी वो आपको दे दी गई है और ये आपकी सिटी अपडेट में थी। आई होप कि ये आपके ज़रूर काम की रही होगी। फ़िलहाल वक्त है अब अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ बढ़ने का और आइए अब अपने अगले म्यूज़िकल ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन आप सुनते रहिए अपना गोंडा FM 89.6 FM। ये है आपके अपने गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ आपका मॉर्निंग जॉकर जे अदनान, सिर्फ और सिर्फ गोंडा FM पर।
1: ओ जाने जा, ये सच है कि मैं अपनी मोहब्बत का इजहार कभी खुलकर न कर सका, मगर मेरी आंखें हमेशा मेरे दिल की हालत बताती रही और तू है कि मुझसे बेखबर आज भी है।

भाई जिंदगी में यूँ तो बड़ी परेशानियां हैं, तो खुशियों के लिए है ना हर मौके अहम। अब हर मौके और हर मूड पर है ना ज्ञानस्थली 89.6 FM आपके संग। तो आप भी डाउनलोड कीजिए अपने ज्ञानस्थली 89.6 FM की एप्लीकेशन को अपनी अनइंटरप्टेड लिसनिंग के लिए। अगर आप एंड्रॉइड यूजर तो आपको जाना है प्ले स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। और अगर आप हैं आईफोन यूजर तो आपको जाना है ऐप स्टोर पर और टाइप करना है रेडियो स्पेस ज्ञानस्थली स्पेस 89.6 FM। अब गुना सुनेगा अपना FM। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर, तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।

0: हाँ जी, तो एक बार वापस से आपका वेलकम करते हैं मॉर्निंग के स्पेशल वाले शो में। आपने ट्यून किया है गोंडा एफएम रेडियो, ज्ञान स्थल 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।
1: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे खान।

सो ये अपडेट जो आ रही है ये स्पेसिफिकली स्टूडेंट्स के लिए आ रही है और उनके काफ़ी काम की है। तो चलिए भाई थोड़ा सा गौर करिएगा बात पे, क्योंकि ये आपके काम की हो सकती है अपडेट। सो फिलहाल हम आपको बताने जा रहे हैं कि आखिर अपडेट क्या आई है जो आप तक पहुंचाना है, और साथ ही साथ आपको इन सारी चीज़ों से अपडेट करना है। सो हम बात करें यूपी टैक एडमिशन 2026 के बारे में। यूपी की यूनिवर्सिटी AKTU में BTech, MTech और बाकी कोर्सेज में एडमिशन्स शुरू हो गए हैं, और इसके लिए अपार आईडी ज़रूरी है। सो उत्तर प्रदेश की मेन टेक्निकल यूनिवर्सिटी अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी यानी AKTU के जो एकेडमिक सेशन है 2026-27 के लिए एडमिशन प्रोसेस शुरू कर दिया गया है। यूनिवर्सिटी में इंजीनियरिंग, मैनेजमेंट, फार्मेसी और बाकी प्रोफेशनल कोर्सेज में एडमिशन लेने में इंटरेस्टेड स्टूडेंट्स अब ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। पूरा एडमिशन

कोर्सेज में एडमिशन दिया जाएगा और यूनिवर्सिटी से जुड़े सरकारी जो निजी कॉलेजेस हैं हज़ारों सीटों पर इसमें एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो चुका है। स्टूडेंट्स अपनी एबिलिटी और जो रिलेटेड प्रवेश परीक्षा के आधार पर आवेदन कर सकते हैं। सो बीटेक राउंड वन शेड्यूल के बारे में अगर हम बताएं, सो यूपी टैक काउंसलिंग शेड्यूल जिसमें रजिस्ट्रेशन फीस सबमिशन डॉक्यूमेंट अपलोड ये है 25 मई से 15 जून 2026 तक। इसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो डेट है वो 28 मई से 20 जून तक चल रही है। क्वेरीज़ का जवाब देने के लिए 25 मई से 20 जून तक जो है वो दिया जा रहा है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन यानी प्रश्नों के उत्तरों के जो वेरिफिकेशन है उसका 25 मई से 20 जून तक। ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और लॉकिंग के लिए 22 जून से और 25 जून तक का सफ़र है, यानी ये 3 दिन का इसमें टाइम आपको मिलेगा। सीट अलॉटमेंट की अगर हम बात करें तो ये 27 जून को होना है। सीट कंफर्मेशन की अगर हम बात करें तो 27 जून से 29 जून के बीच में होगा। और ऑनलाइन फ्री और फ्लॉट के लिए अगर बताएं तो 27 जून से 29 जून 2026 तक का वक्त दिया गया है। सो AKTU एडमिशन 2026 के लिए जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स हैं उसके लिए हम बता दें, 10th और 12th की मार्कशीट, आधार कार्ड या कोई भी वैलिड आपका पहचान पत्र हो, पासपोर्ट साइज हाल की फ़ोटो हो और कैंडिडेट्स के सिग्नेचर यानी स्कैन कॉपी पर होने चाहिए। इसके अलावा संबंधित प्रवेश परीक्षा का जो स्कोर कार्ड है JEE मेन या बाकी परीक्षा वो भी होना चाहिए। इसके अलावा आपको हम बता दें कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट अगर लागू हो तो वो भी लगेगा। कैटेगरी सर्टिफिकेट जिसमें SC, ST, OBC, EWS ये सब लागू हो वो भी, एंड मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट कुछ कॉलेजेस में ज़रूरी हो जाता है तो वहाँ भी आपको लगाना पड़ सकता है। सो AKTU यानी अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी में अप्लाई कैसे करें आप? AKTU में एडमिशन के लिए स्टूडेंट्स को उत्तर प्रदेश टेक्निकल एडमिशन काउंसलिंग यानी UP टैक के ज़रिए अप्लाई करना पड़ेगा। सबसे पहले स्टूडेंट UPTAC की ऑफिशियल वेबसाइट uptech.samarth.edu.in पर जाना होगा। एक बार वापस से सुन लिए, अगर आप AKTU में अप्लाई करना चाहते हैं तो UPTAC की जो ऑफिशियल वेबसाइट है जिसमें UPTAC यानी uptech.samarth.edu.in यानी uptech.samarth.edu.in इस पर जाना है, ये इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है। होम पेज पर न्यू रजिस्ट्रेशन का आपको ऑप्शन मिलेगा जहाँ पे आपको क्लिक करना है, अपनी बेसिक्स जानकारी जो है उसमें फिल करके रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को पूरा कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के बाद लॉगिंग करके जो ज़रूरी दस्तावेज़ हैं उनको आपको अपलोड कर लेना है। इसके बाद स्टूडेंट्स अपनी पसंद के कॉलेजेस एंड कोर्सेज का सिलेक्शन कर सकते हैं। सो ऑनलाइन काउंसलिंग से AKTU की सीटें के बारे में बताया, तो BTEC कोर्स में प्रवेश मुख्य रूप से जो है वो JEE मेन के स्कोर के बेस पर मिल जाएगा। बाकी कोर्सेज के लिए अलग अलग योग्यता और मेरिट प्रक्रिया निर्धारित की गई है। सभी जो योग्य उम्मीदवार हैं उनका सिलेक्शन उनकी मेरिट के हिसाब से किया जाएगा। सीटों का जो आवंटन है पूरी तरह से ऑनलाइन काउंसलिंग प्रोसेस के ज़रिए से होगा, जिसमें स्टूडेंट्स को उनकी रैंक और ऑप्शंस के बेस पर कॉलेजेस मिलेंगे। सो UPTAC 2026 काउंसलिंग प्रक्रिया क्या है इसको लेकर के अगर आपको हम बताएं, सो उम्मीदवारों को सबसे पहले आधिकारिक पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन करना होगा, अपनी बेसिक्स जानकारी भरनी होगी। आवेदन के दौरान JEE मेन या CUET स्कोर कार्ड या 10वीं 12वीं का मार्कशीट, जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र समेत ज़रूरी जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनको अपलोड करना होगा। रजिस्ट्रेशन पूरा करने के बाद निर्धारित जो काउंसलिंग फीस है ऑनलाइन जमा करना ज़रूरी होगा। इसके बाद जमा होने वाले यूनिवर्सिटी की तरफ से सभी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन किया जाएगा। अगर किसी दस्तावेज़ में गलती या कमी होगी तो उसे सुधारने का मौका भी दिया जाएगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद स्टूडेंट्स अपनी पसंद के कॉलेजेस और ब्रांच का चयन कर पाएंगे। सभी विकल्प भरने के बाद उन्हें लॉक करना
ज़रूरी होगा, तय वक्त पर लॉक नहीं करने पर

विकल्प अपने आप लॉक हो जाएगा। सो जो स्टूडेंट्स हैं उनको रैंक कैटेगरी और चुनने गए विकल्पों के बेस पर सीट जो है वो दी जाएगी। सीट मिलने के बाद स्टूडेंट्स जो है वो सीट कंफर्मेशन फ़ीस जमा करनी होगी, चाहे तो अगले राउंड के लिए फ्लोट विकल्प भी चुन सकते हैं। सो इस तरह से बताया गया और लास्ट में आपको बताया गया था कि अपार आईडी इस बार ज़रूर लगेगी। सो यूपी टैग 2026 में अप्लाई करने के लिए अपार आईडी ज़रूरी कर दी गई है। सभी कैंडिडेट्स को सलाह दी जाती है कि भाई वो अपने आवेदन प्रक्रिया जो है यानी जो अप्लाई कर रहे हैं उससे पहले अपनी अपार आईडी वक्त रहते जनरेट कर ले, जिससे एडमिशन के दौरान किसी तरह की परेशानी ना हो। सो ये उन स्टूडेंट्स के लिए था जो टेक्निकल और प्रोफेशनल कोर्स AKTU अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी उत्तर प्रदेश में ही करना चाहते हैं। उनसे जुड़ी अपडेट थी जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी और वो आप तक हमने पहुंचा दी है। आई होप कि ये जानकारियां जो होगी वो ज़रूर आपके काम की होगी और मुझे उम्मीद है कि भाई ये काम की जो जानकारी है वो आप तक पहुंच गई है। आई होप कि भाई जो इसके लिए एलिजिबल हैं, जिनको सच में इसको जानना है इसके बारे में, उन तक आप ज़रूर पहुंचा देंगे। तो चलिए अब वक्त है आगे बढ़ने का, यानी अगले म्यूज़िकल ब्रेक तक चलने का। और चलते हैं, देखते हैं कि भाई अगला म्यूज़िकल ब्रेक क्या लेकर के आ रहा है आपके लिए, आपके मॉर्निंग शो गुड मॉर्निंग गोंडा में विद योर मॉर्निंग जॉ का आरजे अदनान, ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस्थली 99.6 FM पर।

0: अरे सुना
1: क्या?
0: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
1: वाओ!
0: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
1: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
2: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
0: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
0: विजिट करें एल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
4: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
5: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
6: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
7: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
0: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 94-50-944-999।
8: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

0: जी हाँ बहनों और भाइयों, आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए।
1: भाई साहब, अगर आपके साथ भी ये दिक्कत हो जाती, यानी एटीएम से नहीं निकला कैश लेकिन पैसे कट गए, तो आप क्या कर सकते हैं कि कैश भी ना निकले और पैसे कट जाते हैं। कई बार इस तरह की बातें सामने आती हैं और ऐसे में हम पैनिक हो जाते हैं, बट हमें पैनिक नहीं होना है। मान लीजिए कि हमने अपना ट्रांजैक्शन पूरा किया और कैश नहीं निकला लेकिन पैसे कटने का मैसेज आ गया एटीएम से, सो करना क्या है? ये कुछ आसान से स्टेप्स हैं जिनको अगर आप फॉलो करते हैं तो आपके पैसे वापस मिल जाएंगे। चलिए इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार आकर के बता रहे हैं, जरा चौकन्ने होके सुनिएगा। हाँ जी,

0: चलो भाई चलो, एटीएम से पैसा नहीं निकला है तो अब इसका जुगाड़ करते हैं और कैसे ये पैसे वापस आएंगे ये भी हम आपको बताते हैं आपके मॉर्निंग वाले शो में, क्योंकि आपने ट्यून कर लिया है गोंडा एफएम 89.6 एफएम, गोंडा शहर की धड़कन।
1: Now you're listening. Good morning, Gonda, with your favorite RJ Khan. RJ Khan.

हाँ जी, तो आपको बता दें कि एटीएम से पैसा निकालते वक्त कैश ना मिलना और खाते से रकम कटने का मैसेज आ जाना काफ़ी परेशान करने वाला होता है भाई। ऐसा लगता है यार ये हुआ क्या, हमारे साथ धोखा हुआ, ऐसी मतलब फीलिंग अंदर से आती है कि कितना बड़ा धोखा हो गया बताओ। मतलब पैसे बाहर नहीं आए और पैसा कट गया, मतलब इसमें भी ये हमारे ही साथ होना था क्या, ऐसा लगता है। सो अगर ऐसा कुछ हो गया आपके साथ या कभी इन फ्यूचर हो जाता है या किसी और के साथ होता है तो आप उनको भी गाइड कर सकते हैं। और आपके लिए भी ये जानकारी है कि पैसे कट गए, कैश नहीं मिला तो किधर किधर क्या करना है। अब हम बताते हैं किधर क्या करना है। तो सबसे पहले देखिए, एटीएम से जो निकली पर्ची है, मोबाइल मैसेज है और लेन देन का जो नंबर है उसको अपने पास सेफ रखिए। ट्रांजैक्शन आईडी जो होती है वो ज़रूर सेफ रखिए, क्योंकि एटीएम से पर्ची भी निकलती है और समटाइम्स ऐसा होता है कि पर्ची नहीं निकलती लेकिन मैसेज आता है, उस मैसेज को आपको बहुत ही सेफली रखना है। ज़्यादातर मामलों में 5 वर्किंग डेज के अंदर रिफ़ंड आ जाता है, यानी जो ज़्यादातर इस तरह के मामले होते हैं जिसमें कैश नहीं निकलता है लेकिन कट जाता है, उसमें 5 वर्किंग डेज में पैसा जो है रिफ़ंड आ जाता है। सो तय वक्त तक पैसा नहीं आने पर बैंक के कस्टमर केयर से बात कर सकते हैं और उसकी शिकायत भी दर्ज करा सकते हैं। हर बैंक में कस्टमर केयर होता है, वहां जा करके अपनी आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा फ़ोन पर सॉल्यूशन ना हो तो होम ब्रांच पर जा करके लिखित में शिकायत दे सकते हैं, यानी अगर फ़ोन से आपका काम नहीं हो रहा है तो जो होम ब्रांच है आपकी, जहाँ का आपका एटीएम बैंक अकाउंट है, वहाँ जा करके रिटर्न में आप उनको एप्लीकेशन दे करके अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा बैंक लेवल पर सुनवाई नहीं होने के मामले को बैंक के मुख्यालय अधिकारी या फिर रिजर्व बैंक के लोकपाल के पास भी ले जाया जा सकता है, यानी अगर आपको लगता है कि आपका बैंक नहीं सुनवाई हो पा रही है तो आपको बैंक के जो मुख्यालय हैं, जो मुख्य शिकायत अधिकारी हैं, उनका नंबर भी मिल जाएगा, आप उन तक ले जा सकते हैं या फिर रिजर्व बैंक के जो लोकपाल हैं उसके पास भी आप ले जा सकते हैं और अपनी ये शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा अगर बैंक की लापरवाही जारी रहती है तो आप राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग में शिकायत दर्ज करा सकते हैं, यानी अगर आप गूगल पे पोर्टल जाएंगे तो आपको राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग मिलेगा, जहाँ पर आप अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, क्योंकि ये प्रॉब्लम काफ़ी कॉमन है। कई बार ऐसा लोगों के साथ हो जाता है कि भाई पैसे निकलते नहीं हैं लेकिन पैसे कट जाते हैं, तो ऐसे में आपको लगता है कि भैया इस टाइम हम ही सबसे ज़्यादा फ्रॉड हमारे साथ हो रहा है, तो खैर वो फ्रॉड नहीं है, वो कई बार टेक्निकल इश्यूज़ होते हैं जिसके लिए हमने बताया कि आपको कंप्लेन कराना है। मेन है आपकी ट्रांजैक्शन आईडी, क्योंकि उसी से सारा पता लगता है, उसी से ट्रैक किया जाता है, तो उस मैसेज को और अगर पर्ची निकलती है तो उस पर्ची को आपको अपने पास सुरक्षित रख लेना है, जिससे कि जब जांच हो तो वो क्लियरली पकड़ में आ जाए कि भाई पैसा एटीएम के अंदर ही रह गया, सिर्फ पर्ची कटने का आया कि भाई इतना निकल गया और आपके अकाउंट से पैसे कट गए हैं। सो इसलिए ये समझदारी का कदम ज़रूर उठाइएगा। मुझे लगता है कि ऐसे कुछ केसेस आपके साथ हुए होंगे, नहीं तो हमारे अपने आसपास के लोगों के साथ अक्सर ऐसी चीज़ें हो जाती हैं, तो हम उन्हें भी गाइड कर सकते हैं। आई होप कि ये काफ़ी काम की जानकारी आपके लिए सच में काफ़ी काम की रही है। सो आइंदा पैसे कट जाए और पैसे ना मिले एटीएम से, तो अब आपको इन्हीं तरकीबों को आजमाना है और अपना पैसा वापस से पा जाना है।

0: तो चलो बच्चों बताओ, भवरे ने खिलाया फूल और फूल को ले गया राजकुमार। चिंटू, इस सॉन्ग में लेखक क्या कहना चाहता है, एक्सप्लेन करो।
1: टीचर जी, इस लाइन से हमें ये शिक्षा मिलती है कि ज्यादा सब्र करना भी ठीक नहीं है, नहीं तो आपकी मलाई रबड़ी छक्कन हलवाई की हो जाती है।

भैया, अगर आपके साथ भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई हो कि आपने एटीएम में अपना कार्ड डाला हो, पैसा नहीं बाहर आया होगा बल्कि पर्ची खाली बाहर आई, वो भी कटने का मैसेज, और पैसे नहीं आए, तो अभी जो हमने आपको तरीका बताया कि इस तरह से कंप्लेन कर सकते हैं आप, इस बात को आप खुद भी समझ लें और बाकी लोगों तक भी पहुंचा दें कि आपके लिए कंप्लेंट के लेवल पे आपके पास जो मैसेज आएगा, जो पर्ची निकलेगी, उसको आपको सेव रख लेना है, अपने बैंक से कॉन्टैक्ट करना है, ऑनलाइन आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और चाहे तो आप जा कर के अपनी होम ब्रांच यानी जिस ब्रांच में आपका अकाउंट है वहां जा कर के भी आप संपर्क कर सकते हैं, रिटर्न में अपनी कंप्लेंट दे सकते हैं, और 5 वर्किंग डेज में यानी 5 जो कार्य दिवस होते हैं उसके भीतर आने की बात कहता है बैंक। सो इस तरह से आपके 5 दिन में पैसे वापस आ सकते हैं, और इस बात को आप बाकी लोगों तक भी पहुँचा दें, क्योंकि इस तरह की प्रॉब्लम्स जो है वो काफ़ी लोग फेस करते हैं। फिलहाल आरजे नान वापस से लौटने वाले हैं, क्योंकि कुछ कंटेंट्स आ गए हैं जो आप में से ही लोग लिखते हैं, और क्या लाजवाब लिखते हैं, फिलहाल हम तक आ गया है और हम आप तक पहुंचाने वाले हैं बस सबसे कुछ ही देर में। लेकिन उससे पहले इस खूबसूरत से गाने को सुनेंगे आपकी मॉर्निंग वाले शो में, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग हुड्डा विद योर मॉर्निंग जॉक आरजे अदनान।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
3: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
4: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
3: सच में? क्या खास है वहाँ?
4: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
3: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
4: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
3: और फोटोग्राफी वगैरह?
4: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
3: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
4: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
3: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
5: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
1: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
2: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
1: सच में? क्या खास है वहाँ?
2: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
1: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
2: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
1: और फोटोग्राफी वगैरह?
2: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं, जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
1: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
2: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतुराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
3: बिल्कुल। सो वापस से एक बार हम आपके इस शो में आ गए जिसका नाम है गुड मॉर्निंग गोंडा और 10:52 हो चुके हैं आपके 9.6 एफएम के स्टूडियो में। फिलहाल चलने से पहले आप ही की तरफ से लिखे हुए आपके अल्फाज मिल चुके हैं। सो किसने कहां से और क्या लिखा है, आइए बताते हैं। तो सबसे पहले हम बता दें कि भाई कुंदन राज दत्ता उर्फ निश्चल जी का आया है पूर्णिया बिहार से और बड़ी खूबसूरत अल्फाज में लिखा है अनकहीं दास्ता। सो आखिर इनकी अनकही दास्ता क्या है, ये आपको हम रीसाइट करके यानी पढ़ करके आप तक ही पहुंचाने वाले हैं आपके अपने मॉर्निंग वाले शो गुड मॉर्निंग गोंडा में।
4: नाउ यू लिसनिंग गुड मॉर्निंग गोंडा विद योर फेवरेट आरजे खान।

अनकही दास्ता। जानती हो सब कुछ तुम, फिर भी नजरअंदाज करती हो। दिल के कोने में बसी है तस्वीर तुम्हारी, न बात करके मुझे बेकरार करती हो। तुम्हारी खामोशी एक शोर बन जाती है, मेरी रूह को अंदर तक तड़पाती है। मैं लिखता हूं नाम तुम्हारा हर पन्ने पर, तेरी यादें मुझे हर पल सहलाती हैं। तुम सामने होकर भी मुझसे दूर हो, जैसे कोई सपना कोई नूर हो। नजरें मिलाती हो झुक जाती है, क्या सच में तुम मुझसे मजबूर हो। तुम्हारे हंसने की आवाज़ गूंजती है कान में, जैसे कोई राग हो किसी पुरानी तान में। मैं ढूंढता हूँ मंजिल तुम्हें, खोया रहता हूँ अपनी ही जान में। क्या तुम नहीं जानती मैं क्या चाहता हूँ, तुम्हें पाने के लिए ही मैं जागता हूँ। तुम्हारी एक मुस्कान के लिए मैं खुद को हर रोज आजमाता हूँ। तुम पूछती हो क्यों उदास रहता हूँ, पर सच बताने से क्यों कतराता हूँ। मेरे दिल में सिर्फ तुम्हारा बसेरा, तुम्हारे बिना तो जैसे अधूरा है सुबह सवेरा। तुम कहो तो सितारे जमी पे ले आऊं, तुम कहो तो ये कायनात कदमों में बिछाऊं, मगर तुम्हारी चुप्पी तोड़ दूं मुझे, मैं अब और कितना खुद को बहलाऊं। दिल की बात दिल में ही रह जाती है, तेरी बेरुखी मुझे बहुत सताती है, पर यकीन मानो मेरी हर धड़कन में सिर्फ तुम्हारी ही यादें गुनगुनाती हैं। तुम पास आ जाओ तो ये आलम बदल जाए, मेरी हर मुश्किल का हल मिल जाए। फिर ना करना मुझे ऐसे नज़रअंदाज कि मेरी मोहब्बत भी एक दिन संभल जाए। क्या तुम कभी समझोगी मेरी ये तड़प, मेरी इस बेकरारी को दोगी कोई सबक। मैं खड़ा हूँ उसी मोड़ पर आज भी, जहाँ से शुरू हुआ था मेरा हर एक सफ़र। कुंदन राज दत्ता और फिनिशल जी फ्रॉम पूर्णिया बिहार, थैंक यू सो मच टू यू। बहुत ही उम्दा लिखा है आपने, बहुत उम्दा। यामिनी चौहान जी कुछ इस तरह लिखती है कि तुमसे शिकायतें भी थी और बेहिसाब शुक्रिये भी, कुछ अधूरे सवाल थे कुछ चुप रह गए किस्से भी, फिर भी सच यही था तुम्हारे होने से जिंदगी थोड़ी सी आसान लगती थी और दिल को दुनिया का कम वीरान लगती थी। तुम मेरी जिंदगी का सूरज थे और मैं पृथ्वी बन हर वक्त तुम्हारे इर्द गिर्द अपना मौसम बदलती रहती थी। क्या बात है, क्या एग्जांपल दिया आपने, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही गहरा, बहुत ही उम्दा। वर्षा कुमारी पायल जी लिखती हैं, भागती रेलगाड़ियां हमेशा जिंदगी का हाल सुनाती हैं, हर डब्बे में हजारों अधूरियां कहानियां छिपाती हैं, कभी मिलन की उम्मीद कभी बिछड़ने का दर्द लाती हैं, ये पटरियों पर चलती हुई वक्त की चाल सिखाती हैं, हर जंक्शन पर चेहरे बदलते सफ़र मगर चलता रहता, कोई उतर जाता बीच राह कोई मंजिल तक संग रहता, न जाने कहाँ से आती है कहाँ यूँ गुम हो जाती है, ये भागती रेलगाड़ियाँ अक्सर जिंदगी समझा जाती है। वाह वाह वाह वाह, क्या ऑब्जर्वेशन है, बहुत खूब। पुनीता सिंह जी ने भेजा है कि आपके आँखों में वो फितूर ना होता, मेरे दिल में आपको चाहने का सुरूर ना होता, लिखवा देते खुद को खुदा से लकीरों में आपको, अगर मेरा खुदा हमारी किस्मत लिखने से मजबूर ना होता। वाह, वेरी नाइस। नरेंद्र छाऊ जी ने लिखा है कि मिला के दिल अब वो तहरीर देखते हैं, आँखों से टपके मोती को पानी समझते हैं, हो यकीन कैसे उन्हें हमारे हाले दिल का, जख्मों पे डाल के नमक वो हाल पूछते हैं। आय हाय हाय, क्या बात है। डॉक्टर साक्षी यादव लिखती

हमें कबूल है, मुस्कुराहट में तेरी सुकून ढूंढ लेना हमें कबूल है, और खैरात में तो हमने खुदा से खुशियां तक नहीं ली कि खैरात में तो हमने खुदा से खुशियां तक नहीं ली, मुस्कुराते हुए अगर तू नफ़रत भी दे जा तो वो भी हमें कबूल है। और यूं तो मुद्दतों बाद किसी ने पूछा हो कैसे हो तुम, क्यों तो मुद्दतों बाद किसी ने पूछा कैसे हो तुम, तुम्हारे शहर में अनसुनी फरियाद बने रहना हमें कबूल है, और तुमसे अकेले में मिलने की ख्वाहिश रखता हूँ कि एक रोज़ तुमसे मिलने की ख्वाहिश मैं रखता हूँ, तुम्हारे इश्क की बारिश में ताउम्र भीगते रहना हमें कबूल है। ये नवदीप वेस्ट बंगाल से सुनते हैं मिस्टर आकाश, थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। गुंजन जौहरी जी सहारनपुर उत्तर प्रदेश से सुनती हैं, क्या लिखती हैं आइए बताते हैं आपको, आपने क्या कुछ लिखा हुआ है। सो आप कुछ लिखती हैं यूं कि आवाज़ मेरी किसी के दिल तक ना पहुंची, आवाज़ मेरी किसी के दिल तक ना पहुंची, और कुछ ने सुनकर भी अनसुनी कर दी, हमारे हमने हर दर्द मुस्करा कर छिपाया और दुनिया ने हमारी खुशी समझ ली, जो अपने थे वही फासले बढ़ाते रहे, हर बात में नए इल्ज़ाम लगाते रहे, हम चुप रहे तो उन्हें गुरूर लगा, हम बोले तो वो अकेले छोड़ कर जाते रहे, रात भर हम चांद से बातें करते रहे, अपने ही जख्मों को सहलाते रहे, जिसने चाहा दिल से उम्र भर हमने, वो हमें हर मोड़ पर आजमाते रहे। क्या बात है, बहुत खूब, बहुत ही उम्दा आप सब लोगों ने लिखा है, और हर बार मैं कहता हूँ कि ये सिर्फ लाइंस नहीं होती, ये आपके जज्बात होते हैं, ये आपने जो कुछ देखा होता है, जो कुछ फील किया होता है, ये सब कुछ वो होता है, इसलिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच हम तक अपने जज्बात पहुंचाने के लिए। और फ़िलहाल आरजे अदनान को दीजिए इजाज़त, क्योंकि वक्त ने इशारा कर दिया है, सुइयां आप चल दी है अगले प्रोग्राम के लिए। इस गाने को एंजॉय करिए और उसके बाद एंजॉय करिए अपना गाँव की गूंज। टेक केयर।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े ही बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरारा रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, जयनगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
3: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
4: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरोसर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
3: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
5: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
6: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
7: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
8: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
9: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
10: मतलब?
9: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
11: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
12: अरे समता, क्या हुआ? क्यों इतना खांस रही हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? और ये थर्मामीटर ये क्यों रखा है? तुम्हें बुखार है क्या? अरे यार, कुछ तो बोलो सही।
13: हाँ दीदी, राधे राधे, मेरी तबीयत ठीक नहीं है। कल रात से मेरे गले में भी दर्द हो रहा है और खांसी भी आ रही है। लग रहा है थोड़ा बुखार भी है।
14: किरण दी, मैंने समता दीदी को काढ़ा भी पिलाया है और दवा भी दी है, अब शायद उनको आराम हो गया होगा।
15: अरे नन्हे

0: अरे दीदी, मैं भी बहुत परेशान हूँ। मुझे भी छींक आ रही है रात से और गले में दर्द भी है।
1: काढ़ा पियो काढ़ा। किरण दी, आज गांव नहीं चलेंगी क्या?
2: चलूंगी चलूंगी बाबा, पर समता और शिवानी को यहीं छोड़ दूंगी। उनकी तबीयत ठीक नहीं है और वो परेशान भी हो जाएंगी।
3: नहीं नहीं, मैं भी चलूंगी गांव। मैंने दवा भी खा ली है और काढ़ा भी पी लिया है।
4: देखा मेरे बनाए हुए काढ़े का असर? किरण दी, जरा आप इन लोग को बता दीजिए मैंने काढ़े में क्या क्या डाला है।

0: जया ने काढ़े में अजवाइन, थोड़ी सी मेथी, अदरक, काली मिर्च, दालचीनी और अमरूद की पत्ती, सहजन की पत्ती, तुलसी की पत्ती, गुड़ और हल्दी, ये सारी चीजें पानी में डालकर थोड़ी देर पकाया है।
1: अरे वाह, अब तो मैं भी बनाकर अपनी नानी को पिलाऊंगी, उन्हें बहुत खांसी आ रही है।
2: हाँ हाँ रचना, क्यों नहीं, उनको भी दे दो।
3: अरे किरण दी, एक बात बोलूं, आप क्यों ना यही गांव में ही छप्पर के नीचे किरण आयुर्वेदिक केंद्र खोल लीजिए, जिसमें आप अनेक बीमारियों से ठीक होने की घरेलू जानकारी और दवा दोनों ही दीजिए।
4: सवर रंग मोर पिया नीको न लागे, हे सवर।

0: हाँ किरण दी, इससे गांव वालों को कुछ घरेलू दवाइयों के बारे में जानकारी भी होगी।
1: हाँ हाँ, और तो और रोज शहर भागने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी।
2: हाँ हाँ, मैं समझ रही हूँ कि तुम सब मिलकर मेरा शहर से पत्ता काटने में लगी हुई हो।
3: तो क्या दिक्कत है किरण दी, हम सब एक हफ्ते आकर आपसे मिल जाया करेंगे, क्यों जया?
0: हाँ बिल्कुल समता दी, क्यों नहीं।

0: तो बताइए किरण दी, आप अपना केंद्र कब खोल रही हैं?
1: हाँ हाँ शिवानी, बिल्कुल अपने नाम से ही खोलेंगे, किरण आयुर्वेदिक केंद्र। लेकिन थोड़ा सोच विचार भी कर लेने दो भाई।
2: हाँ हाँ, आप खूब सोच विचार कर लीजिए, आपको सोचने का पूरा मौका दिया जा रहा है। पर आपको कुछ तो करना होगा गांव वालों के लिए, क्यों दी?
1: हाँ हाँ बिल्कुल करूँगी, जो मुझे आता है और जो अपने लिए करती हूँ। देखो, घरेलू सामानों से अपनी परेशानी को कम किया जा सकता है। हमारे रसोई घर में तमाम ऐसे मसाले होते हैं जिनको हम सब्जी वगैरह में तो प्रयोग करते हैं, पर दरअसल सही ढंग से कैसे इस्तेमाल करें ये पता नहीं होता है।
3: बिल्कुल सही कह रही है दी, अगर उसे हम सिस्टमैटिक ढंग से इस्तेमाल करें तो उसका कुछ और भी फायदा हो सकता है। तो अब आप बताइए कि हम लोग किस मसाले को कैसे इस्तेमाल करें, क्यों समता दी?

0: बताती हूँ, सुनो सब लोग गौर से। अरे अरे, बहुत भीड़ इकट्ठी हो गई है, बहुत सारी हमारी काकी जी आ गई हैं।
1: का बताई बहन जी, हमारे लोग तो बहुत परेशान हैं। पेटवा तो हमेशा बगड़ जात है और खोखी दिन रात आवत।
2: काकी जी इधर आके बैठ जाइए, काका आप भी आइए, आइए आइए, इधर बहुत जगह है, बहुत सारे लोग बैठे हैं इधर।
3: हाँ दी बताइए, क्या बताने जा रही हैं आप?
0: तो सुनिए, सब लोग आराम से पहले बैठ जाइए। देखिए, मेथी का उपयोग आप सभी लोग सब्जी बनाते समय पहले डालती हैं, फिर सब्जी छौंक लगाती हैं। तो वही मेथी दाना अगर रात में सोने से पहले 25 से 30 दाना फाँक कर पानी पी लीजिए, इससे आपका पेट तो साफ ही होगा और आपको ताकत भी मिलेगी।
1: हाँ बहनी, हमारा तो पेटवा नाय साफ होता है, दिनम कई बार सिवाने जायी थे, का करी। अब सोवे से पहले मेथी खाई लेवा कर, अब तब देखी शायद फायदा कही जाए।
4: भाभी खोलो

0: किरण दी, एक बात मैं भी बता दूं कि अगर आपको सर्दी खांसी परेशान कर रही है, बार बार सर्दी जुखाम हो जाता है, तो अदरक घिसकर उसका रस निकाल लें और एक चम्मच शहद मिला लें और थोड़ा सा दालचीनी पाउडर मिलाकर सुबह शाम उसे चाट लें, तो बार बार सर्दी जुखाम नहीं होगा।
1: वाह संता दी, अब आप भी चप्पर छा लीजिए गाँव में।
0: अरे नहीं शिवानी, ये सब हमने किरण दी से ही सीखा है और अपने घर में इसे अप्लाई भी कर रही हूँ और इसका ज्यादा बहुत ज्यादा असर भी हुआ है।
2: अरे वाह समता दी, वेरी गुड।
1: बहिनी, अब हम सब है वही करबे जो ना आप कही हो। बताओ, दिना रतिया चौकोन रहे थे, लेकिन इन आए जानी थे कि कौन मसलवा कब खाई की इतना फायदा कही जाए।
3: काकी जी, आप जब सुबह टहलने जाती है तो ब्रश करके जाती है ना, तो रास्ते में अगर अमरूद का पेड़ मिल जाए तो दो पत्ती अमरूद की, दो पत्ती पीपल की, थोड़ी सी करी पत्ती, सब मिलाकर कूच कूच कर खा लें। फिर घर आकर आधा ग्लास गुनगुना पानी पी लिया करिए। ऐसा 15 दिन लगातार करिए, फिर देखिए

0: किरण दी, ये तो हम लोग भी कर सकते हैं ना?
1: हाँ हाँ, क्यों नहीं, ये सबके लिए है, चाहे कोई गांव का रहने वाला हो या शहर का।
0: ओके ओके, किरण दी घर भी चलना है, मुझे शादी में जाना है, जल्दी चलिए ना।
1: हाँ हाँ बिल्कुल जया, शीघ्र ही चलती हूँ।
2: बहने और कुछ हो बता दो हमें सबका।
3: काकी इस बार जितना किरण दी ने बताया है उतना करिए, फिर अगले शिफ्ट में हम लोग आएंगे और बहुत कुछ बताया जाएगा।
2: ठीक है दीदी, चलिए, आपका ड्राइवर गाड़ी में हॉर्न बजा रहा है, चलिए आपको बाहर तक छोड़ के आती हूँ।
1: तो चलो चलते हैं, सभी को राम राम, राम।

0: बच्ची को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
1: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
2: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
3: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
2: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।
4: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
5: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
4: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
5: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
4: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
5: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
6: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
7: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
8: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
9: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
10: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
11: ज्ञान स्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

0: मिस्टर एंड मिसेस खिलाड़ी।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशन पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।

0: हाय, नमस्कार, आदाब, कैसे हैं आप सभी। आई होप बहुत ज्यादा अच्छे होंगे। और आप सुन रहे हैं 89.6 FM, आपका अपना रेडियो ज्ञानस्थली, अपनी आरजे उन्नति के साथ। और ये है आपका कार्यक्रम ज्ञानस्थली लाइव। और मेरे साथ इस वक्त जो मौजूद हैं स्टूडियो में, उनका नाम है मेरी को होस्ट सुहानी। सुहानी सुहानी मौसम है सुहाना।
1: हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब।
0: बाय द वे, आपका नाम संध्या है।
1: यस मैम।
0: आई एम सो कंफ्यूज्ड।
1: नहीं, मेरा नाम
0: एक्चुअली सुहानी हमारे चैट बॉक्स में है।
1: हाँ हाँ, सही बात।
0: ओके, कभी कभार ऐसा हो जाता है। वैसे आपकी फेस को देखकर मौसम सुहाना है और हमारे दिमाग में गाना ही सुहाना चल रहा था आज। वैसे आपको पता है संध्या, आज हम क्या लेकर आए हैं।
1: क्या मैम?
0: कभी चोरियां की हैं?
1: चोरियां तो की हैं।
0: सच में की है?
1: हाँ सच में ही है।
0: कितने पैसे चुराए हैं?
1: पैसे नहीं चुराती, खाने वाला सामान चुराती थी मैं।
0: ओ, खाने वाला सामान चुराती थी आप। और हम पता है क्या चुराते थे?
1: क्या?
0: पड़ोसी के लगे हुए पेड़।
1: अच्छा, हाँ हाँ, निकाल ले, चलो अपने घर पे चुपके से लगा।
0: जैसे ही उनके घर पे कोई वो पेड़ का बीज गिरा और नया बीज से पेड़ उगा ना, हाँ, सबसे पहले मैं उस पौधे को गायब करती थी। या फिर किसी की डाल में से अगर मुझे लगता है कि स्टेम लगाया जा सकता है तो मैं उसको उठा लाती थी। मुझे बड़ा मजा आता था, पेड़ लगाएंगे पेड़ लगाएंगे। और जिसमें स्पेशली लिखा हो कि यहाँ से फूल तोड़ना मना है, हम फूल नहीं तोड़ते थे, फिर हम डंडी उड़ाते थे।
1: अरे वाह, उसने फूल मना किया तो हमने डंडी ही उड़ा दी।
0: अब मैंने उसको घर में आके लगा भी तो लिया ना, और अभी मेरे घर में वो फूल भी दे रहा है। और सबसे बड़ी कमाल की बात ये भी है, जो मैं नर्सरी से खरीद के लेकर आती हूँ वो मेरे घर में नहीं लगते, लेकिन जो मैं कहीं ना कहीं से लेकर आती हूँ कि आप चोरी करके या मांग के, वो जरूर लग जाता है।
1: अच्छा, तो आपका चोरी करना बहुत बेनिफिशियल है।
0: अब अगर वो पर्यावरण के लिए अच्छा है तो मेरे लिए भी अच्छा ही है।
1: बिल्कुल।
0: फिलहाल दोस्तों, हम आपको अच्छी सलाह नहीं देने वाले, लेकिन चोरियों की बात हो क्यों रही है ये भी हम आपको बता दें। आज मेरे हाथ लगा है वो काला चिट्ठा, नहीं गोरा चिट्ठा है एक्चुअली, क्योंकि आज हमारी कुछ ऐसी अतरंगी, कुछ ऐसी अजब गरब चोरियां मेरे हाथ लगी हैं जिनको बताने में बड़ा मजा आने वाला है। कुछ ऐसे भी चोर हैं जो निहायती शरीफ हैं। आज तक आपने निहायती बदतमीज सुना होगा, लेकिन हम कह रहे हैं कुछ चोर ऐसे भी होते हैं जो बहुत निहायती शरीफ होते हैं। इतने शरीफ होते हैं कि वो बेचारे चोरी करने के बाद लेटर छोड़ कर जाते हैं कि देखो भैया, हम लेकर तो जा रहे हैं लेकिन वापस कर देंगे इंटरेस्ट के साथ, सूद समेत वापस करेंगे 3 साल बाद, इंतजार कर लेना। और इसके बाद भी कुछ ऐसे भी चोर हैं जिनको शायद ओसीडी की प्रॉब्लम है या क्या दिक्कत है, वो घर में जाते हैं चोरी करने और चोरी करने की जगह पर घर की सफाई करके वहीं सो जाते हैं। सुबह मालिक उठता है, उसको दिखता है कि उसका पूरा कमरा साफ हो चुका है, चकाचक चमक रहा है। ऐसे भी चोर है?
1: हाँ, ऐसे मैंने एक जगह अपने गाँव में देखा है।
0: तो भाई ऐसे भी चोर होते, चोर ऐसे भी होते हैं जो जाते तो हैं चोरी करने, लेकिन जैसे ही एसी की ठंडी ठंडी हवा पड़ती है वो घोड़े बेच के सो जाते हैं।
1: अरे मैम, पता है आपको, मेरे दूसरे गांव में कुछ चोर आए। अब उन्होंने चोरी करने के बजाय वहीं पे गए, आराम से बैठे रहे। जब घर वालों को पता चला कि घर में चोर है, तो वो बंदा बताता, सबने पूछा यहाँ का क्या करने आया, उसने कहा मैं चोरी करने आया। अब बताइए, ऐसे भी चोर हैं, वो बताता है मैं चोरी करने आया हूँ।
0: तो भाई आजकल के लेटेस्ट जमाने में मुझे लग रहा है चोरी की जो वारदात है वो खतरनाक से ज्यादा फनी होने लगी,
1: फनी होने लगा।
0: और इन फनी कहानी को आज हम लेकर आए हैं आपके साथ शेयर करने के लिए। तो भैया, तब तक के लिए आप अपना दिल थाम के बैठिए, सोचिए सोचिए कहाँ पे कौन सी चोरी हो सकती है और कौन महाशय हो सकते हैं जो आपके लेटर छोड़ के जाएंगे। हर बार आपकी किस्मत अच्छी हो ऐसा हो नहीं सकता, इसलिए घर पे ताला लगा कर रखिएगा। हो सकता है कभी कभी कोई शरीफ इंसान आपसे टकरा जाए जिसको मजबूरी हो चोरी करने की। फिलहाल हम आपको ये कहानी सुनाते हैं, लेकिन इस छोटे से गाने के उस पार, तो बने रहिए मेरे साथ और एंजॉय करते रहिए। हमारे एक लिस्टनर की डिमांड है भाई, उन्होंने नगीना फिल्म से सुनना है आजकल याद कुछ रहता नहीं। आप इस गाने को एंजॉय कीजिए उनकी फरमाइश पर, और आप अपनी डिमांड भी भेज सकते हैं अगर आप चाहें तो, और एंजॉय करते रहिए। मिलते हैं इस गाने के उस पार, उसके बाद हम बताते हैं कुछ ऐसे ही फनी किस्से, फनी कहानियां जो हम लेकर आए हैं पूरे देश से आपके लिए। स्टे ट्यून्ड।

0: हाँ जी हाँ जी, अ वेरी गुड आफ्टरनून वंस अगेन। और बॉस, आप सुन रहे हैं आपका अपना सबसे कड़क वाला एफएम रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम। यह गोंडा शहर की धड़कन पर प्रोग्राम चल रहा है ज्ञान असली लाइव। और बॉस, आज जो रेडियो पर रायता फैलने वाला है ना, उसे समेटना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आज हम ऐसी बात कर रहे हैं, ऐसी लेजेंडरी चोरियों की बात कर रहे हैं जिसको आपने कभी नहीं सुना होगा। और अगर कभी आपने सुना है या फिर आज आप सुनने वाले, तो हंस हंस के लोटपोट जरूर हो जाएंगे। आप भी सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि भाई साहब, ऐसे भी चोर होते हैं क्या? होते हैं?
1: हाँ बिल्कुल,
0: पक्का होते हैं?
1: हाँ होते हैं मैम।
0: ऑल राइट, तो सबसे पहले किसके बारे में बता दिया जाए?
1: चोरों के बारे में।
0: ये तो मुझे भी पता था, मैं पूछ रही थी कौन से चोर के बारे में। चलिए मैं आपको बताती हूँ भिंड शहर से एक चोर के बारे में। मध्य प्रदेश के भिंड शहर में चोरी की एक अजब वारदात सामने आई हुई है। चोर ने वारदात को अंजाम देने के लिए एक खत छोड़ा हुआ था। खत में उसने चोरी के पीछे अपनी मजबूरी बताई। उसने कहा कि भैया, हमें चोरी करने का कोई शौक नहीं है, लेकिन मेरे दोस्त की जान खतरे में है और इसके लिए मुझे चोरी करनी पड़ रही है। आप मुझ पर भरोसा रखिएगा, मैं इस चोरी को जितना भी पैसे चुरा रहा हूँ, इसको मैं वापस कर जाऊँगा। अब घर वाले सोच में पड़े थे कि क्या कोतवाल के पास जाएं या ना जाएं। कोतवाल के पास जाएंगे तो ये मजबूरी का फायदा उठाना नहीं हो जाएगा। इसके बाद भी वो चले गए। इतना सन्नाटा क्यों है? मतलब माना चोर अच्छा था, तो तुम इतने सन्नाटे में क्यों चली गई?
1: अरे नहीं मैम, लेकिन इतने अच्छे भी चोर होते हैं दोस्तों के लिए।
0: अब होते हैं, तभी तो मेरे सामने ये एग्जाम्पल है।
1: क्या बात है, ऐसे दोस्त होने चाहिए।
0: जी हाँ, और हम आपको बता दें भाई, ये चोरी किसी और के घर में नहीं, एक पुलिस वाले के घर में हुई थी, एक सिपाही के घर में हुई थी, जब वो अपने पत्नी और अपने बच्चों के साथ मायके गई हुई थी। पुलिस ने बताया कि चोर मकान में चोरी करने के बाद एक चिट्ठी छोड़ के चला गया। पत्र में उसने लिखा, सॉरी दोस्त, मजबूरी थी, मैं ऐसा नहीं करता, बट मेरे दोस्त की जान चली जाती, टेंशन मत लेना, जैसे ही पैसे आएंगे तुम्हारे घर में फेंक जाऊँगा। और तुम पैसों की बिल्कुल टेंशन मत लेना, फेंक कर चला जाऊँगा, क्योंकि सामने होंगे तो तुम पकड़ लोगे, इसीलिए।
1: और बताइए मैम, पुलिस के घर में चोरी की गई है, क्या बात है, जबकि पुलिस सबको सिक्योरिटी देते हैं, खुद सेफ नहीं है।
0: नहीं, एक्चुअली वो चोर अच्छा था, मुझे लग रहा है।
1: हाँ हाँ, चोर अच्छा था।
0: और एक और चोरी है मेरे पास, जिसको सुनने के बाद आप भी हंसने वाले हो, और उसमें भी सेम लेटर छोड़ा गया है, लेकिन ये चोरी कहीं और नहीं, आपकी यूपी में हुई है।
1: अपने यूपी में?
0: हाँ, अपने यूपी में। चलिए हम आपको बता दें भाई, सीतापुर से एक चोरी का वारदात सामने आया है, और उसमें एक लेटर छोड़ा गया है। लेटर कुछ इस तरह से है कि, जय श्री राम, मैं आपके ये उपकरण लेकर जा रहा हूँ, जिसका मूल्य लगाऊं तो 90,000 होगा, और अगर मैं उसका इंटरेस्ट भी लगाऊं तो 10% के हिसाब से मैं आपको 27,000 रुपये ब्याज आपका लग जाएगा। तो जितना भी टोटल होने वाला है, 3 साल बाद मैं आपको सूद समेत ब्याज के साथ वो 27,000 जो मैं प्लस करके जा रहा हूँ, प्लस वो 90,000 जिसका सामान मैंने लिया है, दोनों मिक्स करके आपको दे जाऊंगा, लेकिन तब तक के लिए भरोसा रखिएगा आपका प्रिय चोर।
1: अरे मैम, क्या ले गया होगा ये नहीं पता चला।
0: उसने कहा तो, मैं एक उपकरण लेके जा रहा हूँ जिसकी कुल कीमत 90,000 रुपए के आसपास मुझे लग रही है।
1: तो वो उपकरण बहुत महंगा है।
0: 10% इंटरेस्ट भी लगाया है उसने।
1: सोचो मैम,
0: 27,000 रुपए एक्स्ट्रा वो देने वाला है, उसने 3 साल के लिए उसको उधार लिया है, चोरी नहीं की है।
1: ऐसे चोर मिले तो फिर उन्हें कोई डांटेगा नहीं, सब बल्कि उनसे लोग ज्ञान लेना पसंद करेंगे।
0: ओके, फिलहाल ये तुम्हारे लेसन बताएंगे कि आप ज्ञान लेना पसंद करेंगे, या आपके पास ऐसी कोई कहानी है इन चोरों की, इन चोर के बारे में, आप मुझे ज़रूर बताइएगा। देते एक छोटा सा म्यूजिकल वाला ब्रेक, इस ब्रेक के उस पार आते हैं और भी बातें बताते हैं, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं, जिससे दिल का दौरा पड़ सकता है। धूम्रपान करने वालों के दिल में इस जहरीले पदार्थ की लगभग एक चम्मच तक की मात्रा पाई गई है, वो भी सिर्फ 32 वर्ष की उम्र में। धूम्रपान जानलेवा है, इसे आज ही छोड़ें। भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी

0: रास्ता तुम्हारे घर से गुजरता था, दूरियां बढ़ती गई पर दिल फिर भी धड़कता था। आखिर एक अनजान मोड़ पर हम बिछड़ कर रह गए, जमाने से ज्यादा मोहब्बत करी थी इसलिए।
1: हेलो दोस्तों, अब हम आ गए हैं आपको एक दूसरी कहानी सुनाने के लिए। एक घर में एक चोर घुसा।
2: चोर तो ठीक है भाई साहब, लेकिन अपना नाम तो बता दीजिए ताकि हमारे लिसनर जो अभी अभी हमारे साथ जुड़े हैं उन्हें पता तो चल जाए कि यहाँ पे हैं कौन।
1: हेलो एवरीवन, मैं हूँ संध्या।
2: और मैं जो इतनी बकवास करती है जिसका मुंह कभी बंद नहीं होता, वो है आपकी आरजे उन्नति। और आप सुन रहे हैं रेडियो 91.6 FM, यह गोंडा शहर की धड़कन। तो भाई संध्या।
1: हाँ मैम।
2: चॉकलेट पसंद है?
1: बहुत ज्यादा।
2: कितनी ज्यादा?
1: बहुत ज्यादा।
2: अगर मैं तुम्हें 10,000 चॉकलेट ला के दूँ खाओगी?
1: खाऊंगी नहीं पर रख जरूर लूंगी इतना ज्यादा।
2: ऑलराइट, तो भाई आप भी सोच रहे होंगे कि हमने क्यों ये सवाल किया है। चॉकलेट आपको भी पसंद होगी, चॉकलेट खाने का शौक आप भी रखते होंगे। भाई चॉकलेट आई थिंक दुनिया के हर इंसान को पसंद है, लेकिन एक ऐसे भी महाशय हैं जिन्हें चॉकलेट कुछ इस कदर पसंद है कि उन्होंने पूरे चॉकलेट का टैंक ही चुरा लिया, जिसमें 12 टन चॉकलेट जा रही थी और उन्होंने उस पूरे व्हीकल को ही अपने कब्जे में ले लिया और छोड़ा ही नहीं। अब भाई किटकैट वाले भी परेशान कि ऐसा कैसे हो सकता है, हमारी 12 टन चॉकलेट ले कौन जा सकता है, जिसके अंदर लगभग 12,000 किलोग्राम चॉकलेट्स भरी हुई थी। यूरोप में ये बात चर्चा का विषय बन गई और यूरोप से निकलकर ये भारत तक भी पहुंच गई। और भारत में अब लोग सोच रहे थे कि इतना कौन किटकैट का शौकीन इंसान हो गया जिसने पूरे किटकैट के 12 टन चॉकलेट से चुरा ली।
1: सच में मैम, इतना ज्यादा चॉकलेट कौन ले सकता है,
2: जिसे शायद शौक होगा। और कुछ ट्रोलर्स तो ये भी कहने लगे कि भाई इंडिया में चॉकलेट्स की क्वालिटी अच्छी नहीं आ रही थी, इसी बात को मद्देनजर रखते हुए उन भाई साहब ने सोचा क्यों ना पूरी चॉकलेट जो रियल आ रही है, जो यूरोप में बढ़ रही है, जिसमें चीनी कम है दूध ज्यादा है, तो क्यों ना वही गायब कर दिया जाए।
1: समझदार
2: तो होगा ना मेरा। और 5 रुपए की चॉकलेट अगर मैं 15 में बेचूंगा तो भी कोई कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि चीनी तो है ही नहीं।
1: हाँ, क्योंकि उसमें ओनली दूध है।
2: बिल्कुल। तो उन्होंने इस चॉकलेट के 12 टन का जो टैंक जा रहा था उसको गायब कर दिया। वैसे चॉकलेट खाने का शौक मुझे भी है लेकिन इतना नहीं है।
1: इतना नहीं है। हाँ।
2: एंड किटकैट ने उसकी तारीफ करते हुए लिखा है भाई कि उसकी चॉकलेट की पसंद बहुत उम्दा है।
1: मैम फेवरेट चॉकलेट किटकैट ही मेरा है।
2: आप ही हैं फिर वो चोर?
1: अरे नहीं पर पसंद तो है मुझे।
2: क्या पता अभी हो और हमारे बगल में बैठ के बोल रही हो हम नहीं है
1: तो यूरोप वाले आके मुझे लेके जाएंगे।
2: चॉकलेट भी लगी है।
1: हाँ, लेकिन मुझे उसका नहीं चुराया है, मैंने लेके खुद का खाया है।
2: अब मुझे क्या पता, ये बात मैं नहीं जानती, ये बात किटकैट वाले नहीं जानते, ये तो बस आप ही जानती हैं और आपका दिल जानता है कि आपने चॉकलेट ली है कि नहीं।
1: मुझे तो पता है।
2: और इन्हीं चोरियों के बीच में मुझे कुछ ऐसे भी चोर याद आते हैं भाई, जो गए तो थे चोरी करने लेकिन करके आ गए सफाई।
1: सफाई करके आ गए?
2: हाँ, एक ऐसा चोर जो घर में घुसता है और घर में घुसने के बाद शायद उसको था OCD की दिक्कत, यानी कि उसको हर एक सामान सेट होना चाहिए। और घर का मालिक जो था वो था निहायत ही आलसी किस्म का इंसान। हाँ। उसने अपने घर का सारा सामान इधर उधर फैला रखा था, कूड़ा कचरा फैला रखा था, कपड़े फैला रखे थे। चोर घुसा, उसने अपना पहला कदम रखा, लाइट जलाई और देखा कि चोरी करनी है, लेकिन चोरी करने से पहले उसकी नजर पड़ी बेड पे पड़े बिस्तर पर जो इतने सारे कपड़े पड़े थे, जमीन पर जो इतने सारे रैपर्स पड़े थे। तो उसने सबसे पहले झाड़ू उठाई है, नीचे का फर्श साफ किया है, उसके बाद कपड़ों को तय लगाया है और उन सबको पैक वैक करके चोर का चोरी का जो अंदाज था, जो उसका काम था, वो छोड़कर सफाई का काम करने के बाद वो वहां से चला गया।
1: चोर नहीं, मुझे तो लगता है किसी की वाइफ आ गई गलती से घर में।
2: नहीं, फिलहाल वो चोर ही था।
1: कर सकता। अच्छा, चोर ही था।
2: वो चोर ही था लेकिन वो महाशय सफाई करके चले गए, तिजोरियों की नहीं कमरे की
1: सफाई कर गए। ऐसे चोर हम लोग के घर में आए तो हम लोग भी खुश रहे।
2: तो आप रोज गंदगी फैला के रखेंगे इस चोर के आने की उम्मीद में?
1: नहीं, फिर भी, लेकिन उससे आना चाहिए मेरे रूम पे जरूर।
2: वाह, मैं पहली बार देख रही हूँ कोई ऑन एयर बैठ के चोर अपने घर बुला रहा है।
1: नहीं, ऐसे चोर को
2: ऐसे मैनिफेस्टेशन नहीं करते, क्या पता वो सच हो जाए। तो फिलहाल के लिए तो भाई ये तो थे थोड़े से अंदाज इनके अलग थे, लेकिन एक ऐसे भी थे जो सच में चोरी करने गए थे, उन्होंने चोरी भी की थी, लेकिन क्योंकि गर्मी आजकल बहुत ज्यादा पड़ रही है और घर में चल रहा था AC, तो चोर ने सारा सामान अपने बगल में रखा, सोफे पर लेट गया और सो गया। सुबह मालिक उठा, देखा चोर भी लेटा है, बगल में उसके सामान भी रखा है। उसने पुलिस को कॉल किया है, बेचारी ने चोर ने इतनी मेहनत से चोरी की थी, पूरा घर का सामान बटोरा था, वो सामान भी उसके हाथ से चला गया और वो भी जेल चला गया।
1: मैम तो इसमें चोर की गलती नहीं है, ये जो गर्मी चल रही है उसमें जो एसी चल रहा था ये उसकी गलती, उसने उसको पकड़वा दिया।
2: नींद प्यारी थी,
1: नींद प्यारी थी,
2: वो हमारी तरह थे, कहीं भी सो जाते हैं।
1: हाँ, वो कंफर्टेबल बेड और प्लस एसी, पूछिए मत।
2: उन्होंने कहा चोरी तो होती रहेगी, नींद पहले ज्यादा इम्पोर्टेंट है।
1: नींद इम्पोर्टेंट।
2: अच्छा ये सोचो अगर ऐसा कोई चोर आपको मिल जाए तो।
1: मैम चोर का तो नहीं पता, मैं खुद सोना चाहूंगी अगर एसी चल रहा हो तो।
2: ऑलराइट भाई, इनको इनके सपनों में जाने दीजिए, इनके ख्यालों में ख्वाबों में जाने दीजिए। हम आपको बता दें आजकल जब लोगों को चोर मिलते हैं तो वो पुलिस को कॉल नहीं करते हैं, स्पेशली अगर वो लड़कों को मिलते हैं, लड़के उनकी वीडियोस बनाने लग जाते हैं, उन्हें ट्रॉल करने लग जाते हैं भाई कि ये देखो ये है हमारे घर में चोरी करने आए थे और ये पकड़े गए हैं और अब कैसे बैठे हुए हैं। कुछ ऐसे भी इतने होशियार, इतने कमाल के, इतने उम्दा शख्सियत के लोग होते हैं जो चोर से डांस करवा लेते हैं कि भाई तुम चोरी करने आए हो, अब तुम पकड़े गए हो तो तुम पनिशमेंट में डांस करो और हम तुम्हें छोड़ देंगे।
1: हाँ मैम, वो उनको लगता है कि अब यही सबसे बढ़िया इनसे करवाने का,
2: एंड उसके बाद वो वीडियो इंटरनेट पे वायरल कर दी जाती है। तो भाई अगर आपने भी कोई ऐसा वाक्या देखा है या फिर कहीं महसूस किया है या फिर किसी से सुना है ऐसी कोई कहानी तो हमें चैट बॉक्स में आके जरूर से बताइएगा। और आप एंजॉय कीजिए इस छोटे से ब्रेक को, इस प्यारे से गाने को, बन के हवा में बेजुबा में। यही रहन थी, मैंने बीच में ही रोक दिया था एक्चुअली। अल्तमश फरीदी की आवाज़ में होने वाला है आपके लिए बहुत ही खूबसूरत सा गाना, बन के हवा में बेजुबा में। आप इस गाने को सुनते रहिए, मैं मिलती हूँ उस गाने के उस बार, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड।

तुम्हारे घर से गुजरता था, दूरियां बढ़ती गई पर दिल फिर भी धड़कता था। आखिर एक अनजान मोड़ पर हम बिछड़ कर रह गए। जमाने से ज्यादा मोहब्बत करी थी इसलिए शायद ये जख्म सह गए।

हां जी, तो आप अल्तमश फरीदी की आवाज में सुन रहे हैं रूहेदारी। एक्चुअली इस गाने का नाम यही है। और हमारे साथ जिज्ञासा जी जुड़ी हैं, जो लिख रही हैं हाय मैम गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून टू यू। जॉन हमारे साथ जुड़े हैं, जो लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून मैम, गुड आफ्टरनून टू यू। एंड आप दोनों का स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं आपके अपने कार्यक्रम ज्ञान असली लाइफ में। जिज्ञासा जी लिख रही है, मैम मैं पेन बहुत चोरी करती थी अपने फ्रेंड्स का, क्लास में फेमस थी पेन चोर के नाम से। क्या बात है भाई। और वैसे आप अकेली नहीं है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो क्लास में दूसरों के पेन अपने पास रख लेते हैं, उसको चोरी नहीं कहते है ना, उसको दोस्ती कहते हैं। फिलहाल घड़ी ने कर दिया इशारा कि अब वक्त है आपसे विदा लेने का, तो अब मुझे दीजिए इजाजत, मुलाकात होगी कल आपसे लेकर के एक बढ़िया सी कहानी की। कल है ट्यूसडे, ट्यूसडे को होता है हमारा स्टोरी वाला डे, सुनना मत भूलेगा। आपका अगला कार्यक्रम है सेहतिया सिंह, जिसमें बात होगी सेहत की। लेकिन तब तक के लिए रखिए अपना ख्याल।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराल रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। अरे सुना?
2: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल, फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर, नगरा, बलरामपुर रोड, गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।

सेहत सही लाभ कई शुरू होने जा रही एक नई कड़ी जो आपकी जिंदगी के साथ है जुड़ी। सेहतिया सिंह और टीकन देवी के संग बात करेंगे सेहत की, दूर करेंगे बहुत से भ्रम, सीखेंगे सिखाएंगे, पैसे भी अपने बचाएंगे, बेहतर स्वास्थ्य के लिए बदलेंगे अपना व्यवहार, टीबी हाथी पांव जैसी बीमारियों से अपने बचाएंगे, सरकारी अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवाएंगे, बीमारी से सेफ रखेंगे अपना परिवार, रहेंगे रोग मुक्त, जीवन रहेगा खुशहाल। अब खत्म हुआ इंतजार, सुनना ना भूलिए सेहत सही लाभ कई सिर्फ आपके अपने सामुदायिक रेडियो, रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM पर। 89.6 FM पर।

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही और लाभ कई। मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा। आज की बात बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आज है विश्व तंबाकू निषेध दिवस। एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि तंबाकू सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि एक ऐसा जाल है जिसमें फंसकर इंसान धीरे धीरे अपनी सेहत, अपनी जिंदगी और अपने परिवार की खुशियों को खो देता है। इस साल का संदेश भी बहुत साफ है, अनमास्किंग द अपील, यानी इस दिखावे को हटाना कि तंबाकू और निकोटीन कोई स्टाइल या आधुनिकता की चीज है। असल में एक लत है, एक बीमारी है जो खास करके हमारे नौजवानों को अपनी तरफ खींच रही है। और इन सभी बातों पर चर्चा करने के लिए हमारे बीच में मौजूद हैं हम सभी की प्यारी टीकन देवी जी। टीकन जी, आपका स्वागत है।
1: धन्यवाद आकांक्षा जी, और मेरे सभी प्यारे श्रोताओं का भी धन्यवाद। आपने बिल्कुल सही कहा, आज तंबाकू का खतरा पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ गया है। पहले लोग सिर्फ बीड़ी सिगरेट तक सीमित थे, लेकिन आज नए नए रूप आ गए हैं। ई सिगरेट, फ्लेवर, निकोटीन पाउच, ये सब ऐसे दिखाई जाते हैं जैसे सुरक्षित हों, आधुनिक हों, लेकिन सच्चाई ये है कि ये सब एक ही चीज़ है, लत लगाने के तरीके। और सबसे दुखद बात ये है कि ये खासकर बच्चों और किशोरों को निशाना बना रहे हैं।
0: मतलब जो आजकल कूल दिखाने की कोशिश होती है दोस्तों के बीच सोशल मीडिया पर, फिल्मों में, वो असल में सिर्फ एक दिखावा है, एक जाल है जिसमें धीरे धीरे इंसान खुद ही फंस जाता है बिना ये समझे कि वो किस तरफ जा रहा है। क्यों भाभी?
1: बिल्कुल सही, यही सच्चाई है। कंपनियां बहुत सोच समझकर ऐसे रंग, फ्लेवर और पैकेजिंग तैयार करती हैं जो खासकर बच्चों और युवाओं को आकर्षित कर रहे हैं। उन्हें ये महसूस कराया जाता है कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, बस एक बार ट्राई कर लो, दोस्तों के साथ मजा आ जाएगा, स्टाइलिश लगेगा, लेकिन असल में वहीं से लत की शुरुआत होती है। धीरे धीरे शरीर निकोटीन का आदि हो जाता है और फिर ये सिर्फ चॉइस नहीं रह जाती, ये एक ज़रूरत बन जाती है। इंसान चाह कर भी इसे छोड़ नहीं पाता क्योंकि शरीर और दिमाग दोनों इसकी मांग करने लगते हैं।
0: टीकन भाभी, अगर हम अपने देश की बात करें, भारत में ये समस्या कितनी बड़ी है? क्या ये सच में इतनी फैल चुकी है जितना हम सुन रहे हैं या सुनते हैं?
1: हाँ दीदी, भारत में स्थिति काफ़ी चिंताजनक है। करीब करीब हर तीसरा वयस्क किसी न किसी रूप में तंबाकू का इस्तेमाल करता है, खासकर ग्रामीण इलाकों में जहां खैनी, गुटखा, बीड़ी जैसे स्मोकलेस और सस्ते तंबाकू उत्पाद ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं। और सबसे दुखद बात यह है, हर साल लगभग 10 से 12 लाख लोगों की मौत सिर्फ तंबाकू के कारण होती है। जरा सोचिए ये संख्या कितनी बड़ी है। और इसमें सिर्फ वही लोग शामिल नहीं हैं जो तंबाकू लेते हैं, बल्कि वो भी शामिल हैं जो दूसरे के धुएं के संपर्क में आते हैं।
0: मतलब जो खुद तंबाकू नहीं लेते वो भी इस खतरे से बचे नहीं हैं, मतलब बच नहीं सकते या बच नहीं पाते। बहुत ही गंभीर समस्या है ये।
1: बिल्कुल, इसे हम सेकंड हैंड स्मोक कहते हैं। अगर घर में या आसपास कोई एक व्यक्ति भी तंबाकू लेता है तो उसका असर बाकी लोगों पर पड़ता है, खासकर बच्चे, महिलाएं और बुजुर्ग सबसे ज़्यादा प्रभावित होते हैं। बच्चों में सांस की बीमारियां बढ़ जाती हैं, बार बार खांसी जुकाम होता है, महिलाओं में कमजोरी और गर्भावस्था के दौरान गंभीर समस्याएं हो सकती हैं, यानी एक व्यक्ति की आदत पूरे परिवार की सेहत पर भारी पड़ती है।
0: भाभी, लेकिन लोग अक्सर ये कहते हैं कि हम तो बस थोड़ा बहुत लेते हैं, इससे क्या फर्क पड़ता है? क्या इसमें कोई सच्चाई है या ये एक गलत फहमी है?
1: नहीं, ये पूरी तरह एक भ्रम है। चाहे वो बीड़ी हो, सिगरेट हो, गुटखा हो या कोई नया निकोटीन प्रोडक्ट, हर रूप शरीर को नुकसान पहुंचाता है। इससे कैंसर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है, खासकर मुंह, गले और फेफड़ों का कैंसर। इसके अलावा दिल की बीमारियां, स्ट्रोक, फेफड़ों की खराबी, ये सब सीधे सीधे तंबाकू से जुड़े हुए हैं। और इतना ही नहीं, तंबाकू शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी कमजोर कर देता है।
0: और आपने अभी कहा कि इसका संबंध टीबी से भी है, क्या वाकई तंबाकू और टीबी का कोई सीधा संबंध है भाभी?
1: हाँ बिल्कुल है, भारत में टीबी के कई मामलों में तंबाकू एक बड़ा कारण माना जाता है। जो लोग धूम्रपान करते हैं उनके फेफड़े पहले से ही कमजोर हो जाते हैं, जिससे टीबी के बैक्टीरिया को पनपने का मौका मिल जाता है। ऐसे लोगों में टीबी होने की संभावना ज़्यादा होती है, और अगर हो जाए तो बीमारी ज़्यादा गंभीर हो जाती है और ठीक होने में भी ज़्यादा समय लगता है।
0: मतलब ये सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि एक ऐसी जड़ है जिससे कई खतरनाक बीमारियां निकलती हैं और धीरे धीरे इंसान को अंदर से खत्म कर देती हैं।
1: बिल्कुल दीदी, और यही वजह है कि इसे जितनी जल्दी समझा जाए उतना बेहतर है। तंबाकू छोड़ना सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं होता, ये पूरे परिवार की खुशियों और सेहत को बचाने का फैसला होता है। इसलिए आज नहीं तो कल, लेकिन ये कदम उठाना ही होगा।
0: बिल्कुल सही कहा आपने टीकन भाभी। कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक कि वो किसी असली कहानी से ना जुड़े। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है भाभी जो हमारी श्रोताओं को सोचने पर मजबूर कर दे?
1: हाँ, मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ।
0: जी,
1: हमारे ही इलाके के एक आदमी का नाम था रमेश। रमेश एक मेहनती मजदूर था।
0: जी,
1: सुबह से शाम तक काम करता, परिवार चलाता, लेकिन उसकी एक आदत थी बीड़ी पीना। पहले उसने दोस्तों के साथ मजाक मजाक में शुरू किया था, थोड़ा रिलैक्स मिल जाता है ऐसा कहकर।

0: उसके फेफड़े बुरी तरह खराब हो चुके थे और शुरुआती टीबी भी थी। डॉक्टर ने साफ कहा अगर अभी भी नहीं रुके तो हालत और बिगड़ जाएगी। उस दिन पहली बार रमेश डर गया। उसने अपने छोटे बच्चों को देखा, पत्नी की चिंता देखी और फैसला किया, अब बस। शुरुआत आसान नहीं थी। शरीर बार बार निकोटिन मांगता था, चिड़चिड़ापन होता था, बेचैनी होती, लेकिन उसने हार नहीं मानी। डॉक्टर की मदद ली, काउंसलिंग ली और धीरे धीरे खुद को उस आदत से दूर किया। कुछ महीनों बाद उसकी हालत सुधरने लगी, खांसी कम हुई, सांस ठीक होने लगी और सबसे बड़ी बात, उसका आत्मविश्वास वापस आ गया। आज रमेश खुद गांव में लोगों को समझाता है, मैंने गलती की लेकिन तुम मत करना। वो स्कूलों में जाता है, युवाओं से बात करता है और कहता है जो शुरुआत में मजा लगता है वही आगे चलकर सबसे बड़ी सजा बन जाती है।
1: सच में भाभी, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक आईना है जो हमें दिखाता है कि एक छोटी सी आदत कैसे जिंदगी बदल सकती है और सही समय पर लिया गया फैसला कैसे उसे वापस भी ला सकता है।
0: बिल्कुल दीदी, और यही संदेश हमें सब तक पहुंचाना है।
1: तो भाभी, अगर कोई व्यक्ति सच में ये ठान ले कि उसे तम्बाकू छोड़ना है लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा कि शुरुआत कहाँ से करें, तो वो क्या करे? क्योंकि कई लोग कोशिश तो करते हैं लेकिन बार बार वापस उसी आदत में लौट जाते हैं।
0: देखिए दीदी
1: जी,
0: सबसे पहला कदम होता है एक पक्का फैसला लेना, अपने मन में ये ठान लेना कि आज के बाद नहीं। के बाद अपने घर और आसपास से तंबाकू की हर चीज हटा दें, बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, जो भी हो, क्योंकि जितनी आसानी से वो चीज़ सामने दिखेगी उतना ही मन डगमगाएगा। इसके साथ ही अपने परिवार और दोस्तों को भी बताएं कि आप ये आदत छोड़ना चाहते हैं, ताकि वो आपका साथ दे सकें, आपको रोक सकें जब आपका मन डगमगाए। आगे अगर ज़रूरत महसूस हो तो डॉक्टर या काउंसलिंग की मदद लेना बिल्कुल सही कदम है। आजकल सरकार की हेल्पलाइन भी उपलब्ध है जहां मुफ्त में सलाह और मार्गदर्शन मिलता है। और सबसे ज़रूरी बात, धैर्य। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि तंबाकू की लत एक दिन में नहीं लगी तो एक दिन में छूटेगी भी नहीं। बीच बीच में मन करेगा, बेचैनी होगी, लेकिन अगर हर दिन खुद को संभालते रहेंगे तो धीरे धीरे ये आदत कमज़ोर पड़ जाएगी और एक दिन पूरी तरह छूट जाएगी।
1: और भाभी, इस पूरे सफर में परिवार क्या कर सकता है? क्योंकि कई बार परिवार या तो बहुत डांटता है या फिर ध्यान ही नहीं देता।
0: जी दीदी, परिवार की भूमिका सबसे अहम होती है। अगर कोई व्यक्ति तंबाकू छोड़ने की कोशिश कर रहा है तो उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है समझ और सहारे की। डांटने या ताना देने से इंसान और कमजोर पड़ जाता है, इसके बजाय उसे समझाएं, उसका हौसला बढ़ाएं, छोटे छोटे सफलताओं पर उसकी तारीफ करें, घर में एक ऐसा माहौल बनाएं जहां वो खुद को सुरक्षित और समर्थ महसूस करे। अगर परिवार साथ दे तो ये मुश्किल सफर भी आसान हो सकता है।
1: तो साथियों, आज की इस बातचीत से एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है, तम्बाकू कोई फैशन नहीं है, ये एक ऐसा जाल है जो धीरे धीरे इंसान को अपनी गिरफ्त में ले लेता है। लेकिन अच्छी बात ये है कि इस जाल से बाहर निकलना नामुमकिन नहीं है, बस एक मजबूत इरादे और सही सहारे की जरूरत है। और ये कदम सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि अपने परिवार, अपने बच्चों और आने वाली पीढ़ी के लिए उठाना बेहद जरूरी है।
0: जी दीदी, याद रखिए, लत से आज़ादी ही असली आज़ादी है। जब आप तंबाकू छोड़ते हैं तो सिर्फ एक आदत नहीं छोड़ते, आप अपनी ज़िंदगी को एक नया मौका देते हैं। इसलिए आज से ही सोचिए और पहला कदम उठाइए, तंबाकू छोड़िए और जीवन जोड़िए। अगर आप इजाज़त दें तो मैं एक ऐसी कहानी साझा करना चाहूँगी जो थोड़ी कठिन है सुनने में, लेकिन हमारे श्रोताओं को सच्चाई का एहसास करा सके।
1: बिल्कुल, इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं है, आप तो बिल्कुल हम सभी की जानकारी को बढ़ाती हैं। तो एक बार फिर से चलेंगे हम उस कहानी की ओर जो हमारी टीकन भाभी के पास है, मैं तो बहुत उत्सुक हूँ।
0: देखिए ये कहानी

0: हमारे ही पास के एक गांव के रहने वाले शंभू की। शंभू एक साधारण आदमी था, छोटा सा खेत, पत्नी और दो छोटे बच्चे। मेहनती था, जिम्मेदार था, लेकिन एक आदत ने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, गुटखा और बीड़ी की लत। शुरुआत बहुत छोटी थी, खेत में काम करते हुए थकान मिटाने के लिए दोस्तों के साथ थोड़ा गुटखा खा लिया करता था। फिर धीरे धीरे ये आदत रोज की ज़रूरत बन गई। सुबह उठते ही पहला काम गुटखा और रात को सोने से पहले बीड़ी। उसकी पत्नी कई बार मना करती, बच्चे भी कहते बाबा मत खाओ, लेकिन शंभू हर बार यही कहता कुछ नहीं होता, सब खाते हैं। समय के साथ उसके मुंह में जलन शुरू हुई, फिर एक छोटा सा घाव बना जो भरता नहीं था। पहले उसने नज़रअंदाज किया, फिर देसी इलाज किया, लेकिन हालात धीरे धीरे बिगड़ती गई। खाने में दर्द, बोलने में तकलीफ, और आखिरकार जब वो अस्पताल पहुंचा तो डॉक्टरों ने बताया मुंह का कैंसर। ये सुनकर जैसे उसकी दुनिया ही रुक गई। इलाज शुरू हुआ, ऑपरेशन हुआ, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। उसके चेहरे का एक हिस्सा काटना पड़ा, आवाज़ बदल गई और वो ठीक से बोल नहीं पाता था। सबसे ज़्यादा असर उसके परिवार पर पड़ा। उसकी पत्नी दिन रात उसकी सेवा करती, लेकिन अंदर से टूट चुकी थी। बच्चे अपने पिता को उस हालत में देखकर डर जाते थे, और जो आदमी कभी उनके लिए एक ताकत का सहारा था, वही अब खुद सहारे पर था। धीरे धीरे शंभू का काम छूट गया, घर की आमदनी खत्म हो गई और इलाज का खर्च बढ़ता गया। एक छोटी सी आदत जिसने सिर्फ उसकी सेहत नहीं बल्कि पूरे परिवार की खुशियां छीन ली। और आरजी दीदी, सबसे दर्दनाक बात ये थी कि आखिरी दिनों में शंभू खुद कहता था काश मैंने उस दिन सुन लिया होता, काश मैंने ये आदत छोड़ दी होती, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। इस कहानी का मकसद डराना नहीं है बल्कि सच दिखाना है। तंबाकू का असर धीरे धीरे होता है, लेकिन जब सामने आता है तब बहुत कुछ छीन लेता है, सेहत, पैसा, परिवार की खुशियां, सब कुछ। इसलिए जो आज सोच सकते हैं, जो आज फैसला ले सकते हैं, वो कल का इंतज़ार ना करें, क्योंकि कुछ फैसले अगर देर से लिए जाएं तो उनका असर सिर्फ एक व्यक्ति नहीं बल्कि पूरे परिवार को झेलना पड़ता है।
1: सच कहूं टीकन भाभी, ऐसी कहानियां सुनकर समझ आता है कि तंबाकू का नुकसान सिर्फ किताबों या पोस्टरों तक सीमित नहीं है, इसके पीछे असली जिंदगियां हैं, असली परिवार है, और ऐसा दर्द है जिनकी भरपाई कभी नहीं हो पाती। कई बार लोग सोचते हैं कि हमारे साथ ऐसा नहीं होगा, लेकिन बीमारी किसी को पहले से बताकर तो नहीं आती ना भाभी।
0: जी दीदी, बिल्कुल सही। इसीलिए जरूरी है कि हम डर कर नहीं, समझदारी से फैसला लें। अगर आप तंबाकू लेते हैं तो छोड़ने की शुरुआत आज से ही कीजिए, और अगर नहीं लेते तो कभी शुरुआत मत कीजिए। साथ ही अपने बच्चों और युवाओं को भी समझाइए कि असली ताकत किसी गलत आदत को अपनाने में नहीं बल्कि उससे दूर रहने में है।
1: और साथियों, याद रखिए, हर नई शुरुआत का सबसे अच्छा समय आज होता है। हो सकता है शुरुआत मुश्किल लगे, लेकिन आपका एक छोटा सा फैसला आने वाले वर्षों की खुशियां और सेहत बचा सकता है। तो खुद से एक वादा कीजिए, स्वस्थ जीवन चुनेंगे और गलत आदतों को ना कहेंगे। और आज का हमारा संदेश, ना स्टाइल में ना ट्रेंड में, जिंदगी है अपने कंट्रोल में। तंबाकू से दूरी अपनाओ, स्वस्थ जीवन का रास्ता पाओ। इसी के साथ हम आज का अपना प्रोग्राम यही खत्म करेंगे, पर जाने से पहले हम सब लेंगे अपनी और अपने अपनों के लिए सेहत की शपथ।
2: तो अब वक्त आ गया है शपथ लेने का, सभी खड़े हो जाएं और हमारे साथ शपथ लें। हम सब मिलकर ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
3: सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं
2: और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे महिलाओं बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा तभी भारत समृद्ध बनेगा सेहत सही तो लाभ कई
1: मैं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजी आकांक्षा अब लेती हूँ आपसे विदा, लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए और तंबाकू से दूर रहिए। फिर मिलेंगे इसी शो के साथ में, क्योंकि सेहत है अगर सही तो लाभ होंगे कई, एक नए विषय और एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।

निभाए। गर्भ निरोधक के विकल्प जानने और उनका उपयोग करने से परिवार की आर्थिक स्थिति कैसे बेहतर हो सकती है? जब लड़कियों और महिलाओं को अपने सभी विकल्पों की जानकारी होती है तो वो अपने प्रजनन से जुड़े फैसले खुद ले सकती हैं। इससे उन्हें अपनी शिक्षा और सपनों को पूरा करने का मौका मिलता है। जब कोई दंपति परिवार को देर से शुरू करते हैं तो उनके पास पैसे बचाने का समय होता है, जिससे वो आर्थिक रूप से मजबूत बन सकते हैं। जब माँ अपने बच्चों के बीच पर्याप्त अंतर रखती हैं तो उनका स्वास्थ्य बेहतर रहता है और इलाज पर कम खर्च होता है। इससे परिवार की बचत बढ़ती है और भविष्य सुरक्षित होता है। आपको अपने शरीर और स्वास्थ्य से जुड़े फैसले लेने का पूरा हक है। आज ही अपने डॉक्टर या आशा दीदी से बात करें और सही जानकारी पाएं।

0: मेरी जिंदगी की सबसे खूबसूरत पहेली है, जिसे सिर्फ मैं समझ पाई वो मेरी सहेली है।
1: तो वो है जिसके होने से मेरे चेहरे पर मुस्कान है। तू ही मेरी हर खुशी, तू ही मेरा जहान है। जी हाँ दोस्तों, जहाँ पे हम आप मिलते हैं और होती है इंटरेस्टिंग एंड एंटरटेनिंग बातें।
0: बिल्कुल, हम आपके लिए, सिर्फ आपके लिए, कभी डॉक्टर तो कभी कुक
1: तो कभी योगा इंस्ट्रक्टर भी बन जाते हैं।
0: तो दोस्तों, वक्त हो चला है आपका अपना शो सुन सहेली सुनने का, जो लेकर आई है आपकी अपनी आरजे समता और आरजे अंशिका, जिसमें हम बहुत सारी बातें करते हैं।
1: हेल्थ केयर, हेल्थ इश्यूज, होम रेमेडी, ब्यूटी टिप्स, कुकिंग, वुमेन एम्पावरमेंट, मेकअप, मूवीज एंड मैनी मोर शोज।
0: और बता दूं कि 1:30 से 3 बजे तक हम करते हैं ढेर सारी नॉलेजेबल बातें,
1: तो सुनना ना भूलें। 89.6 FM, ये है गोंडा शहर के धड़कन।
2: क्या आप हर समय थकान महसूस करते हैं? छोटे छोटे काम करने पर क्या आपकी सांसें फूलती हैं? चक्कर आता है, स्किन पीली पड़ रही है या बार बार सिर दर्द होता है? ये शरीर में कम हीमोग्लोबिन यानी एनीमिया के संकेत हो सकते हैं। कम हीमोग्लोबिन का मतलब है कि शरीर को पर्याप्त ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही है, जिससे काम करने की डेली एनर्जी, सेहत और यहाँ तक कि प्रेगनेंसी के रिजल्ट भी प्रभावित हो सकते हैं। समझ रहे हैं ना? लेकिन अच्छी बात ये है कि एनीमिया से बचाव और इलाज दोनों संभव है। बस आप इसके सिम्टम्स को नजरअंदाज ना करें, संतुलित पौष्टिक आहार खाएं, नियमित जांच कराएं और सही उपचार लें।
3: डिलीशियस
1: है ना? लेट्स डाइन, कम एंड जॉइन लेट्स डाइन रेस्टोरेंट, जहां आपको मिलता है हर बाइट में यूनिक टेस्ट।
3: और क्या क्या है खास?
1: और आपको मिलता है आपके जायके के लिए मल्टी कजीन, लाइव बारबेक, मॉकटेल बार, आपके सुकून के लिए एस्थेटिक लश ग्रीन एम्बियंस, और साथ ही साथ वीकेंड कैरियोके, सूफी नाइट्स एंड ओपन माइक।
3: अब चिल करेगा शहर, खुशियों की आ गई लहर, खाना स्वादिष्ट हर पहर। कम फॉर फूड, स्टे फॉर द मैजिक। पता है अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने, उतुराला रोड, गोंडा। कॉन्टेक्ट नंबर 9250 49 40 45।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम न करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
3: मतलब?
2: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
4: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम ना करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
5: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584 8840335484। अब सपने होंगे साकार।

0: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।
1: आप सुन रहे हैं सुन सहेली विद आरजे समता एंड आरजे अंशिका।
2: गुड आफ्टरनून एवरीवन। भाई कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगी का आनंद भी उठा रहे होंगे। जी हाँ, ज़िंदगी का आनंद उठाना उतना ही ज़रूरी है जितना हमें पानी पीना गर्मियों में। जी देखिए, गर्मियाँ चल रही हैं बहुत ही ज़्यादा और आज जब मैं आ रही थी अपने घर से तो करीब यही 11:30 बजे हमारे गोंडा में जो झूलेलाल चौराहा है वहाँ से लेकर के हमारे सिटी कार्ट तक, जो कि उसी रोड पर पड़ता है जब हम दुखरनाथ आने लग जाते हैं, वहाँ पे लगा था बहुत ही जमकर ट्रैफिक। मतलब एक ऐसा ट्रैफिक जिसने लिटरली सर एकदम कह सकते हैं अवधि में कि फुका दिया। ऐसा लग रहा था कि भाई सूर्य देवता बस हमें रोस्ट कर रहे हैं इस गर्मी में। और नौतपा चल ही रहा है, और नौतपा चल रहा है नहीं चल रहा है ये ऐसे थोड़ा सा भगवान हमारे साथ रोलर कोस्टर खेल रहे हैं। कभी तो बारिश हो जा रही है, कभी बहुत धूप हो जा रही है, कभी एकदम आंधी तूफान आने लग जाता है, कभी मौसम बिल्कुल शांत हो जाता है। क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है वो पता ही नहीं चलता। लेकिन भाई इस बदलते मौसम में, इस बदलते युग में अपना ध्यान रखना बिल्कुल ना भूलें। इस गर्मी में पानी पीना आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि पानी उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना आपके बैंक अकाउंट में रखी हुई सेविंग्स। जी हाँ, देखिए सेविंग्स से आपके खर्च पूरे होंगे, आपके शौक पूरे होंगे, आपकी ज़रूरतें पूरी होंगी, लेकिन अगर आपकी बॉडी सही नहीं हुई तो ना आप ज़रूरतों का आनंद ले पाएंगे, ना अपने जो खर्च है उसका आनंद उठा पाएंगे, और अपनी ज़िंदगी के शौक तो आप भूल ही जाइए। तो भाई पानी ज़रूर पीजिए। और साथ ही साथ मैं आ चुकी हूँ यानी आपकी होस्ट आयुषी लेके एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन प्रोग्राम जिसका नाम है सुन सहेली। और सुन सहेली में आज मैं आई हूँ और हमारे साथ हमेशा से जो रहती है हमारी आपकी पक्की सहेली अंशिका, अंशिका भी हमारे साथ आ चुकी है। तो आज अंशिका के शो में मैंने एंट्री मारी है और अंशिका के ही शो में अंशिका को वेलकम करते हैं। वेलकम अंशिका।
3: थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच आयुषी। और बहुत ही अच्छा लगता है जब अपने ही घर में स्वागत होता है, और आज हमारा हमारे ही घर में स्वागत हुआ है और स्वागत भी बड़े स्वैग के साथ हुआ है, क्योंकि आज बड़े ही स्वैग के साथ आई हैं हमारी प्यारी सी, हम होस्ट कह लें या हमारी सहेली कह लें या
2: गेस्ट ऑफ द शो,
3: गेस्ट नहीं, गेस्ट सूटेबल नहीं है, हम हमारी सहेली ही कहेंगे।
2: हाँ,
3: तो आज हमारी सहेली आयुषी आई है और अपनी प्यारी प्यारी चटपटी सी बहुत ही स्वीट स्वीट सी बातों के साथ आज हमारी दोपहरिया को ये मीठा बनाने वाली है। और मीठे से याद आया कि आज है हमारा बहुत ही प्यारा सा दिन यानी कि मंडे, और मंडे को सुन सहेली में होता है खाना खजाना, और खाना खजाना में होती है आपके लिए बहुत सारी रेसिपीज।
2: वेल, रेसिपीज तो बहुत सारी हैं और मैं आपको थोड़ा सा कुछ बता देती हूँ आज की एक बहुत ही स्पेशल रेसिपी के बारे में। क्या आपने कभी अंशिका पानी खाया है?
3: पानी खाया है? नहीं,
2: पानी मतलब पीते तो सभी है।
3: हाँ, पिया है।
2: खाता कौन है ये बताओ?
3: मुझे नहीं लगता कोई खाता होगा।
2: ठीक है, आज मैं आपको पानी खिलाऊंगी।
3: पानी खिलाएंगी?
2: जी हाँ।
3: ओके।
2: और ऐसा पानी जो बहुत ज्यादा टेस्टी होगा और साथ ही साथ आपको ठंडा भी रखेगा और आपका पेट भी भरेगा।
3: वाओ, मतलब ये तो हम ये कह सकते हैं लिसनर्स कि आज की हमारी ये मैजिकल वाली रेसिपी हो जाएगी, क्योंकि भाई आज तक तो मैंने पानी सिर्फ पिया है, आज पानी खाने को मिलेगा। वाओ, इंटरेस्टिंग।
2: अब ये जानने के लिए भाई आपको शो पूरा सुनना पड़ेगा, क्योंकि कौन से लिंक में मैं आपको ये रेसिपी बताऊंगी ये मुझे भी नहीं पता, आपको भी नहीं पता और अंशिका को भी नहीं पता। तो
3: हाँ,
2: ये एक बहुत ही बेहतरीन और सबसे ईजी, ये पता है किसके लिए है?
3: किसके लिए?
2: जो बहुत आलसी है।
3: Okay.
2: जो स्टूडेंट्स हैं जो बाहर रहते हैं, या जो झटपट में कुछ अच्छा खाना चाहते हैं।
3: ओके।
2: है ना, कि देखिए बाहर का खाना तो हम लोग एक दिन खा सकते हैं, दो दिन खा सकते हैं, तीसरे दिन मन करता है यार घर का ही दाल चावल मिल जाए या कुछ कंफर्ट फूड मिल जाए हमें, जिससे हमारी जो क्रेविंग्स है वो भी शांत हो जाए, हमारी बॉडी हेल्दी भी रहे और हम कुछ अच्छा खा सके। तो ये आपको कुछ अलग सा, कुछ नया सा, अब मैं आपको बताऊँ कि ये हमारे भारत के 3 बड़े राज्यों के कुछ ना कुछ एलिमेंट्स को मिला के बनी हुई है।
3: ओके, मतलब ये तो बहुत ही अच्छी होने वाली है लिसनर्स ये डिश, तो आप सभी भी सुनना ना स्किप करें, फटाफट से आ जाएं। और मैं तो बिल्कुल नहीं स्किप करने वाली हूँ, क्योंकि भाई मुझे तो हो रही है बहुत सारी क्यूरियोसिटी, क्योंकि हमेशा पानी को हमने जो है वो पीने के अकॉर्डिंग, मतलब ये सुना है कि पानी पीते हैं, पहली बार मैंने सुना है कि पानी खाना है, तो भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी है जानने की कि खाते कैसे हैं।
2: और जिन लोगों को खाना बनाना नहीं आता या जो सीख रहे हैं, आपको याद होगा अंशिका जब आपने भी नई जब खाना बनाना सीखा होगा तो कभी कभी आपके चावल में पानी ज्यादा हो गया, कभी दही बहुत पतली हो गई आपसे,
3: है ना, होता है।
2: लेकिन और उस सिचुएशन में मम्मी से बहुत डांट मारी होगी आपको, अरे बहुत ज्यादा गड़बड़। लेकिन अगर आपके साथ ऐसा होता है तो भाई आप थोड़ा सा सतर्क हो जाइए और मम्मी को भी कह दीजिए कि भाई इसी खराब चावल से, इसी खराब दही से मैं आपको कुछ अच्छा बना के खिलाऊंगी।
3: ओके, यानी कि हमारी रेसिपी में होने वाला है दही। तो लिस्टनर्स, भाई रेसिपी तो होने वाली है बहुत ही मज़ेदार, और अभी से ही सुन करके जो है मुंह में मेरे तो मतलब पानी आ गया है, मुझे तो माउथ वाटरिंग हो रही है। लेकिन उससे पहले चलिए चलते हैं और हमारा आपका सभी का पसंदीदा शो शुरू हो चुका है जिसका नाम है सुन सहेली, और आ गई हैं आपकी दोनों सहेलियाँ। और चलिए प्यारी सी दोपहरिया है तो विश कर ही देते हैं आप सभी को शुभ दोपहरिया लिस्टनर्स।
2: बिल्कुल, और जल्दी से आइए हमारे चैट बॉक्स पे क्योंकि भाई बातें एक तरफा अच्छी नहीं लगती। जल्दी से आइए और बताइए कि आप कैसे हैं और कैसे अपना ध्यान रख रहे हैं इस गर्मी में, और आपने क्या गेस कर लिया कि मैं किस चीज के बारे में बात कर रही हूँ। ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग भी है।
3: ओके, तो ट्रेंडिंग है तो फटाफट से हम लिस्टनर्स से चाहेंगे कि वो गेस करें और बताने भी आए कि कौन सी डिश आज आयुषी बताने वाली है। तो फटाफट से आ जाइए और चलिए चलते हैं अब हमारे स्टार्टिंग वाले सेगमेंट की तरफ जो कि है बहुत ही प्यारी सी एक पोइट्री। तो जैसा कि आज हमारा है मंडे यानी कि खाना खजाना, तो रेसिपी भी होने वाली है कुछ खाने को ही लेकर के। ओ सॉरी सॉरी सॉरी सॉरी, रेसिपी नहीं पोइट्री होने वाली है कुछ खाने को लेकर।
2: अंशिका के मन में खाना ही चल रहा है अब दोस्तों।
3: हाँ ये तो सही कहा आपने, देखिए यही होता है, मतलब मन में क्या चल रहा है वो सिर्फ दोस्त पढ़ सकते हैं। चलिए अब हम फिलहाल बार बार रेसिपी ही क्यों मेरे मुंह में आ रही है, फिलहाल पोइट्री को हम सुनते हैं। तो आज की हमारी पोइट्री हमसे क्या कहती है ये आप भी जानने की कोशिश करिए। तो चलिए, हर निवाले में खुशबू है प्यार की, हर निवाले में खुशबू है प्यार की, ये महफिल है शौकीन दिलदार की। गर्मा गर्म चाय और समोसे का स्वाद, गर्मा गर्म चाय और समोसे का स्वाद भुला देता है जिंदगी के सारे विवाद। तीखे चटपटे मसालों की ये कहानी, तीखे चटपटे मसालों की यह है कहानी, खाने से बढ़ती है चेहरे पर नूरानी। गोलगप्पे का पानी और बिरयानी की शान, इन स्वाद के आगे, इस स्वाद के आगे हार बैठे हैं हम अपनी जान। मीठी मीठी यादों और पकवानों का मेला, हलवे और रसगुल्ले बिना हर पल है अकेला। पेट भरा हो फिर भी दिल मांगे कुछ और, पेट भरा हो फिर भी दिल मांगे कुछ और, स्वाद की इस दुनिया का, स्वाद की इस दुनिया का कभी थमेगा न शोर, स्वाद की इस दुनिया का कभी ना थमेगा शोर। तो भाई कैसी लगी आपको पोइट्री लिस्टनर्स, ज़रूर बताइए। और अब आते हैं हमारे नेक्स्ट वाले सेगमेंट पे जो कि होता है हमारा आज बहुत ही प्यारा सा रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ का, यानी कि हर दिन हम आपको कुछ ऐसा मोटिवेशनल ज़रूर बताते हैं जो कि आपकी लाइफ को एक नई तरीके से, एक नई सोच की दिशा में ले जाएगा। और आज आपको आपका रियल फैक्ट्स ऑफ लाइफ बताएंगी आपकी होस्ट और मेरी बहुत ही प्यारी सी दोस्त जो कि आयुषी।
2: अंशिका, कभी आप मेले में गई हैं?
3: हाँ गई हूँ।
2: आपने एक चीज़ वहाँ पे बहुत कॉमन देखी होगी, वहाँ पे एक चेन और पेंडेंट अधिकतर हर मेले में दिख जाती है जिसके बीच में चाकू घुसा होता है दिल में।
3: हाँ
2: है ना, और ये काफ़ी लोग बनाते भी है, कहीं कॉपी पे, कहीं दीवार पे, स्पेशली लोगों को जहाँ, जैसे देखिए हमारे पूरे भारत में बहुत कागज़ है,
3: जी जी,
2: बहुत कॉपीज है, लेकिन वो भी कम पड़ जाती है, तभी तो लोग जाते हैं मॉन्यूमेंट्स पे, जैसे ताजमहल हो गया, लाल किला हो गया, यहाँ सब पे दिल और तीर बना के आ जाते हैं अपना नाम लिख के कि अब वो ताजमहल उन्हीं के नाम,
3: उन्हीं के नाम।
2: तो दोस्तों ऐसे कभी ना करें, ऐसे किसी भी चीज का लुक बिल्कुल ना खराब करें।
3: राइट,
2: किसी चीज की सुंदरता बनाए रखना भी एक बहुत बड़ी बात होती है,
3: और वो भी हमारे ऐतिहासिक, मतलब ताजमहल वगैरह तो ऐतिहासिक स्मारक के तौर पे मतलब देखे जाते हैं।
2: हाँ,
3: तो उनकी तो ब्यूटी बनी हुई।
2: और देखो ये जो दिल के तीर मारने वाला या सीधे दिल पे वार करने वाला सीन होता है, ये चीज अगर मैं आपको बताऊं तो ये आप भी करती हैं।
3: मैं भी करती हूँ?
2: हाँ।
3: कैसे?
2: लेकिन आप दिल पे वार नहीं करती, आप हमारी उससे भी ज्यादा कमजोर नस पकड़ लेती हैं।
3: और वो क्या है?
2: खाना।
3: अच्छा खाना,
2: देखिए तभी आपको खाना खाना नजर आता है, आपने पोएट्री भी खाने पे ही बता दी।
3: बिल्कुल,
2: आप खाने के बिना तो नहीं होगा, और मुझे लगता है इसीलिए आप हमारी कह सकते हैं जैसे छोटा भीम में टुनटुन मौसी थी
3: जी,
2: जो लड्डू बनाती थी, खाने की ही बात करती थी, आप हमारी टुनटुन मौसी आज से।
3: चलो नाम।
2: और मैं डब्लू बब्लू चलूंगी क्या? नहीं, वो जो छोटे छोटे बच्चे
3: पतलू चलेंगी आप?
2: पतलू,
3: मोटू पतलू वाली पतलू।
2: पतलू, अरे चलो ठीक है, तो आप मोटू, चलो आपको मोटू कर देते। मोटू को समोसे बहुत पसंद थे।
3: हाँ, तो ये तो बात है।
2: देखिए दोस्तों, ऐसे ही बिल्कुल बदलाव लाना हमें बहुत जरूरी होता है। जैसे अंशिका ने दिल को छोड़ के सीधा पेट पे वार कर दिया कि यार पेट से बड़ा तो और कोई है नहीं, पेट से बड़ा कोई भगवान नहीं होता। जब तक पेट भरा रहता है, पेट सही रहता है, तब तक इंसान जो है वो बहुत खुश रहता है। कभी नोटिस करिए कि आपका दिमाग बहुत अच्छा रहेगा जब आपका पेट भरा होगा। आपने अच्छे से ब्रेकफास्ट किया है, आपने अच्छे से लंच किया है, डिनर किया है, तो आप खुश खुश रहेंगे। लेकिन जहाँ भूख लग गई आपको और आपको खाना नहीं मिल रहा है, तो आपके अंदर से कौन सी पर्सनैलिटी निकल के बाहर आएगी ना, वो आपको खुद भी नहीं पता है। कौन सी चंडी आप पे सवार होंगी
3: या कौन सी दुर्गा सवार होंगी पता नहीं,
2: वो आप नहीं बता पाएंगे। और इसीलिए अंशिका ने सोचा कि भाई ये जो हमारा पेट होता है ना, ये हमारे दिल से भी ज़्यादा जरूरी होता है। तो हम सब दिल पे वार करते हैं, अंशिका पेट पे वार कर देंगी आपके।
3: नहीं, मैं दिल पे वार नहीं करती हूँ।
2: तो ये जो बदलाव अंशिका ने लाया ना, ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद आया कि हाँ चलो भाई खाने पे बात होगी। और खाने पे बात हो रही है और आज आयुषी ना बोले,
3: ऐसा नहीं हो सकता।
2: हो ही नहीं सकता क्योंकि खाना और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है, 8-9 जन्म तो हो ही चुका है। और हमारे लिसनर तो बहुत ही अच्छे से जानते हैं कि आज आयुषी खाने के बारे में जरूर डिस्कस करती हैं, चाहे कितना ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा हो। और यही कहीं ना कहीं हमारी लाइफ का फैक्ट भी है कि हमें बदलते रहना चाहिए। अब जैसे दिल से पेट पे नहीं, ये एक जोक था, पर आपको ज़िंदगी में जो चेंजेस है उसको एक्सेप्ट करते रहना चाहिए। जैसे ज़िंदगी में कुछ भी, आप इतना जानिए कि कुछ भी स्थायी नहीं होता, यानी कुछ परमानेंट नहीं होता। ना ही आपकी तकलीफें और ना ही आपके अच्छे दिन। इसीलिए दोस्तों, इतना आप हमेशा जानें कि बुरे वक्त में हिम्मत नहीं हारना है और अच्छे वक्त में हमें कभी भी घमंड नहीं करना है, क्योंकि चेंजेस हमेशा होते रहते हैं। चेंजेस हर एक की ज़िंदगी के नियमों में आते हैं। आप कल बच्चे थे, कल आप इतने छोटे थे कि आप अपनी माँ के गोद में आ जाते थे, बाहों में आ जाते थे, लेकिन अब आप इतने बड़े हो गए कि आपकी मम्मी आपको उठा ही नहीं सकती। तो हुआ ना, ये बहुत बड़ा चेंज।
3: बिल्कुल सही कहा आपने, और चेंजेस लाइफ में होते
2: रहते हैं। हमारी प्रकृति हमें हमेशा सिखाती रहती है। अभी धूप निकली है, शाम हो जाएगी तो धूप चली जाएगी, सूरज डूब जाएगा, चांद निकल आएगा, और अगले दिन फिर सूरज उगाएगा और चांद ढल जाएगा। तो इसीलिए चेंजेस को हमेशा हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। चेंजेस से कभी भी हमें डरना नहीं चाहिए, क्योंकि ये कुछ महीनों पहले मेरी भी आदत थी अंशिका, ये कहीं ना कहीं मेरे लिए भी है कि मुझे बदलाव से बहुत डर लगता था।
3: कहीं ना कहीं सभी को चेंजेस से डर लगता है। ये लगता है कि मतलब हमें ये डर होता है कि हम बदलती हुई परिस्थितियों में खुद को कैसे ढालेंगे।
2: बिल्कुल, अभी हालांकि कुछ दिनों पहले ही मैं कहीं बाहर गई थी, दिल्ली गई थी घूमने के लिए।
3: जी जी।
2: तो वहां पे भी जब मैं गई तो मुझे गोंडा से जाने में मेरी जान जा रही थी कि मैं गोंडा कैसे छोड़ के जाऊं। और इतना ज्यादा अटैचमेंट इशू है कि जब मैं वहां से लौट रही थी तो मेरे को ये डर लग रहा था कि मैं दिल्ली कैसे छोड़ के जाऊं।
3: होता है,
2: है ना। और मुझे इसी बदलाव से कि कल से तो ये जगह जगह नहीं रहेगी, हम दिल्ली में होंगे, हमारा खाना पीना अलग हो जाएगा, हम अलग लोगों के साथ उठने बैठने लग जाएंगे, ये बदलाव कहीं ना कहीं मुझे अंदर अंदर खाया जाता था। मतलब कोई देख के बता नहीं पाएगा कि चेंजेस से मुझे डर लगता है, पर मुझे चेंजेस से डर लगा करता था। अभी चीज़ें सही हैं, अभी मुझे एक्सेप्ट मैंने कर लिया कि हाँ, ये बदलाव ज़िंदगी का नियम है। हम हर वक्त, हर सेकेंड हम बदलते ही रहते हैं, हमारी ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चेंजेस होते ही रहते हैं।
3: बिल्कुल।
2: उसके बाद है दोस्तों, सबसे बड़ी चीज़ जो आजकल हर किसी के अंदर है, वो है अपने आप को हमेशा तुलना करते रहना कि कौन अच्छा है कौन नहीं अच्छा है, और ये सबके अंदर होता है। अच्छा अंशिका, कभी आप नोटिस करो, और लिसनर आप भी ये चीज़ इसको कभी गौर से सोचिए कि जब हम किसी पार्टी में जाते हैं तो हम उस पार्टी में जाते हैं हम, और वहाँ पे हम यही सोचते हैं इनका कपड़ा ज़्यादा अच्छा है, हमारा कपड़ा ज़्यादा अच्छा है, अरे इनकी लिपस्टिक ज़्यादा अच्छी लग रही है, हमारी थोड़ी सी
3: वीक लग रही है, मतलब अच्छी नहीं लग रही है,
2: थोड़ा सा और अच्छा होना चाहिए था। या अंकल लोग सोचते हैं, अरे इनके ठाठ देखो, लग रहा है ज़्यादा कमाने लग गए हैं, कहीं ये कुछ और काम तो नहीं करते, क्या कर रहा है, कौन सी तिजोरी की चाबी लग गई है। और न जाने कितनी ऐसी चीज़ें हैं जो हम एक दूसरे से तुलना करते रहते हैं अपने आपको, कि ये ज़्यादा अच्छा है, कि ये ज़्यादा अच्छा है, और ऐसी कई सारी चीज़ें। और यही सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हम सोशल मीडिया से भी देख के सीखते हैं। जैसे सोशल मीडिया पर दूसरों की सजी सजाई दुनिया देखकर अपनी असल ज़िंदगी को कम आंकने लगते हैं कि भाई ये कम है। लेकिन दोस्तों ये जानिए कि आपकी ये जो ज़िंदगी है, ये कोई कंपटीशन नहीं है। हमेशा आप ये टारगेट करें कि आपको 1% खुद को बेहतर बनाना है, लेकिन दूसरों से तुलना बिल्कुल नहीं करनी है। क्योंकि देखिए काफ़ी बार क्या होता है कि लोगों को सक्सेस की चाबी या कोई अच्छी चीज़ बहुत जल्दी मिल जाती है और कई लोगों को बहुत देर से मिलती है। लेकिन याद रखिए कि देर अगर होती है तो ये भी जानिए कि आपकी चीज़ बहुत ज़्यादा स्पेशल है। वो आपने एक कोट तो सुना होगा, नहीं सुना होगा तो मैं सुनाती हूँ दोस्तों। देखिए, खिचड़ी 2 मिनट में पक जाती है, मैगी 2 मिनट में पक जाती है, लेकिन शाही पनीर बनने में समय लगता है। अगर समय लग रहा है तो याद रखिए कि आपके लिए कुछ अच्छा ही बन रहा है, आपके लिए कुछ स्पेशल ही है। और कभी भी दूसरों की दुनिया देख के कभी भी अपनी दुनिया को जज ना करें। क्योंकि देखिए, हम सब एक कॉमन से एग्जांपल देती हूँ जो आप सभी कहीं ना कभी करते होंगे। आप कभी कोई फ़ोटो क्लिक कराते हैं, आप फ़ोटो क्लिक कराने के लिए आप 10 चीज़ सोचते हैं कि कपड़े अच्छे पहन लूँ, ये अच्छे से कर लूँ, एंगल अच्छा होना चाहिए, लाइटिंग अच्छी होनी चाहिए। और फ़ोटो क्लिक कराने के बाद भी आप उसमें 10 फिल्टर मारते हैं कि ये फ़िल्टर लगा दो, स्किन अच्छी हो जाए, हाइट छोटी है तो हाइट थोड़ी लंबी लग जाए, इसमें से थोड़ा सा एक्सटेंड कर दो, क्रॉप कर दो, और ना जाने कितनी सारी चीज़ें। और आजकल तो बहुत सारी चीज़ें AI चल गया है कि आप अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए बहुत कुछ उसमें कर देते हैं। तो जब आप एक सिंपल सी पोस्ट के लिए आप इतने फिल्टर्स लगाते हैं तो आप ये जाने कि सामने वाला भी यही सेम चीज़ करता है। अगर जो आपको दिख रहा है वो 100% रियलिटी नहीं है, उसमें बहुत सारी चीज़ें फेक है, फिल्टर्स लगे हैं और आप चीज़ों को क्लियरली नहीं देख पाते। आपको लग रहा है कि आप देख रहे हैं, आपको ऐसा फील हो रहा है, लेकिन वो एक्चुअली वो क्लियर होती नहीं है चीज़ें। तो जो लोगों की सजाई दुनिया को देख कर, अपनी दुनिया को बिल्कुल भी जज ना करें। उसके बाद हम चलते हैं एक बहुत ही बड़ी चीज़, वो है समय और प्राथमिकताएं। देखिए, टाइम्स और प्रायोरिटीज़ जो होती हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। कोई भी इंसान व्यस्त नहीं होता है, सब खेल प्राथमिकताओं का होता है, ये आपको ज़रूर जानना चाहिए। हमने नोटिस किया होगा कि हमारे जो पापा होते हैं वो काम काज एकदम खाना वाना भूल के अपना काम करने लगते हैं, लेकिन अगर कोई ऐसी बात हो जाती है जो उनके काम से भी ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो मान लीजिए आपके पापा दुकान पे काम करते हैं, ठीक है, और कितनी बार ऐसा होता होगा कि आपके पापा खाना भूल जाते होंगे। हाँ। और घर का राशन लाना भूल गए, सब्जी बोली थी मम्मी ने, सब्जी नहीं लाए। लेकिन अगर आपका एक कॉल आ जाए कि पापा मैं यहाँ इस चौराहे पे खड़ी हूँ, रिक्शा नहीं मिल रहा है, मेरे को चक्कर आ रहा है, तो आपके पापा वो सारी चीज़ें छोड़ छाड़ के सिर्फ आपके लिए आ जाएंगे।
3: बिल्कुल,
2: जस्ट बिकॉज कि आप उनकी प्रायोरिटी हैं, खाना और उनका धंधा उतना ज़्यादा नहीं प्रायोरिटी पे है। तो सारी चीज़ें टाइम की नहीं होती, कई चीज़ें प्रायोरिटी पे भी डिपेंड करती है कि आपके लिए ज़रूरी क्या है। काफ़ी बार ऐसे लोग होते हैं जो आपको समय दे देते हैं, लेकिन आप कभी उनकी प्रायोरिटी नहीं बन पाते,
3: प्रायोरिटी नहीं हो पाते,
2: प्रायोरिटी नहीं बन पाते। और यही चीज़ कहीं ना कहीं आप खुद नोटिस करो कि आप किसी से मिलने गए हो और सामने वाला जब आपके सामने बैठा है तो अपने फ़ोन में गुम है, दुनिया की बातें कर रहा है लेकिन आपकी बातें नहीं सुन रहा है। तो इट मीन्स कि आपको उसका टाइम तो मिल गया लेकिन आप उसकी प्रायोरिटी नहीं है, उसके लिए कुछ और ज़रूरी है जो उसके फ़ोन में है। हो सकता है उसका काम हो सकता है कोई और हो, या कोई भी चीज़ हो सकती है। तो याद रखें कि प्रायोरिटीज़ मैटर करती हैं, समय उतने मैटर नहीं करते। अगर आप किसी को प्रायोरिटी पे रखते हैं तो आपका एक सिंपल सा टेक्स्ट ही उसके लिए बहुत हो जाएगा। आपको इतना कोई आधा घंटा एक घंटा देने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट कि आप मान लीजिए, अगर आप खुद आपको ये मैं आपको इमेजिन करने को कहती हूँ कि आपका कोई बहुत करीबी है, आपका कोई बहुत ज़्यादा अपना है, वो किसी ऑफिस में काम करता है,
3: जी
2: सुबह 9 बजे चला जाता है, शाम को 6 बजे आता है, और उस दौरान आप घर में रहती हैं,
3: ओके,
2: और आप क्योंकि भाई अपना है तो लगाव तो होगा ही होगा।
3: हाँ,
2: और अगर वो इंसान आपको नहीं बात कर रहा है कॉल पे, या आपसे आपको 5-5 मिनट पे 6-6 मिनट पे कॉल करके नहीं बात कर रहा है, तो आपको ये लगे कि हाँ ये इंसान मेरे पे ध्यान नहीं देता, मैं क्या खाने ही बनाने के लिए हूँ, सिर्फ घर में रहने के लिए हूँ, मैं इसके लिए मैटर नहीं करती हूँ, ना जाने कितनी सारी चीज़ें। वहीं आपके दिमाग में ये नहीं आएगा कि इंसान बिजी हो सकता है ना। और अगर वो इंसान इतना कर ले, अगर आप उसकी प्रायोरिटी हैं, तो कॉल की कोई ज़रूरत नहीं है उसमें। आपको सिंपल एक टेक्स्ट की ज़रूरत है कि मैं पहुंच गया हूँ, या मैं पहुंच गई हूँ अंशिका, कोई भी चीज़ आप खाना खा लेना, जस्ट एक टेक्स्ट ही आपके लिए उस समय पर भारी पड़ जाएगा।
3: बिल्कुल,
2: क्योंकि आप प्रायोरिटी हैं इसीलिए वो टेक्स्ट भी आएगा।
3: राइट, तो मतलब आरजे आयुषी बहुत सारी, मतलब मैं तो ये कहना चाहूंगी कि भाई ये तो बहुत सारी समझदारी की बातें भी कर लेती है। अभी तक तो मुझे सिर्फ ये लगता था कि आयुषी
2: खाने की बात करती है,
3: नहीं सिर्फ मस्ती वाली बातें करती है, लेकिन ये तो बहुत सारी समझदारी की बातें भी करती है। और आज इनकी बातें सुन के भाई मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि कुछ चीजें मुझे भी इन बातों से सीखने को मिली।
2: देखिए, एक बहुत पुराने शायर हैं जिन्होंने ये कहा था कि जिंदगी के पल तो जीने हैं, इस रास्ते को काटना है, अब हंस के काटना है या रो के काटना है वो आप पे निर्भर करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि जिंदगी में कुछ भी चल रहा है हमेशा आपके चेहरे पे एक मुस्कुराहट होनी चाहिए। वो आपने राउडी राठौर का वो देखा होगा ना सीन,
3: जी जी जी,
2: जब मौत आए तो आप अपने मूंछों को ताव दे रहे हो।
3: हाँ।
2: तो जिंदगी में इतने खुश रहो कि डर आपसे डर जाए।
3: ओह वाह, ये तो बहुत ही अच्छा थॉट है भाई आज का, कि इतने खुश रहें कि डर भी आपसे डर जाए। तो चलिए इस प्यारे से थॉट के साथ प्यारा सा सॉन्ग भी सुनते हैं लिसनर्स, और बस यूं गए यूं आए, आप इंतजार करिए कि आपके लिए क्या है हमारे पास, और हम इंतजार करते हैं हमारे लिसनर्स के आने का। तो आइए सुनते हैं बहुत ही प्यारा।
2: साथ ही साथ मैं ये भी बता दूं कि भाई हमारी एक बहुत ही प्यारी सी लिसनर जुड़ भी चुकी है, जिनका नाम है नव्या, जो कि हमें गोंडा से सुनती है, जिन्होंने लिखा है गुड गुड गुड गुड गुड गुड गुड आफ्टरनून, इतना सारा गुड आफ्टरनून। बिल्कुल देखिए, गुड आफ्टरनून तो गुड है ही है, क्योंकि आज हमें आपके साथ और वक्त है आपके सुन सहेली प्रोग्राम का। तो भाई गुड आफ्टरनून नव्या जी, आपको भी और हमारे सभी लिस्नर को भी
3: गुड आफ्टरनून। नव्या जी कैसी हैं आप? तो चलिए नव्या जी, आपको भी सुनाते हैं और हम भी सुनते हैं सॉन्ग, और आती हैं जल्दी से फटाफट।

0: यार मेरी बहन की शादी फिक्स हो गई है और अब गोंडा में एक अच्छा सा वेडिंग हॉल ढूंढ रहा हूँ, कोई आइडिया है?
1: अरे हाँ, मैंने अभी पिछले हफ्ते ही मेरी गोल्ड लॉन्स में एक पार्टी अटेंड की थी और वो जगह शादियों के लिए एकदम परफेक्ट है।
0: सच में? क्या खास है वहाँ?
1: बहुत कुछ है। वहाँ एक रॉयल बैंकेट हॉल है जो अंदर से बहुत ही रॉयल लगता है और ओपन एयर सेटअप के लिए लश ग्रीन लॉन्स भी बहुत खूबसूरत है।
0: अच्छा, डेकोरेशन और खाने पीने की चीजों का क्या सीन था?
1: सब कुछ टॉप क्लास था। फ्लोरल डेकोर और लाइट्स की सेटिंग बहुत ही ड्रीमी थी। खाने में फाइन डाइनिंग और बुफे ब्रेकफास्ट दोनों का ऑप्शन है, साथ ही पेशियो डाइनिंग का भी मजा ले सकते हो। और वैसे भी खुली हवा में खाना खाने का एक अलग एक्सपीरियंस था। और सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वहाँ कंप्लीट वेडिंग प्लानिंग सर्विस भी है, मतलब तुम्हें कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सब संभाल लेंगे।
0: और फोटोग्राफी वगैरह?
1: वहाँ तो ड्रोन फोटोग्राफी करवाते हैं जिससे सिनेमेटिक शूट भी हो सकता है। और हाँ, मेकअप और ड्रेसिंग सर्विसेज भी वहीं अवेलेबल है।
0: ये तो एकदम परफेक्ट लग रहा है। लोकेशन कहाँ है?
1: अवध नर्सिंग कॉलेज के सामने उतराला रोड पर है और इनका कॉन्टेक्ट नंबर है 9839613949। बल्कि मुझे तो पूरा यकीन है कि तुम्हें जरूर पसंद आएगा।
0: वाह, तुमने तो मेरी आधी टेंशन ही खत्म कर दी।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन, या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से, या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840335984। अब बारी है आपकी।
3: ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।
4: आप सुन रहे हैं
5: वेलकम बैक लिसनर्स, आ चुके हूँ वापस मैं आपकी होस्ट आयुषी लेके एक बहुत ही बेहतरीन प्रोग्राम जिसका नाम है सुन सहेली। और हम बात कर रहे हैं अपने

0: देहाती भाषा है। आप सभी इन चीज़ों से कहीं ना कहीं एग्री कर रहे होंगे कि हमारी जो रीजनल लैंग्वेज है उसे हम हमेशा देहाती बोलते हैं। देहाती यानी कि जो देहात से जुड़ी है, जो गांव से जुड़ी हुई है। लेकिन हम ये भूल जाते हैं कि हमारा गोंडा भी कभी देहात में आता था जब इतना डेवलप नहीं था। हम भी कहीं ना कहीं और हम सभी इंडियंस कहीं ना कहीं गाँव से जुड़े हुए हैं। हमारा ओरिजिन किसी गाँव से ही हुआ है, हमारे पूर्वज गाँव में ही थे। तो हम सब और स्पेशली जो लोग सुन रहे हैं, उत्तर प्रदेश एक बहुत बड़ा गढ़ है जहाँ से लोग बाहर निकले हैं। यहीं के लोग कहीं ना कहीं जाते हैं दिल्ली, पंजाब, मुंबई, बिहार, लखनऊ, यहाँ सब काम करने। तो हम सभी कहीं ना कहीं गांव से ज़रूर बिलोंग करते हैं। तो हमारी भाषा को ही पिछड़ा क्यों रखा जाए, यानी कि हमारी भाषा को पीछे क्यों रखा जाए। हमारी भाषा देहाती बिल्कुल नहीं। हमारी भाषा क्या है अंशिका?
1: अवधी।
0: जी, तो भैया हम अवध के हैं और हम अवधी बोलते हैं। तो हमने सोचा कि क्यों ना आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी बता दी जाए अवधी में। जी हाँ, अवधी यानी कि हमारी वही भाषा जो जिसमें हमें प्राउड फील करना चाहिए। कभी आपने नोटिस किया है कि दो दोस्त, आप मान लीजिए कि आप किसी ट्रेन में ट्रेवल कर रहे हैं और आप उत्तर प्रदेश से हैं, लेकिन बाकी के दो लोग जो हैं वो महाराष्ट्र से हैं।
1: ओके,
0: ठीक है। अब वो बाकी सारी जो आपसे बातें करेंगे वो हिंदी में बात करेंगे, इंग्लिश में बात कर लेंगे, जिसको आप समझ में। लेकिन जब उनके कोई सीक्रेट बात करनी होगी तो वो मराठी पे
1: लैंग्वेज में,
0: मराठी में स्विच कर जाएंगे तुरंत।
1: जी जी।
0: तो
1: जी,
0: मुझे ऐसा लगता है कि लोग अपनी लैंग्वेज को प्रमोट करते हैं एज वेल एज उसका यूज भी बहुत अच्छा कर लेते हैं।
1: हाँ।
0: तो हमें हमारी अवधि को भी लेके जाना चाहिए।
1: ये तो बहुत ही अच्छा आइडिया है लिसनर्स। तो आज रेसिपी आपको जो सुनने को मिलेगी वो अवधि में मिलेगी।
0: अच्छा आइडिया है। तो चलिए ट्राई करते हैं कि अवधि में रेसिपी क्या हम कर सकते हैं। अब हम मैं तो पहली बार डिलीवर करने जाऊंगी ये अवधि में कोई रेसिपी। आपको कैसा लगेगा ये स्टाइल और अवधि, वो आप ज़रूर बताइएगा। और आपका क्या मानना है इसलिए इस पे कि आपको अपनी भाषा को प्रमोट करना चाहिए कि नहीं, और ये देहाती कहना अपनी भाषा को सही है या गलत। ठीक है अंशिका, आपका क्या मानना है इस पे?
1: मुझे लगता है कि देहाती तो बिल्कुल भी नहीं कहना चाहिए, क्योंकि जैसे देखिए अभी आप आयुष ने आपको बताया ना कि हरियाणा होता है तो हरियाणवी बोली जाती है, और जब हम राजस्थान की साइड में जाते हैं, जैसे मेरी मौसी राजस्थान में ही रहती हैं, तो वहाँ राजस्थानी बोली जाती है। और मैं आपको बताऊँ कि लोग प्रॉपर राजस्थानी, मतलब जो उनकी अपनी लैंग्वेज है वो वही बोलते हैं। आप वहाँ पे किसी के भी घर चले जाएंगे तो थारे को महारे, मतलब जो लैंग्वेज वहाँ की है वही बोली जाएगी, और वो बहुत प्यार से अपनी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट देते हैं, उसे बोलते हैं। उनको ये नहीं लगता है कि सामने वाला अगर बाहर से आया है तो वो सुन रहा है। हाँ, समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, बट उनका एक माइंडसेट है कि हम हमारी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं हमें भी हमारी लैंग्वेज को रिस्पेक्ट करनी चाहिए कि अगर हम यूपी से आते हैं, उत्तर प्रदेश से, तो ठीक है हमारे यहाँ गोंडा में अवधी बोली जाती है, तो वो हमारी लोकल एक भाषा है, तो हमें उसे रिस्पेक्ट देनी चाहिए।
0: बिल्कुल। तो भाई चलो मैं ही शुरू करती हूँ इन चीज़ों को और स्टार्ट करती हूँ आज का एक नई रेसिपी। अगर मुझसे कोई गलती होती है तो क्षमा करके अपना दोस्त समझ के, और जो गलती है उसको जरूर से आके आप चैट बॉक्स में बता दीजिएगा। अंशिका आप भी बता सकती है कि मैंने अवधि क्या गलत बोली। तो शुरू करते हैं।
1: जी,
0: तो देखो भैया हम सब हैं उत्तर प्रदेश से, और उत्तर प्रदेश में अभी गोंडा से हैं, और गोंडा में एक चीज बहुत ज्यादा कॉमन है, बताओ का?
1: का है वो?
0: खाब।
1: क्या?
0: खाब।
1: खाब
0: खाना।
1: अच्छा।
0: जी, जो खाब है हमारा, जिसे हम खाने को अवधि में कहते हैं, और खाब जो है वो बहुत ज्यादा प्रचलित है, और सभी यहाँ खाब के पीछे बौरावा है।
1: मैंने बौरावा है यहाँ तो लागत है कि खाब हो एक चाहिए और कुछ हो एक चाहिए या ना हो एक चाहिए।
0: हाँ, और जे जने बहुत ज्यादा सुकुवार हैं, जेका कुछ करक मन ना कहा थे, ते और ज्यादा सुकुवार हो ही जाते जब खाब बना एक बात हुआ थी।
1: बात
0: अब खाना बनावे खाए तब तो इनके भैया नानी या दादी सब याद आई जाए,
1: खरा याद आई जाए, ना बनावक पड़े तो ज्यादा अच्छा है।
0: हाँ, और खास कर वही जिके अब कबो ही सोचो इनसे कि जब हमारे सबके खाब बच जाते हैं रात में।
1: जी जी।
0: और जो चाउर, मान लो चाउर बना है, अरे नहीं चाउर तो कच्चा हुआ था, भात बना है हमारे यहाँ रात में, और भात बचेगा,
1: अब बचगा तो क्या करें?
0: अब यक्के चारा है कि भैया सवेरे का छऊ दिन जाए।
1: हाँ,
0: लेकिन यक और ऑप्शन है,
1: वो का है?
0: वो है दही भात।
1: दही भात।
0: हाँ, अब दही भात एक तो हुआ था कि भैया आप दही लियो, भात लियो, मैं नमक डालो कि तो सॉरी नॉन डालो या तो चीनी डालो।
1: हाँ,
0: तो वो बन जाए दही भात। लेकिन दही भात वो ना है जो हम बताए जाए थे, तो उन है तीन राज्य के कॉम्बिनेशन।
1: तीन राज्य के?
0: तीन राज्य। देखो जब बंगाल जाओ तो वहाँ बंगाली तो बोलना पाइबो
1: नहीं,
0: लेकिन वहाँ के खाब ले आईबो।
1: हाँ,
0: अब वहाँ के खाब है जिमन भरता बहुत ज्यादा बनत है।
1: भरता? हाँ,
0: जेका वहाँ भरतो बोला जाता है।
1: भरतो?
0: भरतो बोला जाता है।
1: अच्छा।
0: और

0: हुए ही हम अगर चला जाए बिहार माँ और हमारे उत्तर प्रदेश माँ,
1: जी जी
0: जो पूर्वी उत्तर प्रदेश है वहाँ पे, तो हुआ जाए कि वहाँ दही और भात के बहुत चलन है।
1: दही भात के, हाँ दही भात तो खावा जाते
0: है। हाँ, और अगर झारखंड के लंग जब हो तो वहाँ छौंका बहुत लागत है।
1: हाँ,
0: तो एक मिलाए के एक ठो रेसिपी बनी है
1: जो उनका है,
0: ओ है तू समझ लो दही भात है, तो कह दो कि पानी भात है, कहो तो पनीर खावत हो,
1: पनीर खावत हो।
0: ये तो हम पहले कहने कि हम तुम्हें पानी खवाई।
1: अच्छा, तो तू आज पानी खवाए बनी हुआ है।
0: हाँ,
1: तो भैया आज पानी खाए मिले वाला
0: अब
1: है।
0: देखो तुहे का करे खाए, अब तुहे एक ठू लिख है मट परई लिख है।
1: अच्छा,
0: परई जाना थी ना,
1: परई गहरी गहरी होती है।
0: हाँ, वह हुआ थी।
1: वाए वाए।
0: देखो तुहे ना आया होती अवधि हम मैं आवा थी।
1: आ
0: तो का अब परई ना हो जो मट्टी का है तो फिर राय दो स्टीडियक चल जाए।
1: अच्छा।
0: लेकिन याद रखो कि तांबा ना हो चाहिए, तांबा बिल्कुल भी ना हो चाहिए। तो क्या करे खे, रात के बचा हुआ भात वे परई में डालो और मन दुगना तीन गुना पानी, मतलब इतना पानी कि चाउर भीग जाए।
1: ठीक,
0: और लागे कि अब भाई पानिया ज्यादा होएगा है। ठीक है, अब मन में तो टेंशन आई जाए कि अब तो पानी ज्यादा होएगा, अब क्या करे।
1: हाँ।
0: भात तो खराब होएगा, अभी तो चिड़िया खाई है या तो हमारे गोरू खाई है।
1: हाँ, ये बात तो सही।
0: तो अब ओका गोरू और चिड़िया ना खाई है, ओका तुहिन खा, वो बताई थे कोनी में
1: कैसे।
0: अब मन जब एक रात भर जो है भिगोए कर रख दियो।
1: ठीक है,
0: अब जब सुबेरे उठबो तो चाउर फूल जाए।
1: हाँ,
0: अब मन डायरेक्ट है दही और माठा ना डारियो।
1: अच्छा,
0: दही उड़ा रहे हो,
1: पतली वाली दही।
0: माठा ही तो पतली दही होता है। देखिए दोस्तों, आज हम सारी अंशिका की बातें बाहर निकलेंगी ना, अब दी कितनी आती है। तो जो दही हुआ था, दही तो नहीं गाढ़ हुआ था, और जो माठा हुआ था तो पतरा हुआ था, समझे।
1: हाँ,
0: तो आपका दही डायरेक्ट है
1: जी।
0: अब जो दही हो अच्छे से मन चलाई भी हो, अब का हो तो तरी भाई छाछ निहायत हो जाए, लेकिन छाछ चावल के साथ हो जाए, समझते हो। चावल जो है बहुत थोर है, लेकिन पानी और दही बहुत है। ठीक है, अब एक कोने रख दो। अब आ जाओ तनी बंगाल की तरफ। अब हमें बनावे खाए भरता।
1: ठीक है,
0: भरतक ताए हमें क्या करे खाए कि लच्छा वाली प्याज काटे खाए।
1: लच्छा वाली प्याज काटे खाए। ठीक,
0: और एक ठो कढ़ाई ले लियो या कुछ ले लो, कोनो बर्तन ले लो, जमन जो है एक ठो तेल डालो एक चम्मच, और तनी फिर राई डाल दियो, तनी फिर जीरा डाल दियो।
1: ठीक है, तेल राई और जीरा डाल दे।
0: अब उमन प्याज डाल दियो।
1: प्याज डाल दे।
0: अब उबली आलू का फोड़ के उमन डाल दियो।
1: डाल दिया।
0: अब ऊपर से तनी भर नमक डालो।
1: डाला।
0: तनी भर भुना धनिया डाल दो। तनी भर भुना जीरा डाल दो। मन करे तो तनी हल्दी डाल दो, नहीं तो हल्दी को कोनो विशेष जरूरत है नहीं मन।
1: ठीक।
0: ठीक है, अब ओका अच्छे से चला लियो। अब वो हो जाए ठंडा। अब ओके बड़ा बड़ा गोला बना लियो।
1: बना लिया ना।
0: अब क्या करे खे, अब एक ठो करछुल लियो, क्या हमारे उत्तर प्रदेश में करछुल में ज्यादा छौंका लगावा जाता है। तो एक ठो करछुल लियो, मन सरसों तेल डालो।
1: डाल लिया।
0: ठीक है, अब उमन डालो राई। अब ये डिपेंड करे थे आपके ऊपर कि आपका राई खाए पसंद है या जीरा खाए पसंद है। अगर राई पसंद है राई डालो, जीरा खाए के तो जीरा डाल दो। ठीक है, अब राई और जीरा का जहाँ तड़का लगे वो तनी भय हींग डाल दो, और अगर मिर्चा बहुत खवैया भी रहो और मिर्चा बहुत पसंद है तो मन लाल मिर्च डाल दो। लाल मिर्चा पीसा ना है, खड़ा वाला।
1: ठीक,
0: अब ये बहुत सिंपल तड़का बन गया। अब एक ई तड़का तुम्हें पानी में डायरेक्ट है, जो दही और पानी और चावल रेडी करी हुई है, बस वही डाल दिया है,
1: वही डाल देख है,
0: वही छौंका लगा दिया है।
1: अच्छा, छौंका लगा दिया। फिर
0: अब तुम्हें लिया है, अब तुम्हारी रेसिपी पूरी तैयार हो गई।
1: अच्छा,
0: अब एक प्लेट लिया है, जो गहीर वाला प्लेट ना
1: होता है। हाँ, गहीर वाला।
0: हाँ, गहीर वाले प्लेट में चावल डाल रखा है। देखो चावल कम हो लेकिन दही और पानी ज्यादा हो। ठीक है, अब ओमन अब चाहो तो आम का अचार ले लियो, चाहे कुछ ले लियो। ठीक है, अब ओमन जो है जो गोला बनाए रहा भरता का है, छोटा छोटा गोला, एक भरता का गोला ले लियो और वो चाउर ले लियो। चाउर ना है, भात ले लियो, दही ले लियो, और जो चीज आपका छोकर है अब एक का साथ ही खाओ। इसे पता है आपके बहुत फायदा हुई, आपका जेका डाइजेशन के समस्या रहा थी, जेके पेट ठीक नहीं रहा था, जेके पेट ठीक हो जाए, जेका गर्मी बहुत लागत थी तेके पेट में गर्मी ना आए ज़्यादा, जेका लू लागत थी लू वाले का लू ना लागे, और भरतक चक्कर में आपके स्वादो बना रहे।
1: ये तो बहुत नीक रेसिपी है भाई।
0: और जो जो भतवा रात भर भिगो के रखी हो रहा, इसे भात कहो ना कहो मन वो फर्मेंट टाइप के हो जाते हैं
1: जी, जी।
0: तो हमारे बॉडी के लिए बहुत नीक हुआ था।
1: तो भाई अब चलते हैं हम थोड़ा सा चैट बॉक्स की तरफ, और कुछ मैसेजेस भी पढ़ लेते हैं क्योंकि बहुत ही प्यारे प्यारे आए हैं, तो ये मैं पढ़ना चाहूँगी। तो सुरेंद्र यादव जी लिख रहे हैं कि प्लेट की थरिया,
0: अच्छा थरिया ले लियो। देखो हम वैसे तो बोल ली थी लेकिन कहो ना कहो ऑन एयर हमसे थोड़ी गलती हो जाती।
1: जी जी। और दीपक दीपक जी लिख रहे हैं जो हथियागढ़ गोंडा से हमें सुनते हैं कि अवधी भाषा बहुत मीठी आवाज़, बहुत ही मीठी आवाज़ लग रही है आप दोनों की, थैंक यू सो मच। और इसी के साथ में के गुप्ता जी जो कि तिरंगा कॉम्प्लेक्स से सुनते हैं लिख रहे हैं भात दही की खवाए है। अच्छा अच्छा
0: भात दही के खावा है,
1: के खावा है भाई, हम तो खाए नहीं रहा आज, ये बताई नहीं अब खा पाए।
0: अच्छा भात दही से हमें एक चीज और याद आवा।
1: क्या याद
0: बताई थे और आप देखो आप तो अभी का एक्सपीरियंस ना है कि वो हम होना एक्सपीरियंस लेकिन जो कहे से ते जाने जे शादी शुदा हुए।
1: अच्छा
0: तो नई नई बहू हमारे सबके अवध क्षेत्र में जब आवा थी
1: जी जी।
0: तो जब उनके विदाई हुआ थी या गौना गवा है चाहे जोन हुआ है तो सबसे पहले पहले दिन हुआ था अपने ससुराल में तो पहला खाना जोन हुआ था तो देहू भात हुआ था। वह मीठी मीठा दही भात,
1: मीठा दही भात।
0: और बिहार जब आप जाइबो तो वहाँ पे जो माड़ नहीं उसे क्या कहते हैं जो मंडप होता है मड़वा जो छाता है,
1: माड़ो जो छाया जाता है।
0: हाँ नहीं नहीं वहाँ पे मड़वा छाया जाता है।
1: अच्छा,
0: जो पूरा बांस के वो एक ठो मंडप तैयार
1: हुआ
0: है ओकरे नीचे जो जिन जिन बिटिया का ब्याह हुआ था वो आखिरी अनमैरिड के रूप में मतलब क्या कहते हैं इसको अवधि में
1: कुआरी।
0: हाँ कुआरी के रूप में पहले आखिरी भोजन करती जो अपने घर के हुए थे तो मन वो चावल और दही और चीनी खाती और अपने यहाँ नई नई दुल्हन खाती।
1: ओके तो चलिए लिसनर्स चलते हैं बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं लेकिन सॉन्ग पे जाने से पहले एक बात कहना चाहूंगी कि भाई आयुषी वेरी वेल डन, आपने बहुत ही अच्छे से अवधि में
0: अभी तो हमने नहीं बोला हम सामने से कोई लिसनर आएगा और उसके साथ तो भाई मैं पूरा अवधि में बात कर ली जाऊंगी लेकिन ऑन एयर थोड़ा सा आप समझ सकते हैं प्रैक्टिस नहीं है।
1: जी जी जी बिल्कुल। और भाई मुझे तो मैं तो ये मतलब ऑन एयर कहना चाहूँगी कि मुझे इतनी अच्छी अवधि बोलना नहीं आता है, मतलब आता है नो डाउट बट इतनी अच्छी नहीं जितनी अच्छी आयुषी ने बोली।
0: भाई नहीं अंग्रेज ना बनो अपने अवधि कभो ना भूलो।
1: नहीं नहीं भूले ना है लेकिन आपका बहुत नीक से आवत है, हमें इतना नीक आवत नहीं है, प्रैक्टिस चाहिए तो अब आप हमें प्रैक्टिस।
0: हमें लगा था कि हमारे सुन सहेली में आज गाँव के गूंज चटपटी चाची आई गई है।
1: चलो कोई बात नहीं आज वो एक बार का कहते हैं का अरे
0: कोलैबोरेशन होएगा
1: कोनो बात नहीं। अब ये एक काम करते हैं अब ये हमें सिखाइए तो हम परफेक्ट हो जाबे।
0: अब हम पर का कहो
1: परफेक्ट
0: नीक हो जाए वो।
1: अच्छा नीक हो जाबे।
0: हाँ।
1: गलती हो एक बार नीक हो जाबे तो चलिए नीक के साथ नीक गनवा सुन लिया जाए।
0: हाँ हाँ चलो
1: तो चलो एक बहुत
0: गनवा ना हुआ थे गौनई हुआ था।
1: अच्छा गौनई होता है भैया तो चलो गौनई करते हैं एक बहुत ही अच्छा सा गाना सुनते हैं। वो बस ऐसे जाए थे और ऐसे आए थे आप यही ठीक बने रहे।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, हम वापस आ गए हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के बाद फिर से हमारी मास्टर शेफ के साथ। और अभी अभी आप सभी ने सुने टेस्टी टेस्टी चिकन मंचूरियन, तो चलिए अब सीधा चलते हैं और जानते हैं कि नेक्स्ट क्या मिलने वाला है हमें।
1: अब दूसरा जो है बच्चे बहुत पसंद करते हैं, गर्मी की छुट्टी आने वाली है
0: जी मैम,
1: तो चॉकलेट केक बिना अंडे का सिखा,
0: चॉकलेट केक
1: क्योंकि बच्चे तो खाते ही रहते।
0: ये तो मुझे भी बहुत पसंद है।
1: तो चलिए आप लोग कॉपी पेन रखे ही अपने पास, चलिए आप लिखिए। मैदा 2.25 कप, हम इसको ग्राम राम से नहीं लिखा रहे हैं, बिल्कुल सरल उसमें लिखा रहे हैं कि आपके पास जो भी चीज है उससे आप नाप लीजिए। तो मैदा 2.25 कप ले लीजिए, अमूल मक्खन 100 ग्राम पूरा ले लीजिए, थम्सअप कि जो थोड़ी बॉटल आती है 100 ग्राम की
0: छोटी वाली जो
1: 100 ml की
0: जी जी
1: वो ले लीजिए, सोडा मीठा जो हम लोग घर में चाय वो छोले ओले उबालते हैं उसमें डालते हैं, तो 1 चाय का चम्मच आप मीठा सोडा ले लीजिए, बेकिंग पाउडर भी 1 चाय का चम्मच ले लीजिए, बहुत भर के नहीं बिल्कुल चम्मच बराबर करके ले लीजिएगा, चीनी पीसी 1 टेबल स्पून ले लीजिएगा
0: जी मैम,
1: मतलब पीस लीजिएगा 1 टेबल स्पून चीनी, मिल्क मेड या मिठाई मेड जो 400 ग्राम का टिन होता आता है उसको आप पूरा टिन ले लीजिएगा, चॉकलेट या कोको पाउडर 2 से 2.5 चम्मच, बाजार में कोको कोका पाउडर या ऐसे करके कोको पाउडर करके मिलता है वो आप ले लीजिए 2 से 2.5 चम्मच, फिर चॉकलेट एसेंस क्योंकि चॉकलेट केक बन रहा है इसलिए चॉकलेट एसेंस जरूरी है 1 चाय का चम्मच, ऊपर से चेरी और थोड़ी से ड्राई फ्रूट्स सजाने के लिए जो भी आपकी श्रद्धा,
0: जैम वगैरह
1: चेरी तो जरूर रख लीजिएगा। तो सबसे पहला नंबर क्या करेंगे, मैदे में बेकिंग पाउडर मीठा सोडा चॉकलेट पाउडर डालकर आप 2 बार छानेंगे
0: जी।
1: 2 बार छानने से ये होता है कि उसमें लगभग हवा सी भर जाती है, 1 बार नहीं हमेशा 2 बार छानना चाहिए। दूसरा नंबर डालिए आप, मक्खन की टिकिया पूरी लेकर उसे मुलायम करें और जो आपने 1 टेबल स्पून पीसी चीनी है उसको मिलाकर खूब फेंटें। फिर तीसरा मिल्क में डाल करके खूब पूरा मिल्क मेड मिल जाएगा जो 400 ग्राम आपने डाला, चाहे वो मिठाई मेड हो चाहे मिल्क मेड
0: जी मैम।
1: इसके बाद एसेंस मिलाएं, फिर आप उसमें जो आपका थम्सअप है उसको मिला लें और आराम से खूब एक ही तरफ फेंटिएगा, बार बार नहीं, फिर थोड़ा थोड़ा करके मैदा चम्मच से आप उसमें डालती जाइएगा, जब सब मैदा पड़ जाए तब तक आप देखिएगा कि ये जो है खूब हल्का हो गया है, अगर आपको लगे कि ये गाढ़ा है तो थोड़ा सा दूध मिला लीजिएगा लगभग 1 टेबल स्पून
0: जी मैम,
1: वैसे मिलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि इसमें थम्सअप भी पड़ा हुआ है। इन सबको करके आप एक केक टिन तैयार कर लीजिए। केक टिन तैयार करने के लिए क्या है कि जो टिन है उसमें आप चारों तरफ घी या डालडा या जो भी आपके पास हो रिफाइंड वो लगा दीजिए, उसके बाद हाथ में वो लीजिए मैदा और चारों तरफ उसकी दीवार पे और उस पे जमीन पे आप मतलब टिन की, ये नहीं है कि आप दीवार लो जमीन पे कर रहे है ना, उसमें आप खूब अच्छे
0: जो आपने बर्तन लिया
1: उसमें खूब अच्छे से छिड़क दीजिए, उसके बाद उसको परात में झाड़ लीजिए तो जो एक्स्ट्रा मैदा होगा
0: वो
1: निकल जाएगा। दूसरा तरीका है कि आप बटर पेपर ले लीजिए, उसको उसी साइज का काट लीजिए जिस तरह का आपका केक टिन है
0: जी।
1: उसको लगा लीजिए, उसके बाद आप जो ये बैटर तैयार किया है वो उसमें डाल दीजिए खूब अच्छे से और ऊपर से खूब अच्छे से चेरी और जो भी ड्राई फ्रूट्स है वो डाल दीजिए। अब आप इसको जो है कुकर ले लीजिए, कुकर में एक वो डालिए क्या कहते हैं
0: जाली जैसा होता है ना मैम, वो जो
1: स्टैंड या कोई कटोरी या उसके ऊपर आप तस्तरी रख दीजिए या जाली रख दीजिए और जो ये आपका ऐसा लीजिएगा केक टिन जो आपके कुकर में चला जा रहा नहीं है तो आप कढ़ैया में रख के बना सकती हैं, गरम कर सकती हैं
0: जी।
1: आप सब विधि एक ही है कि उसको स्टीम मिलनी गरम मिलनी चाहिए,
0: बेक होना है,
1: फिर उसको आप कुकर में रख दीजिए और ढक्कन रख दीजिए, पर उसमें सीटी ना लगाइएगा ना उसमें प्रेशर दीजिएगा, कर है तो सीटी आप रबड़ भी निकाल दीजिए सीटी भी निकाल दीजिए ढक्कन बंद कर दीजिए और 10 से 15 मिनट आप इसको ऐसे ही धीमी आंच पे छोड़ दीजिए। 15 मिनट बाद आप ढक्कन खोलेंगे तब आपको पता रहेगा कितना आपका केक फूल रहा है या फूल चुका है। वैसे ये लगता है 30 से 35 मिनट एक कुकर में केक बनने में लगता ही लगता है
0: जी मैम।
1: और उससे ये होता है जलता भी नहीं है, खूब अच्छा फूल जाता है। और तुरंत आप निकालिएगा नहीं, जब फूल जाए तो थोड़ा वेट करिएगा, ढक्कन हटा के उसको थोड़ा सा ठंडा होने दीजिए। उसके बाद आप कपड़े से पकड़कर उस डंडे उस डब्बे को आप जिसमें आपने केक बनाया उसको बहुत आसानी से बाहर निकालेंगे। बाहर निकाल के आप देखिएगा, अगर गर्म ना हो तो उसके दीवारों पे हाथ से थपथपा करके उसको ढीला कर
0: दीजिए।
1: अब जब ढीला हो जाए तब आप क्या करेंगे, किसी थाली या किसी में वो उसको उल्टा कर देंगे। फिर आप उसकी जो तलहटी है बर्तन की उसको धीरे धीरे थपथपाएंगी, देखिएगा पूरा केक आपका बाहर आ जाएगा खूब सुंदर सा। तो अब मान लीजिए इधर ऊपर है सजावट करनी है आपको, तब आप नीचे की तरफ कर लीजिए सजावट। अब ड्राई फ्रूट जो अंदर पड़े थे उसको जाने दीजिए, ऊपर से नया सजा लीजिए, चाहे क्रीम ले लीजिए। नहीं तो अब आजकल तो हमने देखा है कि लोग आइसक्रीम डाल देते हैं उसके केक के ऊपर,
0: घर की मलाई से भी आप उसको डेकोरेट कर सकते हैं।
1: लेकिन ये है हाँ, घर की मलाई ले लीजिए अच्छे से, उसको थोड़ा सा बटर में डाल के फेंट लीजिए। और आप बच्चों को क्या है, बच्चों को घर में देना रहता है, इतनी आइसिंग शुगर की जरूरत नहीं होती है। तो सिंपल सा आप केक बनाइए, बच्चों को आप गिलास में या उसमें बाउल में दीजिए, ऊपर से आइसक्रीम दीजिए, कोल्ड ड्रिंक भी डाल के आजकल बच्चे केक को खाते हैं
0: जी मैम।
1: अब आजकल सबका टेस्ट अलग अलग है। तो चलिए आप इसको बनाइए, बहुत सरल है केक। चलिए ठीक है, फिर अब हम फिर से मिलेंगे आपको अगले मंडे को।
0: थैंक यू मैम, और बहुत ही अच्छा केक बताया मैम ने, मतलब मेरे तो सुन के ही मुंह में पानी आ गया। तो लिसनर्स आप भी ज़रूर बनाइएगा इस केक को, और मैं तो ज़रूर से बनाऊंगी, और बना करके फिर हम अपने गेस्ट को भी खिला सकते हैं और खुद भी खा सकते हैं, बहुत सारी तारीफें भी ले सकते हैं।
1: बिल्कुल।
0: तो चलिए चलते हैं, एक बहुत ही प्यारा सा सॉन्ग सुनते हैं, इंजॉय करते हैं। स्टे ट्यून्ड।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा शो सुन सहेली। हम आ गए हैं बहुत ही प्यारे से सॉन्ग के बाद वापस सीधा हमारी मास्टर शेफ के साथ। तो सबसे पहले तो मैम का वेलकम कर लेते हैं। वेलकम मैम, कैसी हैं आप?
1: बिल्कुल ठीक है, सभी श्रोताओं को मेरा बहुत बहुत नमस्कार।
0: तो आइए चलते हैं लिसनर्स, जानते हैं कि आज हमारी मास्टर शेफ के पास हमारे लिए पहली रेसिपी क्या है।
1: भाई देखो, इस समय तो सब लोग चिकन की बड़ी डिमांड है।
0: हाँ।
1: तो आज सबसे सरल हम चिकन मंचूरियन सिखाते हैं।
0: ओ वाओ, चिकन मंचूरियन।
1: जी, तो चलिए सबसे पहले हम लोग कॉपी पेन ले लीजिए और सामान लिख लीजिए। चलिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, चिकन लेंगे 200 ग्राम।
0: जी मैम।
1: और पत्ता गोभी लगभग वो भी 200 ग्राम करीब लेंगे। हल्का सा पत्ता गोभी उबाल के, भाप देकर के, बहुत गलाना नहीं है, पानी में डाल के उबाल के अलग रख लीजिए। चिकन को आप करके कि मिक्सी में डालिए, जो उसके फ्लैश वाले पीस हैं, हड्डी नहीं। आप 200 ग्राम ला रहे हैं तो आप उसके फ्लैश वाले पीस लीजिए, मांस वाले, उसको आप मिक्सी में डाल करके और पीस दीजिए, और पीस करके अलग थाली में निकाल लीजिए। इतना काम आप सबसे पहले कर लीजिए। उसके बाद क्या करेंगे, आप जो सॉस जिसमें हमारा चिकन गोली पड़ेगी सबसे पहले वो बना लें। अब आप क्या करेंगी, टमाटर 6 पके ले लीजिए, खूब अच्छे लाल लाल से, मीडियम साइज लीजिए, ना बहुत बड़ा लीजिए ना छोटे। बड़ा लीजिए तो आप 2 ले लीजिए, और मीडियम साइज ले रहे हैं, छोटे छोटे जैसे आजकल आ रहे हैं
0: जी, जी।
1: वो कम से कम 6 टमाटर लीजिए। 1 चम्मच लहसुन का पेस्ट लीजिए, 1 चम्मच अदरक का पेस्ट लीजिए। अब आप टमाटर को छोटे छोटे टुकड़ों में काट करके और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के ढक दीजिए। ढकने से ये होगा, जो टमाटर का छिलका है वो ऊपर से निकलने लग जाएगा। जब वो निकलने लग जाए तब आप जो है उसको निकाल लीजिए और ठंडा होने दीजिए।
0: जी मैम।
1: उसके बाद आप उसको मिक्सी में डालकर चला लीजिए।
0: जी।
1: जब उसमें वो हो जाए तब आप उसको मतलब पीस करके अलग रख लीजिए। अब आप क्या करेंगी, 1 से 2 चाय का चम्मच आप बटर लेंगी। बटर को कढ़ाई में डाल लेंगी और उसमें जरा सा तेल भी डाल लीजिएगा। अगर अकेला बटर रहता है तो वो जलने लगता है, तो आप बटर को में पहले तेल डालिए फिर बटर डाल दीजिए 2 चाय के चम्मच। उसके बाद उसमें जीरा जरा सा डालें, उसके बाद जो आपने टमाटर पीसा है वो उसमें मिला दीजिए, थोड़ा नमक मिला दीजिए, काली मिर्च मिला दीजिए।
0: जी मैम।
1: और जो कश्मीरी लाल मिर्च आता है, कड़वा तो होता नहीं है, वो थोड़ा 1 चाय का चम्मच वो भी डाल लीजिए
0: कलर के लिए।
1: हाँ, थोड़ा सा पानी दीजिए और कम से कम 2 या 3 उबाल आने दीजिए मध्यम आंच पे, खूब तेज आंच मत करिएगा।
0: जी मैम।
1: अब इसको आप अलग रख लीजिए या उबालते, गैस में तो 2 चूल्हे रहते हैं, 3 चूल्हे रहते हैं, तो धीमी आंच में उबलने दीजिए। अब आप क्या करेंगी, जो आपने चिकन पीस के रखा था और बंद गोभी उबाल के रखी थी, उसमें 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर मिलाइए।
0: 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर,
1: कॉर्नफ्लोर मिलाइए।
0: जी मैम।
1: और उसको नमक मिलाइए, अदरक लहसुन का पेस्ट मिलाइए, काली मिर्च मिलाइए, और उसको ये देख लीजिए आपकी छोटी छोटी गोलियां बन रही हैं, आराम से बन जाती हैं। सबको मिला करके एक डो बना लीजिए। डो बनाने के बाद आप अपनी मनपसंद आकार की गोली बना लीजिए। गोलियां बना करके डीप फ्राई, उसमें कढ़ैया में तेल डालिए और उन गोलियों को आप तल दीजिए।
0: जी मैम।
1: उनको मतलब हल्का सुनहरा सा तल लीजिएगा।
0: जी।
1: आंच मध्यम रखिएगा क्योंकि चिकन है। जब सब तल जाए तब आप उसको ये जो आपने टमाटर सॉस बनाई है उसमें डाल देंगी, जो कॉर्नफ्लोर का पानी उसमें बचा हुआ है, जो हमने गोली
0: जी,
1: बनाई है
0: जी,
1: उसमें थोड़ा बहुत पानी बच जाता है।
0: हाँ।
1: उसमें नमक काली मिर्च भी है, तो घोल करके आप उसको थोड़ा सा धो करके उसी में कढ़ाई में डाल दीजिए और उसको एक उबाल आने दीजिए।
0: जी मैम।
1: बस अब आप जो है कोई भी, जैसे पुदीने की सूखी पत्तियां हैं या हरी धनिया कम पड़ती है, वैसे पुदीना है
0: जी,
1: ये डाल करके आप सूखी पत्तियों में उसको सर्व कर दीजिए
0: जिसको
1: चाहिए। तो लीजिए, आपका चिकन मंचूरियन तैयार है। ऊपर से आप जो है प्याज का सागा है, चीज अच्छा लगता है
0: जी,
1: और लहसुन अच्छा लगता है जो महीन महीन
0: जी मैम
1: मंचूरियन में ज्यादा था
0: जी, जी।
1: आप उसको अलग अलग से काट करके जब उबाल देनी है उस समय उनको भी दे दीजिए और चीज डाल करके सर्व करिए। जब डोंगे में आप सब निकाल लीजिए तब ऊपर से कद्दूकस करके चीज डाल दीजिए गरम गरम, तो सुंदर भी लगेगा और स्वाद भी आएगा। तो लीजिए आपका चिकन मंचूरियन तैयार।
0: वाह, मतलब ये तो बहुत ही अच्छी रेसिपी बताई मैम ने चिकन मंचूरियन की। तो लिसनर्स आप भी इसे ट्राई करिए और मैं तो जरूर से ट्राई करूंगी। चलिए चलते हैं एक बहुत ही प्यारे से सॉन्ग की तरफ, बस यूं लौटेंगे इस म्यूजिकल ब्रेक के उस पार। स्टे ट्यून्ड।
2: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोड़ दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कंटेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 8840 3395 84। अब बारी है आपकी।

0: वेलकम बैक लिसनर्स, आप सुन रहे हैं आपका अपना बहुत ही पसंदीदा शो सुन सहेली। और अभी आपने दो दो रेसिपीज एंजॉय की जो कि हमारे मास्टर शेफ की थी। सो रेसिपीज कैसी लगी जरूर बताइएगा लिसनर्स। तो चलिए अब चलते हैं हम, क्योंकि टाइम हो गया है। वैसे तो हम इस सॉन्ग को पूरा सुनना चाहते थे लेकिन फिर भी हमें आपसे बातें करनी थी इसलिए वापस आना पड़ा। तो चलिए आते हैं और मेरी जो कि होस्ट एंड दोस्त बगल में बैठी हैं यानी कि आरजे आयुषी, वो कुछ बात करना चाहती हैं। तो पहले उनकी बातों को जानते हैं और फिर बताएंगे आपको जाते जाते कुछ किचन टिप्स।
1: हाँ जी दोस्तों, तभी हम बात कर रहे थे बहुत ही स्पेशल, और आपने आज तीन तीन रेसिपीज जानी और काफ़ी कुछ, जिसमें आपने लाइफ के कुछ फैक्ट्स जाने और एक बहुत ही अच्छी खाने पे पोइट्री भी आपने इंजॉय की। वेल, फिलहाल तो घड़ी इजाज़त दे रही है हमें जाने का, क्योंकि नेक्स्ट आपका अपना शो आने वाला है क्वालिटी उन गुंडा, जिसमें आपकी फरमाइशें पूरी होती हैं। लेकिन भाई, जाने से पहले मैं आपको बता दूं कि भाई ये जो हम अभी बात कर रहे थे इसको आप बिल्कुल ना भूलें, सिर्फ यहीं तक सीमित ना रखें कि हाँ सुन सहेली में सुन लिया और हमने प्राउड फील कर दिया अपनी अवधि पे, बल्कि आप इसको प्रमोट भी करें, क्योंकि ये हमारा काम है कि हम अपनी अवधि को कहाँ से कहाँ तक लेके जा सकते हैं। वेल, अवधि को तो लेके जाइएगा, लेकिन साथ ही साथ आपको मैं बता दूं कि भाई आपके रेडियो 89.6 FM को, जिसको आप इतने टाइम से सुन रहे हैं, इतना प्यार दे रहे हैं और इंजॉय आप डेली करते हैं, आपका डेली का साथ हमारे साथ हो चुका है और वी आर लाइक फैमिली मेंबर्स नाउ। तो भाई हमारे साथ और भी अच्छे तरीके से आप जुड़ सकते हैं, पता है कैसे अंशिका?
0: कैसे?
1: हमारे सोशल मीडिया से। जी हाँ, देखिए सोशल मीडिया पे आइए आप अपने इंस्टाग्राम और फेसबुक पे, और वहाँ पे आप टाइप करिए रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM, आपको हमारा पेज मिलेगा, उसको ज़रूर से फॉलो कर लीजिएगा। उसको आपको उस पर काफ़ी सारी नई नई चीज़ें देखने को मिलेगी कि आखिर आरजीएस बोलते तो बहुत अच्छा है लेकिन दिखते कैसा है, क्या ये वीडियोज़ में भी उतना अच्छा काम कर लेते हैं जितना ये ऑडियो में करते हैं, ये आप गेस करिएगा और हमें फॉलो ज़रूर करिए। साथ ही साथ आपको बता दें कि आपको गोंडा की और गोंडा के आसपास की नई पर्सनालिटीज़ को अगर जानना है, स्पेशली जो गोंडा से जुड़े हुए हैं उनकी नई नई कलाओं के बारे में जानना है, तो ज़रूर से फॉलो कर ले हमारा यूट्यूब पेज अनटैंगल्ड। जी हाँ, अनटैंगल्ड, जहाँ पे आपको सुनने को मिलता है एक बहुत ही बेहतरीन पॉडकास्ट जो कि हमारे गोंडा के लोकल लोगों का है। लोकल लोगों का मतलब ये नहीं कि हाँ हम किसका पॉडकास्ट, हम उनका कर रहे हैं जिन्होंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है, बहुत इंस्पायरिंग है और हमारे गोंडा से जुड़े हुए हैं।
0: तो चलिए चलते चलते टाइम हो गया है 2:55 और आपको बता देते हैं एक बहुत ही प्यारा सा किचन टिप, जो कि ये है कि भाई भिंडी की सब्जी हम सभी को बहुत पसंद होती है, लेकिन भिंडी बनाते समय उसमें जो चिपचिपापन होता है उसे दूर करने के लिए क्या करें? तो उसे दूर करने के लिए आप कुछ बूंद नींबू के रस की लीजिए और थोड़ा सा भुना हुआ बेसन, इन दोनों ही चीज़ों को जब आप भिंडी की सब्जी में डाल देंगे तो इससे उसका जो चिपचिपापन होता है वो दूर हो जाएगा और आपकी भिंडी बहुत ही टेस्टी और क्रिस्पी बनेगी। तो ज़रूर ट्राई करिए। और आटा गूंथते हैं तो आटा गूंथते वक्त क्या होता है ना कि हम सोचते हैं कि हमारी रोटियां बहुत ही नरम बने, तो अगर आप भी ऐसा चाहते हैं तो आप आटे को थोड़ा सा दूध से गूंथिएगा। अगर आप इसे दूध से गूंथेंगे तो आपकी रोटी मुलायम होने के साथ साथ बहुत ही टेस्टी भी बनेगी। तो ये थे आज के दो किचन टिप्स हमारी तरफ से। और फिलहाल टाइम हो गया है लेकिन जाते जाते एक नज़र डाल लेते हैं चैट बॉक्स पे। तो सबलू सावन जी आ चुके हैं, लिखते हैं शुभ दोपहरिया, शुभ दोपहरिया आपको भी। आशु मिश्रा जी भी आ चुकी हैं लेकिन जाते जाते आई हैं इसलिए थोड़ी सी शिकायत है, थोड़ा सा जल्दी आएँ। तान्या जी आ चुकी हैं और नव्या जी, सविता जी तो हमारे साथ बनी हुई थी। तो चलिए लिसनर्स चलते हैं क्योंकि अब टाइम हो गया है। तो चलते चलते,
1: जी हाँ चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं बहुत ही बेहतरीन गाने के साथ, बिल्कुल ठीक इसी तरीके से जैसे आज आपने अपना शो सुन सहेली इंजॉय किया। जी हाँ, सुन सहेली, और सुन सहेली पे मैं बहुत सारी चीज़ें लेकर आने वाली हूँ आपके लिए, वो बहुत सारी और बहुत सारी एक्साइटमेंट भरी हुई, एंटरटेनिंग और सबसे बड़ी बात मज़े की है। क्या क्या है वो आपको सुन के पता चलेगा। तो भाई अपनी सुन सहेली को ऐसे प्यार देते रहे, अपने रेडियो गाना 89.6 FM को ऐसे प्यार देते रहे और बने रहे हमारे साथ अपने FM रेडियो ज्ञानस 89.6 FM। ये है गोंडा शहर की धड़कन।
0: बाय बाय दोस्तों।

0: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
1: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
0: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
1: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
0: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
1: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400। क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टाइजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग। और तो और, कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 33 95 84। अब बारी है आपकी।
2: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
3: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सीलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
1: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रेंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
6: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
1: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
7: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
1: विजिट करें एल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
8: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
9: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
8: और जेंट्स के लिए?
9: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
8: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा। और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा, नियर सिविल लाइंस, गोंडा।
9: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
1: अरे सुना
5: क्या?
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
5: वाओ!
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगरा बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 945-583-5346।
10: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
5: मतलब?
10: मतलब मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना।
11: इन समस्याओं के लिए निशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800-891-4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
1: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 8840339584। 88404095। अब सपने होंगे साकार।

हाँ जी श्रोताओं, वक्त हो चला है आपके फोन इन फरमाइश कार्यक्रम आने के कॉलर ट्यून गोंडा का। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आर्जा कांक्षा, लेके आ गई हूँ मंडे मूडी वाला डे, यानी कि आज का दिन है सोमवार। और सोमवार को आपका मूड थोड़ा सा ज्यादा वाला प्रोग्रेसिव सोचता है, थोड़ा सा अच्छा सोचता है, इसीलिए मुझे लग रहा है कि आज की जो प्ले लिस्ट हमारे पास में आई है सारे नगमे एक से बढ़ के एक है। लेकिन इतना प्रोग्रेसिव कोई कैसे सोच सकता है कि बारिश आके जा रही, मान लिया कि सरकार अलर्ट जारी कर रही है बार, और इसके बाद में कहीं ना कहीं नोटिफिकेशन भी आ रही है, मौसम विभाग भी अलर्ट जारी कर रहा है और सरकार की ओर से भी नोटिफिकेशन आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ही नहीं कि बारिश आ गई। भाई कल जिस हिसाब से बारिश आई और उसने बस दो पल को अपना चेहरा दिखाया उसके बाद निकल ली, लेकिन कोई बात नहीं, उसने मौसम को काफ़ी खुशनुमा किया, काफ़ी सर्द मौसम हुआ, रात में भी काफ़ी सुकून था। अगर आप बाहर निकले होंगे या टहलने की आपकी आदत होगी सुबह में भी, तो आपको वो चीज़ फील हो रही होगी कि कितना प्यारा सा मौसम था। फिलहाल बढ़ेंगे आज की पहली डिमांड के साथ में, और पहली डिमांड हम लेते हैं सऊदी अरेबिया से मुस्तफ़ा जी की, और मुस्तफ़ा जी को सुना है हमारे चीची जी का गाना भाई। और चीची जी का गाना जब भी हम प्ले करते हैं हम थोड़े से ज़्यादा वाले खुश होते हैं, हमको लगता है कि हम अपने प्लेलिस्ट का कोई सॉन्ग प्ले कर रहे हैं, तो मुझे ज़्यादा वाली अच्छी मतलब फील आती है, वाइब्स आती है। तो चलिए आज की पहली डिमांड हम लेते हैं अपने मुस्तफ़ा जी की जो उनकी ओर से आई हुई है, फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ और बताते भैया दो लोग लगातार कौन है जिन्होंने बारिश की डिमांड की है, गुजारिश की है मौसम महाराज से कि भैया बारिश थोड़ी सी कर दो। इतना प्यारा मौसम होने के बाद भी हो जाते कि अभी बारिश हो, तो भाई बारिश का आनंद लेते रहेंगे, मौसम से बस इतनी प्रार्थना करेंगे बारिश ही करे, तूफान ना लाए, वरना उड़ते हुए लोग दिखते हैं आपको ट्रेंडी वीडियोस में। और आजकल तो भाई गोंडा में जो हाल चल रहा है कि हम बता ही नहीं सकते हैं। चौथा पचवा केस आज का हुआ है, आपको बता दूं, चलिए बता ही देती हूँ, अंबेडकर चौराहे के आसपास में, एक कचहरी के पास में और एक अंबेडकर चौराहे के पास में। अभी आपने वीडियो देखा ही होगा, काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रही है कि लोग चढ़ के पोल्स पे और अपने कैन में डिमांड्स रख रहे हैं। तो ऐसा फिलहाल मुझे नहीं लगता है कि ये कोई वाजिब मतलब वजह, अगर आपके घर में कुछ ऐसा हो भी रहा है, उच्च नीच हो भी रहा है, तो आप ही मैनेज कर लीजिए। और जिस तरह से वो औरत चढ़ी हुई थी उसकी जो बात करने का तरीका था बिल्कुल गलत लग रहा था। फिलहाल ये सब दरकिनार करते हैं और एंजॉय करते हैं आज के पहले ट्रैक को, और चलते हैं इस सफ़रनामे की ओर जो की है आपका फोनी फरमाइशी कार्यक्रम आने के कॉलर ट्यून गोंडा। एंजॉय द ट्रैक, आते हैं नेक्स्ट ट्रैक के साथ।

हाँ जी, अभी आपने इस प्यारे से नगमों को एंजॉय किया, जो कि डिमांड थी हमारे मोहम्मद मुशीब जी की, नहीं हमारे प्यारे लिसनर मुस्तफा जी की फ्रॉम सऊदी अरेबिया। अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, लेकिन उससे पहले हम लेना चाहेंगे आप सभी के प्यारे प्यारे मैसेजेस को। और मैसेजेस में कुछ आया हुआ है, और ख़ास करके ये जो मैसेज आया हुआ है हमारे पास में, वो बहुत ख़ास हो जाता है। वो क्या है वो मैं ज़रूर बताती, लेकिन उससे पहले बता दें कि हाजिरी किस किस की लग गई है आज चैट बॉक्स में। तो सबसे पहले हमारे सबलू सावंत जी हैं मुंबई बोरीवली से, लिखते हैं, शुभ दोपहर आर्य आकांक्षा जी, गर्मी काफ़ी फेमस हो चुकी है। बस आपको बता दें, फेमस तो यहाँ पे बहुत कुछ हो चुका है, कुछ ऐसी हरकतें भी हो गई हैं जो कि नोटिसेबल भाई, कहीं ना कहीं अगर हमारे प्रशासन में चीज़ें नहीं सुनी जाती हैं तो हम वो कर्म करने को मजबूर हो जाते हैं जो शायद एक तरह से मजाक भी बन जाता है, लोगों के लिए हंसी के पात्र होते हैं, लेकिन जिसके दिल पे ठेस लगती है, जिसके साथ में न्याय नहीं होता, वही जानता है कि उसके साथ में क्या हो रहा होता है। तो गोंडा में ये पांचवा केस है कि कोई चढ़ा हुआ है और टावर पे, और आज तो मतलब कोइंसिडेंस हो गया कि एक महिला भी चढ़ी है और एक पुरुष जिनके पिताजी की डेथ हो गई है और वो खुद वकील है। तो ये सारी चीज़ें आजकल बहुत ज़्यादा देखने को मिल रही हैं, पता नहीं क्या होगा इस दुनिया का, मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है। फिलहाल आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट मैसेज की ओर, और गर्मी से ज़्यादा बहुत कुछ फेमस हो रहा है, बस इतना कहना था। मुस्तफ़ा जी सऊदी अरेबिया से, गुड आफ्टरनून, आपको भी गुड आफ्टरनून। और इसके अलावा इनका कहना है कि सबलू जी का कि गर्मी के कारण नहीं, अच्छा ओके, किसी कारण से व्यस्त होने के कारण नहीं जुड़ पाए, कोई बात नहीं, आपकी व्यस्तता आप बनी रहे, मैं बस यही चाहूँगी, और अच्छी वाली व्यस्तता रहे, बस बुरी वाली ना रहे, इतनी सी दुआ है। और तानिया जी हमारे साथ में, हाय मैम जी, कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छी तो नहीं हूँ, क्योंकि ज़ुकाम ने हमको मतलब परेशान कर दिया, इसी गर्मी के चलते कहीं ना कहीं हमने भी वो खा लिया जो हमें शायद नहीं खाना चाहिए था रात के समय में, और गले में हमको मतलब क्या ही बताएं, ज़ुकाम लग गया। और सबलू जी का भाई एक दर्द है, और ये सबलू जी का ही नहीं है, हर एक प्राइवेट जॉब वाले का दर्द होता है, ज़रा गौर फरमाइएगा। लिखते हैं, प्राइवेट जॉब करने वाले बीमार पति से पत्नी बोली, इस बार किसी जानवर के डॉक्टर को दिखाओ तभी आप ठीक होगे। पति ने पूछा, क्यों? पत्नी, रोज सुबह मुर्गे की तरह जल्दी उठ जाते हो, घोड़े की तरह भाग के ड्यूटी जाते हो, गधे की तरह दिन भर काम करते हो, लोमड़ी की तरह इधर उधर से इन्फॉर्मेशन बटोरते हो, बंदर की तरह सीनियर अधिकारियों के इशारे पे नाचते हो। भाई ये तो मैं मान लेती, घर आकर परिवार पर ओ माय गॉड कुत्तों की तरह चिल्लाते हो, और फिर भैंसे की तरह खा करके सो जाते हो, इंसान का डॉक्टर तो तुम्हें बिल्कुल ठीक नहीं कर सकता है। वैसे ये हर खाली और खाली एक मतलब जनाब के लिए नहीं, मोहतरमाओं के लिए भी लागू होता है, सभी प्राइवेट जॉब वालों के लिए होता है, और आजकल तो सरकारी भी सेम हो गया भाई, इतना दस्तावेज मांग लिया जाता है कि इंसान दे के थक जाता है, काम से ज़्यादा कहीं ना कहीं वो दस्तावेज जुटाने में ही लगा रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट मैसेज हमारे पास में आया हुआ है अब्दुल मुजीम साहब का, लिखते हैं, उस इंसान से दोस्ती मत करो जो अपनी माँ से ऊंची आवाज में बात करता है, क्योंकि जो अपनी माँ की इज्जत नहीं करता वो किसी की भी इज्जत कभी नहीं कर सकता। बिल्कुल 100% सच बात आपने कही, बहुत बहुत शुक्रिया। नेक्स्ट मैसेज की बात करें तो हमारे साथ में बने हुए हैं रमेश यादव जी गरीबी पुरवा से, और ओके सर प्लीज़ आपको अभी ऑपरेटर साहब नंबर मेंशन कर देंगे, आप कॉल कर लीजिए ताकि आपका सॉन्ग प्ले हो पाए, रमेश यादव जी। और इसके अलावा प्यारा सा मैसेज आया हुआ है कैफ मोबाइल जी की ओर से, गुड मॉर्निंग का, गुड मॉर्निंग टू यू। और आज का मौसम थोड़ा सा अच्छा है, सुहाना है, खुशनुमा है, बहुत ज़्यादा तेज़ वाली धूप नहीं है। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और भाई कहीं ना कहीं प्राइवेट जॉब का जो रोना है हमारे सबलू सावंत जी का, वही कहीं ना कहीं इस गाने में भी आपको सुनने को मिल जाएगा। तो ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है अब्दुल राशिद जी की ओर से, चलिए सुनते हैं कि आखिर में ये क्या सुनना चाहते हैं। आपके अपने शो जी हाँ क्वालिटी उन गोंडा के साथ में मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे आकांक्षा, एंजॉय द ट्रैक।

जी श्रोताओं, अब्दुल राशिद जी की डिमांड अभी आपने एंजॉय की और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में। भाई सबीहा जी की भी डिमांड आई है बारिश को लेकर के, क्या बात है भाई। बारिश का इंतजार सभी बड़े चाव से करते हैं। मुझे लगता है आप लोग को चाय कुछ ज्यादा ही पसंद है क्योंकि बारिश में चाय का आनंद कुछ और ही होता है, और अगर आप बहुत उलझे हैं तो दोस्तों के साथ में चाय, उसका भी आनंद कुछ और होता है। और साथ ही साथ में अगर सर्दियों का मौसम हो और कुछ भी ना हो, बस खाली गप्पे शप्पे लड़ाने फैमिली के साथ में बैठ के, तो भी चाय काफी रंगीन होती है। फिलहाल कल हमने पी थी एक गुलाबी चाय, मतलब गुलाब वाली चाय, बड़ी आनंद आई थी, बड़ा मजा आया था। और बड़े दिनों बाद हम अपनी प्यारी मित्रानी से भी मिले थे, मतलब अपनी बेस्टी से मिले थे, और अचानक से जस्ट याद किया और उन्होंने सामने से दस्तक दी। कभी ऐसा कोइंसिडेंस आपके साथ में हुआ है? नहीं हुआ है तो जान लीजिए आपका दिल का रिश्ता नहीं है। भाई हमारा तो दिल का है, इसलिए हम बड़े लकी है। थैंक्स फिलहाल, ये यादें मैं वहां तक चलेगी। वापस से आते हैं सभी हजी के डिमांड के साथ, आगे बढ़ते हैं आपके अपने फोनी फरमाइशी शो यानी कि कॉलर ट्यून गोंडा के साथ। 3 से 4 के सफर को आप एंजॉय कर रहे हैं रेडियो यानी 89.6 FM के साथ।

हाँ जी, तो ये प्यारा सा सूदी सा सॉन्ग अभी आपने एंजॉय किया हमारी सभी हाजी के डिमांड पे, और अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वाली डिमांड के साथ। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहूंगी। रमेश यादव जी, मैं सुनते गरीबी पुरवासिन का कहना है, भाई सब चलेगा, आम खाओ और सब कुछ भूल जाओ। भाई आम खा के ही मेरा ये हाल हुआ है, मैंने रात के 10 बजे फ्रिज से आम निकाला और उसके बाद जो मेरे गले का हाल हुआ है, बाय गॉड, मैं ऐसा लग रहा है इस सीजन में आम ही नहीं चूने वाली हूँ मारे डर के। और बहुत बहुत शुक्रिया वैसे आपके प्यार के लिए। और नव्या जी हैं हमारे साथ में, वैसे मैं किसी से नाराज़ नहीं होती, बस थोड़ा सा जुकाम है। और इसके अलावा भाई CJP पे बोलने को बोला गया है, लेकिन हम बोलेंगे भाई RCB जीत गई है। कौन कौन है जो भाई क्रिकेट प्रेमी है और किसकी टीम है RCB? कोहली किसके फेवरेट क्रिकेटर हैं? कौन कौन बहुत ज़्यादा मतलब कल रात में खुश हुआ, नाचा गाया, धूम मचाया, पार्टी शार्टी की किस किस ने, ज़रूर बताइएगा। वैसे RCB जीती है तो बताना बनता है। मेरा तो वही टीम है जिसमें जो जीत जाए, दिल से लगन से जो खेल ले वही टीम हमारी है। फिलहाल नेहा जी भी आ गई हैं, यानी कि हमारी मंगू जी, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है आपकी अपनी आरजी आकांक्षा। फिलहाल बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में, और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है प्यारे लिसनर देव प्रसाद जी की ओर से, इंडिया वाले देव प्रसाद जी की ओर से। और देव प्रसाद जी को सुनना है ये गाना।

0: साढ़े ऊ साढ़े ऊ साढ़े तीन बजे।
1: हाँ जी दोस्तों, तो हो गए हैं आपके स्टूडियो की घड़ी में 3:29, मतलब एक मिनट की अभी भी कमी है, मतलब 3:30 नहीं हुए, लेकिन हमने बजा दिया हमारे देवी जी का सॉन्ग जो कि डिमांड थी 3:30, मतलब पान की दुकान पे। और प्रेम मौर्य जी जो हमें सुनते हैं सीतापुर हर गांव से, भाई हमने आपको नंबर मेंशन कर दिया, प्लीज़ आप कॉल कर लीजिए क्योंकि आपका फ़ोन ही फरमाइश कार्यक्रम है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और नेक्स्ट डिमांड जो हमारे पास में आई हुई है, थोड़ा सा झांक लेते हैं अपने जी हाँ, हमने जहाँ नोटिस किया है तो बता देते हैं। ये हमारे सहनवाज जी की डिमांड, और ये हमें सुनते हैं अहमदाबाद से। चलिए सुनते हैं इनकी डिमांड पे ये गाना आपके 30,000 के सफर में। जी हाँ, फोनिंग फरमाइश कार्यक्रम कॉलर ट्यून गुंडा के साथ।

चलिए भाई, आपने मौसमों की तो जानकारी प्राप्त कर ली। अब मैं आप लोगों से जानना चाहूंगी, हमारे प्यारे चैट बॉक्स वासियों, कि भाई पतझड़, सावन, बसंत, बहार को शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? शुद्ध हिंदी की बात की हमने, शुद्ध हिंदी में क्या कहते हैं? अगर किसी को पता हो प्लीज मेंशन करें चैट बॉक्स में। और मुस्तफा जी, आपको फ्रिज से निकाला हुआ कोई भी चीज़ है तो तुरंत तत्काल नहीं खाना चाहिए, थोड़ा देर उसको नेचुरल नॉर्मल होने देना चाहिए, नेचुरल टेम्परेचर पे आ जाए तभी खाना चाहिए, हमारी तरह जल्दबाजी नुकसानदायक हो सकती है। फिलहाल बढ़ते हैं अमित जी की डिमांड पे, अमित कुमार जी को सुनना है बहुत ही प्यारा सा नगमा, हाई बीट और ये सॉन्ग।

हाँ जी, तो अभी आपने एंजॉय किया सेकंड हैंड जवानी, और ये गाना था हमारे अमित जी की डिमांड पे। अभी हम आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड के साथ में, और ये डिमांड आई हुई हमारे पास में राजेश मीना जी की ओर से बेंगलुरु से। चलिए सुनते हैं बेहद ही प्यारा सा खूबसूरत सा नगमा आप सभी के लिए। चलिए सुन लेते हैं कि क्या सुनना इन्हें, और आप भी जान लीजिए कितना प्यारा सा सॉन्ग है।

हाँ जी, तो अभी आपने एंजॉय किया मुबारक का ये सॉन्ग था हमारी राजेश मीना जी के डिमांड पे। और अभी हम बढ़ेंगे आनंद प्रताप सिंह जी की डिमांड की ओर, जो हमें सुनते हैं छेदीपुरवा गोंडा से। और अगर आपको भी अपनी डिमांड्स को कंप्लीट करवाना है, डेडिकेशन के लिए कोई सॉन्ग प्ले करवाना है, तो कॉल कर सकते हैं 6393316429 पे। ये आपके अपने स्टूडियो का नंबर, यानी कि 89.6 FM के स्टूडियो का नंबर। फिलहाल चलते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और 3 से 4 के सफर में आप एंजॉय करें आपके अपने फोन फरमाइशी कार्यक्रम यानी कॉलर ट्यून गुंडा को।

भाई हमको गाना काफी पसंद आया। थैंक यू सो मच आनंद प्रताप सिंह जी फ्रॉम छेदीपुरवा। भाई नितिन मुकेश जी की आवाज थी और काफी अच्छी लग रही है। चलिए आप और हम मिलकर एंजॉय करते हैं इसी सॉन्ग को, फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ। काफी प्यारा लगा इसलिए मैंने कहा थोड़ी तारीफ तो बनती है।

जी हाँ, रीना शर्मा जी का भी भाई फीडबैक आ गया है, इन्हें भी ये गाना काफी पसंद है। वाकई बहुत खूबसूरत सी डिमांड हमें लगी भाई, सुनते ही मुखड़ा, ऐसा लगा इसको पूरा सुनना चाहिए, लेकिन सुनने का वक्त नहीं है, बहुत सारी डिमांड आई है, लेकिन काफी प्यारी डिमांड थी। आनंद प्रताप जी थैंक यू सो मच। और रवि जी आ गए हैं, यानी हमारे चिंटू जी आ गए हैं आवाज़ विकास कॉलोनी गोंडा से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। साथ ही साथ में हमारी नीना जी यानी कि हमारी चंगू जी ने भी दस्तक दे दी है, थैंक यू फॉर कमिंग। और अभी बढ़ते हैं नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है अनन्या मिश्रा जी की, और ये हमें सुनती हैं अम्बेडकर चौराहे से। आइए सुनते हैं। थोड़ा सा अगर आप वॉल्यूम बढ़ाएंगे स्पीकर का, या अगर आपने फ़ोन थोड़ा सा कम वॉल्यूम पे रखा है तो थोड़ा हाई कर लीजिएगा। गाना काफ़ी प्यारा है, घातक मूवी से, लेकिन गाना घातक नहीं है, बड़ा प्यारा है। एंजॉय करिए इस ट्रैक को।

0: हाँ जी, अभी आपने एंजॉय किया हमारी अनन्या मिश्रा जी की डिमांड पे ये वाला गाना, कोई जाए तो ले आए मेरी लाख दुआएं पाए। भाई बिया की गली जिया भूल आई रे, और बड़ा ही प्यारा सा 90s हिट्स में से एक अभी आपने सॉन्ग एंजॉय किया। और अभी हम चलेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर, और ये डिमांड हमारे पास में आई हुई है रईस जी की ओर से, और रईस जी को सुनना है। आप खुद ही सुन लीजिए, मैं कुछ कहूँ उससे बेहतर आप सुन लीजिए। चलिए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड लेके हम अपने अपने शाहिद अंसारी जी की, फिर होंगे अजीत जी, फिर होंगे हमारी नव्या जी, रीना शर्मा जी फ्रॉम रुड़की उत्तराखंड, मोहम्मद अयूब जी, धर्मेंद्र मोहन भारती जी मिश्रा ऑप्टिकल से, अजय मिश्रा जी, एहसान जी, राजू सलमानी जी यानी हमारे रॉबिनहुड जी, एंड देन प्रेम मौर्य जी। एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, फिर आते हैं नेक्स्ट डिमांड के साथ।
1: करते हैं सब मुझे सलाम।

हाँ जी, तो रही साहब की डिमांड पे अभी आपने एंजॉय किया इस नगमे को, और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट डिमांड की ओर। उससे पहले स्वागत करेंगे भुवन भास्कर पाठक जी का, और नेक्स्ट डिमांड हमारे पास में आई हुई है हमारे शाहिद अंसारी जी की ओर से। आई एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को, और उसके बाद देन आते हैं नेक्स्ट डिमांड लेके। 3:48, एक घंटा कहाँ गुम होता है पता ही नहीं चलता है यार।

हाँ जी, अभी आपने इस गाने को एंजॉय किया हमारे शाहिद अंसारी जी की डिमांड पे, और अब अजीज साहब की डिमांड की ओर बढ़ेंगे। और जब भी हम अजीज साहब का नाम लेते हैं हमें मोहम्मद अजीज याद आ जाते हैं, जो सिंगर है। अब मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाती हूँ। फिलहाल हमें मुंबई से सुनते हैं और इनकी डिमांड क्या है आप तक पहुँचाते हैं। और हाँ जी, 3N यानी कि नव्या जी, नेहा जी और हमारी नीना जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने मुस्तफ़ा जी। हाँ जी, चलिए बढ़ते हैं जी नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर जी। तो सुन लेते हैं जी ये वाला डिमांड।

हाँ जी श्रोताओं, और अजीत साहब की डिमांड के बाद अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट वाली डिमांड की ओर, और ये डिमांड हम भाई डेडिकेट करेंगे अपने चंगू मंगू की जोड़ी को नव्या जी के सॉन्ग से। थोड़ा सा डेडिकेशन बनता है क्योंकि गाना बड़ा प्यारा है। आइए एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को और फिर बताते हैं नेक्स्ट डिमांड किसकी है।

हाँ जी प्यारी चैट बॉक्स वासियों, आप सभी से निवेदन, आप सभी भली भांति इस बात से रूबरू हैं, जानकार हैं इस बात के कि आपका फोन इनफॉरमेशन कार्यक्रम है, बिना कॉल के मैं आपके सॉन्ग्स को नहीं प्ले कर सकती। आज के वैसे भी लिस्ट काफी लंबी है और समय अब समाप्ति की ओर है, समय समाप्ति की घोषणा करने वाली कुछ ही क्षण में। फिलहाल बढ़ते हैं रीना जी की डिमांड की ओर और रामकृष्ण नंदन मिश्रा जी जो मैं इलाहाबाद से सुनते हैं, आपका भी मोस्ट वाला वेलकम है। फिलहाल ये गाना एंजॉय करते हो, फिर आते हैं आज की लास्ट डिमांड लेकर के। बहुत ही प्यारी सी डिमांड है, थैंक यू सो मच रीना जी, और दालक शर्मा जी आपका भी बहुत प्यारा वाला वेलकम है।

भाई उत्तराखंड की हवाएं वैसे भी बड़ी प्यारी होती है। थैंक यू सो मच द प्यारे से डिमांड के लिए। और अभी हम बढ़ेंगे नेक्स्ट और लास्ट डिमांड की ओर। और माफीनामा जारी करती हूँ, मोहम्मद अयूब जी माफ करिएगा, धर्मेंद्र मोहन भारती जी माफ करिएगा, अजय मिश्रा जी माफ करिएगा, ऐशान जी माफ करिएगा, भास्कर जी भी माफ कर दीजिएगा, दालक शर्मा जी आप भी माफ कर दीजिएगा, प्रेम मौर्य जी आप भी माफ कर दीजिएगा। फिलहाल आज की लास्ट डिमांड लूंगी मैं अपने रॉबिन हुड जी की यानी कि राजू सलमानी जी की। आइए एंजॉय करते इस ट्रैक को, और इसी के साथ आपकी अपनी आज आकांक्षा आप सभी से लेती इजाजत। कल आइएगा थोड़ा वक्त रहते ही, प्लीज कॉल मिलाइएगा, और फर्स्ट कॉल देन जानते ही आपका सॉन्ग डेफिनेटली प्ले होगा। एंजॉय करिए इस ट्रैक को और सुनते रहिए रेडियो गाना सिटी 9.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। मैं थी आपकी होस्ट एंड दोस्त आज आकांक्षा, शो चला था आपका फोनिंग फरमाइश कार्यक्रम कॉलर ट्यून गोंडा। बाय बाय, टेक केयर, लॉट्स ऑफ फन एंड हैव ग्रेट टाइम।

0: लू से बचाव जरूरी है, इसीलिए घर में ही सभी जरूरी उपाय करें।
1: खाना बनाते वक्त किचन की खिड़की एवं दरवाजे खुले रखें तथा दिन में खिड़कियों पर डार्क शेड के पर्दे लगाएं।
0: बिना प्यास लगे भी बार बार पानी पिएं तथा अधिक प्रोटीन युक्त खाने के सेवन से बचें।
1: अधिक व्यायाम न करें तथा जब गर्मी लगे ठंडे पानी से नहाएं।
0: यदि जरा भी तबीयत खराब लगे तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें।
1: सावधानी अपनाएंगे हीट वेव को हराएंगे।
0: उत्तर प्रदेश राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा जनहित में जारी।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, तुरालो रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
4: आप सभी सम्मानित पशुपालकों से अनुरोध है कि अपने सभी गोवंशीय एवं महिषवंशीय पशुओं को खुरपका, मुहपका रोग का टीकाकरण कराएं। कार्यकर्ताओं का आधार एवं OTP अवश्य प्रदान करें, जिससे टीकाकरण को ऑनलाइन दर्ज किया जा सके। आपके द्वार निःशुल्क टीकाकरण। याद रखें, टैग नहीं तो टीकाकरण नहीं। स्वस्थ पशुधन, खुशहाल किसान। टीकाकरण कराएं, पशुओं को बीमारी से बचाएं।
5: ज्ञान स्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन।

कमर की हो जाए कब तो प्यार दो प्यार दो और बेचैन दिल की हो।

0: वेलकम टू योर फेवरेट प्रोग्राम गोधूली, जहां ट्यूसडे को हम लेकर आते हैं विज्ञान शाला। होती है विज्ञान से संबंधित ढेर सारी बातें, और हर थर्सडे को होता है खेत खलिहान, यानी कि गोधूली स्पेशल खेत खलिहान, जहां हम करते हैं खेती किसानी की बातें, वो भी गो ग्रीन वाले मोड में। और हर संडे को होती है चटपटी चाची की चटपट ढेर सार मसालेदार बातें, चटपटी चाची लेकर आती हैं। और बाकी दिन हम एंजॉय करते हैं इंटरेस्टिंग इंफोटेनमेंट से भरपूर टॉक शोज। सो आपका बहुत बहुत स्वागत है गोधूली में, स्टे ट्यून्ड। हेलो, नमस्ते, आदाब, स्वागतम, सुस्वागतम, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम गोधूली में। दिस इज योर फेवरेट आरजे मोनिका। रोजाना की तरह आज भी हम किसी खास मेहमान से आपकी मुलाकात करवाने वाले हैं और ढेरों सारी जानकारियां हासिल करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले लेट मी टेल यू, टुडे वी हैव एज को होस्ट योर फेवरेट होस्ट एंड दोस्त आरजे अदनान। सर, आपका बहुत बहुत वेलकम है।
1: थैंक यू सो मच आरजे मोनिका।
0: नेक्स्ट, लेट मी टेल यू कि आज हमारे साथ कौन सी खास मेहमान जुड़ी हुई हैं, जिससे हम बहुत सारी ढेरों जानकारियां हासिल करने वाले हैं विद सम लिटिल बिट मोर ऑफ एंटरटेनमेंट। सो हम बताना चाहते हैं कि आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अंकिता दयाल, गायनोकोलॉजिस्ट फ्रॉम सिद्धि विनायक हॉस्पिटल नियर नवीन गल्ला मंडी, बहराइच रोड, गोंडा। मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे शो में। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ओवर हियर।
2: धन्यवाद
0: मैम। सबसे पहले तो हम जानना चाहेंगे आपके बारे में, और चाहूंगी कि आप अपना संक्षिप्त सा परिचय हमें दें कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई थी, आपकी अर्ली एजुकेशन के बारे में, और आपका बचपन कैसे बीता।
2: मैं डॉक्टर अंकिता दयाल, गायनेकोलॉजिस्ट, मैं सिद्धि विनायक हॉस्पिटल बहराइच रोड गोंडा से हूँ, और मेरे पति डॉक्टर अमित कुमार श्रीवास्तव, जो कि बाल रोग विशेषज्ञ हैं, हम दोनों का हॉस्पिटल सिद्धि विनायक हॉस्पिटल है। और मेरी आरंभिक पढ़ाई मेरी गोरखपुर से हुई है, मेरा बचपन गोरखपुर में ही बीता है। मैंने गोरखपुर में कार्मल गर्ल्स इंटर कॉलेज से अपनी 12th तक की पढ़ाई की है। उसके बाद से मैंने PMT की परीक्षा पास करके मैंने फिर मेडिकल में जाने का निर्णय लिया, और मेरी आरंभिक MBBS की पढ़ाई गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज कानपुर से हुई है। उसके बाद की मैंने PG की DGO की डिग्री मैंने किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज लखनऊ से की है।
0: जी, काफी शॉर्ट एंड क्रिस्प आपका बायो रहा है। मैं जानना चाहती हूँ कि आपने बताया आप गोरखपुर में रहीं, देन आप लखनऊ में भी रहीं, और फिर आप गोंडाई, तो ये तीन शहरों का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा।
2: तीनों ही शहरों का एक्सपीरियंस मेरा बहुत ही अच्छा रहा है। गोरखपुर में तो जैसा कि मेरा बचपन ही बीता है, तो जहाँ पर आपका बचपन बीतता है, जहाँ पर आपकी आरंभिक शिक्षा होती है, वहाँ पे आपके बाल्यपन के सारे दोस्त रहते हैं, आपके टीचर्स जो रहते हैं, उनका आपके पूरे लाइफ पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होता है। उनकी जो बातें होती हैं, छोटी छोटी बातें, जो हम उन समय नहीं समझ पाते हैं, लेकिन जब हम बड़े होते हैं तब उन चीज़ों को हमें उन चीज़ों की अहमियत पता चलती है, और उन चीज़ों को हम अपने लाइफ में बहुत और अच्छे तरीके से उनको एक्सेप्ट करते हैं। तो गोरखपुर में जो मेरा बचपन बीता, मेरे जो टीचर्स थे, उनकी सारी बातें जो मैंने अपने अंदर एक्सेप्ट की है और उनको आगे लेके मैं बढ़ी, उसका मेरे लाइफ पे बहुत ही अच्छा इम्पैक्ट पड़ा। वहाँ के इंस्पिरेशन को लेकर ही मैं, चूंकि बहुत ही अपने क्लास में, अपने स्कूल में काफ़ी अच्छी स्टूडेंट रही थी, तो मेरे टीचर्स भी मुझे काफ़ी इंस्पायर करते थे कि मैं कुछ अच्छा कर सकती हूँ, तो उनका मोटिवेशन लेके ही मुझे आगे बढ़ने की मुझे प्रेरणा मिली, और इसके लिए मैंने PMT की तैयारी की। और मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा BDS में हुआ था, सेकेंड अटेम्प्ट में मैंने MBBS की परीक्षा बहुत ही अच्छे नंबरों से पास की, और मुझे बड़ी खुशी है कि मैंने मुझे कानपुर जैसे मेडिकल कॉलेज में सेकेंड अटेम्प्ट में ही एडमिशन मिल गया मुझे। और सेकेंड मैंने जो लखनऊ से अपने डिग्री हासिल की है, तो लखनऊ तो वाकई आप जानते हैं नवाबों का शहर है, जैसा कहा जाता है, बिल्कुल है, बिल्कुल बहुत ही बढ़िया लगा मुझे। इनफैक्ट मैं कहीं भी घूम के आज भी आती हूँ तो मुझे हर जगह से बेहतर मुझे अपना लखनऊ लगता है। मैं कहीं भी आती हूँ, मैं इनफैक्ट दुबई से भी होके आई, तो मैंने यही कहा कि अपना लखनऊ भी यार कहीं दुबई से कम नहीं है। तो आप अपने देश की बात ही खैर कुछ और हुई होती है, लेकिन लखनऊ भी हम गर्व से कह सकते हैं कि हाँ, लखनऊ की भी जो परंपरा है, जो लखनऊ के जो शान शौकत है, और लखनऊ जो अपने कल्चर समेटे हुए है, वो आपको बहुत कम जगह पे देखने को मिलता है। और UP में मैं तो कहूंगी कि बेस्ट जगह में से एक है लखनऊ, और ऑब्वियसली इसीलिए वो राजधानी भी है हमारे स्टेट की। और तीसरा गोंडा में कहूंगी, क्योंकि गोंडा में, चूंकि देखिए जहां से भी आपकी रोजी रोटी चलती है उससे तो आपको प्यार हो ही जाता है। मैं चूंकि अब यहीं की निवासी हो गई हूँ, मैं पिछले 14 साल से तो गोंडा में हुई, तो गोंडा से मेरा विशेष लगाव है। और पहले मैं जब शुरुआत में आई थी तो मुझे गोंडा में थोड़ा एडजस्टमेंट में डिफिकल्टी होती थी, क्योंकि यहाँ की थोड़ी लैंग्वेज प्रॉब्लम होती थी, क्योंकि थोड़ी सी लैंग्वेज यहाँ की थोड़ी सी डिफरेंट है। लेकिन जब मैं गोंडा में सेटल हुई तो धीरे धीरे मुझे इस शहर को समझने में थोड़ा टाइम लगा। यहाँ के पेशेंट्स के साथ पहले मैं थोड़ा सा इरिटेट हो जाती थी कि पेशेंट यहाँ के समझते नहीं, फिर मुझे पता चला कि नहीं, थोड़ा सा यहाँ पे अवेयरनेस की काफी कमी है और साथ ही यहाँ के पेशेंट भोले भी बहुत है, तो इनको थोड़ा सा आपको इनके साथ पहले बॉन्डिंग बनाने की जरूरत है और फिर आप अपने प्रति विश्वास अगर इनके प्रति जगा लेते हैं तो आप इनके साथ काफी अच्छा बॉन्ड रिलेशनशिप आप स्थापित कर सकते हैं और फिर पेशेंट आपके आप पर विश्वास करेंगे और आपकी सारी बातों पर ध्यान देंगे।
1: बिल्कुल, तो बिल्कुल आपने सही कहा कि एक डॉक्टर का पेशेंट्स के साथ में बॉन्डिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। एक बार फिर हम आपको आपके बचपने की तरफ ले जाते हैं, आपकी फैमिली में आपने बॉन्डिंग की बात की पेशेंट्स के साथ, हम जानना चाहते हैं कि आपकी फैमिली में आपकी कैसी बॉन्डिंग थी और पढ़ाई में आप कैसी थी।
2: जी, मेरी फैमिली में मेरी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी थी, खास तौर से मेरे पिताजी के साथ मेरी बॉन्डिंग बहुत ही अच्छी थी। मेरे पिताजी मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं शुरू से ही। मैं पढ़ने में काफी स्टूडियस थी, मैं इंटेलिजेंट तो मैं खुद को बहुत नहीं मानती, लेकिन हाँ मैं लेबोरियस बहुत थी, मैं काफी मेहनत करती थी। मेरा पैशन था, मेरा शुरू से ही पैशन था कि मैं मेडिकल फील्ड में जाऊं और एक अच्छी डॉक्टर बनूं। तो हालांकि मेरी पढ़ाई को देखते हुए मेरे और भी सब्जेक्ट्स काफी अच्छे थे, मेरी हिस्ट्री, मेरी ज्योग्राफी और मेरे लिटरेचर्स काफी अच्छे थे, तो इन सब चीजों को देखते हुए मेरे पिताजी चाहते थे कि मैं सिविल सर्विसेज में जाऊं, लेकिन मेरा पैशन मेडिकल प्रोफेशन ही था, तो मेरे पिताजी ने कभी मुझ पर प्रेशर नहीं दिया कि मैं सिविल सर्विसेज की तैयारी ही करूं। मेरे पिताजी ने पूरे मेरे निर्णय को पूरा रिस्पेक्ट दिया और उन्होंने हर कदम पे मेरी, जहां तक हो सकता उन्होंने मेरी बहुत बहुत सहायता की, और आज मैं जो कुछ भी हूँ इनफैक्ट मैं अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ। और आज मेरे पिताजी नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनकी ब्लेसिंग्स मुझे लगता है हर समय मेरे साथ हैं और हमेशा रहेगी।
3: मैम, अभी आपने जिक्र किया कि आप बचपन से ही चाहती थी कि आप मेडिकल फील्ड में जाएं, तो क्या चीज है ऐसी जिसने आपको इंस्पायर किया कि आपको मेडिकल फील्ड ही परस्यू करनी है?
2: एक्चुअली मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, तो मैं देखती थी कि लोगों को कि कोई भी जब किसी भी घर में किसी की फैमिली में कोई बीमार होता है तो लोग बहुत परेशान हो जाते हैं कि आमतौर पे कि कैसे किसी चीज का खर्चा कैसे बर्डन करेंगे, कैसे कोई भी जो एक्सपेंसेस है किसी की बीमारी की, या कभी कभी कोई बहुत परेशान होते थे कि कोई डॉक्टर ट्रीट नहीं कर पा रहा है या किसी बीमारी से अगर वो जूझ रहे हैं तो ऐसा लगता था कि कोई ठीक नहीं कर पा रहा है और कुछ आराम नहीं मिल रहा। बहुत सारे लोगों से जब मैं मिलती थी तो मुझे बड़ा लगता था कि ऐसा कुछ काम करना चाहिए जिससे कि लोगों की जो कठिनाइयां हैं, जो उनकी सफरिंग्स हैं, जो उनकी फिजिकल जो भी उनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको ठीक कर सके। क्योंकि देखिए, पैसा तो सभी कमा लेते हैं, सभी प्रोफेशन में पैसा है, पर जो रिस्पेक्ट, जो आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन है जितना वो इस प्रोफेशन में है, वो आपको कहीं नहीं मिलेगा। देखिए, पैसा आप इंजीनियर बनके भी कमा सकते हैं, आप आईएएस बनके, पुलिस ऑफिसर, कुछ भी बनके कमा सकते हैं, लेकिन जो आप टीचर भी इनफैक्ट बनके बनाते हैं, वो भी बहुत अच्छा है, उनको भी उनके लिए काफी रिस्पेक्ट रहती है सबके मन में। लेकिन हाँ, एक डॉक्टर के लिए ये होता है कि डॉक्टर को लोग आजकल, मतलब सभी लोग कहते हैं कि भगवान का दूसरा रूप माना जाता है। इनफैक्ट जो कुछ भी होना होता है वो गॉड के ही हैंड में होता है, हम लोग केवल जरिया ही होते हैं, लेकिन फिर भी इतनी रिस्पेक्ट किसी और प्रोफेशन में नहीं दी जाती है। तो एक जो रिस्पेक्ट है, जो एक भगवान के बराबर जो दर्जा दिया जाता है, ये मुझे बहुत ज्यादा अट्रैक्ट किया इस प्रोफेशन में आने के।
3: ओके, तो क्या आपने पहले ही सोच रखा था कि आपको गायनेकोलॉजी फील्ड में जाना है, या फिर आपने MBBS के दौरान ये चीज डिसाइड की?
2: नहीं, गायनेकोलॉजी तो नहीं सोचा था, मतलब इनफैक्ट मुझे सर्जरी का बड़ा मन था। इनफैक्ट मुझे सर्जरी करनी, तो मुझे ऐसा लगता था कि जो डॉक्टर सर्जरी नहीं करते, इनफैक्ट बचपन में तो मुझे लगता था वो डॉक्टर्स नहीं होते हैं, वो इस तरह की कुछ मुझे फीलिंग आती थी। तो मुझे सर्जरी में अच्छा खासा इंटरेस्ट था, मेरी बायो भी काफी अच्छी थी, तो मेरा इंटरेस्ट मेनली चूंकि सर्जरी फील्ड में था। और फिर मैं जब बड़ी हुई तो चूंकि विमेन हेल्थ, और विमेन हेल्थ प्रॉब्लम ही जनरली हम लोग से जनरली पूछी जाती है, हम कहीं भी अगर MBBS भी करते रहते हैं तो जनरली सारी लेडीज जो है वो आपसे अपनी प्रॉब्लम्स डिस्कस करती हैं, तो कुछ कुछ इन सारी चीजों को डिस्कस करते करते मेरा अपने आप ऑटोमेटिक मेरा ध्यान जो है वो गायनी की तरफ खिंच गया। मेरा मोटो था सर्जरी करना, तो इसलिए मैंने गायनेकोलॉजी ली।
1: आपने सर्जरी की बात की, और सर्जरी में आपको पता होता है कि किस तरह से आपको करेज आपके अंदर होनी चाहिए,
2: जी, जी।
1: तो क्या आप उसके लिए रेडी थी कि भाई लोगों को ऑपरेशन करने पड़ेंगे इस तरह से?
2: हाँ, मुझे कभी फियर नहीं रहा, मुझे इस चीज का कभी ब्लड का फियर मुझे कभी ऐसा नहीं रहा। मैं इनफैक्ट जब 9th क्लास में भी जब प्रैक्टिकल करने जाती थी तो मैंने देखा था बहुत सारी लड़कियां मतलब डिसेक्शन करने में या करने में बहुत परेशान होती थी कि कैसे, थोड़ा सा ब्लड भी देख लिया तो एमबीबीएस के टाइम भी इनफैक्ट मैंने बहुत सारी अपने बैचमेट्स को देखा कि जरा सा ब्लड देख दिया फेंट हो गई, तो मेरे साथ कभी ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। मैं शुरू से, मुझे लगता है मैं मेंटली प्रिपेयर थी इन सब चीजों के लिए।
1: Wow, क्या बात है। और शायद कॉमन स्टेटमेंट को आपने तोड़ा, जहाँ कहा जाता है कि लड़कियाँ थोड़ा सा कमजोर होती हैं, मतलब थोड़ा सा हल्के दिल की होती हैं।
2: जी जी जी, ऐसा
1: क्या बात है। ये तो एक मिसाल की बात हुई। क्यों आरजे मोनिका?
3: Exactly, and a woman talking about women health is something more better. मैम, हम आपसे और भी ढेर सारी बात करने वाले हैं, लेकिन वक्त हो चला है एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक का, तो मिलते हैं इस सॉन्ग के उस पार। डियर लिसनर्स, स्टे ट्यून्ड ओनली ऑन रेडियो ज्ञानस 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन। बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल ऑल्टस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें ऑल्टस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522 27 11 827।
7: अब आप भी अपना सपना पूरा कीजिए डिजिटल मास कम्युनिकेशन के साथ जुड़कर। एडमिशंस ओपन। जानकारी के लिए कॉल करें 8840339584, 88404095 84। अब सपने होंगे साकार।

0: वेलकम बैक एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम गोधली में। दिस इज योर फेवरेट आरजे मोनिका, साथ ही हमारे को होस्ट आरजे अदनान है और आज हमारी स्पेशल गेस्ट हैं डॉक्टर अंकिता दयाल, गायनेकोलॉजिस्ट। मैम, हमने आपसे बहुत सारी बातें की, स्पेशली आपके अर्ली लाइफ के बारे में, आपकी एजुकेशन के बारे में। अब आते हैं आपके करियर पे। सो सबसे पहले तो ये जानना चाहेंगे कि आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई, पहली जॉब कैसी रही, क्या एक्सपीरियंस रहा, क्या नया सीखा आपने, या पहले दिन आपको डर लगा था, क्या एक्सपीरियंस था, प्लीज टेल।
1: मेरे करियर में काफ़ी सारे उतार चढ़ाव रहे हैं। मेरा स्ट्रगल काफ़ी रहा है शुरू से। इनफैक्ट आपको ये जानकर काफ़ी आश्चर्य होगा, मैंने अपनी पीजी जो है मैंने अपनी प्रेगनेंसी के बाद की है। इनफैक्ट तो प्रेगनेंसी के बाद आप समझ लीजिए पढ़ना और फिर उसके साथ अपने काम को कंटिन्यू करना काफ़ी मुश्किल होता है एक महिला चिकित्सक के लिए। काफ़ी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो शुरुआत में मैंने यहाँ पर रेलवे में भी जॉब की थी, मैंने 2 साल के लिए जॉब की थी। पर रेलवे में मैंने जॉब किया तो मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। जैसे मैंने आपको बताया मैं सर्जरी में काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मैं रेलवे में जॉब करती रहती थी। इन मील टाइम मैं मेरी जब वहाँ पर नाइट ड्यूटीज़ वगैरह लगती थी, चूँकि मैं जूनियर मोस्ट थी तो मेरी नाइट ड्यूटीज़ वगैरह भी काफ़ी लगती थी। तो मैंने वहाँ पे जब रेलवे में अपनी जॉब करनी शुरू की तो नाइट ड्यूटीज़ में मुझे लगा कि यहाँ पे मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो मैं मीनवाइल अपना प्रिपरेशन भी साथ में कंटिन्यू करती थी और फिर करते करते फिर एक दिन मेरा सिलेक्शन भी हो गया। इनफैक्ट तो जब मेरा सिलेक्शन हो गया मुझे DGO भी मिल गया, तो फिर मैंने रेलवे की जॉब क्विट कर दी अपनी। फिर उसके बाद वहाँ से मैंने DGO अपना कंटिन्यू किया। फिर DGO करके मैं फिर वापस गोंडा में आ गई, चूँकि मेरे हस्बैंड

0: देखिए, मैं इस प्रोफेशन में आई थी क्योंकि मुझे कुछ क्रिएटिव मुझे करना था, कुछ मुझे ऐसा करना था कि जिसमें मुझे सेटिस्फेक्शन मिले। रेलवे में एक्चुअली में मुझे लगता है कि पेशेंट ट्रीट करना, एक्चुअली में गलती उधर से भी नहीं है। एक्चुअली में जब देखिए, आप जब स्पेशलिस्ट होते हैं तो जनरली लोग स्पेशलिस्ट को दिखाना चाहते हैं, है ना। तो मैं एज ए MBBS वहाँ पे काम करती थी, तो मेरे पास इन जनरल पेशेंट ही आते थे। तो वो डेली बस मतलब एज नॉर्मल प्रॉब्लम्स, फीवर, कफ, फ्लू, दैट्स इट, बट या BP शुगर की जिसको मेडिसिन वगैरह लेना, तो ऐसे ही पेशेंट आते थे। तो उसको मुझे लग के थोड़ा सा मुझे लगा कि बड़ी मोनोटोनस सा मेरा चल रहा है, कुछ क्रिएटिव नहीं हो रहा है, कुछ मतलब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा है। तो इसीलिए मुझे लगा कि नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है जिसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो हालांकि मुझे वहां पे और कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन बस मुझे जॉब सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था, मुझे कुछ समथिंग कुछ नया करना था, इसलिए मैंने।
1: ओके, आपने गायनेकोलॉजिस्ट चूंकि आप हैं
0: जी,
1: तो आपने गायनी की तरफ जाना, सही समझा
0: जी।
1: लेकिन इसके साथ ही हम जानना चाहते कि ये गायनी के लिए क्या क्या करियर ऑप्शंस होते हैं, कहाँ कहाँ कैसे आप जॉब कर सकते हैं या किस तरह से खुद की आप क्लिन डाल सकते हैं।
0: एज अ गायनेकोलॉजिस्ट आप डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में वर्क कर सकते हैं एज अ गायनेकोलॉजिस्ट के पोस्ट पे। आप एज अ गायनेकोलॉजिस्ट आप अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं, गायनीज एंड ऑप्स के अल्ट्रासाउंड भी कर सकते हैं। आप चाहे तो मतलब किसी बड़ी सिटी में जाके आप कोई मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ आप एज कंसल्टेंट डॉक्टर हो सकते हैं। आप ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आप कर सकते हैं, और अपना क्लिनिक और अपना हॉस्पिटल भी डाल सकते हैं। वहाँ पे आप अपनी ओपीडीज कर सकते हैं, अपनी सर्जरीज, और एक अल्ट्रासाउंड सेंटर भी जो आप गायनी ऑप्स का करते हैं उसको भी आप।
1: जाहिर है कि आपने गायनेकोलॉजिस्ट बनना मंजूर किया
0: जी,
1: और साथ ही इसके लिए जम के पढ़ाई भी की होगी
0: जी।
1: थोड़ा सा अगर हम वापस जाते हैं तो एक हॉस्टल की लाइफ होती है
0: जी जी,
1: जिसके बारे में जिनको नहीं वो नसीब होती है तो वो उसके बारे में बहुत सारे अजम्पशंस होते हैं कि भाई हॉस्टल में तो कोई काम होता नहीं, सिर्फ धमाल होता है। तो हम जानना ही चाहेंगे कि कैसी रही थी आपकी लाइफ, किस तरह से आपका टाइम टेबल था पढ़ने का लेकर, और किस तरह से आप उस टाइम चीजों को या उस शहर को एक्सप्लोर कर रही थी।
0: जी हाँ, हॉस्टल में हम लोग रहते थे तो थोड़ा मेडिकल हॉस्टल जो होते हैं, मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल, थोड़ा सा डिफरेंस जरूर होता है क्योंकि मेडिकल कॉलेज की MBBS की पढ़ाई काफी टफ होती है। तो वहाँ पर पढ़ाई का काफी अच्छा माहौल भी रहता है, वहाँ पर आप दूसरे बच्चों को भी देख के काफी मोटिवेट होते हैं। लाइक आपको जब तक आप मेडिकल कॉलेज में नहीं जाते हैं, आपको लगता है कि आप बहुत अच्छे हैं, बहुत स्टूडेंट्स हैं, आपने बहुत लेबर किया, लेकिन जब आप वहाँ पे जाते हैं तो आपके ही कैटेगरी के बहुत सारे बच्चे वहाँ पे रहते हैं, तो उनको देख के काफी आप इंस्पायर होते हैं, आपको और भी इंस्पिरेशन मिलती है अच्छे से पढ़ाई करने की। मैंने वहाँ पर मैं जब अपने हॉस्टल में गई थी तो मैंने बहुत सारी लड़कियों से बहुत कुछ सीखा। लाइक मेरे रूम के सामने मेरी बैचमेट रहती थी, तो मैं उसको देख के काफी इन्फ्लुएंस्ड होती थी कि कैसे ये लड़की इतना एक्टिव रहती है, और उसकी मैंने रूटीन देखी तो काफी उसकी अच्छी रूटीन थी। मैं देखती थी कि वो बिल्कुल टाइम टेबल के अकॉर्डिंग चलती थी, टाइम से उठना, जैसे कहते हैं ना अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज, तो वो उसका सब कुछ जो था वो बहुत कुछ मतलब फिट बैठता था, सारे पैरामीटर्स जो थे उसके, हेल्थ की तरफ भी उसका ध्यान देना, और जैसे पढ़ाई भी उसने टाइम से की, फिर उसके बाद वो फोकस थोड़े स्पोर्ट्स पे भी फोकस करती थी, अदर एक्टिविटीज में भी उसका ध्यान रहता था। तो ये मुझे देख के बड़ा अच्छा लगता था कि वो सारी चीजों को बड़े अच्छे से मैनेज करती है, क्योंकि उसको जो टाइम का जो उसका मैनेजमेंट है बहुत अच्छा था। तो उससे मैंने, उस लड़की का नाम अपेक्षा है, मैं बोल भी दूंगी जी, मुझे अभी तक याद है, और उससे मुझे लगता है मैं काफी इन्फ्लुएंस थी, और मुझे लगता है कि उस चीज को मैंने अपनी लाइफ में उतारा भी है, उससे मैंने काफी कुछ सीखा है, और उस टाइम मैनेजमेंट को मैं अभी अपनी लाइफ में अप्लाई भी करती हूँ।
1: क्या बात है, तो उनसे आपको बड़ी अपेक्षाएं भी थी और वो अपेक्षाओं पे पूरी खरी उतरी। और ये बात एकदम सही है कि पीयर लर्निंग एक बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है, यानी जिस भी प्रोफेशन में अगर आप हैं तो उसी प्रोफेशन के लोग अगर सीनियर्स होते हैं या एक्सपीरियंस्ड होते हैं वो आपको बहुत हेल्प करते हैं। आपका कैसा टाइम टेबल रहा, मतलब लगभग अगर हम एक इन जनरल बात करें तो कितने घंटे आप देती थी पढ़ाई को लेकर के?
0: देखिए घंटे तो देखिए एक्चुअली मैं वहाँ पे हमारी क्लासेस चलती रहती थी, बीच बीच में जैसे हम लोग को 9 o'clock अपनी क्लासेस में पहुँचना होता था, देन उसके बाद हम लोग का डिसेक्शन वगैरह में जाना, डिसेक्शन हॉल में जाना है तो कुछ प्रैक्टिकल्स वगैरह भी होते थे, वहाँ जाना रहता था। फिर उसके बाद फर्स्ट ईयर तक तो हमारा ऐसे ही चलता था, फिर देन सेकेंड ईयर से जब हमारी हॉस्पिटल ड्यूटी भी लगती है तो हम लोग को इवनिंग में हॉस्पिटल में भी जाना पड़ता था, तो इस वजह से सेल्फ स्टडी का टाइम थोड़ा कम मिल पाता था, लेकिन उसी में हम लोग को मैनेज करना पड़ता था अपनी स्टडीज को भी। तो लेकिन ये है कि हाँ, उस समय सारे बच्चों को

0: देखते हुए हम लोग अपना कर लेते थे स्टडी, और थोड़ा सा सीनियर्स का भी गाइडेंस रहता था, सीनियर्स से पूछना पड़ता था कि कैसे स्टडीज करें, क्या किस चीज पे ज्यादा फोकस करें। और इसके अलावा चूंकि उस समय सभी काफी टेंडर एज होती है, तो हम लोग एंजॉय भी काफी कर लेते थे। इनफैक्ट जब वीकेंड्स में सैटरडे वगैरह रहता था, तो हम लोग जो मेरा मेडिकल कॉलेज था उसके सामने ही मोती झील है एंड ऑल दैट चौक था, तो कहीं भी हम लोग छोटी छोटी चीजें एंजॉय कर लेते थे कि आज वीकेंड है, आज कल कुछ भी नहीं है, हमारा संडे है, तो हम लोग अपने फ्रेंड सर्कल के साथ थोड़ा सा आउटिंग भी कर लेते थे और थोड़ी जो मार्केट एरिया थोड़ा सा एक्सप्लोर भी कर लेते थे। और साथ ही में वहाँ के जो एग्जामिनेशन जो रहते थे वो तो काफी टफ रहते थे, तो उसमें सभी फ्रेंड्स के साथ हम लोग जो कुछ भी हम लोग को जो डर है, जो कुछ भी एक दूसरे से जो शेयरिंग है, कुछ टॉपिक्स मैंने पढ़ लिया, कुछ दूसरे फ्रेंड्स ने पढ़ लिया, एक दूसरे से शेयर करना, तो ये सारी चीजें जो हैं, ये चीजें अभी बहुत याद आती हैं, क्योंकि वाकई में हम लोगों ने काफी मुश्किल से MBBS किया, और वो जो मुश्किलें जो आई हम लोग के MBBS के एग्जामिनेशन के दौरान, जो एक दूसरे का साथ दिया, वो अभी तक याद है।
1: मैम, चूंकि आपको आरजे अदनान आपके स्टूडेंट लाइफ में एक बार फिर से लेकर चले हैं, तो आई वुड लाइक टू जस्ट फॉरवर्ड दैट क्वेश्चन, और मैं चाहती हूँ कि आप बताएं कि आपकी क्या क्या हॉबीज और इंटरेस्ट रहे थे उस दौरान, और जो आप अभी तक फॉलो करती आई हैं।
0: जी, मेरी हॉबीज में मुझे डांसिंग काफी पसंद है, तो मैं काफी डांस एक्टिविटीज और एक्टिंग वगैरह में भी मैंने पार्टिसिपेट किया था काफी, वहाँ पे जो प्ले वगैरह होते थे उसमें पार्टिसिपेट करती थी। इनफैक्ट मुझे एंकरिंग करना भी बहुत पसंद था, मैंने एंकरिंग वगैरह भी की वहाँ पे, और बाकी मुझे खुद को फिट रखना बहुत अच्छा लगता है, और मुझे लगता है कि सभी को फिट रहना चाहिए, तो वो सारी चीज़ें जो मैं उस समय कैरी करती थी वो मैंने अभी भी अपना कंटिन्यू कर रखा है। मैं कोशिश करती हूँ कि वो सारी अपने इंटरेस्ट जो हैं वो अपने अंदर डेवलप किए रहूँ।
1: Wow, that's really great. एक सवाल जो और हमारे जहन में आ रहा है, और चूंकि आपने बताया आपने PMT क्लियर किया था,
0: जी,
1: तो उस दौरान ऑफ कोर्स CPMT और PMTs होते थे, मगर अभी इट इज नीट।
0: जी,
1: सो आपको क्या लगता है PMT और नीट को अगर हम कंपेयर करें,
0: जी,
1: तो टफनेस अगर देखी जाए, डिफिकल्टी लेवल अगर देखा जाए, तो किसका सबसे ज्यादा होगा, और आजकल के नीट एस्पायरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
0: देखिए, मेरे हिसाब से मुझे तो मेरा PMT बेटर लगता था मेरे अकॉर्डिंग, क्योंकि देखिए हम जब PMT की प्रिपरेशन करते थे तो हमारे पास कई सारे ऑप्शंस रहते थे, कई सारे एग्जाम्स रहते थे देने के लिए, लाइक मैंने UP PMT किया, देन आपके पास BHU के एग्जाम्स रहते थे, एम्स के एग्जाम्स रहते थे, ऑल इंडिया रहता था, तो हमारे पास AMU के एग्जाम्स थे, बहुत सारे और भी मिसेलेनियस एग्जाम्स रहते थे, तो हमारे पास ऑप्शंस बहुत ज्यादा रहता था। लाइक जैसे देखिए किसी को भी एग्जाम के टाइम हो सकता है कि कोई डिस्टर्बेंस हो गया, किसी का हेल्थ इशू कुछ हो गया, कुछ फैमिली मैटर हो गया, तो कोई एग्जाम हो सकता है कि कोई एग्जाम किसी कारणवश उतना अच्छा ना हो पाया हो जितने उसकी एक्सपेक्टेशन हो या जितना उसने लेबर किया हो, किसी कारणवश वो एग्जाम थोड़ा खराब हो गया हो, तो उस समय हमारे पास फिर भी ऑप्शंस रहते थे कि ओके UP PMT थोड़ा सा नहीं अच्छा गया तो ऑल इंडिया बेटर कर लेंगे, या चलो फिर ठीक है BHU में अच्छा कर लेंगे। लेकिन अब जो ये कंबाइंड एग्जामिनेशन होने से मुझे लगता है कि थोड़ा ये जो एस्पेक्ट है जो ये नैरो हो गया है, तो इसमें अगर वन एग्जाम एट अ टाइम, तो मुझे लगता है कि आपको एक बार में ही अपने गोल पे टारगेट करना है, अगर आप इसमें चूक गए तो फिर आप नेक्स्ट ईयर के लिए ही फिर कॉम्पिटेट कर पाएंगे, लेकिन हमारे पास ऐसे कई ऑप्शंस थे, और ऐसा होता भी था। मैंने इनफैक्ट देखा था, मैंने अपने फ्रेंड सर्कल में देखा है कि किसी का जैसे UP PMT में नहीं हुआ, ऑल इंडिया PMT में नहीं हुआ, लेकिन BHU में उसने किया, किसी का ऑल इंडिया में नहीं हुआ, उसका UP में हो गया, तो ऐसा मैंने देखा भी है। तो इसलिए मुझे लगता है कि सेवरल एग्जाम्स के ऑप्शंस मुझे लगता है ज्यादा बेटर थे। और नीट एस्पिरेंट्स के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि देखिए इसमें घबराने की कतई आवश्यकता नहीं है, कोई भी एग्जाम को देखिए कॉम्पीट करने के लिए सबसे ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग अकॉर्डिंग टू मी कंसिस्टेंसी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट।
1: एग्जैक्टली,
0: हाँ, देखिए होता क्या है ना कि आज मैंने मुझसे किसी ने पूछा, मैंने उसको गाइड किया, मैंने उसको बताया, तो दो चार दिन तो बहुत जोश रहता है पढ़ाई का, फिर उसके बाद तीसरे दिन अरे चलो बहुत पढ़ लिया, फिर उसके बाद वो ब्रेक हो जाता है, वो कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन कर पाते हैं, मुझे लगता है 70% लोग नहीं मेंटेन कर पाते, तो कंसिस्टेंसी इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात है कि आपको एग्जाम को समझना भी जरूरी, कोई भी एग्जाम को आपको बीट अगर करना है तो उस एग्जाम के पैटर्न को समझना बहुत जरूरी है कि वो इस एग्जाम का पैटर्न क्या है। तो और तीसरी चीज है टाइम मैनेजमेंट। ऑब्वियसली ऐसा लगता है कि अभी मेरे पास बहुत टाइम है, अगर आप देखिए तो लगेगा कि बहुत एक साल का टाइम है, लेकिन अगर आप उसको धीरे धीरे एनालाइज करेंगे तो उसमें 365 डेज होंगे, उसमें कुछ टाइम आपके अपने फैमिली मैटर्स के लिए, कुछ हेल्थ इश्यूज के लिए, कुछ कुछ टाइम उसमें से निकल जाएंगे, और आप अगर एक 24 घंटे को भी एनालाइज अगर आप करेंगे तो उसमें

0: तो उसमें बहुत सारी बीमारियां जो कि नॉर्मली प्रेगनेंसी के पहले नहीं होती हैं वो हो जाती हैं प्रेगनेंसी में, तो इसलिए भी उसको इन्वेस्टिगेट कराना, उनके इन्वेस्टिगेशन कराना बहुत आवश्यक होता है ताकि आगे किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन को फेस ना करना पड़े। तो इसके लिए भी आने में लोग हिचकते हैं। इसका कई कारण ये भी होता है कि कभी कभी महिलाएं बहुत शर्माती हैं, जब वो प्रेग्नेंट होती हैं तो वो इस बारे में बात करने में भी शर्माती हैं कि किसी बड़े को बताने में कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है, या वो अपनी प्रेगनेंसी को डिस्क्लोज ही काफी बाद में करती हैं, या कभी कभी वो अवेयर ही नहीं होती है, उनको पता ही नहीं होता है कि उनकी लास्ट मेंसेस कब आए थे, कभी कभी उनको इसका भी डेट की भी नॉलेज नहीं होती है, तो इस वजह से वो काफी लेट पहुंचते हैं डॉक्टर के पास।
1: जी, अक्सर हम देखते हैं कि अल्ट्रासाउंड का जो टेन्योर है वो काफी लोग उसमें कंफ्यूज होते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि प्रेगनेंसी से लेकर बिफोर जेस्टेशन पीरियड उस पूरे टेन्योर में लगभग कितनी दफा जो है आप अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, सेफ कितना होगा?
0: देखिए नॉर्मली जैसे गोंडा जैसे शहर में जहाँ मैं काम कर रही हूँ, तो देखिए बहुत ज्यादा एडवांस अल्ट्रासाउंड के लिए लोग जल्दी राजी नहीं होते, लेकिन हाँ फिर भी अगर मोटा मोटा मैं लूँ तो जनरली 9 मंथ्स में कम से कम 4 अल्ट्रासाउंड तो बहुत ही आवश्यक होते हैं, जिसमें से पहला अल्ट्रासाउंड जो होता है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में 6 to 7 weeks के अराउंड होना चाहिए। 6 to 7 weeks के अराउंड जो हम पहले ट्राइमेस्टर में जो अल्ट्रासाउंड करते हैं उसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है, क्योंकि देखिए जनरली 6 to 7 weeks में कार्डियक एक्टिविटी जो बच्चे के दिल की धड़कन जो है वो आ जाती है, तो इसको देखने के लिए कि बच्चा अलाइव है कि नहीं, एम्ब्रियो हमारा अलाइव है कि नहीं, जीवित है कि नहीं, उसको देखने के लिए इसको स्कैन कराया जाता है, और साथ ही में ये देखने के लिए कि एक सिंगल प्रेगनेंसी है कि ट्विंस प्रेगनेंसी है कि ट्रिपलेट प्रेगनेंसी है, तो इसको भी एश्योर करने के लिए ये अल्ट्रासाउंड कराया जाता है। और तीसरा ये होता है कि एक डेंजरस कॉम्प्लिकेशन होता है, डेंजरस सिचुएशन होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी, तो ये भी फर्स्ट ट्राइमेस्टर में देखने के लिए किया जाता है कि कहीं वो बच्चा यूट्रस में है या यूट्रस के बाहर किसी अन्य स्थान पे, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब वगैरह में। अगर ये कंडीशन होती है तो ये लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन होती है, इसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है, तो इन सारी चीजों को देखने के लिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर का अल्ट्रासाउंड बहुत जरूरी है। देन नेक्स्ट अल्ट्रासाउंड जो हम लोग सेकेंड ट्राइमेस्टर में करते हैं दैट इज एनोमली स्कैन, जो कि 18 से 20 हफ्ते के बीच में कराया जाता है, क्योंकि 18 से 20 हफ्ते के बीच में कराने का इसके कुछ कारण भी हैं। एक तो ये कि 18 से 20 हफ्ते के बीच में जो फीटस होता है, जो बेबी होता है, उसके सभी ऑर्गन्स लगभग पूरी तरीके से डेवलप हो चुके होते हैं, तो आप एक स्कैन करके आप एक मोटा मोटा पूरा आइडिया ले सकते हैं कि सारे उसके स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सब कुछ वेल डेवलप्ड है कि नहीं, बच्चे की ग्रोथ प्रॉपर है कि नहीं। और दूसरा एक्ट है जो एमटीपी एक्ट जो है, जिसके अंडर हम लोग काम करते हैं, एमटीपी एक्ट दैट इज मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग अगर कोई भी जैसी ऐसी एनोमली होती है, कोई भी ऐसी जमजात विकृति होती है बच्चे में जिसके कारण कि बच्चे को अबॉर्ट कराना पड़े, जिसके कारण वो आगे सर्वाइव नहीं कर पाएगा, तो उसके लिए भी हमारे लॉ के अकॉर्डिंग 20 वीक्स का ही टाइम परमिट किया गया है, तो इसलिए भी स्कैन जो है वो 18 to 20 weeks का उसका जो दायरा दिया गया है इसको दिया गया है। और देन नेक्स्ट स्कैन जो हम लोग थर्ड ट्राइमेस्टर में कराते हैं वो हम प्लेसेंटिक लोकलाइजेशन के लिए कराते हैं, और दूसरा कि फीटस की पोजीशन, बच्चे की पोजीशन क्या है यूट्रस में, वो नॉर्मल डिलीवरी को सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है। देन और भी फैक्टर्स होते हैं जैसे कि डॉपलर अल्ट्रासाउंड जो कि हम 33-34 weeks के अराउंड कराते हैं, ये जानने के लिए कि बच्चे में ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर है कि नहीं, ब्लड फ्लो प्रॉपर है कि नहीं, और बाकी सारे पैरामीटर्स लाइकर वगैरह सब कुछ सफिशियंट है कि नहीं बेबी के ग्रोथ के लिए, तो वो कराते हैं। अगर इन सब चीजों में कोई भी दिक्कत आती है तो और भी फ्रिक्वेंट हम अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, किसी की अगर जरूरत होती है तो हम वीकली भी करा सकते हैं।
1: ओके, सो मैम अभी आपने बताया कि जैसे प्रेगनेंसी के दौरान काफी सारे डिजीज होने के चांसेस रहते हैं क्योंकि हमारी जो इम्यूनिटी होती है वो कमजोर हो जाती है बेसिकली, सो कई बार ऐसा होता है कि फीमेल्स जो एनेमिक हो जाती हैं इस दौरान, तो हम इस पर भी बात करने वाले हैं लेकिन एक शॉर्ट म्यूजिकल ब्रेक के बाद। डियर लिसनर्स बने रहे हमारे साथ इन योर फेवरेट प्रोग्राम गौधली, स्टे ट्यून्ड।
2: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स ही फ्यूचर थोड़े बनता है।
3: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
2: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
3: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है, वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है, और तो और वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती। होती है जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
2: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
3: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल।

0: नियर न्यू सब्जी मंडी तुरालो रोड गोंडा। आज ही एडमिशन ले क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।
1: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
2: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट। आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशन ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज। एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
3: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरन नाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450-944-999।
4: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
5: आइए मंडल के एकमात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ, साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838-288-386।
4: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
6: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।
7: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने प्रोग्राम गोधली में। दिस इज योर फेवरेट आरजे मोनिका। साथ में हमारे को-होस्ट हैं आरजे अदनान एंड हमारी स्पेशल गेस्ट डॉक्टर अंकिता दयाल, गायनेकोलॉजिस्ट। मैम, हम बहुत सारी बातें कर रहे थे और चूंकि जाते जाते एक सवाल छुड़ के गई थी कि अक्सर होता है कि प्रेगनेंसी के दौरान या फिर वैसे भी नॉर्मल कोर्स ऑफ लाइफ में अगर देखा जाए तो भी फीमेल्स जो होता है अक्सर एनेमिक होती हैं, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगी?
8: देखिए, फीमेल्स एनेमिक होती हैं, इसके बहुत सारे कारण होते हैं। पहली बात तो फीमेल्स जो होती हैं वो अपने हेल्थ पे ज़्यादा ध्यान नहीं देती हैं, पहले अपनी फैमिली को ज़्यादा प्रायोरिटी देती हैं और उसके साथ तो वो अपने वर्क को पहले पूरा सेटल डाउन कर लेना चाहती हैं, देन अपने ऊपर ध्यान देती हैं। और साथ ही में थोड़ी उनकी जो फूड हैबिट्स जो होती हैं वो भी थोड़ा, मुझे लगता है कि उतनी नॉलेज भी नहीं होती है, जिसके कारण वो इसको इग्नोर करती हैं, क्योंकि उनको इतना डाइट का नॉलेज भी नहीं होता है कि क्या चीज़ उनको इनटेक करना चाहिए जो कि उनके हेल्थ के लिए अच्छा है, और क्या किस प्रकार से खाना भी बनाना चाहिए जिससे कि उसके न्यूट्रिशन जो है वो ख़त्म ना हो या कम ना हो। तो मुझे लगता है कि कुछ नॉलेज की भी लैगिंग है जिसकी वजह से फीमेल्स जो हैं इस बारे में ध्यान नहीं दे पाती हैं। और तीसरी बात ये होती है कि फीमेल के ऊपर थोड़ा सा वर्क लोड भी ज़्यादा होता है, इनफैक्ट क्योंकि बच्चों का प्रेशर और फिर उसके बाद अपने हस्बैंड का और देन और अदर फैमिली मेंबर्स का भी, थोड़ा उनका भी ध्यान रखना होता है, जिसकी वजह से वो, और एक टाइमिंग जो होती है उनके खाने की टाइमिंग, जनरली हमारे यहाँ लेडीज का होता है कि वो सबको खाना खिला के ही देन वो खाना खाती हैं, तो कभी कभी होता है कि लाइक ठीक है दाल नहीं बचा तो ठीक है चावल सब्जी खा लेंगे, तो वो अपने न्यूट्रिशन पे प्रॉपर ध्यान नहीं देती। सबको दूध देंगी लेकिन ये नहीं होता है कि हाँ एक ग्लास खुद को भी पीना चाहिए जिससे उनको कैल्शियम मिलता है, तो थोड़ा सा इग्नोरेंस है क्योंकि आई थिंक जो मदर होती हैं वो अपने को प्रायोरिटी कम देती हैं और अपनी फैमिली और अपने किड्स पे वो ज्यादा प्रायोरिटी देती हैं, तो इस वजह से उनके में न्यूट्रिशन की थोड़ी कमी रह जाती
7: है। जी, और मुझे जहाँ तक लगता है देयर आर सम थिंग्स दैट अफेक्ट आवर लाइफस्टाइल आल्सो, और इस लाइफस्टाइल अफेक्टेड की वजह से जो है हमारी कहीं ना कहीं जो है ओवरऑल हेल्थ पे अफेक्ट होता है। और आजकल हम काफी सारी लाइफस्टाइल डिजीजेस देख रहे हैं, स्पेशली अगर बात की जाए फीमेल्स में, जिसमें से एक है इररेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल, तो आप उसके बारे में क्या कहना चाहेंगी, क्योंकि आजकल हम ये अर्ली टीनेजर्स में ज्यादा देख रहे हैं।
8: जी, ये टीनेजर्स में एक्चुअली में अब जो हो गया, अब थोड़ा सा फैशन से चल गया है कि घर का खाना किसी को नहीं खाना है। तो पहले क्या होता था कि हम लोग जब छोटे थे तो हम लोग के यहाँ ऐसा होता था कि हाँ हम लोग घर से अपना ब्रेकफास्ट करके जाते थे, देन अपना टिफिन कैरी करके जाते थे, बट आजकल एक्चुअली बच्चे जो होते हैं सबके स्कूल में कैंटीन खुला हुआ है, वहाँ पे पिज्जा मिल रहा है, देन बर्गर मिल रहा है, देन आपके पैटीज एंड पेस्ट्रीज मिल रहे हैं, तो बच्चों का न्यूट्रिशन कहीं ना कहीं खो गया इन सब के बीच में। तो और इन सब चीजों को फैंसी भी माना जाता है इनफैक्ट, अगर
9: exactly.
8: आप तो ये अगर आप अपने फ्रेंड सर्कल के साथ रह रहे हैं तो कोई बर्थडे ट्रीट है तो कभी लाइक बहुत सारे अब डेज सेलिब्रेट लोग करते हैं, फ्रेंडशिप डे है, देन दिवाली आपको सेलिब्रेट करना है, तो कुछ भी सेलिब्रेशन का मतलब है कि आपको बाहर जाके खाना है। बाहर जाके खाने का मतलब है न्यूट्रिशन की कोई वैल्यू नहीं है। तो पहले ऐसा नहीं होता था, पहले हम लोग घर का ही खाना प्रेफर करते थे। मुझे तो याद ही नहीं है कि मैंने बचपन में, मेरे मम्मी ने, मुझे लगता है कि मैंने टिकिया वगैरह जो कुछ भी है, इडली जो कुछ भी है, सब कुछ मैंने घर का ही खाया। मेरी मम्मी घर पे ही बनाती थी क्योंकि मेरी मम्मी का भी मानना था कि जो खाना घर में बनता है ना वो काफी बेहतर होता है बाहर के खानों से। क्योंकि बाहर देखिए जब आप इस चीज को कमर्शलाइज करते हैं ना तो उनको ये फर्क नहीं पड़ता कि आपको कितने न्यूट्रिएंट्स मिल रहे हैं, ठीक है, तो उनको केवल अपना बिजनेस करना है। लेकिन आप जब घर में आपकी मदर वो कुक करती हैं तो उनके मन में जरूर ये रहता है कि इसमें क्या न्यूट्रिशन जा रहा है हमारे बच्चों पर और क्या खाना हम दे रहे हैं। लेकिन आजकल के टीनेज जो हैं वो बाहर के जंक फूड्स और इन सब चीजों के प्रति ज्यादा आकर्षित हो गए, जिससे कि उनको न्यूट्रिशन की कमी भी हो रही है। और नेक्स्ट है उनका सिडेंट्री लाइफस्टाइल, क्योंकि आजकल आप देखिए सारे बच्चे जो हो गए हैं वो सोशल मीडिया पे बिजी हैं, देन मोबाइल, कंप्यूटर्स एंड वीडियो गेम्स, इन सब चीजों में। पहले हम लोग के जमाने में क्या होता था कि हम लोग स्कूल से आते थे तो बैडमिंटन खेलने जा रहे हैं या फिर कुछ सब इंडोर भी एक्टिविटीज की तो कैरम खेल रहे हैं, जिसका कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं होता था। लेकिन आजकल के बच्चे जो है वो स्कूल से आए, मोबाइल, खाना भी खाना है तो मोबाइल लेके खाना खाना है, तो ये जो इनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जो इनकी फिजिकल एक्टिविटी है वो काफी शॉर्टकट हो गई है, तो इसके वजह से उनमें ओबेसिटी का खतरा बढ़ गया है। ओबेसिटी की वजह से बहुत सारे हार्मोनल इम्बैलेंस होने लगे हैं। इस हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से बहुत सारी मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटीज भी टीनेज गर्ल्स में होने लगी हैं।
9: जी, चूंकि हम मेंस्ट्रुअल इररेगुलरिटीज की बात कर रहे हैं, यहाँ पर एक चीज और निकल के आती है, दैट इज मेनोपॉज। तो जो फीमेल्स 50 प्लस हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे, हाउ टू टेक केयर ऑफ देयर हेल्थ स्पेशली इन सिचुएशन ऑफ मेनोपॉज।
8: मेनोपॉज देखिए जिस प्रकार से मेनार्की को सेटल होने में 1-2 साल का टाइम लगता है, उसी प्रकार से मेनोपॉज को भी सेटल होने में 1-2 साल का आपको सेटल होने में टाइम लगता है। क्योंकि ये दोनों ही स्टेज जो है, मेनार्की मतलब जो फर्स्ट पीरियड आना और देन मेनोपॉज जब पीरियड्स का बंद हो जाना, तो इन दोनों ही स्टेजेस में हार्मोनल इम्बैलेंस, मतलब हार्मोन्स जो होते हैं वो इम्बैलेंस तो नहीं कहना चाहिए, हार्मोन्स जो होते हैं वो वेरी करते रहते हैं। तो इसका इफेक्ट आपके मूड्स पे भी पड़ता है, आपकी स्ट्रेंथ पे भी पड़ता है, देन आपकी साइकिल पे भी पड़ता है। तो इन सब चीजों को आपको अगर अच्छे से इसको कैरी करना है तो इसके लिए आपको जरूरी है कि आप थोड़े से अपना फिजिकल एक्टिविटी करें, थोड़ा मेडिटेशन करें और अपनी डाइट पे स्पेशली ध्यान रखें। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स खाएं, फ्रूट्स एंड सैलड्स ज्यादा से ज्यादा खाएं और मिल्क का इनटेक करें, और साथ ही में नट्स होते हैं जो काफी, जिसमें एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन्स, मिनरल्स होते हैं, वो सब सारी चीजें लें, तो आपका जो मेनोपॉज का जो जो इसके जो सिम्टम्स हैं वो काफी हद तक कम हो जाए।
9: जी, अक्सर हम देखते हैं कि एक डॉक्टर और पेशेंट के बीच में एक अच्छी सी बॉन्डिंग होनी चाहिए, सो दैट द पेशेंट कैन ओपन अप और वो अच्छे से खुलकर बात कर सके, बता सके कि उनको असल में प्रॉब्लम क्या है। क्योंकि हम बचपन से सुनते आ रहे हैं कि डॉक्टर और वकील से कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए, तो हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप कैसे ये डॉक्टर और पेशेंट की बॉन्डिंग को मेंटेन रखती हैं।
8: हाँ देखिए, सबसे पहले देखिए मेरे हिसाब से देखिए इलाज तो हर डॉक्टर कर लेता है, हर डॉक्टर सभी ने पढ़ाई की है, सबको इलाज कर लेता है। लेकिन देखिए एक होता है पेशेंट को रीअश्योर करना, सबसे पहले होती है। देखिए पेशेंट को कोई भी दवा तभी फायदा करेगी जब उसको आप पर विश्वास हो, अगर उसको आप पर विश्वास नहीं है तो वो दवा उसको उतनी फायदा नहीं करेगी। तो देखिए उस विश्वास को आपको अगर बढ़ावा देना है तो उस विश्वास के लिए आपको पेशेंट के साथ बॉन्डिंग होना बहुत जरूरी है। अगर आप कोई भी पेशेंट आता है, आपने बस उसकी सिंपल क्या उसकी तकलीफ है, बस उसकी दवा लिख दी, बस जाओ, नहीं ऐसा नहीं करना होता है। अगर आपको पेशेंट से उससे पूरी बातें डिस्क्लोज करानी होती है, पूरी उसकी क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि कई बार मैंने देखा है बहुत सारी लेडीज आती हैं तो कहेंगी कि मुझे नींद नहीं आती है। तो नींद नहीं आती है तो इसका ये नहीं कि बस नींद नहीं आती है तो मैंने उसको बस नींद की दवा लिख दी और देन मैंने कुछ एंटी डिप्रेसेंट लिख दिया, नहीं, उसका क्या कॉज है, किस वजह से उसको नींद नहीं आती है, या उसको चिड़चिड़ापन रहता है, वीकनेस लगती है तो क्या कारण है, हेडेक रहता है तो क्या वजह है जिसकी वजह से उसको हेडेक रहता है। तो वो उससे जब आप अपना रैपो जब एस्टैब्लिश करेंगी तभी वो आपके साथ ओपन अप होगी। तो बहुत बार ऐसा होता है, मैं जब उनसे डिस्कस करती हूँ तो पता चलता है कि कुछ उनके फैमिली मैटर्स है, किसी के हस्बैंड जो है वो ड्रिंक करते हैं या उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं है, तो ये सारी बातें बात करने पे पता चलती है। तो फिर उससे उनकी काउंसलिंग करना भी बेहतर हो जाता है कि आप उनको रीअश्योर कर सकती हैं कि नहीं आपको इस बारे में डिस्कस करना चाहिए, और फिर आप उनके फैमिली मेंबर्स को भी बुलाकर उनके प्रॉब्लम्स को आप उनसे साझा कर सकते हैं और उनकी प्रॉब्लम्स को आप सॉल्व कर सकते
9: हैं। जी, ये तो बहुत ही अच्छी तरीके से आपने समझा। एक चीज जो हम जानना चाहते हैं कि हम आजकल रेगुलर चेकअप्स पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं, हम एक अच्छी हेल्थ के लिए प्रेफर करते हैं कि टाइम टू टाइम एक अच्छे टाइम इंटरवल पर हम रेगुलर चेकअप्स करवाते रहें, और जब बात प्रेगनेंसी की आती है या फिर किसी ऐसे इश्यू की आती है तो अक्सर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि रेगुलर चेकअप्स कितने सही हैं और रेगुलर चेकअप्स कब कब कराने चाहिए। स्पेशली अगर हम टेस्ट्स की बात करें तो मैं चाहूंगी कि आप इसके बारे में बताएं कि प्रेगनेंसी के दौरान कौन कौन से टेस्ट करना जरूरी होता है और रेगुलर चेकअप्स कितने जरूरी हैं।
8: देखिए, प्रेगनेंसी में देखिए केवल अपना ही ध्यान नहीं रखना होता, आपके अंदर जो शिशु जो पनप रहा है उसका भी ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो इसके लिए हम लोग को कुछ टेस्ट कराने बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, इनको प्रीनेटल टेस्ट कहते हैं। तो ये टेस्ट जैसे ही फर्स्ट विजिट पे लेडी आती है तो कुछ ऐसे रेगुलर टेस्ट होते हैं जो आपको कराने अति आवश्यक होते हैं, लाइक हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन का टेस्ट कराना बहुत जरूरी होता है क्योंकि एनीमिया बहुत ज्यादा कॉमन होता है प्रेगनेंसी में। तो अगर हम शुरू से ही इस पर वर्क करेंगे, शुरू से ही देखेंगे कि उसका हीमोग्लोबिन लेवल क्या है, तो उसको हम अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। और नेक्स्ट होता है ब्लड ग्रुप, जैसे ब्लड ग्रुप में पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है या आरएच फैक्टर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अगर नेगेटिव होती है मदर तो फिर उसके लिए अलग से फिर टेस्ट कराना हो तो उसको डिलीवरी के बाद बच्चे का क्या ब्लड ग्रुप है, देन उसके बाद कुछ इंजेक्शंस वगैरह लगते हैं जिसके जो एंटीबॉडीज वगैरह जो उसके बॉडीज में उसके खिलाफ ना रहे। तो ये एक हो गया टेस्ट। और कुछ वायरल मार्कर्स हमें कराने होते हैं, जैसे एचआईवी का है, हेपेटाइटिस बी है, एससीवी है, इनके भी टेस्ट कराने जरूरी होते हैं क्योंकि अगर एचआईवी मदर है तो वो अपने बच्चे को भी एचआईवी के वायरस से प्रमोट कर सकती है, एचआईवी के वायरस दे सकती है। तो इसके लिए इसकी भी स्क्रीनिंग करना बहुत जरूरी है। देन आपका शुगर की टेस्टिंग होती है, शुगर बहुत सारी बीमारियां देखिए ऐसी होती हैं जो कि प्रेगनेंसी के पहले नहीं होती हैं लेकिन वो गर्भावस्था के दौरान वो बीमारियां हो जाती हैं प्रेगनेंसी में, जैसे कि बीपी ब्लड प्रेशर की बीमारी जो है वो प्रेगनेंसी के पहले नहीं थी लेकिन प्रेगनेंट कंडीशन में वो बीपी की प्रॉब्लम हो गई, और शुगर नहीं था प्रेगनेंसी के पहले लेकिन शुगर प्रेगनेंसी में हो जाता है। तो इसको गेस्टेशनल हाइपरटेंशन या गेस्टेशनल डायबिटीज मेलाइटिस भी कहते हैं। तो इसको भी स्क्रीन करना बहुत जरूरी होता है क्योंकि अगर हम इसको स्क्रीन नहीं करेंगे और ये अनट्रीटेड रह जाएगा तो अगर ब्लड प्रेशर प्रेगनेंसी में लगातार बहुत अधिक रहेगा तो इसके कारण प्री एक्लेम्शिया एंड देन वो एक्लेम्शिया में कन्वर्ट हो सकता है। प्री एक्लेम्शिया मतलब लगातार बीपी का बढ़े रहना, और इस बीपी के लगातार बढ़े रहने से पेशेंट को झटके भी आ सकते हैं, ये काफी भयानक कंडीशन होती है जिसमें कभी कभी पेशेंट की डेथ भी हो जाती है, इनफैक्ट बच्चे उसके अंदर के शिशु की भी डेथ हो जाती है, और ये बहुत ही गंभीर समस्या है और इसको हम रोक सकते हैं अगर हम इसको प्रॉपर ब्लड प्रेशर चेकिंग कराते रहें इसका हर विजिट पे, तो इसको रोका भी जा सकता है एंटी हाइपरटेंसिव ट्रीटमेंट देकर। और इसी तरीके से शुगर का होता है, अगर हम शुगर की टेस्टिंग करते हैं एक नियमित स्तर से, अगर शुगर ज्यादा होता है तो उसको गेस्टेशनल डायबिटीज कहते हैं, तो उसको हम फर्स्ट ऑफ ऑल डाइट से देखकर मॉडिफाई करते हैं। अगर वो डाइट से नहीं मॉडिफाई होता है तो देन हम मेडिसिन पे जाते हैं। और इसके अलावा यूरिन का टेस्ट करते हैं, यूरिन के टेस्ट में आप प्रोटीन की मात्रा को देखते हैं, शुगर की मात्रा को देखते हैं। अगर प्रोटीन यूरिन में आ रहा है दैट मींस उसको प्रीक्लेम्शिया एक्लेम्शिया होने के चांसेस हैं, शुगर अगर आ रहा है तो दैट मींस उसको शुगर की बीमारी हो रही है। और इसी साथ ही यूरिन में कुछ इन्फेक्शंस का भी हम टेस्टिंग कर लेते हैं, अगर यूरिन में कोई इन्फेक्शन है तो उसको ट्रीट करना बहुत जरूरी है, अगर वो अनट्रीटेड रह जाता है तो वो आगे चल के अबॉर्शन भी कॉज कर सकता है। और इसके अलावा थायराइड बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि थायराइड जो हार्मोन है वो ओवरऑल बेबी के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, अगर ये अनट्रीटेड रहता है अनकंट्रोल्ड रहता है तो बेबी मेंटली रिटार्डेड भी हो सकता है, और साथ ही में अर्ली स्टेजेस में मिसकैरेज भी हो सकता है, तो इसको भी स्क्रीन करना बहुत ज्यादा जरूरी है।
9: ओके, सो मैम जाते जाते कुछ आखिरी सवाल आपसे करना चाहती हूँ, और जिसमें से पहला आखिरी सवाल कुछ यूं है कि महिलाओं के लिए क्या एक ऐसी हेल्थ टिप है जो आप देना चाहेंगी बतौर गायनेकोलॉजिस्ट।
8: देखिए, महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि सबका ध्यान रखने के साथ साथ आपको खुद का भी ध्यान रखने की बहुत जरूरी है। अगर आप एक हेल्दी मदर अगर फैमिली में रहती है तो वो हेल्दी पूरी फैमिली हेल्दी रहेगी, क्योंकि आप अगर खुद अपने हेल्थ पे फोकस करेंगी तो आपके हेल्थ को आपके हेल्थ की फिटनेस के प्रति जागरूकता देखकर आपके बच्चे भी प्रमोट होंगे, इंस्पायर होंगे, हेल्थ के प्रति अवेयरनेस उनके में भी आएगा। तो मेरे हिसाब से देखिए ज्यादा कुछ बहुत करने की जरूरत नहीं है, ये इतना डिफिकल्ट भी नहीं है जितना सब लोग डिफिकल्ट समझते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि आप 4 घंटे जिम में जाइए, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। आप नॉर्मली सुबह उठते हैं, आप सुबह नॉर्मली 15 से 20 मिनट मॉर्निंग वॉक कर सकती हैं, थोड़ा सा मेडिटेशन कर सकती हैं 5-10 मिनट के लिए, और थोड़ा सा योगा वगैरह जो आप लाइट जो कुछ भी आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है वो कर सकती हैं। देन कुछ चीजें होती हैं जो आप अपने नॉर्मल रूटीन में आप उसको ला कर अपने लाइफ स्टाइल को काफी मॉडिफाई कर सकती हैं, लाइक सुबह उठा आपने मॉर्निंग वॉक कर ली, देन थोड़ा सा गर्म पानी पी लिया, देन थोड़े नट्स खा लिए आपने, फिर मिड मील के बीच में आपने थोड़े फ्रूट्स खा लिए, सैलड्स आप खाना खा रही हैं थोड़े से सैलड्स भी साथ में ले लीजिए, देन रात में सबको मिल्क देती हैं आप खुद भी एक ग्लास मिल्क ले लीजिए। तो थोड़ा सा देखिए थोड़ी थोड़ी छोटी छोटी सी बातें हैं, लेकिन अगर आप उसको ध्यान देंगी तो आप भी काफी हेल्दी रह सकते हैं। और अपना रेगुलर चेकअप कराते रहिए, इनफैक्ट लेडीज के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि किसी भी प्रॉब्लम किसी भी छोटी से छोटी भी प्रॉब्लम को इग्नोर ना करें। अगर बराबर बैकएक रहता है या फिर कोई मेंस्ट्रुअल एबनॉर्मलिटीज रहती हैं और या फिर किसी प्रकार का वेजाइनल डिस्चार्ज है तो जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। इसके लिए बिल्कुल भी उनको शर्माने की या झिझकने की कोई आवश्यकता नहीं है। हर चीज देखिए अब लेटेस्ट टेक्निक है, लेटेस्ट डायग्नोस्टिक टेस्ट आ गए हैं जिसके कारण बहुत ही अर्ली स्टेज में सारी बीमारियों को हम लोग इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो आप जितनी अर्ली अपने डॉक्टर के पास जाएंगे ना उसका आउटकम उतना ही बढ़िया होता है। तो बेटर है कि आप अपने किसी भी छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स को इग्नोर ना करें और उसको जाके अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें
9: जी। और आखिरी प्रश्न ये है कि रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 FM देवीपाटन मंडल का पहला FM स्टेशन है, तो आप क्या उम्मीद करती हैं कि आने वाले दिनों में ये शहर के लिए और शहर वासियों के लिए क्या चेंजेस ला रहा होगा, कि हेल्दी चेंजेस ला रहा होगा?
8: ज्ञानस्थली वाकई में बहुत ही अच्छा पहल है एक गोंडा के लिए, मैं तो कहूँगी वरदान है इनफैक्ट गोंडा जैसे डिस्ट्रिक्ट के लिए, क्योंकि यहाँ पर अवेयरनेस बहुत कम है लोगों को। तो ये आपका जो ये इस शो के जरिए जो आप हर फील्ड में जो अवेयरनेस फैला रही हैं लोगों के बीच में, ये बहुत ही अच्छी बात है और मैं उम्मीद करती हूँ कि और भी अच्छा होगा और इससे लोगों को बहुत सारी ज्ञान की बातें पता चलेंगी, लोगों में अवेयरनेस आएंगी अलग अलग फील्ड के बारे में। और आप जैसे होस्ट आप जैसे लोगों के साथ ये प्रोग्राम को करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मैं उम्मीद करती हूँ कि आगे चल के ये प्रोग्राम और भी बहुत ही अच्छा तरक्की करेगा।
10: थैंक यू सो मच मैम, और हमें हमेशा आपकी ब्लेसिंग्स चाहिए होगी, क्यों आरजे मोनिका?
9: एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच मैम फॉर कमिंग ओवर हियर, थैंक यू सो मच। सो डियर लिसनर्स स्टे ट्यून्ड, इजाजत दीजिए अपनी फेवरेट आरजे मोनिका को, मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट प्रोग्राम गोधुली में। सो डियर लिसनर्स आपके आरजे मोनिका आपसे इजाजत चाहती है, टेक केयर, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड।
11: मुझे मिल गया है तुम्हारी घबराहट का समाधान।
12: मतलब
11: मानसिक समस्याएं होंगी दूर, जैसे नींद ना आना, घबराहट, काम में मन ना लगना, आत्महत्या के विचार आना, अत्यधिक गुस्सा, अत्यधिक साफ सफाई, भूत प्रेत, देवी देवता आदि की छाया का भ्रम होना, याददाश्त की कमी, घरेलू कलह, पढ़ाई में मन ना लगना, बिजनेस में लॉस होना, करियर की समस्या, किसी भी प्रकार का नशा एवं मिर्गी, बेहोशी के दौरे आना,
13: इन समस्याओं के लिए निःशुल्क टेली मानस हेल्पलाइन नंबर है 14416 या 1800891 4416 पर कॉल करें। जरूर याद रखें 14416। जिला स्वास्थ्य समिति गोंडा द्वारा जनहित में जारी। मानसिक समस्याएं होंगी दूर, खुलकर जिंदगी जिए भरपूर।
14: बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको नुकसान पहुंचाता है। धूम्रपान की वजह से आपके दिल तक खून ले जाने वाली मुख्य नसों में जहरीले पदार्थ भर जाते हैं।

0: देखिए तो कैसी हमारी परवाज हो गई, हमारी आवाज से मिली आपकी आवाज, दुनिया की आवाज हो गई। जी हाँ, हम हैं आपके गोंडा मैसेज मसाला में, जो कि है कार्यक्रम कविताओं का, जो कार्यक्रम आपकी संवेदनाओं का, जो कार्यक्रम मस्ती का, जो कार्यक्रम चाय की मिठास का, जो है कार्यक्रम आपकी जिंदगी की नए उमंगों का, नए आयाम का, नए आसमान का, जो कार्यक्रम है धुनों का और संगीत का, जो कार्यक्रम है देश की धड़कन का, तो ऐसी धड़कन जो गोंडा शहर की धड़कन भी है। तो आइए शुरू करते हैं गोंडा मैसेज मसाला, आपका फेवरेट शो आपकी फेवरेट आरजे प्रीना के साथ।
1: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
2: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन,
1: और जेंट्स के लिए,
2: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
1: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
2: संपर्क करें 91-25-70-75-93 और 96-96-76-40-06। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
3: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
4: इसको तुरंत अल्टिस किप्स ले चलो।
5: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
6: यहाँ 120 बेड, ग्रेड 3 NICU, एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
5: विजिट करें अल्टिस किप्स, IIM रोड, लखनऊ। संपर्क करें 0522-2711-827।
7: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
8: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
7: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
8: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रॉन्ग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
7: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
8: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करें 888-100-9400।

0: सिर में लगातार दर्द, चक्कर आना, याददाश्त में कमी या हाथ पैर का सुन पड़ जाना, इन लक्षणों को नजरअंदाज ना करें।
1: आइए मंडल के एक मात्र न्यूरो हॉस्पिटल सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर, जहां दिमाग, नस, रीढ़, माइग्रेन, कमर दर्द, लकवा, ब्रेन हैमरेज व न्यूरो से संबंधित सभी बीमारियों का मंडल के जाने माने वरिष्ठ न्यूरो सर्जन डॉक्टर सुजीत कुमार शुक्ला द्वारा सफल इलाज 17 वर्ष के अनुभव के साथ साथ ही 2400 घंटे इमरजेंसी सुविधा उपलब्ध है। भरोसे का दूसरा नाम सुधा न्यूरो एंड ट्रॉमा सेंटर। अभी कॉल करें 9838283886।
0: पता है सर्कुलर रोड, आवास विकास कॉलोनी, गोंडा।
2: इलाज होगा बेहतर, खुशहाल होगी जिंदगी।

हाँ जी श्रोताओं, तो वक्त हो चला है शाम के पूरे 6:08 बाई स्टूडियो क्लॉक, और ये वक्त है आपके गुंडा मैसेज मसाला विद आरजे बीना वाला का। हाँ जी, वैसे तो बीना जी थोड़ा सा मतलब छुट्टी पे गई हुई हैं, तो इसलिए आज आपकी शाम बनाने आई हुई है आपकी अपनी आरजे आकांक्षा, और आप आरजे आकांक्षा के साथ में बिल्कुल से सेलिब्रेट करेंगे आज का दिन। दिन है 1 जून, और 1 जून में क्या क्या है खास, चलिए ये हम आपको बता देते हैं। और उसके साथ में ये भी बता देते हैं कि भाई आज है मंडे वाला दिन, और मंडे वाले दिन में हमें पता है कि आप सभी कलते मतलब शो होता है आपका गुंडा मैसेज मसाला यानी कि कॉल इन। हाँ जी, आज का है दिन और होगा कॉल इन, और साथ ही साथ में मंडे, और मंडे में जो खास है वो भी बता देते हैं। चलिए, आज है 1 जून, तो जून 1 जून को जो मुख्य रूप से मनाया जाता है वो दिवस है विश्व दुग्ध दिवस, जो कि संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन FAO द्वारा हर साल 1 जून को ये दिन मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य है लोगों को संपूर्ण आहार के रूप में दूध और डेयरी उत्पादों के महत्व, पोषण और स्वास्थ्य लाभों के बारे में जागरूक करना। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस भी आज के दिन मनाया जाता है। बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, शिक्षा और उनके उज्ज्वल भविष्य के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए 1 जून को यह दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत वर्ष 1925 में जिनेवा में बाल कल्याण पर विश्व सम्मेलन के दौरान किया गया था। इसके अलावा एक और दिन मनाया जाता है जो कि है वैश्विक अभिभावक दिवस यानी कि ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1 जून को मनाए जाने वाले इस दिवस का उद्देश्य दुनिया भर के सभी माता पिता द्वारा बच्चों के प्रति उनके निस्वार्थ समर्पण, बलिदान और आजीवन पालन पोषण की सराहना करना है। भाई, ये सारे दिवस के साथ में एक और खास दिवस है आज का, वो हम आपसे बताएंगे, लेकिन हम चाहेंगे कि आज का कॉल इन शो आप कॉल करना स्टार्ट करें। तब तक के लिए एंजॉय करें यही वाला सॉन्ग। हाँ जी, और उस पार आते हैं, फिर हम बताते हैं कि आज वो खास दिन क्या है जिस पे आज हम आपके कॉल इन शो में बात करने वाले हैं। फिलहाल बने रहिए गुंडा मैसेज मसाला विद आरजे बीना वाले में। मैं हूं आपकी खास यानी कि आज की स्पेशली शाम में आपकी अपनी आरजे आकांक्षा। फिलहाल एंजॉय करिए इस ट्रैक को, यूं गई क्यों आई।

0: क्या आप भी गोंडा से हैं और गोंडा में ही तलाश रहे एक बेहतरीन करियर ऑप्शन? या आप ढूंढ रहे एक ऐसा हुनर जो आपको जोर दे रोजगार से? या फिर बदलते दौर में आप भी छा जाना चाहते हैं अपने टैलेंट से टीवी, रेडियो और सोशल मीडिया पर? तो अब गोंडा में ही रेडियो ज्ञानस्थली लाया है डिजिटल मास कम्युनिकेशन कोर्स, जिसमें एक्सपर्ट्स द्वारा टीवी एंकरिंग, रेडियो जॉकी, वीडियो पॉडकास्ट, वॉइस एक्टिंग, ऑडियो एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग, एडवर्टीजमेंट प्रोडक्शन और कॉन्टेंट राइटिंग की प्रोफेशनल ट्रेनिंग, और तो और कोर्स के आखिर में पूरे एक हफ्ते का रोजगार मेला यानी जॉब प्लेसमेंट की भी गारंटी। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 88 40 35 95 84। अब बारी है आपकी।
1: हाँ जी दोस्तों, तो एक बार फिर से आप सभी का मैं स्वागत करूंगी आपके अपने फेवरेट वाले रेडियो स्टेशन यानी कि रेडियो गाना 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन पे। और इवनिंग का वक्त है और इवनिंग के वक्त में बात करनी है आपसे, क्योंकि आज है आपका कॉल इन वाला शो। तो कॉल करिए और कॉल इन का नंबर वही है 6393316429 यानी कि 63 93 31 64 29। मैंने अभी आपको जाते जाते एक सूचना दी और सूचना ये थी कि भाई 1 जून को कौन कौन से खास दिवस मनाए जाते हैं, जिसमें था विश्व दुग्ध दिवस, इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय बाल रक्षा दिवस और था वैश्विक अभिभावक दिवस। इसके अलावा जिस पे आज मुझे आपसे फोन इन कार्यक्रम में बात करनी है वो ये है, वो दिन है हैप्पी बेस्टी डे। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, आज है बेस्टी डे। तो बेस्टियों, फोन उठाओ और फोन मिलाओ। नंबर वही है, फिर से बताऊंगी, 63 93 31 64 29 यानी कि 6393316429। फिलहाल मेरे पास जो अल्फाज है वो मैं आप तक पहुंचाना चाहूंगी अपनी बेस्टी के लिए। जी हाँ, और हमारे साथ में जुड़ गए हैं अनिल शास्त्री जी, आपका हार्दिक अभिनंदन है और स्वागत है। और इसके बाद चलिए मैं आपको वो पोएट्री सुनाती हूँ जो मैंने अपनी बेस्टी के लिए लिखी। दोस्ती कोई रिश्ता नहीं जो नाम का मोहताज हो, दोस्ती वो एहसास है जो हर दर्द की आवाज है। जब दुनिया समझने लगती है तब बेस्टी बिना कहे समझ जाती है। मेरी बेस्टी कुछ ऐसी है, मैं कुछ कहती भी नहीं। और कल तो जो मतलब कोइंसिडेंस हुआ कि जस्ट मैंने इमेजिन किया कि मैं हर दफ़ा जब भी आती थी यहाँ पे चाय पीने के लिए तो मेरी बेस्टी मेरे साथ होती थी और सामने से वो आ रही थी मोहतरमा। मतलब इतना कोई इंसिडेंस कैसे हो सकता है, अनबिलीवेबल। लेकिन इसे कुछ शायद कहते हैं दिल की आवाज़, एक दोस्ती। खैर आगे बढ़ते हैं। तो जब दुनिया समझने लगती है तब बेस्टी बिना कहे समझती है। जब आंखों में नमी छुपी होती है तब वो हंसकर वजह भुला जाती है। तेरी मेरी दोस्ती का हिसाब क्या होगा, मतलब मेरा और मेरी बेस्टी का, ना कोई फायदा ना कोई नुकसान होगा, बस एक कप चाय, बेशक एक कप चाय और ढेर सारी बातें, और हंसते हंसते पूरा दिन शाम होगा, कब बीत जाएगा। मतलब सुबह से हमारी बातें और बातों पे बातें और ऑर्डर्स पे ऑर्डर्स, मतलब चाय के ऑर्डर, कोई और ऑर्डर, कुछ और, कोई और आइटम, ऐसे मंगाते मंगाते कब शाम हो जाती है दोस्तों के साथ में, पता ही नहीं चलता। शायद वो इतने ख़ास होते हैं इसीलिए, क्योंकि जब जिन लोगों के साथ में आपका वक्त बीत जाता है और आपको पता भी नहीं चलता, वही तो बेस्ट होते हैं, वही तो बेस्टी या बेस्ट फ्रेंड कहलाते हैं। खैर आगे बढ़ते हैं कि तू साथ हो तो मुश्किलें, तू साथ हो तो मुश्किलें भी छोटी लगती हैं, बंद किस्मत की खिड़कियां भी खुलने लगती हैं, तेरी एक सब ठीक हो जाएगा, बस यही कहना कि तेरा एक सब ठीक हो जाएगा, बस यही कहने वाली बात दिल को सबसे बड़ी दवा लगती है ना। आप भी बता सकते हैं, फोन उठाए कॉल मिलाए, बेशक। और इसके अलावा बेस्टी में क्या खास बात होती है, कभी तू मेरी टांग खींचती है, कभी मैं तेरा मजाक उड़ाती हूँ। ये जो फ्री वाला एक जोनरा होता है ना, वो खाली हमारे दोस्तों में ही होता है, बाकी आप राह चलते किसी को कहिए, देखिए फिर क्या मिलता है रिटर्न में। तो ये जो हक होता है, इसे हक कहते हैं, ना कि मतलब हंसी मजाक या फिर ऐसे तंज कसना, इसे हक कहते हैं। हक से हम अपने दोस्तों को छेड़ते हैं, चिढ़ाते हैं। कभी तू मेरी टांग खींचती है, कभी मैं तेरा मजाक उड़ाती हूँ, लेकिन सच कहूँ बेस्टी, तेरे बिना हर खुशी अधूरी पाती हूँ। रिश्ते खून से नहीं निभाने से बनते हैं और कुछ लोग किस्मत से नहीं दुआओं से मिलते हैं और उनमें से होते हैं वो रिश्ते जो आपने खुद से चुने होते हैं, यानी दोस्ती, यानी बेस्ट फ्रेंड, यानी बेस्टी। इस बेस्टी डे पर बस इतनी सी दुआ है, इस बेस्टी डे पर बस इतनी सी दुआ है, तेरी हर मुस्कान सलामत रहे, तेरे सपनों को मंजिल मिलती रहे और हमारी दोस्ती यूं ही उम्र भर महकती रहे। ना तू बदले ना मैं बदलूं, ना तू बदले ना मैं बदलूं, ना ये याराना कमाल बदले, वक्त चाहे जितना भी बदल जाए, हमारी दोस्ती का ये खूबसूरत ख्याल ना बदले। मुझे मेरी बेस्टी की वाकई याद आ रही है। खैर, तो आप भी अपने बेस्टी के लिए या अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए या किसी के लिए कुछ भी अगर आपने लिखा है अपनी कलम से, तो आज वही दिन है, यानी कि आज है भाई कॉल इन शो आपका गोंडा मैसेज मसाला वाला। फिलहाल हम इंतजार करते हैं आपकी कॉल्स का और देखते हैं कि किसने अपनी बेस्टी के लिए क्या लिखा है। अच्छा, कुछ लिखा नहीं होगा, फिर मेरे पास में सवाल होगा आप लोगों के लिए और उस पर सूटेड अगर आप सिचुएशन भी होंगे उस पर सूटेड अगर आप सॉन्ग बता सकते हैं या फिर कोई जवाब दे सकते हैं ऑप्शन के साथ में मैं दूंगी, तो फिर आप प्लीज़ फोन मिलाएं और फ़ोन के लिए वही नंबर है 6393316429। तब तक के लिए एंजॉय करते हैं एक शॉर्ट सा म्यूजिकल ब्रेक और मैं इंतजार करती हूँ आपके कॉल्स का। देखते हैं कौन है जो अपने बेस्ट फ्रेंड को, बेस्टी को सबसे ज्यादा मानता है। देखते हैं आपकी कलम क्या बोलती है आपके बेस्टी और बेस्ट फ्रेंड के लिए। तब तक के लिए सुनिए ये शॉर्ट सा म्यूजिकल ब्रेक। शो चल रहा है आपका गोंडा मैसेज मसाला विथ आरजे बीना वाला। फिलहाल आज के लिए आपकी अपनी आरजे आकांक्षा आपके साथ में, आपकी इवनिंग को कुछ हटके कुछ और किसी और ले जाने के लिए। फिलहाल एंजॉय करते हैं इस ट्रैक को।

0: हाँ जी दोस्तों, वैसे कहते हैं कि दोस्तों को याद करो तो दोस्त हाजिर हो जाते हैं। फिलहाल हम देखते हैं कि हमारे कौन कॉलर हैं जो आज पहली कॉल लगाते हैं। और आप अगर अपने दोस्तों से वाकई दोस्ती रखते हैं या फिर उनसे वाकई कोई है आपकी लाइफ में दोस्त, तो आप कॉल मिला ही लीजिए। हम तो कहते हैं क्योंकि हमारे पास में बहुत सारी बातें जो आपसे हमें कहनी है। फिलहाल शो चला आपका गोंडा मैसेज मसाला विद आरजे बीना वाला, और आपने ट्यून करके रखा रेडियो गाना सिटी 9.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। नंबर बता देते हैं 6393316429। तब तक के लिए जब तक आपकी कॉल आती है ये गाना एंजॉय करते हैं। लीजिए भाई, हमारे पास में कॉल भी आ ही गई है और देखते हैं हमारे साथ में हमारे लिसनर कौन जुड़े हुए हैं। इस गाने को बाद में सुनाते हैं आपको, लेकिन उससे पहले हम इनसे इनका हाल चाल जानेंगे। हेलो,
1: नमस्कार
0: सर, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? प्लीज अपना नाम बताएं और कहाँ से बात कर रहे हैं।
1: मैं गोरखपुर से बोल रहा हूँ, अनिल बनर्जी
0: जी।
1: अनिल के नाम से।
0: ओके ओके, मोस्ट वेलकम अनिल बनर्जी जी आपका। और मैं बस आपसे, चूंकि मुझे लगता है कि आप काफी तजुर्बाकार हैं, तो आप अपनी कलम से कुछ लेके आए हैं, पहले तो ये बताएं।
1: तजुर्बाकार है मतलब क्या? मैं आपको सबसे ज्यादा कुछ जाने
0: जी, क्या बोला आपने?
1: मतलब ज्यादा उम्रदार नजर आ रहा हूँ?
0: नहीं नहीं, उम्रदार नहीं, आपकी आवाज से ऐसा लगता है कि काफी गहराई होगी आपके थॉट में।
1: अच्छा, जी काफी आपका एनालिसिस।
0: जी एनालिसिस के लिए ही तो हम जाने जाते हैं। शुक्रिया वैसे हमको पहचानने के लिए। जी वंस अगेन आपको भी थैंक यू। फिलहाल आपके कलम से आज आप कुछ लिख के लाए हैं या फिर मैं आपसे कुछ पूछ सकती
1: हूँ? आप बिल्कुल पूछ सकती
0: हैं। पहले आप बताएं आप अपनी तरफ से क्या लाए हैं।
1: मैं तो गाना गाने के लिए आया था।
0: ओके वेरी नाइस, आप गाना गाने के लिए आए थे। आपके
1: आज सुन लीजिए मैम
0: जी,
1: आज मतलब कल एक बहुत बड़ी गायिका का निधन हो गया।
0: ओ
1: नाम सुना होगा।
0: सॉरी मेरी थोड़ी सी तबीयत आजकल खराब चल रही है, इसलिए मैं थोड़ा सा दूर रहती सोशल मीडिया और न्यूज से।
1: मेरे सुमन कल्याण से।
0: ओ माय गॉड,
1: जो रफी साथ के साथ उन्होंने,
0: इट्स अ वेरी ह्यूज लॉस ऑफ इंडस्ट्री। आप
1: जी हाँ।
0: ओके तो
1: फिर मैं थोड़ा सा उनको एक गाना समर्पित करना चाहूंगा। ये सात सवेरा का गाना है, क्लासिकल बेस पे, रफी साहब ने साथ ही गाए
0: हैं। जी जी,
1: मैं और इसमें रफी साहब ने और सुमन कल्याणपुरी जी ने
0: जी
1: गाने को गाया है
0: जी। बेशक
1: समर्पित होता है, मैं वो करना चाहूंगा अगर आपको बुरा लगे।
0: अरे हमें बुरा कैसा लगेगा जनाब, हमें एतराज हो ही नहीं सकता है, आप प्लीज पेश करें। थैंक यू फॉर वेलकम योर स्वीट वॉइस।
1: तो मैं वो गाना गाऊंगा जो महमूद पे फिल्माया गया,
0: महमूद साहब पे। क्या बात है भाई, आज तो आप हमें उस दौर में लेके जा रहे हैं। मैंने बोला नहीं कि आप काफी गहराई, अच्छा उम्र की बात साइड में रख दीजिए, लेकिन आप खुद सोचिए कि आपका सिलेक्शन कितना मतलब लेजेंडरी वाला है।
1: वैसे आपका भी बोलने का टोटल 100% सही, मैं इस चीज को ही अप्रिशिएट करता हूं।
0: ओके थैंक्स अ लॉट, प्लीज आप
1: शुरू करो।
0: जी जी जी, स्वागत है।
1: गाने का नाम है अजहू नाय बालमा।
0: ओह माय गॉड, मैं प्लीज प्लीज प्लीज, अब तो मेरे से वेट नहीं हो रहा, प्लीज प्लीज कंटिन्यू।
1: तो मैं शुरू कर रहा हूँ, कोशिश करूंगा
0: जी,
1: फिर आप बताइए।
0: ओके ओके।

मोरे सपने कौन सजाए मोरे सपने कौन सजाए।

आज होना बाल मर।

तो बदेरा गलवा लगा।

0: सावन बीता जाए, आज हो ना सावन बीता जाए, सावन बीता जाए। धन्यवाद मैम।
1: ओ माय गॉड, ओएमजी, क्या बोलूं मैं, स्पीचलेस हूँ। अजहू ना आए बालमा सावन बीता जाए, एक क्लासिकल बेस सॉन्ग आपने लिया ही नहीं, पूरी तरह निभाया भी, और उस जोन में आप लेके गए। जब उस दौरान मतलब बैठ के मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं किसी सेरेमनी में बैठी हुई हूँ और सामने कोई गा रहा है बैठ के उस्ताद मेरे।
0: धन्यवाद,
1: मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम, बहुत खूब, बहुत खूब। ओ माय गॉड, मैंने फर्स्ट टाइम आपको ऐसे एक्सपीरियंस किया, लेकिन माय गॉड, अब आपने इतना उम्दा वाला गाना सेलेक्ट किया, उसको पूरा निभाया भी। अब मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूँगी।
0: बोले।
1: सवाल मेरा ये है सर कि दोस्ती, लोग दोस्ती दोस्ती कहते हैं आज के ज़माने में, दोस्ती मुझे लगता है कि बस एक सेल्फिशनेस के तहत रह गई है, एक स्वार्थ के तहत रह गई है।
0: आपके
1: बताऊंगी, लेकिन आपके शब्दों में मैं जानना चाहती कि दोस्ती किसे कहते हैं और पक्की दोस्ती किसे कहते हैं। मतलब सेल्फिशनेस इसलिए मैंने बोला क्योंकि आप देखते होंगे आजकल जी
0: दोस्ती

0: बनर्जी साहब, और हमारे पास में एक और कॉल भी आ रही है, देख लेते हैं नेक्स्ट कॉल है हमारे साथ में कौन जुड़ गया है। हेलो।
1: हेलो,
0: हाँ जी नमस्ते, कैसी हैं आप?
1: मैं अच्छी हूँ, ठीक ठाक हूँ। मैं दोपहर में आपका शो सुन रही थी, पर मैं कुछ काम सिलाई का काम कर रही थी।
0: ओह माय गॉड, कोई बात नहीं, आप बस अपने काम में मशरूफ रहिए, आप अपनी जिंदगी में बहुत आगे जाइए, खुश रहिए, इससे ज्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। कहिए कैसी हैं? ये तो बता दिया आपकी बहुत अच्छी हैं, लेकिन आप बना क्या रही हैं? इवनिंग का टाइम है, स्नैक्स बन गया, चाय हो गई, खाने में क्या बनना है, हम तो आपसे यही जानेंगे।
1: नहीं, मैं आलू गोभी का, आलू कोहना का सब्जी बनाऊंगी और रोटी बनाऊंगी, और बाकी सब जाएगा, और जो अवधि में बोलता है आइस,
0: ओके ओके, अवधि में आइस मतलब निमंत्रण होता है, न्योता खाने जाता है इंसान।
1: हाँ जी, पहली बार जब मैं, हेलो मैम,
0: हाँ जी हाँ जी कहिए कहिए।
1: पहली बार जब मैं सुनी थी कि आइस खाने जाएगा, पहले मैं समझ नहीं पाई आइस क्या चीज है, मैं सोची कि नहीं मैं सोची थी कि आइसक्रीम खाने जा रहा क्या, आइस मतलब आइसक्रीम खाने, मैं यही सोची थी, बाद में पता चला कि निमंत्रण खाने गया।
0: वही तो। अच्छा, आपने अभी बोला कि आप आलू और कोहणे की सब्जी बना रही है, मतलब कद्दू की, या आलू गोभी, मतलब दोनों बना रही है या अलग अलग बना रही है?
1: नहीं गोभी नहीं था, आलू और कोहणा।
0: ओके, वैसे अच्छा होता है, ये भी सेहत के लिए काफी अच्छी सब्जी मानी जाती है, रेशेदार होती है, वैसे लोग बहुत मुंह बनाते हैं खाते वक्त, लेकिन खाना चाहिए। और एक बात और मैं कहना चाहूंगी आपसे, कि मैं आपसे बात करते भूल गई लेकिन याद आ गया, हाँ आइस हमारे यहाँ हमारी लैंग्वेज में कहते हैं अवधि में, आपको मैं बताना चाहूंगी इस पे, जो एक कहावत है बहुत फेमस है, आइस आइस लेके आइस, आइस घरहुन ना खाइस, बाहरो ना पाइस, काहे के आइस। उम्मीद है आप समझ गई होंगी। समझी या समझाऊं?
1: नहीं, तू समझ गई।
0: समझ
1: अरे और मैं बोल रही हूँ, आज मैं सुबह ही मेरे को देखी खबर, जो सुमन कल्याणपुरी
0: जी, जी बीच में नहीं है जी जी,
1: तो उनको लेके भी थोड़ा मन दुखी हो गया, ताकि मैं उनके आज मैं दो गाना गाऊंगी थोड़ा थोड़ा।
0: ओके, लेकिन मेरा एक सवाल है आपसे, कि जो हमारे मतलब लेजेंड्स होते हैं या कोई भी होता है हमारी लाइफ में, तो अगर वो चला जाता है, अगर उसने कुछ अच्छा किया है, क्या वो सच में चला जाता है या फिर उसकी चीजें हमारे पास रह जाती है? क्या सच में इतने मतलब जो अगर कोई कुछ अच्छा करके हमारे साथ जाता है, जैसे सुमन कल्याणपुरी जी की आवाज है, क्या वो सच में हमको छोड़ के जा चुके हैं या फिर वो जब तक ये दुनिया है तब तक रहेंगे हमारे साथ?
1: नहीं, कभी नहीं जा
0: सके, नहीं जा सकते।
1: सितारा है वो लोग जो है ना, एक सितारा, जब तक सूरज चांद रहेगा उन लोगों का नाम हमेशा।
0: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। और ऐसे ही कुछ हमारे प्यारे दोस्त भी होते हैं हमारी लाइफ में, जब तक हम जिंदा रहते हैं उनकी चीजें हमारे साथ रहती हैं, और उनमें से एक आप भी हैं। मैं चाहूंगी कि आप जब कभी किसी दिन बनाइएगा कुछ खास तो हमको जरूर खिलाइएगा, वैसे आपने हमें बहुत कुछ खिलाया है, थैंक यू उसके लिए, वैसे मैं मजाक भी कर रही थी, लेकिन अभी मैं आपसे सुनना चाहूंगी आप जो लेके आई हैं वो दोनों गीत।
1: एक तो मैं जो जो ध्यान तो उनके बारे में नमन करना चाहती हूँ, उनको गाना गा के।
0: जी जी जी बिल्कुल,
1: उनका ही गाना पहले गाऊंगी।
0: जी जी स्वागत है।
1: रही ना रही हम

0: दूसरा
1: जो है जी?
0: दूसरा दूसरा दूसरा
1: दूसरा है, आज नरगिस जी का जन्मदिन है, उनको भी गाना गाऊंगी।
0: ओके।
1: प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल, कहता है दिल रास्ता मुश्किल, मालूम नहीं है कहाँ मंजिल। प्यार हुआ इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल।
0: इतना स्वीटली अगर आप किसी से कहेंगी प्यार हुआ इकरार हुआ डरता है दिल, तो उसका दिल डर जाएगा कि मैं इतनी स्वीट से बच्ची से बात कैसे करूं। जी, मैं आपसे अब एक सवाल जानना चाहूंगी कि नरगिस जी का आपने अभी यहाँ जिक्र किया कि आज उनका जन्म दिवस है, उनको ईश्वर लंबी उम्र दे, मैं यही कामना करूंगी। और मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि नरगिस जी की हाँ जी हेलो
1: नरगिस जी का जन्मदिन आज है, तो वो तो गुजर गई ना पहले ही।
0: ओके ओके ठीक है, लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि उनकी कौन सी

0: सी मूवी है जो आपकी फेवरेट है?
1: श्री 420 हुआ, फिर जाके आवारा हुआ, फिर जाके अभी बहुत सारा है, वो सब के नाम मुझे अभी याद नहीं है, बहुत सारा पिक्चर मैंने उनका देखी हूँ।
0: ओके, वैसे श्री 420 का ये गाना जो आपने अभी गाया है वो कभी मिट ही नहीं सकता, अमिट है ये।
1: नहीं नहीं नहीं, कभी नहीं,
0: कभी नहीं।
1: आजकल के जमाने हो चाहे हमारे
0: कोई भी जमाना
1: हो, बिल्कुल
0: आके चले नहीं मिट सकता। और वो जो फील आता है इसको प्ले करने के बाद में, इसका जो सिनेमैटिक सीन है इसका, ओ माय गॉड, वाकई वो दौर आ ही नहीं सकता है। बहुत बहुत ही खुशी हुई मुझे कि आपने मुझे कॉल किया और आपने बताया कि आप आज कोना बना रही हैं। थैंक यू जी, ख्याल रखिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो ये थी हमारे साथ में हमारी प्यारी सविता दुबे जी फ्रॉम हरखापुर, और इनका भी कॉल आ गया है। भाई अब हम देखना चाहते हैं कि आपकी झोली में, आपके पिटारे में, आपके दोस्तों के लिए क्या है। फिलहाल हमारे पास में कुछ लाइनें आई हुई हैं और लाइनों के दौरान मैं लाइन लूँ उससे पहले एक कॉल भी आ गई है, तो देखते हैं कि कॉल पर हमारे साथ में। प्लीज़ रईस साहब, आपसे चाहेंगे कि आप साउंड का स्पीकर बंद कर दें, देन मैं आपकी कॉल लूँ। हेलो, नमस्कार सर, प्लीज़ अभी भी स्पीकर आपका गूंज रहा है, मैं कॉल डिसकनेक्ट करना चाहूँगी, आप प्लीज़ दोबारा से कॉल करें, आवाज़ बहुत पीक हो रही है। तो भाई ये थे हमारे बीच में रईस साहब और अभी मुझे लगता है ये दोबारा से कॉल करेंगे, तब तक के लिए मैं, हाँ जी, कुछ मैसेजेस लेना चाहूँगी जो हमारे चैट बॉक्स में लगातार आ रहे हैं और दिख भी रहे हैं। तो भाई सबसे पहला मैसेज हमारे पास में आया हुआ था अनिल शास्त्री जी का, जो हमें सुन रहे हैं गोरखपुर से, और क्या आवाज़ है भाई, गॉड, मज़ा आ गया, मज़ा आ गया। और जब क्लासिकल बेस सॉन्ग्स की बात होती हैं तो दिल एक अलग ही लेवल पर होता है, बड़ी खुशी होती है। फिलहाल देखते हैं, हमारे पास में एक और कॉलर ने कॉल किया है, देखते हैं कौन है। हेलो,
2: हेलो,
0: हाँ जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं प्लीज।
2: सृष्टि।
0: ये क्या था सृष्टि जी? व्हाट इज दिस हैपनिंग, क्या चल रहा है आपकी लाइफ में सृष्टि जी?
2: बहुत बढ़िया
0: चल रहा है, वो तो लग रहा है मुझे भी, बहुत बढ़िया ही चल रहा है। कहिए क्या चल रहा है, मतलब नाश्ता पानी हो गया, चाय पानी हो गया?
2: हाँ हो गया, नाश्ता पानी।
0: ओके, मैं आपसे एक सवाल रखना चाहूँगी, आपकी बेस्ट फ्रेंड है ना?
2: है भी नहीं भी है,
0: मतलब
2: मिक्सअप।
0: ओके, मिक्सअप है। आप गाना सुनाने के लिए आपने कॉल किया था या कोई पोएट्री आपने लिखी है उसके लिए, या फिर हमारे सवाल के लिए तैयार हैं? आपके पास ऑप्शन है?
2: आपके सवाल के लिए तैयार
0: है। ओह माय गॉड, पहला ऐसा मैंने सिपाही देखा है जो कह रहा है मैं आज अपनी पूरे विश्व को, मतलब मैं अपने पूरे देश को बचाऊंगा, आप सवाल पे सवाल करिए, हम उसको कट करते जाएंगे, क्यों जी? जी चलिए आपसे सवाल रख देते हैं कि अगर आपकी बेस्टी एक मोबाइल ऐप होती तो कौन सी होती, समझ गई?
2: इंस्टा।
0: ओहो, बताने से पहले ही मेरे पास ऑप्शन है, चलिए ऑप्शन भी दे देते हैं, वैसे तो आपने बता दिया फिर भी ऑप्शन दे देते हैं। व्हाट्सएप जो हर वक्त ऑनलाइन रहता है, इंस्टाग्राम जो सिर्फ दिखावा करता है, गूगल हर सवाल का जवाब, या फिर बैटरी सेवर हमेशा काम आने वाली, आपकी बेस्टी कौन है?
2: इंस्टा।
0: सिर्फ दिखावा?
2: बिल्कुल।
0: ओ माय गॉड भाई, ऐसे क्लियर आप बोल देते हो, अभी तो आपका पंगा हो जाना है फिर।
2: और एक और है जो बैटरी सेवर टाइप में है।
0: मतलब दो बेस्टी हैं आपकी लाइफ में। वैसे लोग समझते हैं कि लाइफ में एक ही बेस्ट फ्रेंड होता है, क्या ऐसा सच में होता है या फिर कई सारे फ्रेंड होते हैं जो बेस्ट होते हैं?
2: सब होते हैं पर जो एक ही होता है जो सबसे बेस्ट होता है। फ्रेंड्स तो सब बेस्ट होते हैं, ऐसे थोड़ी ना सब खराब होंगे।
0: ओहो क्या बात है, वैसे दोस्ती ही ना हो अगर खराब हो, है ना? बहुत सही,
2: एक तो आप जानती होंगी कितनी अच्छी है।
0: हाँ हाँ, एक तो मुझे पता है, दूसरा
2: एक और है।
0: ओके, फिलहाल आपने बता दिया और आपने बड़ा ही जिगरा दिखाया, हम तो आपको सैल्यूट करेंगे कि सिर्फ इंस्टाग्राम वाला आपने जिसको भी टैग दिया है, माय गॉड, वो आपकी कुटाई करने वाला है और या वाली है, जो भी होंगे। मैं चाहूँगी कि वो, अगर मेरी आवाज़ उन तक जा रही हो तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, सवाल मेरा था, इनका कोई हाथ नहीं है इसमें।
1: वो नहीं सुनी,
0: बोला है। oh my God. कहीं सुन रही हो चुप्पे से या कोई और उनको जाके बता दे तो क्या होगा?
1: और कोई इसका कोई है ही नहीं जो रेडियो सुनता जो बता दे।
0: ओहो, बहुत बहुत सेफ जोन में खेला है आपने। थैंक यू फॉर कॉलिंग, टेक केयर डियर।
1: ओके बाय
0: बाय। ये थी हमारे साथ में सृष्टि जी और नेक्स्ट कॉलर अभी जस्ट कॉल आके कट गई, कोई बात नहीं, देखते हैं कौन आता है। फिलहाल हम चलते हैं मैसेज की ओर। भाई देखो क्या बात है भाई, हमारे लिसनर्स कितने प्यारे हैं, लगातार कॉल आ रही है। हाँ जी हेलो, नमस्कार, शुभ संध्या।
3: नमस्कार सर जी।
0: नमस्कार, ये हमारे रईस साहब, भाई हम ही बता देते हैं इनका नाम, रईसियत से निकाले गए रईस साहब जी। कहिए कैसे हैं आप?
3: आशीर्वाद है साहब आपका।
0: बहुत अच्छी बात है कि आशीर्वाद है। अब आप हमसे पूछिए हम कैसे हैं।
3: आप कैसी हैं मैडम?
0: मैडम नहीं पूछिए, पूछिए आप कैसी हैं।
3: आप कैसी हैं?
0: हम आपकी दुआओं जैसे हैं।
3: बहुत अच्छी बात है।
0: है ना, अच्छी बात। वैसे पता है ये मैंने इसलिए कहा आपसे क्योंकि मैंने एक लोग से, मतलब एक दिन ऐसे ही ये वर्ड यूज किया बातों बातों में, वो हमारे फ्रेंड में आते हैं, तो उनका कहना था भाई तुम शायराना होती जा रही हो, तो हमने कहा वो बस आपकी दोस्ती का असर है, और जब दोस्ती की बात आती है तो वो आला होती है। वैसे मैं जानना चाहती हूँ आपकी लाइफ में कितने दोस्त हैं?
3: फिलहाल अभी दो ही थे शुरुआत में।
0: दो ही थे?
3: दो थे, दो।
0: तो मतलब थे क्यों, है क्यों नहीं?
3: नहीं है, मतलब वो निकल गए थे।
0: कहाँ निकल गए थे?
3: मतलब जिंदगी की आपाधापी में वक्त नहीं मिलता है ना।
0: ओ ये वाली, ओ गॉड, तो थोड़ा सा मुझे दुख हुआ इस बात पे। दुख इसलिए हुआ क्योंकि मेरे पास में भी कुछ ऐसे फ्रेंड्स हैं जो आके चले गए और फिर खैर दुआ में हैं अभी भी। अब आपसे मैं एक सवाल करना चाहूँगी।
3: जी सर।
0: आप बताएंगे क्योंकि मुझे लगता है आपको काफ़ी तजुर्बा है कि बेस्टी की, मतलब जो भी बेस्ट फ्रेंड होगा आपका, उसकी सबसे बड़ी पहचान कौन सी है? बिना पूछे सलाह देना, ऑप्शन है मेरे पास में, दूसरा आपका खाना खा जाना, तीसरा है आपकी सारी सीक्रेट जानना, और चौथा है ऊपर के सभी।
3: दरअसल जो मेरे दोस्त हैं, जो बताया मैंने, जो दो दोस्त हैं
0: जी,
3: वो जैसे मैं कभी कोई मुसीबत में हूँ या बहुत ज्यादा टेंशन में हूँ, तनाव में हूँ, तो मुझे चाय पानी पूछना और जो मुश्किल में जो सही फैसला लेना है उसके बारे में बताना उन लोग को, मतलब इस तरह के दोस्त।
0: तो इसका मतलब है कि अगर इस ऑप्शन में से लिया जाए तो आपका चौथा वाला ऑप्शन होगा, यानी कि सारे विकल्प सही हैं, उपयुक्त सभी। बिना पूछे सलाह देंगे आपको, आपका मुंह देख के पढ़ लेंगे और जान के आप तक चले आएंगे। इसके अलावा आप खाना पूछे ना पूछे खुद ही खा लेंगे, क्यों ऐसा वाला भी है?
3: नहीं, खाना खाने के लिए कहना पड़ेगा मोहब्बत के साथ, तो खाएंगे।
0: अच्छा, बिना कहे नहीं खाएंगे कि आप खा रहे हैं तो आके बैठे हो तो कहें कि ला हमें भी दो।
3: हाँ ऐसा भी है, लेकिन वो ज्यादातर मतलब वो थोड़ा संजीदा किस्म के इंसान है।
0: ओके, मतलब हमारी तरह बेशरम नहीं है, चल मान लिया।
3: आप तो बहुत अच्छी, जो आपकी हंसी है ना, अभी जो आप हंस रही है ना, हम लोग सुन रहे हैं ना, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है।
0: ओके, थैंक यू सो मच। और ये हंसी कहीं ना कहीं आप ही लोगों से आती है, वरना ये जमाना तो बड़ा ही जालिम है रईस साहब, आपको पता है, जीने नहीं देता है। जी, और चौथा है पूरे, नहीं नहीं पूरे दिन नहीं सर, आपकी सारी सीक्रेट जानना, उनको तो आतुरता मची रहती है। फिलहाल काफी अच्छे दोस्त आपने पाए हुए हैं, देर सवेरी से ही, मतलब जाहिर सी बात है जीवन बहुत अस्त व्यस्त है आज के दौर का, और इस भागा दौड़ी में अगर वो इतना भी वक्त आपके लिए निकाल लें कि आप जब भी दुखी होते हैं वो उस जगह खड़े होते हैं, यू आर लकी पर्सन, बस इतना ही कहूँगी। अब आप ये बताएं कि आप अपने दोस्तों के लिए कोई गाना डेडिकेट करना चाहेंगे तो कौन सा गाना होगा?
3: गाना वही सुना दीजिए साहब, दोस्ताना वाला, सलामत रहे दोस्ताना हमारा।
0: नहीं हम नहीं सुनाएंगे, आप सुनाएंगे।
3: नहीं, अब आज चुराने के मूड में नहीं है।
0: अरे मूड भी होता है। हा? सच में
3: बिल्कुल फीलिंग आती है ना ईमानदारी के साथ।
0: ओह,
3: बनावट वाली नहीं।
0: ओके ओके, थैंक यू फॉर कॉलिंग, बहुत अच्छा लगा ये जान के कि आपकी लाइफ में आपके दोस्त हैं और ये दोस्ती यूं ही सलामत रहे। इसके लिए मैं गाना जरूर प्ले करूंगी लेकिन कुछ देर बाद, ठीक है? ओके, टेक केयर। तो भाई ये थे हमारे साथ में हमारे रईस साहब, और इन्होंने अपने गाने की भी डिमांड कर दी है अपने दोस्तों के लिए। फिलहाल चलेंगे उस ओर, लेकिन उससे पहले मैं कुछ मैसेजेस लेना चाह रही थी, वो मुझे लेने को आज नहीं मिलेगा। फिर से एक कॉल आई है, देखते हैं कौन है। हेलो,
4: गुड इवनिंग मैम।
0: वेरी गुड इवनिंग डियर, अपना नाम बताएं प्लीज।
4: मोहिनी तिवारी
0: जी। मोहिनी तिवारी जी हमारे साथ में जुड़ गई हैं, बड़े दिनों बाद आपकी आवाज हमने सुनी। कैसी हैं आप?
4: हम अच्छे हैं, आप कैसे हैं?
0: बस आपकी दुआओं जैसे। आप दुआ में क्या मांगती हैं ये बताइए, हम वैसे ही लग रहे या नहीं, पहले खुद को इमेजिन कर ले। मोहिनी से दुआ मांगने चली गई हमें लग रहा है मंदिर की ओर। मोहिनी जी?
4: यस मैम।
0: हैं आप यहीं पे?
4: पता नहीं,
0: कोई बात नहीं। आप क्या पढ़ाई कर रही हैं? पढ़ाई कर रही हैं या फिर कुछ जॉब वगैरह कर रही हैं?
4: नहीं, पढ़ाई कर रहे हैं।
0: किस क्लास में?
4: इंटर है इस बार।
0: स्ट्रीम कौन सी है?
4: साइंस।
0: साइंस साइड है, वो वेरी नाइस। चलिए आपके लिए भी एक सवाल है आपकी बेस्टी की ओर, खास करके पूछ सकते हैं, इजाजत है?
4: यस मैम, यस मैम।
0: अगर आपकी बेस्टी को एक दिन के लिए सुपर पावर मिल जाए तो वो सबसे पहले क्या करेगी? आपके पास चार ऑप्शन है। पहला, सबके फोन चेक करेगी। दूसरा, फ्री में शॉपिंग करेगी। तीसरा, पूरे दिन सोएगी। और चौथा है, अपनी सारी गलतियां गायब कर देगी।
4: अपनी सारी गलतियां गायब कर देंगी।
0: बेस्ट फ्रेंड का यही काम होता है ना। रियली?
4: कुछ एंगल से होता है मैम, जैसे कि हमारे फ्रेंड है
0: जी। और आपके कितने फ्रेंड्स हैं? मतलब जैसे मैंने अभी पूछा था सृष्टि जी से, उनका भी कहना है कि एक ही बेस्टी नहीं होती है, कई सारे बेस्ट फ्रेंड होते हैं हमारी लाइफ में, सारे दोस्त वैसे अच्छे ही होते हैं। तो आप अगर कहेंगे तो आपके पास में कितने नगीने हैं, मैं ये पूछूंगी, दोस्त नहीं?
4: वही बहुत सारे हैं लेकिन खास करके दो ही हैं।
0: ओके, तो अगर आप उनको कोई स्पेसिफिक नाम देना चाहें तो क्या देंगी?
4: दोनों को
0: अलग अलग नाम देंगी ना?
4: एक को चिपकू, एक को अड़कू।
0: चिपकू और दूसरे वाले को क्या?
4: अकड़ू।
0: अकड़ू, रियली?
4: यस सर।
0: भाई ऐसे दोस्त हो तो भाई मैं तो कहूंगी दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। आपके सेफ जोन के लिए तैयारी हो जाएगी फिर। देखो एक चिपका एक
4: नहीं अभी।
0: हाँ बोलिए।
4: कह रहे अभी तुम्हारी कुटाई होनी है।
0: सुन रही है? पक्का, यकीन है? भाई अगर कोई भी मेरी एक हाथ जोड़ के विनती है और जनहित में जारी ये सूचना है कि हमारी मोहिनी जी की जो भी सखी सहेली फ्रेंड है उनसे कोई भी मतलब यातना मत दीजिएगा, क्योंकि ये हमारा सवाल था, हमारा पर्सनल सवाल था, इसमें इनका कोई हाथ नहीं है, इनका कोई दोष नहीं है। अब ठीक है मोहिनी जी?
4: यस मैम।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया। और अगर आप अपने दोस्तों को कोई सॉन्ग डेडिकेट करना चाहेंगी तो क्या करेंगी? गा के सुनाइएगा। आपकी आवाज जो सुननी है हमें,
4: वो तो कौन सा सॉन्ग?
0: गाने बहुत सारे हैं, अभी बोला ना कि एक चिपकू है एक ककड़ू है, तो उस पे क्या लगता है? कोई नखरे वाली है तो फिर नखरे वाला गाना हो सकता है।
4: मैम उन्होंने कुछ याद नहीं किया।
0: कोई बात नहीं, आपने कोई याद नहीं किया, लेकिन हम आपके फ्रेंड के लिए एक प्यारा सा सॉन्ग प्ले करते हैं। तो आप लोग सभी जी, थैंक यू, मोस्ट वेलकम। तो चलिए, मोहिनी जी थी हमारे साथ में कॉल पे, और जब तक आप लोग इस गाने को एंजॉय करते हैं, हम लेके आते हैं एक शॉर्ट सा, मतलब शॉर्ट लेके आते हैं किसका? पानी का, क्योंकि काफ़ी देर से आपकी कॉल्स आ रही है और हम लगातार बोलते जा रहे हैं। तो चलिए चलते हैं एक शॉर्ट से म्यूजिकल ब्रेक की ओर, और ये मोहिनी जी की फ्रेंड के लिए खास करके। भाई वो कैसी भी हैं, मतलब कोई चिपकू है कोई अकड़ू है, पर दिल तो उन्हीं के पास में है ना हमारी मोहिनी जी का। एंजॉय करिए इस ट्रैक को, जस्ट हम यू गए यू आएँ।

0: हाँ जी, दोस्तों की बात जब आती है तो दिल चोरी हो ही जाता है। और भाई, लगातार आपकी कॉल्स आ रही, हमने सोचा था कि कुछ मैसेज ले लें। मैसेज बड़े प्यारे प्यारे आए हुए थे, लेकिन ले लेते हैं कॉल और देखते हैं भाई कौन है हमारे साथ में कॉल पे। हेलो
1: हेलो, आपने मेरे को दोस्ती के बारे में क्यों नहीं पूछे?
0: ओह माय गॉड, मैंने आपसे क्यों नहीं पूछा दोस्ती के बारे में? अरे ले ले, चलिए आपसे पूछ लेते हैं, उसमें कौन सी बड़ी बात है। वैसे हमने सोचा हमारी और आपकी दोस्ती थोड़ी सीक्रेट रहनी चाहिए, दुनिया को रिवील नहीं होनी चाहिए। अब आप चाहती है दुनिया जान जाए कि हम कितने कामचोर हैं और आप हमारे ऊपर तंज कसते हैं। चलिए कसवा लेते हैं।
1: नहीं, अब तो हम लोगों को दोस्ती दूसरी साल होने वाली है।
0: बेशक
1: मेरे लिए, मैं एक बंगाल से आई हूँ, यहाँ पे मेरा कोई दोस्त नहीं था।
0: जी,
1: मेरा दोस्त हो, सहेली हो, सुख दुख के साथ हो, मैं ज्ञानस्थली के जितना भी परिवार का सदस्य है, मैं उन लोगों को अपना दिल के बात बोल के, मेरा सबसे गहरा दोस्ती जो आज के टाइम पे ज्ञानस्थली में है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया, आपने उस काबिल समझा हमें, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए आपसे अब हम पूछ ही लेते हैं सवाल। पूछ ले,
1: पूछिए।
0: भाई थोड़ा हटके सवाल है, क्योंकि मुझे लगता है आपके जितने भी चैट बॉक्स वासी हैं उनमें कुछ ऐसे हैं आपके फ्रेंड जिनके लिए ये सवाल बनता है, तो क्या मैं पूछ सकती?
1: हाँ पूछिए
0: जी। अगर आपकी बेस्टी आपकी मतलब आपकी शादी नहीं, मतलब आप उनकी शादी में आए, तो सबसे ज्यादा संभावना किस बात की होगी? आप अपने बेस्टी की शादी में, मतलब आप चैट बॉक्स वासियों को मान लीजिए, किसी की भी शादी में आप जा रही हैं, ठीक है, तो सबसे ज्यादा किस बात की संभावना बनेगी उस दौरान? ए है आपके पास में ऑप्शन, सबसे ज्यादा आप डांस करेंगी। बी है पुराने राज खोल देंगी दूसरों के। और तीसरा है सबसे ज्यादा खाना खाएंगी, वो तो आप खाने से रही मुझे पता है। और डी है ये तीनों काम कर लेंगी एक ही साथ में।
1: तीनों काम
0: एक साथ नहीं करूँ। ओ माय गॉड, मेरे को लगा था
1: शादी में नहीं जाऊंगी, सब कोई चैट बॉक्स में है ना, तो मैं चैट बॉक्स से उन लोगों को शुभकामना भेज दूंगी,
0: बस इतना सा काम करूंगी। दूर के ढोल सुहावन लगते हैं सविता जी। अगर किसी ने प्यार से बुलाया तो आपको जाना पड़ेगा।
1: नहीं नहीं, जैसे कि नागेश्वर ठाकुर मध्य प्रदेश में,
0: जी जी,
1: कोई ना, हम उसके शादी में जाएंगे, नहीं जा पाएंगे।
0: ओके चलिए, तो वो तो भाई आपके भाई साहब लगेंगे अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो आप तो उनसे मिठाई खाएंगी, वो तो आपको गूगल पे फोन पे कुछ भी कैसे भी करके आपको पैसा पहुँचा देंगे, तो ये जगह पे तो आप खा सकती ना, आपके पास में ऑप्शन था, आपने बोल सकती थी आप कि तीसरा ऑप्शन मैं ले सकती हूँ, सबसे ज्यादा खाना खाऊंगी।
1: नहीं, आजकल खाना में कम कर दिया, वो आलतू फालतू चीज नहीं खाती।
0: आलतू फालतू नहीं, तो जो जरूरत वाली खाती वही खा लेती देवी जी। खैर कोई बात नहीं, अगर आप मेरी शादी में आएंगी तो क्या करेंगी ये बताइए।
1: अरे आपके शादी में बुलाएगा तो मैं आऊंगी, जरूर आऊंगी।
0: ऑप्शन मैं आपसे ऑप्शन सुनने के लिए मैंने अपनी शादी ठनवा दी है, बताइए अब इन ऑप्शन में से आप क्या ऑप्शन चुनेंगी? आप सबसे ज्यादा डांस करेंगी, पुराने मेरे सारे राज खोल देंगी, सबसे ज्यादा खाना खाएंगी, या ये तीनों काम करेंगी?
1: डांस तो करना नहीं जानती, और जो मुझे खाना अच्छा लगेगा वही सबसे ज्यादा खाऊंगी।
0: ओके, मैं तो सोच रही कि क्यों ना आपके लिए, आप मिस्ट्री दोई जैसी मीठी मीठी बोलती भी हैं, तो भाई मेरे पास में जो मीठा आइटम होगा वो मैं पैक करके आपको दे भी दूंगी, चार पांच दिन खाइएगा।
1: नहीं नहीं, उतना भी मीठा नहीं खाती हूँ।
0: भगवान, आप खाती क्या है? हवा खाती है, हवा पीती है, हवा पे जीती है।
1: हवा नहीं पीती हूँ, घर का ही खाना खाती हूँ, थोड़ा जंक फूड खा रही थी, वो सब बिल्कुल बंद कर दिया हूँ आजकल।
0: ओहो, क्या बात है भाई, ये तो बहुत अच्छा काम किया है, इसके लिए मैं आप बधाई दूंगी आपको। फिलहाल मैं नहीं कर पाई हूँ, इसीलिए कहीं ना कहीं देखिए जंक फूड खाने से होता है कि हम खा लेते हैं, पैसे भी वेस्ट कर देते हैं, लेकिन हमारे शरीर में नहीं लगता है वो, बल्कि हमारी इम्यूनिटी को और कम करता है।
1: मेरा भी वेस्ट हुआ, और मेरा दवाई कितना खाना पड़ा उसके वजह से, ज्यादा नहीं तो भी खाना पड़ा, और जांच करना पड़ेगा, उसमें मैं बहुत सारा पैसा चल गया, मैं वो सब बिल्कुल बंद कर दिया हूँ। सुबह को बासी पेट, मैंने बासी मुँह मेथी दाना भिगो के रख देती हूँ, वो पीती हूँ, और उसके बाद किशमिश भिगो के रख देती हूँ, उसका पानी पीती हूँ, किशमिश खाती हूँ।
0: चलिए,
1: बहुत सुस्त हूँ।
0: बहुत अच्छा किया, लेकिन आपने अपने चीज़ों को बदला, आपने अपने ऊपर फोकस किया, इस बात की काफ़ी खुशी है मुझे, और बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, दोबारा से अपना हक जताने के लिए कि मैं भी आपकी दोस्त हूँ। जी बहुत बहुत शुक्रिया,
1: आपने फोन उठाए,
0: अल्ले हम कैसे ना उठाते, थैंक यू। भाई ये थी हमारे साथ में सविता जी, और देखते हैं नेक्स्ट कॉल पे कॉल आ रही है, नेक्स्ट कॉलर कौन है? हेलो
2: हेलो।
0: हाँ जी, शुभ नाम अपना बताएं। नमस्कार नमस्कार, स्वागत है आपका, शुभ संध्या आपको। कहिए, क्या नाम है आपका?
2: श्रद्धा तिवारी
0: जी। श्रद्धा जी, बड़े दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं फोन पे, कैसी हैं? बस थोड़ा सा जुकाम के चलते थोड़ा सा परेशान हूँ, और क्या करें, आदत से मजबूर होते हैं। आम का सीजन आता है, आम फलों का राजा होता है, राजा से कौन प्रभावित नहीं होता है। फ्रिज में रखा हुआ आम रात के 10 बजे निकाल के खा लिया जाता है, नॉर्मल भी नहीं होने दिया जाता है, तो भाई गले को ये सजा तो प्राप्त होगी ही ना। है ना, मुझे भी बहुत पसंद है, और एक ही महीना होता है, ले देखे उसमें भी आधा 15 दिन ही होता है जो ढंग से आम हम खाते हैं, तो फिर बस ऐसा ही चल गया, अब क्या ही बता दें। खैर, आपसे जानना चाहेंगे, आपकी बेस्टी हैं आपकी लाइफ में या अभी कोई नहीं है?
2: यस मैम हैं।
0: अगर मैं आपको सिचुएशन दूं तो उसके अकॉर्डिंग आप मुझे गाना बताएंगी?
2: बताइए।
0: जब आपकी बेस्टी फोन उठाने की बजाय सिर्फ ये बोल दे कि मैं बिजी हूँ, तो उस सिचुएशन पे आप उनके लिए कौन सा गाना गाएंगी? इतनी गहराई में सन्नाटा छाया हुआ है भाई, उस पार कोई है? ओहो, ऐसा भी है?
2: यस मैम।
0: अच्छा, दोस्त कितना जरूरी होते हैं लाइफ के लिए, ये आपसे सवाल है?
2: दोस्ती ऐसा रिश्ता होता है जिससे हम अपनी सारी बातें शेयर कर सकते हैं।
0: नहीं, वो तो हम करते हैं, लेकिन इतना जरूरी क्यों होता है? मतलब क्या ऐसी खास बात होती है उसमें? बातें तो हम शेयर अपने मम्मी पापा से भी कर सकते हैं, भाइयों से भी कर सकते हैं, अगर ऐसा बॉन्ड है तो।
2: यस मैम।
0: क्या खास होता है फिर, मैं बताऊं?
2: बताइए।
0: दोस्त हमारा सिलेक्शन होता है, हमारा खुद का चुनाव होता है, इसलिए हमें उसके साथ में टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद होता है, और कितना भी वक्त बीत जाता है पता नहीं चलता है।
2: यस मैम,
0: अपनी पसंद पे कोई सवाल उठा ही नहीं सकता है। चलिए मैं खुद बता देती कि अगर आपकी बेस्टी फोन नहीं उठाएगी और वो उधर से चिल्लाएगी कि मैं बिजी हूँ, तो आप एक ही गाना उनके लिए गाइएगा, तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। सही है? एकदम सूटेड है, नेक्स्ट टाइम से आप उन्हें ये गाना सुना सकती हैं। वैसे बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आवाज से, आज हम बहुत दिनों बाद रूबरू हुए, बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए। ओके, ठीक है। तो भाई, ये थी हमारे साथ में श्रद्धा जी, और कहीं ना कहीं आप सभी की लगातार कॉल्स भी आ रही हैं, और शो चला है आपका, जी हाँ, गोंडा मैसेज मसाला आरजे बीना वाला, लेकिन आज आपकी जो होस्ट है वो है आरजे आकांक्षा, और वक्त हो चला है घड़ी में 7:08, और लगातार कॉल आ रही है, देखते हैं भैया कौन है इस बार हमारे साथ में कॉल में। हेलो,
3: गुड इवनिंग, बीना मैम, सुरेश कुमार
0: जी। बीना मैम जी आज नहीं है, उनकी थोड़ी सी तबीयत खराब है, मैं कहूँगी आप सभी से कि उनके लिए थोड़ी सी दुआ करिएगा ताकि जल्दी से हेल्दी होके वापस आए। तो बस आपका वैसे तो मैं स्वागत करना चाहूँगी सुरेश जी, और आप तो भाई हमारे बहुत ही प्यारे वाले सिंगर हैं, तो बस मैं आपसे इतना ही कहूँगी सर कि दोस्ती के नाम कुछ लाइन है।
3: मतलब हम कोई भी सुना सकते हैं या बेशक, का नंबर है?
0: नहीं नहीं, अरे आप हैं तो बस आप ही हैं। प्लीज आप शुरू करें। अच्छा, जी
3: हमें समझा कोई और है तो बड़ी मुश्किल से कॉल लगा है।
0: हाँ, ये तो है, जब ऐसा होता है ना कि कॉलिंग शो होता है तो लगातार सभी की कॉल आती है, बस इतनी सी बात होती है।
3: चलो दोस्त के ऊपर फिर कभी सुना देंगे, आज हम तिलक मंदिर का सुना रहे हैं।
0: जी आपकी मर्जी।
3: याद के
0: जी जी
3: याद, हाँ
0: आपकी मर्जी।
3: याद न जाए बीते दिनों की, जाके न आए वो दिन, दिल को बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए न जाए बीते दिनों की।
4: बिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता, बिन जो पखेरू होते पिंजरे में मैं रख लेता। आज तो उनको जतन से मोती के दाने देता, सीने से रहता लगाए याद न जाए। बीते दिनों की जाके लाए जो दिन, दिल क्यों बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए। तस्वीर उनकी छिपा के रख दूं जहां जी चाहे, तस्वीर उनकी छिपा के रख दूं जहां जी चाहे। मन में बसी है मूरत, मन में बसी है मूरत, लेकिन मिटे न मिटाए। कहीं को है वो पराए याद न जाए। बीते दिनों की जाके न आए जो दिन, दिल को बुलाए उन्हें, दिल क्यों बुलाए।
0: क्या बात है भाई, इस उम्र में आप इतनी गहराई कहाँ से लाते हैं, इतनी मतलब रूह कहाँ से लाते हैं अपनी आवाज में?
3: नहीं कोई गलत तो नहीं निकल गया, कोई यंत्र शब्द कोई?
0: अरे नहीं ऐसी बात नहीं करी, मैं करी इतनी डेप्थ, इतना दर्द, इतना फील कहाँ से लाते हैं अपनी आवाज में, थोड़ा सा प्लीज हमें भी बताएं, हम भी सीखना चाहेंगे आपसे।
3: बीना मैम ऐसा है
0: जी,
3: जो इंसान जिस दर्द में बना के गाता है अपने, तभी वो गीत निकल पाता है।
0: जब तक फील नहीं करता है तब तक वो चीज आवाज में नहीं आती,
3: वो आवाज निकल ही नहीं पाएगी। बीना मैम,
0: बीना मैम नहीं है हम, पहले हम आपको रोकना चाहेंगे, हम बीना मैम नहीं है, हम आकांक्षा जी हैं।
3: अगर अच्छा निकल जाता है तो ये हमारी जो है खुशनसीबी है
0: जी।
3: लेकिन मैं कोशिश यही करता हूँ कि जिस तरह निभाया गया है, आप कोशिश कीजिए बस।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया, नेक्स्ट कॉल में लेना चाहूंगी। थैंक यू सर फॉर कॉलिंग।
3: ठीक है, थैंक यू
0: जी, शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ में हमारे सुरेश जी, और देखते हैं अभी हमारे साथ में कौन है। प्लीज आप जो भी हैं अपने उधर का वॉल्यूम रेडियो का धीमा करके फिर कॉल करें ताकि हम आपसे बात कर पाएं क्लियरली। चलिए फिलहाल चलते हैं मैसेजेस की ओर, लगातार काफ़ी सारे मैसेज आए हुए हैं, और ये लीजिए देखते हैं, शायद इन्होंने आवाज़ बंद कर दी हो।
5: हेलो आकांक्षा जी।
0: हाँ जी नमस्कार, आपका स्वागत है, आप अपना शुभ नाम बताएं प्लीज़।
5: नमस्कार, मेरा नाम अनुराधा है।
0: ओहो अनुराधा जी, भाई हमने आपको बहुत पहले चैट बॉक्स में देखा था, आज आपको सुन पा रहे हैं, कि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आप वही अनुराधा जी हैं?
5: जी
0: मैं वही। बहुत बहुत स्वागत है, बड़े दिनों बाद आपकी आवाज मुझे, सबसे पहले तो फाइनली फर्स्ट टाइम मैं आपको सुन रही हूँ, आप कहाँ से सुनते हैं हमें प्लीज बताएं?
5: हम एक्चुअली गोंडा से सुनते हैं, लेकिन आज मैं बलरामपुर आई हुई हूँ।
0: ओहो क्या बात है भाई, हम आज तो हम बलरामपुर में है, बलरामपुर में कौन है आपका?
5: बलरामपुर मेरा घर है, मेरे नॉर्ज है।
0: ओके, वैसे मेरी मासी रहती है बलरामपुर में।
5: अच्छा कहाँ रहती है आपकी मौसी बलराम बोला?
0: झारखंडी के जस्ट पीछे रहती है।
5: आपकी आवाज बहुत प्यारी है
0: जी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। कहिए कुछ सुनाना चाहेंगी या मैं आपसे सवाल रखूं?
5: सुनाना क्या मतलब, किस बारे में सुनाना?
0: मतलब कोई सॉन्ग हो आपके पास में तो आप सॉन्ग सुना सकते हो या कुछ भी।
5: अच्छा ठीक है, सुनाती हूँ ना।
0: जरूर,
5: आपके लिए गाती हूँ।
0: ओह माय गॉड, भाई आज तो लग रहा है कि हम ब्लश करते करते घर जाएंगे और घर पहुँचेंगे मम्मी कहेंगी किस पार्लर से निकल के आई है हमारी बिटिया।
5: आज आपको ब्लश लगाने की जरूरत नहीं है।
0: भाई मैं नहीं यूज करती, मैं मेकअप से ही दूर रहती हूँ। सच्चाई बताऊँ मैं बहुत ही
5: जरूरत क्या, वैसे इतनी खूबसूरत है, मेकअप की क्या जरूरत है।
0: ओके शुक्रिया, और उम्मीद करती हूँ आप भी उतनी प्यारी होंगी जितना प्यारा आपका नाम है, क्योंकि अनुराधा नाम की मेरी एक फ्रेंड हुआ करती थी, देखने में बड़ी ही प्यारी थी और बड़ा ही चूजी सिलेक्शन हुआ करता था उसका। तो अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आपके पास में भी आपका जो सिलेक्शन होगा चूजी वाला होगा।
5: वो तो आप बताइएगा सुनने के बाद।
0: ओह माय गॉड, देखिए भाई बातों से क्लियर हो रहा है, मेरे को बताने की जरूरत भी नहीं पड़ी, हाजिर जवाब भी आप साथ में, बहुत मजा आ रहा है आपसे बात करके। प्लीज आप
5: सुन सुन
0: के सीखा है भगवान, मैं अभी लग रहा है मैं डूब के यही गिर पड़ूंगी, इतनी खुशी मेरे से कंट्रोल नहीं हो रही, ओवर हो रहा है वैसे, लेकिन मैं लेना चाहूंगी, मजा आ गया। थैंक यू सो मच, प्लीज स्वागत है आपके सॉन्ग का।
5: ठीक है।

0: ना भाई, हमको लग रहा है कि हम 60s 70s के कोई मूवी और रेट्रो सॉन्ग चल रहा है, दो हीरोइने हैं। माय गॉड व्हाट अ एनर्जी यू हैव, व्हाट अ वाइब यू हैव मैम, मैं क्या बोलूँ, स्पीचलेस। थैंक यू सो मच, आज आपने कॉल किया पहली दफा और पहली दफा में आपने मेरे दिल में घर कर लिया।
1: हम आपके दिल में बहुत पहले से रहते हैं, आपने ध्यान नहीं दिया होगा जैसे आप मेरे रहती हैं।
0: ओह माय गॉड, अब तो हमको लग रहा है सच में हमको थोड़ा सा गिलबिला जाना चाहिए। थैंक यू सो मच, मींस अ लॉट फॉर मी। अब मैं थोड़ा सा शांत हो लूं।
1: थैंक यू, थैंक यू,
0: ओके, थैंक्स अ लॉट।
1: यहाँ तक दिखाई दे रहा है,
0: ए भगवान मैं कहाँ छिपू। थैंक यू,
1: थैंक यू, गॉड ब्लेस यू,
0: सेम टू यू डियर। देखते हैं भाई नेक्स्ट कॉलर हमारे साथ में कौन है, काफी देर से कॉल आ रही है। हेलो। हाँ जी नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं।
2: हरिश्चंद शर्मा जी,
0: आपका स्वागत है गुंडा मैसेज मसाला विथ आरजे बीना वाला में, लेकिन आज आपकी होस्ट और दोस्त है आरजे आकांक्षा। फिलहाल मैं आपसे जानना चाहूंगी आप सुन कहाँ से रहे हैं, हमें
2: क्या कह रहे हैं
0: आप, हमें कहाँ से सुनते हैं सर?
2: कोई गाना सुनाइए बढ़िया।
0: नहीं वो तो हम सुनाएंगे, लेकिन पहले बताइए आप हमें सुन कहाँ से रहे हैं, किस जगह के निवासी हैं आप?
2: हम यहाँ खुरासा के पास से बोल रहे हैं
0: जी। हम आपसे सुने उससे पहले हम जानना चाहेंगे आपसे कि अगर आप अपने मित्र को कहीं कभी बुलाते हैं तो क्या वो आपके लिए तत्काल आ जाते हैं?
2: नहीं, अरे आप हमारे बेटी के समान हैं।
0: नहीं नहीं, हम अपनी बात नहीं कर रहे, हम कह रहे हैं आपके लाइफ में आपके दोस्त होंगे, मित्र होंगे, तो अगर आप उनको कभी भी किसी भी सिचुएशन में इन द एनी केस रात के मान लीजिए 2 बजे आपको बुलाना है, तो आपने उन्हें कॉल किया और आपने बुलाया, तो क्या वो आपसे मतलब मिलने तुरंत आ जाएंगे, आपसे वो सवाल पूछते भैया क्यों आना है?
2: नहीं नहीं, तुरंत कौन आ जाएगा, पहले पूछेंगे भाई।
0: अच्छा पूछेंगे, बिना पूछे नहीं आते हैं? तो फिर हमारे दोस्त किस कैटेगरी में आते हैं, पूरे वेल्ले हैं क्या, मतलब बिना पूछे ही पहुंच जाते हैं? मतलब मैं अपने आप को ओवर लकी समझूं? क्या सुनना चाहेंगे साहब, प्लीज बताएं।
2: अरे आप जानते हैं आपसे मुलाकात भी हो चुकी है हमारी।
0: ओ मैं मिस कर रही फिर आपको, मेरे को बिल्कुल नहीं याद आ रहा है आप कौन हो, सो सॉरी।
2: पहचान गई?
0: नहीं पहचान पाई, वही तो मैं कह रही हूँ मैं रिकॉल नहीं कर पा रही।
2: अरे हम मनी के पिताजी बोल रहे हैं।
0: ओह माय गॉड, ऐसा आप मेरे साथ मजाक करेंगे? मैंने सोचा भी नहीं था। पहले तो आपको नमस्कार है हमारी ओर से।
2: नमस्कार, हम लोग बैठे हैं यहाँ ऐसे ही। हमने कहा लाओ
0: भाई, हम आपसे नहीं अंकल, हम आपसे बस इतना ही कहेंगे कि भाई मेरे दोस्तों को कुछ मत कहिएगा, वो बेले नहीं है। जी क्या सुनना चाहेंगे प्लीज बताएं।
2: अरे सुनाइए कोई बुजुर्गों वाला गाना।
0: नहीं तो आप बताएं ना आपकी पसंद क्या है।
2: हाँ आप अपने पसंद से सुनाइए।
0: अपनी पसंद से बुजुर्गों वाला गाना कैसा होता है मुझे नहीं पता है, आप अपनी पसंद बताएं ना प्लीज। हाँ आज बताना पड़ेगा, मैं तो कहती हूँ कि आप आंटी के लिए कोई गाना बताएं।
2: चलिए सुना दीजिए।
0: कौन सा?
2: बाहरों फूल बरसाओ।
0: जरूर जरूर सुनाते आपको। थैंक यू फॉर कॉलिंग, टेक केयर अंकल जी। तो भाई ये थे हमारे हरीश चंद्र शर्मा जी, और भाई नेक्स्ट कॉल भी आ रही है और काफ़ी सारी डिमांड्स भी मेरे पास में पेंडिंग है, तो अभी पूरी करते हैं, लेकिन उससे पहले देखते हैं कौन हमारे साथ में। हेलो हेलो।
3: हाँ जी नमस्ते
0: जी, नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं।
3: मेरा शुभ चंद्रभान दत्त है, मैं बेस्ट अनुपम टेलर से बोल रहा हूँ
0: जी। कहाँ से बोल रहे हैं चंद्रभान जी? पटेल नगर से आपका बहुत बहुत स्वागत है, और चंद्र भान जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, क्या आप अपने अल्फाज में कुछ लाए हैं हमारे लिए या हम आपसे कोई सवाल करें?
3: मैं आपको एक गीत सुनाना चाहता हूँ।
0: बिल्कुल, इरशाद है, वेलकम है, स्वागत है, फरमाएं।
3: फिल्म है पत्थर के सनम।
0: ओहो पत्थर के सनम, नहीं फूल जो तो हो ही नहीं सकती, पत्थर के सनम से अगर आप कुछ भी लेके आएंगे तो वो पथरीला ही होगा और मजा आएगा सुनने में। बड़ा मजा आने वाला है, मैं उम्मीद करती हूँ आपसे कि बहुत मजा आएगा। प्लीज स्वागत है, शुरू करें।
2: मोहब्बत का खुदा जाना, पत्थर के सनम तुझे हमने, मोहब्बत का खुदा जाना, बड़ी भूल हुई अरे हमने, ये क्या समझा ये क्या जाना, पत्थर के सनम चेहरा तेरा दिल में लिए चलते रहे अंगारों पे, तू हो कहीं सजदे किए हमने तेरे रुखसारों पे, हम कोई दीवाना, पत्थर के सनम तुझे हमने, मोहब्बत का खुदा जाना, पत्थर के सनम सोचा था ये बढ़ जाए तन्हाइयां जब रातों की, रास्ता हमें दिखलाएगी तमने वफाई ने आँखों की, होकर तभी

0: बसन के सनम ऐसा होती खबर उन्हें किसे ठुकराया है ईसा नहीं सागर मंदिर सा एक दिल है वीराना पत्थर के सनम तुझे हमने मोहब्बत का खुदा जाना पत्थर के सनम। थैंक यू मैडम, धन्यवाद।
1: क्या बात है भाई, वो दौर आपने याद दिला दिया जब बचपन में हम मूवीज देखा करते थे और ये मूवी खास हुआ करती थी और इसके सारे गाने एक नंबर के हैं और ये गाना तो कुछ खास ही है। बहुत मजा आया, थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग, टेक केयर सर।
0: मैडम जी क्या है कि मैं बहुत दिन के बाद में आपके संपर्क में आया हूँ, भी आज रईस भाई जब आपको कुछ सुनाए गुनगुनाए हैं तो हमको भी अंदर से
1: नहीं बहुत अच्छा गाया आपने और मुझे वो दौर में ले गए, इसके लिए मैं आपको बहुत बड़ा वाला थैंक यू कहूंगी। थैंक यू सर,
0: थैंक यू जी।
1: चलते हैं हमारे पास में नेक्स्ट कॉलर की कॉल आ रही है, काफी देर से देखते हैं कौन है। हेलो
2: हेलो,
1: हाँ जी नमस्कार, वेरी वेरी गुड इवनिंग। और ये एनर्जेटिक वॉइस बता रही है कि ये कोई और नहीं अनु पांडे जी है।
2: यस।
1: कैसी है अनु जी?
2: मैं तो बहुत अच्छी हूँ, बताइए आप कैसे हो?
1: बस थोड़े से गले से नासाज हैं, बाकी तो सब आपकी दुआएं हैं। बेशक, आपसे तो मुझे लगता है दो चार सवाल नहीं कर लेने चाहिए, काफी सवाल कर लेने चाहिए। आप तो पूरी पूरी क्या बोलेंगे लाइब्रेरी है जो आप दोस्ती पे जवाब देती जाएंगी।
2: हाँ ये तो सही है, मेरे पास बहुत जवाब है।
1: मुझे मालूम है, चलिए ज्यादा नहीं, बस आपसे आप ऐसे हर दफा किसी ना किसी को फंसाती हैं, आज मैं आपको फंसा रही हूँ सिचुएशन में। सिचुएशन ये है कि अगर आपकी बेस्टी आपकी ट्रीट खा कर कहे अगली बार मेरी हाँ? तरफ से, तो आप हाँ? उस सिचुएशन पे उसके लिए कौन सा गाना गाएंगी?
2: इसके लिए मैं यही सॉन्ग गाऊंगी, तुमसे मिलना बातें करना बहुत अच्छा लगता है।
1: तो बातें करना हो गया ना, खाने पीने की बात हो रही है।
2: खाने पीने में
1: हाँ, अगर वो खा के कह रही है, मतलब आपने ट्रीट ना भी दी और उसने आपके हिस्से से कुछ भी खा लिया, फिर कह रही है नेक्स्ट टाइम मैं खिलाऊंगी, तो आप क्या गाना वहाँ पे डेडिकेट करना चाहेंगी? अरे इतना लंबा वाइब्रेशन क्या था?
2: यही गा दूंगी ना।
1: सच में वो डर जाएगी, कहेगी माता जी आ गई है हमारी बेस्टी के ऊपर।
2: ऐसा तो कर ही नहीं सकती है, मैं जहाँ बोलू ना वहाँ हाजिर रहती है। उसकी शादी हो गई पर अभी फाइनली, जिस दिन उसकी शादी थी ना उस दिन वो मुझको लेने आई थी। अरे चलो कितना लेट कर रही हो, और हल्दी के दिन भी मुझको लेने आई थी।
1: ओह क्या बात है भाई, तब तो आपका दोस्त नहीं वो सोना दोस्त है, और उस सोने को कभी खोना नहीं, बस इतना कहूंगी।
2: और वो मेरे पास कॉल करती, मैं उसको डांट देती हूँ तुम्हारे पास और कोई काम नहीं, फालतू बैठी हूँ, बार बार कॉल करती हूँ, तो भी वो बात करती है तो भी। और मैं जितनी बार अगर उसकी कॉल कट करूंगी ना तो बहुत कॉल करेगी, तब की उसके पास दो बच्चे हैं, फैमिली है और जॉब भी है।
1: देखा मैंने कहा था ना कि वो सोना दोस्त है आपका, वो दोस्त नहीं है, वो सोना दोस्त है, उसे मत खोइए, बस इतना ही कहूंगी।
2: वो खो ही नहीं सकती है, वो जाएगी नहीं मुझको छोड़ के,
1: वो जाएगी नहीं और आप जाने भी नहीं दोगे जी। बहुत बहुत शुक्रिया, मजा आ गया आपसे बात करके। और आपके दोस्त
2: बता दूं मैं आपको जी, जब वो फाइनली जब उसके फर्स्ट बेबी हुआ, जब वो आई मायके में जी पहली बार जी, तो पहली बार आई तो दूसरे दिन मुझसे मिलने आई, तो हमने कहा अरे तुम तो आ गई हो, बच्चे से कब मिलवाओगी, कहीं बच्चे को आके घर लेना पड़ेगा, अभी लेकर आना पड़ेगा, मैं ऐसे नहीं ला पाई तो इसलिए नहीं लाई। मैं घर गई लेने के लिए तो मार्केट चली गई थी, तो घर वाले बोले जूली तो है नहीं, जूली तो मार्केट गई है और बच्चा इतना छोटा है कैसे लेकर जाओगी। हमने उसके पास कॉल किया, हमने कहा देखो आंटी क्या बोल रही, उसने कहा बच्चा लेकर जाओ, मैं जब आऊंगी शाम को तब लेने आऊंगी, बच्चा तुम दे दे फिर होके लेकर जाओ।
1: बहुत बहुत खूब, वैसे भी आज के जमाने में बच्चों को कोई देता नहीं, लेकिन जो दोस्त होते हैं वो मान जाते हैं और ऐसे ही होते हैं कि मैं रहूं या ना रहूं आप अलाउड हो बिल्कुल से। और काफी अच्छी दोस्ती, वही मैंने आपसे कहा कि वो दोस्त नहीं आपकी सोना है, उसको खोइएगा नहीं। बहुत बहुत शुक्रिया, शॉर्ट टाइम में ही आज आपने बहुत कुछ कहा और मुझे खुशी हुई कि आपने कॉल किया और मैं हंस पाई आपकी बदौलत। थैंक यू फॉर कॉलिंग।
2: अरे मैं आज पहली बार शो सुन रही थी और मैंने जैसे सुना था वैसे मैंने कहा तुरंत कॉल कर दी।
1: और हमारी जी जी कैसी हैं?
2: जीजी भी बहुत अच्छी है, सब लोग बहुत अच्छे हैं, बस अभी जो सुना तो हमने कहा अभी तो कॉल करना बनता है, अभी कॉल करूँ अभी बात करूँ। और मेरे पास मैम ना इतनी बात रहती मैं क्या करूँ फिर, लेकिन अभी कॉल कट कर दूंगी, सब लोग गुस्सा हो जाए।
1: वही बात है, लग लेना चाहिए। थैंक यू, बाय, ठीक है। तो ये थी हमारे साथ में हमारी प्यारी अनु जी, जो हमारे साथ में कॉल पे थी। लगातार आप सभी की कॉल्स आ रही है अभी भी, लेकिन अब मैं चलना चाहूँगी चैट बॉक्स की ओर। उसके बाद में दो सॉन्ग है जो मैं प्ले करना चाहूँगी, और फिर देखते हैं कि हमारे पास में नेक्स्ट कॉलर कौन है। वैसे तो मुझे लग रहा है कि फरमाइशों का टाइम भी हो जाएगा तब तक। तो चलते हैं हम मैसेजेस की ओर, और मैसेजेस में मैसेज आया हुआ है हमारे प्यारे प्रमुख कुमार जी का, लुधियाना से। लिखते हैं, गुड इवनिंग प्रिय उद्घोषिका महोदया जी, सादर नमस्कार, कैसी हैं आप? थोड़ी सी प्रॉब्लम हो गई थी इसी के कारण मैं जुड़ नहीं पा रहा था। उम्मीद है अभी आप साकुशल होंगे, और अगर नहीं भी होंगे तो ऊपर वाला जल्द आपको ठीक करेगा। और इन्होंने एक कविता अपने प्यारे मित्र के नाम लिखी है, लिखते हैं, मेरे भाई के लिए पढ़ दीजिएगा, मुझे लिखना बहुत कम आता है। छोटी सी कविता है मेरे प्यारी भाई के लिए। तो लिखते हैं, दोस्ती की वो पहचान है, मुश्किल राहों में साथ निभाए, खुशियों की वो मुस्कान है, उनके जैसा यार मिले तो जीवन बन जाए आसान। ओ माय गॉड, दिल से करता हूँ मैं उनका सम्मान। ओके, इनके भाई इनकी जान। ओके, थैंक यू सो मच। और इन्होंने नाम भी मेंशन किया है, राधे भाई इनकी जान है। तो उम्मीद है कि आपकी दोस्ती यूँ ही कायम रहेगी, मरते दम तक वो आपके साथ ही रहेंगे, और हो सकता है अगले जन्म भी, अगर इस जन्म कुछ कम रह जाए तो। बाकी आप समझदार हैं। और भाई हमारी कोई बात इनको बड़ी प्यारी लग गई, और कहते हैं कि जेठ का महीना बीत जाए, बहुत बढ़िया गावत थी, अगर आप हमें अपन चेला बना लो तो हमको सीख जावे जरूर। आप सुनते रहिए रेडियो ज्ञान असली, थोड़ा बहुत तो सीख ही जाएंगे। और इसके अलावा हमारे साथ में आरजे सोनी जी भी हैं गोपालगंज से। दोस्ती पर प्यार भरी कविता इन्होंने लिखी है, दोस्ती एक प्यारा रिश्ता है जो हर दिल को सबसे सच्चा लगता है, खुशियों में साथ हंसाना सिखाता है, गम में हिम्मत बनकर साथ निभाता है, ना कोई लालच ना कोई शर्त होती है, दोस्ती तो बस दिलों की बात होती है, छोटी छोटी बातों में मुस्कान भर देती है, सुनी राहों को भी आसान कर देती है, सच्चा दोस्त वही कहलाता है जो हर हाल में साथ निभाता है, दुनिया चाहे कितनी भी बदल जाए, दोस्ती का रिश्ता हमेशा दिल में बस जाता है। बाकी लाइन आप खुद पूरा कर लीजिए। ये क्या था? थैंक यू सो मच। वैसे मैं समझ गई, इनका कहना था आप मुस्कुरा दीजिए। थैंक्स अ लॉट मींस अ लॉट। और अगर कोई आपकी स्माइल की गुजारिश आपसे करे तो इससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता है आपकी लाइफ में। और नेक्स्ट मैसेज मेरे पास में आया हुआ मनीष शर्मा जी का, खुरासा से, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करती है आप कितनी आर्ज आकांक्षा। और साथ में नेक्स्ट मैसेज हमको दिख रहा है जो चैट बॉक्स में, काफ़ी सारी हार्ट इमोजीज आई हुई हैं, उसके लिए भी धन्यवाद, आप लोग को गाना पसंद आया। इसके अलावा हमारे साथ में जुड़ी हुई है शिल्पी बनर्जी, कहती है, हेलो आकांक्षा मैम कैसी हैं, बस आपकी दुआओं जैसी हूँ, और आपकी दुआ काफ़ी प्यारी होती मुझे ये भी अच्छे से पता है, बहुत बहुत स्वागत है आपका शिल्पी जी। और इसके अलावा अनुराधा मिश्रा जी भी आ गई हैं, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा मुझे, मेरा दिन बन गया, यकीन मानिए ऐसी वाइब्स ऐसी एनर्जी बहुत रेयर होती है जब मैच करती है। और हमारी भाई मंगू जी भी आ गई है, नमस्कार मैम जी करते हुए, जी हाँ बहराई से नेहा जी भी आ गई हैं, आपका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मुकेश यादव जी भी जुड़ चुके हैं, कैसे हैं आप मैम जी? बस बहुत, मतलब थोड़ी सी गले में खराबी थी, लेकिन ऐसा लग रहा है कि शो करने के बाद आप लोगों की दुआएं लग गई हैं और मेरे गले का हालत 50% तो भाई सही हो गया है। थैंक यू सो मच, आप लोग की दुआएं मेरे साथ में हैं। और लगातार एक कॉल आ रही है तो वो हम ले लेते हैं। और साथ ही साथ में धर्मेंद्र मोहन भारती जी आवाज़ विकास कॉलोनी गोंडा से, आकांक्षा जी नमस्ते, मैं तो आपकी आवाज़ सुनकर ही मुस्कुरा रहा हूँ, इससे बड़ी दोस्ती क्या हो सकती है, वाकई इससे बड़ी दोस्ती कोई नहीं हो सकती है। थैंक यू सो मच फॉर योर लवली वाला मैसेज। और देखते हैं हमारे साथ में कॉलर क्या कहना चाहते हैं। हेलो,
3: नमस्कार
1: जी। नमस्कार, अपना शुभ नाम बताएं प्लीज।
3: अरे दोबारा मैं जुड़ रहा हूँ
1: जी, कहिए कैसे हैं? अगर मैं गलत नहीं तो अनिल बनर्जी जी हैं आप।
3: आप शास्त्री हो सकती
1: है जी, शास्त्री तो भाई हम कहेंगे, आपने कितने शास्त्र पढ़े?
3: पढ़ा तो ज्यादा नहीं हूँ
1: जी,
3: बस प्यार का दो लफ्ज पढ़ा हूँ, सबसे बड़ा शास्त्र वही
1: है। ओह, क्या क्या पढ़ा है जरा फिर से दोहराइए।
3: प्यार के दो शब्द,
1: वो दो शब्द कौन से हैं वही जानना चाहती मैं आपसे।
3: प्यार के दो ही शब्द होते हैं,
1: प्यार के दो ही शब्द होते हैं, कौन कौन से होते हैं?
3: तो बाकी दो शब्द होते हैं वो एक्सेप्टेशन होते हैं
1: जी,
3: जो बाकी होते हैं वो प्यार होता है।
1: ओह क्या बात है।
3: और सुनिए,
1: हाँ जी,
3: मैं एक, अगर आपको टाइम हो तो मैं एक रफी साहब का बड़ा प्यारा गजल है
1: जी, मैं चाहूंगी आप एक ही अंतरा सुनाएं ताकि हम दो सॉन्ग है मेरे पास में पेंडिंग, वो कंप्लीट करके तब यहाँ से जाएं।
3: नहीं,
1: अरे नहीं, मैं चाहूंगी आप सुनाएं, आपकी इतनी प्यारी आवाज मैं मिस कैसे कर सकती, लेकिन मुझे कोई उधर से गाने वाला नहीं है, मेरे पास में दो गाने हैं जो मैंने आज किसी को सुनाने हैं, बस इतनी सी बात थी और कुछ भी नहीं। प्लीज आप इरशाद फरमाएं प्लीज।
3: फिर मैं ये बच्चों पे,
1: देखिए मैं आपसे मैं आपसे ये भी बताना चाहती हूँ कि म्यूजिक इंडस्ट्री या फिर अगर म्यूजिक की बात करते हैं तो मोहम्मद रफी साहब हमारे अब पहला प्रेम है, तो मैं चाहूंगी कि आप सुनाएं।
3: आपके साथ मैं भी आपसे जुड़ा हुआ।
1: ओहो, बहुत बहुत शुक्रिया, प्लीज इरशाद फरमाएं।

0: मुखड़ा ही सुना देंगे, कोई
1: नहीं मुखड़ा नहीं, एक अंतरा, एक अंतरा। जी
0: तो मैं शुरू करो?
1: जी जी बिल्कुल।
0: छोले ने दो न दुख को, कुछ और नहीं है जम गे, छोले ने दो न दुख को, कुछ और नहीं है जा ये कुदरत ने जो हमको बख्शा है, वो सबसे हंसी नाम है ये, छू लेने दो नाजुक होठों शर्मा के नयो है देना, रंगीन जवानी के घड़ियां, शर्मा के नयो ही को देना, रंगीन जवानी के घड़ियां, बेसब धड़कते तीनों का अरमान भरा पैगाम है ये, छोले ने दो नाजुक होठों को। थैंक यू मैम।
1: मोस्ट वेलकम एंड थैंक्स अ लॉट टू यू कि आपने इसको पूरी तरह से निभाया और हमको थोड़ा सा एहसास कराया कि आज भी हम उस दौर के गानों को बिल्कुल से याद कर सकते हैं आप जैसे कलाकारों के थ्रू।
0: एक्चुअली क्या ना जी, पुराने गाने में जो
1: बात है वो आजकल के गानों में कहा।
0: इससे पहले जो मैंने गाना गाया था वो पीलू राग में, कोशिश करता हूँ तो छूट गया, क्योंकि सबसे बड़ी जानती है आपकी रोटी कमाना है खाना है,
1: बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो बहुत बहुत जी जी बहुत बहुत शुक्रिया आपकी कॉल के लिए, लगातार अभी भी कॉल्स आ रही हैं, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने दोबारा कॉल किया।
0: जी
1: जी ठीक है। तो ये थे हमारे साथ में अनिल बनर्जी जी, यानी अनिल शास्त्री जी हमारे साथ में बने हुए थे, और उद्दालक शर्मा जी का भी मैसेज आ गया है, गुड इवनिंग मैम, गुड इवनिंग आपको भी, आपकी भी संध्या खूब बड़ी वाली शुभ हो। और इसी बीच में नेहा जी का कहना, मैम जी हम कॉल तो कर लें लेकिन हमारा बिटवा परेशान कर रहा है, हम क्या करें, तो आप उनका ख्याल करें, बस इतना ही कहेंगे आपसे। नव्या जी भी हमारे साथ में जुड़ गई हैं, गुड इवनिंग कैसी हैं आप? तो भाई मैं बहुत अच्छी हूँ और बस आपकी तरह ही मैं भी कर रही हूँ, और बस ये इतना कहना चाहूंगी। ओके उद्दालक जी, आप जिनके बारे में पूछ रहे हैं जब वो आपसे रूबरू होंगे आप उनसे खुद ही पूछ लीजिएगा। फिलहाल हम चलते हैं, अब लेते हैं आपसे इजाज़त इस शो से, यानी कि गोंडा मैसेज मसाला से। कैसा रहा शो फीडबैक दीजिएगा, और बस यही कहूँगी कि कुछ कारवां ऐसा होता है जो कभी कभी होता है लेकिन एकदम मुकर्रर होता है, और वो कारवां आज का रहा आप सभी के साथ में। काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी सारी बातें हुई, कुछ तो ऐसे पल गुजरे कि मतलब एक एनर्जी ही कुछ अलग लेवल की थी, कुछ प्यारी सी मुस्कान, कुछ प्यारे से सवाल, कुछ प्यारे से नगमे। और हाँ, दो गाने मुझे अभी भी याद है कि मुझे प्ले करके जाने हैं। एक गाना था हमारे प्यारे मनीष शर्मा जी के पिताजी का, और दूसरा हमारे रईस साहब का। तो चलिए रईस साहब की दोस्ती के लिए और मनीष शर्मा जी के माता जी के लिए ये गाना मैं आप लोगों को बतौर तोहफा दिए जा रही हूँ, और नेक्स्ट शो आप एंजॉय करिएगा आपकी अपनी प्यारी आरजे सिंपल के साथ में, गीत आपके नाम से। तब तक के लिए अब मुझे दीजिए इजाज़त और ये गाना एंजॉय करिए, बाय बाय, टेक केयर। फिलहाल एक गाना कॉल आ रही है और देखते हैं कौन है, ले ही लेते हैं। हेलो हेलो,
2: गुड इवनिंग,
1: बहुत अच्छी हूँ मैं, अपना शुभ नाम बताएं प्लीज।
2: नव्या
1: जी, नव्या जी बहुत बहुत स्वागत है, और अभी जाने का वक्त हो गया, आपने बहुत लेट में कॉल किया है इसलिए मैं आपसे माफी चाहूंगी।
2: अभी मैंने बस खोला, मैंने तुरंत कॉल कर दिया, टाइम नहीं मिला, काम में व्यस्त थे।
1: कोई बात नहीं, अपना ख्याल रखिए, बस इसी दुआ के साथ अभी मैं चलती हूँ क्योंकि मेरे जाने का वक्त है, तभी आएंगी आरजे सिंपल और आप लोग की फरमाइशें ले पाएंगी। ठीक है, ओके ठीक है, ठीक है, ठीक है डियर। तो फिलहाल चलते हैं भाई, हमारी नव्या जी ने हमें कॉल किया था उसके लिए उनका बहुत तहे दिल से

शुक्रिया, और इन गानों को आप एंजॉय करिए। अब हमें इजाजत दीजिए, मिलते हैं कल आपके शो में। जी हाँ, कॉलर ट्यून गुंडा के साथ में। बाय बाय, टेक केयर। प्यारे प्यारे हमारे श्रोतागणों, हमारे मित्र मित्राणियों, सभी को आदाब अर्ज करती है और चलती है अब आपकी अपनी आर्ज आकांक्षा अपने घर की ओर।

सो दोस्तों नमस्कार, आदाब एंड सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का आपके अपने शो फरमाइशी में, आपकी अपनी आज सिंपल नॉट सो सिंपल के साथ में। और किसी ने क्या खूब कहा है कि मैं हकीकत का मुसाफिर हूँ, फसाना नहीं पसंद, दिखावे की दुनिया का मुझे जमाना नहीं पसंद। जो बदल जाए वक्त देखकर वो रफ्ता कैसा, मैं रिश्तों में कोई बहाना नहीं पसंद। उजालों में तो हर कोई साथ खड़ा हो जाता है, जो अंधेरों में ना आए वो याराना नहीं पसंद। मिजाज अपना फकीराना है, खुद में ही खुश हूं, किसी के एहसानों का ताना बाना नहीं पसंद। मैं झुककर जीऊं ये मेरी फितरत में नहीं शायद, मैं झुककर जीऊं ये मेरी फितरत में नहीं शायद, मुझे खुद को खोकर किसी को पाना नहीं पसंद। सो कैसे हैं आप सब, क्या है हालचाल और क्या है आज की शाम में? बहुत खास खास बहुत प्यारी प्यारी बात मुझे ज़रूर बताना चैट बॉक्स में। लेकिन उसके पहले जिन लोगों ने अपनी फरमाइशी की गठरी को नहीं खोली है, फटाफट से अपनी फरमाइशी की गठरी को खोल लीजिए। इसमें से बहुत ही खूबसूरत सा बहुत ही प्यारा सा गाना टटोल लीजिए, उस गाने को लाके हमारी आज की फरमाइशी की प्लेलिस्ट में ऐड कर दीजिए और लगा दीजिए जितने चांद आप लगाना चाहते हैं, हजारों लाखों करोड़ों अनगिनत। क्यों? क्योंकि शो आपका, जज्बात आपके, गीत आपके, गीत आपके नाम से भी रहेंगे और ये आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी है। सब कुछ करना। लेकिन उसके पहले भाई, कल था संडे, आज है मंडे, मींस आप लोगों ने मुझे बहुत सारा मिस किया होगा, है ना? सो किन किन लोगों ने मुझे मिस किया है वो भी चैट बॉक्स में जरूर बताना। फिलहाल वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। प्रमुख कुमार जी लुधियाना से, आशु मिश्रा जी लखनऊ से, नव्या गोंडा से, उदालक शर्मा मनकापुर से, विजय पाल यादव जी ललवा लखीमपुर खीरी से, धर्मेंद्र मोहन आवास विकास गोंडा से, पिंटू यूपीएससी लवर हाँ बालपुर से आपका भी स्वागत है, गीता श्रीवास्तव जी गोंडा से स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम इन योर शो, सुरेश कुमार जी चौक से, निबजी रानी बाजार सुनार गली गोंडा से, मुमताज अंसारी जी गोंडा से, निशा पटेल नगर गोंडा से, चांदनी गोंडा से आप सभी का स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी आज सिंपल नॉट सो सिंपल। सो चलिए ना चलते हैं ना हमारी आज की पहली फरमाइश की तरफ ना। सो हमारे पास में पहली फरमाइश है आशु मिश्रा जी की लखनऊ से और उनको सुनना है गाना जाने दो मुझे जाना है। सो एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा गाना, सुपर डुपर डुपर हिट गाना शहनशाह मूवी का, सिर्फ और सिर्फ आशु जी की फरमाइश पर। और दोस्तों ऐसे अपने पसंदीदा गीतों को एंजॉय करने के लिए और अपनी आरजे सिंपल नॉट सो सिंपल की खट्टी मीठी और थोड़ी थोड़ी कड़वी बातों को एंजॉय करने के लिए सुनते रहिए रेडियो ज्ञान स्थल 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। स्टे ट्यून्ड।

जाने तो जाने तो मुझे जाना है और वादा जो किया वो निभाना है। हमने एंजॉय किया है ये गाना आशु मिश्रा जी की फरमाइश पर, जो कि है लखनऊ से ना लेट्स गो टोकले वाले डिमांड की तरफ। लेकिन इसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। प्रीति शुक्ला जी बहराइच से आपका स्वागत है, नेहा बहराइच से आपका भी स्वागत है, और नीना स्टे ट्यून्ड एंड मोहम्मद मुशीब जी बाराबंकी से स्टे ट्यून्ड एंड वेलकम। और इंजॉय करते हैं अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है उदालक शर्मा की। उदालक शर्मा को सुनना है गाना दिलबर मेरे कब तक मुझे, सो इंजॉय करते हैं। ओह माय गॉड वाला नगमा मींस किशोर कुमार जी की आवाज में ये सुपर डुपर हिट ओल्ड इज गोल्ड वाला नगमा उदालक शर्मा की फरमाइश पर, जो कि है मनकापुर से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

हम एंजॉय किए बहुत ही खूबसूरत सा नगमा उदालक शर्मा की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों धर्मेंद्र मोहन की आवाज विकास गोंडा से, और उनको सुनना है गाना खुदा दोस्ती को नजर ना लगे। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश। स्टे ट्यून्ड एवरीवन एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो द ग्रेट सेंट साहब एंड नागेश्वर धाकर एंड इम्तियाज अहमद फ्रॉम गोंडा। स्टे ट्यून्ड।

खुदा दोस्ती को नजर ना लगे, हमने एंजॉय किया ये बहुत ही बेहतरीन सा, बहुत ही खूबसूरत सा नगमा धर्मेंद्र मोहन की फरमाइश पर। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मनीष शर्मा फ्रॉम खुरासा गोंडा और संतोष जी संतोष कुमार फ्रॉम गिलौली, आपका भी स्वागत है। और चांदनी स्टे ट्यून्ड, बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ दोस्तों। लेकिन उसके पहले मैं आप लोग को बताना चाहूँगी कि हमारे एक लिसनर हैं वजीरगंज के आगे कहीं वो रहते हैं, उनका नाम है शिव कुमार मौर्य और वो बागबानी करते हैं। तो उनकी बागबानी देखने के लिए कल मैं वहाँ गई थी और मैं रास्ते में शायद ये खुरासा मनीष शर्मा का घर शायद भटपुरवा गांव में है, मैंने भटपुरवा गांव का वो बोर्ड भी देखा था। मेरे बहुत सारे लिसनर्स उस साइड में रहते हैं तो मेरे मतलब जितना जितना मैं पास आती गई, जितना जितना मुझे गांव दिखता गया, जितना जितना मुझे कुछ याद आता गया, जैसे गौरा चौकी का भी एक बोर्ड लगा हुआ था तो सुरेंद्र यादव जी भी मुझे याद आ रहे थे, मनीष शर्मा याद आ रहे थे और मझारा से सुनील मझारा, मतलब लाइक आप सब मुझे कल याद आ रहे थे। तो सच में मैंने आप सभी को याद किया है और चलिए इंजॉय करते हैं ये वाला गाना। वो तो कहो मुझे एड्रेस नहीं पता था दोस्तों, नहीं तो मुझे तो ऐसा लगता है कि मैं आप सबके घर चाय पानी पीने और ख़ास तौर पर भाई गर्मियों में सबके घर पर शरबत पीने जाने का मज़ा ही कुछ और होता है, तो आप सबके घर पर मैं शरबत भी पीने आ चुकी होती। थैंक गॉड मुझे एड्रेस नहीं पता है। और वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो मुकेश यादव फ्रॉम गोंडा, एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है पिंटू की, पिंटू यूपीएससी लवर की और उनको बालपुर से सुनना है गाना तुम गवाही दो। सो एंजॉय करते हैं कुमार सानू की आवाज में ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: सो हमने एंजॉय किया ही ये गाना पिंटू की फरमाइश पर, जो कि है यूपीएससी लवर और बालपुर से। हाँ, सो बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों गीता श्रीवास्तव जी की गोंडा से। उनको सुनना है गाना कि थोड़ा थोड़ा प्यार हुआ तुमसे। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना गीता जी की फरमाइश पर। और दिल से स्वागत है आपका के गुप्ता जी तिरंगा कॉम्प्लेक्स गोंडा से। स्टे ट्यून्ड।
1: जिमी
0: आई लव दिस सॉन्ग। और बहुत दिनों बाद मैं ये गाना सुनने जा रही हूँ। सो थैंक यू सो मच गीता श्रीवास्तव जी इस गाने की फरमाइश करने के लिए। स्टे ट्यून्ड।
1: लव दैट।
2: परफेक्ट। आई सी यू टुमॉरो देन।
1: या श्योर। एक्सक्यूज मी।

सो दोस्तों, हमने एंजॉय किया है ये बहुत ही खूबसूरत सा, बहुत ही प्यारा सा नगमा हमारी गीता श्रीवास्तव जी की फरमाइश पर, जो की है गुना से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों मोहम्मद मुशीब जी की बाराबंकी से। मोहम्मद मुशीब जी को बाराबंकी से सुनना है गाना मुल्ले मुल्ले आहा आहा आहा आहा। क्या बोल रही हूँ यार, क्या बोल रही हूँ, दिमाग में कुछ चल रहा है मेरे, लेकिन क्या चल रहा है वो मुझे खुद ही नहीं पता चल रहा है, आपको पता है क्या? हाँ, तो मैं ये बोल रही थी कि मोहम्मद मुशीब जी को बाराबंकी से सुनना है गाना मुझे अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना मोहम्मद मुशीब जी की फरमाइश पर, जो कि है बाराबंकी से। स्टे ट्यून्ड। टणन टणन टणन टणन टणन टणन। वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो। जुगल किशोर वर्मा जी एमपी से आपका तहे हुए दिल से स्वागत और इस्तकबाल है आपके अपने शो में। आहा।

बिना ईद के ही चांद का दीदार हो गया और मुझे अल्लाह की कसम तुमसे प्यार हो गया। हमने एंजॉय किया है ये गाना मोहम्मद नशीद जी की फरमाइश पर जो की है बाराबंकी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, लेकिन उसके पहले वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो, इट्स कुमार फ्रॉम एमपी दीवा, स्टे ट्यून्ड। और अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों सुरेंद्र यादव जी की गौरा चौकी से। सुरेंद्र यादव को गौरा चौकी से सुनना है गाना मत कर इतना गुरूर सूरत पर ए हसीना, तेरी सूरत पर नहीं हम तो तेरी सादगी पे मरते हैं। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर डुपर हिट नगमा हमारे सुरेंद्र जी की फरमाइश पर जो की है गौरा चौकी से।

आदमी खिलौना है का ये गाना हमने एंजॉय किया है दोस्तों सुरेंद्र यादव जी की फरमाइश पर जो की है गौरा चौकी से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ और अगली फरमाइश हमारे पास में है मनीष शर्मा की खुरासा गोंडा से। मनीष शर्मा को खुरासा गोंडा से सुनना है गाना साथी कोई भूला याद आया हुई आंखें नम और दिल मुस्कुराया। अच्छा जी तो साथी कोई भूला याद आया एंजॉय करते हैं साथी मूवी का ये गाना अनुराधा जी की बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में और ये दर्द भरा नगमा मनीष शर्मा जी ने खुरासा गोंडा से डेडिकेट किया है सन्नू शुक्ला को। सो सन्नू शुक्ला के लिए एंजॉय करते हैं मनी की तरफ से ये वाला गाना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

आया साथी कोई भूला याद आया। अनुराधा जी की आवाज में साथी का ये बहुत ही दर्द भरा सा नगमा हमने एंजॉय किया है। मनीष शर्मा की फरमाइश पर जो की है खुरासा गोंडा से, उन्होंने इस गाने को डेडिकेट किया था सन्नू शुक्ला को। एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है मुकेश यादव की गोंडा से। उनको सुनना है बहुत ही खूबसूरत सा रईस मूवी का आइटम सॉन्ग। सो एंजॉय करते हैं ये पावनी पांडे का सुपर डुपर डुपर डुपर हिट नगमा सिर्फ और सिर्फ मुकेश की फरमाइश पर, मुकेश यादव की फरमाइश पर जो की है गोंडा से।

दोस्तों बढ़ते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी मुकेश यादव की गोंडा से। अगली फरमाइश हमारे पास में है मुमताज अंसारी जी की गोंडा से, और मुमताज अंसारी जी को गोंडा से सुनना है गाना। मिलते मिलते हंसी वादियों में दिल खो गया तो क्या करोगे, और अनजाने में जाने तमन्ना कुछ हो गया तो क्या करोगे। इंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा मुमताज अंसारी जी की फरमाइश पर, और इस फरमाइशी गीत के उस तरफ हम लोग चलेंगे हमारी आकाशवाणी की न्यूज की दुनिया में, जहां हम रूबरू होते हैं देश दुनिया की खबरों से। सो देश दुनिया की खबरों से रूबरू होने के बाद में हम लोग फिर से वापस आएंगे हमारे अपने आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस और बस आपके नाम से, वो भी आपकी अपनी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। सो कहीं मत जाइएगा, यही बनी रहिएगा अपने रेडियो ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा, शहर की धड़कन पर आपकी खट्टी मीठी आरजे सिंपल, नॉट सो सिंपल के साथ में। एंजॉय करते हैं ये बहुत ही खूबसूरत सा नगमा, मिलते हैं इस बहुत ही खूबसूरत से नगमे के और देश दुनिया की खबरों के उस तरफ सीधे 9 बजे। चाय पानी नाश्ता करके आना, इनफैक्ट खाना खा के आना, क्योंकि मेरे पिताजी कहते हैं कि पहले पेट पूजा फिर काम दूजा। स्टे ट्यून्ड।

0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल। और राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन ने आज व्यापार और आर्थिक, रक्षा, सुरक्षा और सीमा प्रबंधन सहित विभिन्न मुद्दों पर चर्चा की। द्विपक्षीय वार्ता के बाद विदेश सचिव विक्रम मिश्री ने नई दिल्ली में बताया कि दोनों पक्षों ने लोगों के बीच संपर्क के लिए कनेक्टिविटी के महत्व पर बल दिया। दोनों नेताओं ने कालाधान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट परियोजना को यथाशीघ्र पूरा करने पर सहमति व्यक्त की। विदेश सचिव ने कहा कि प्रधानमंत्री ने म्यांमार की संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति भारत के समर्थन की पुष्टि की है।
1: दोनों पक्षों ने अपने सुरक्षा हितों के प्रतिकूल गतिविधियों के लिए क्षेत्र के दुरुपयोग को रोकने के महत्व पर बल दिया। कुल मिलाकर राष्ट्रपति की इस यात्रा ने दोनों पक्षों के दीर्घकालिक साझेदारी को और गहरा करने तथा क्षेत्र में पारस्परिक लाभ, विकास और समृद्धि के लिए मिलकर काम करने की साझा प्रतिबद्धता की एक बार फिर पुष्टि की है।
2: ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी इन द रीजन।
0: इस बीच राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउं लाइन का स्वागत किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार भारत की पड़ोसी प्रथम एक्ट ईस्ट और महासागर नीतियों में एक महत्वपूर्ण भागीदार है। भारत के साथ म्यांमार के महत्वपूर्ण संबंधों पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि म्यांमार दक्षिण पूर्व एशिया के लिए भारत का प्रवेश द्वार है, क्योंकि ये एकमात्र आसियान देश है जो भारत के साथ भूमि सीमा साझा करता है। उन्होंने शांति और सुलह के लिए म्यांमार के प्रयासों के प्रति भारत के अटूट समर्थन का भी आश्वासन दिया। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता आज से लागू हो गया है। समझौते पर 6 महीने पहले हस्ताक्षर किए गए थे। श्री गोयल ने नई दिल्ली में कहा कि इस समझौते से भारत के कामगारों, लघु तथा मध्यम उद्यमों जैसे विभिन्न क्षेत्रों के निर्यातकों को ओमान के बाजार में प्राथमिकता मिलेगी।
3: I am confident that this comprehensive agreement
4: हमें विश्वास है कि व्यापक समझौता ओमान के साथ हमारे संबंधों को नई गति प्रदान करेगा। पहले दिन से ही भारत को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों में शुल्क मुक्त पहुंच प्राप्त होगी और इससे भारत के ओमान को होने वाले 99% से अधिक निर्यात को लाभ मिलेगा। व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता CEPA हमारे साझा भविष्य की रूपरेखा है।
0: श्री गोयल ने बताया कि समझौते के लागू होने के बाद आज मुंबई, कोलकाता और चेन्नई से कई खेपें भेजी जा रही हैं। उन्होंने कहा कि यह समझौता अपनी उन्नत रसद और बंदरगाह अवसंरचना के माध्यम से खाड़ी सहयोग परिषद और पूर्वी अफ्रीकी बाजारों तक पहुंचने का एक महत्वपूर्ण द्वार बनेगा। श्री गोयल ने कहा कि अमरीकी FDA, यूरोपीय औषध एजेंसी या ब्रिटेन के MHRA से अनुमोदित भारतीय जेनरिक दवाओं को अब ओमान में 90 दिन के भीतर बाजार में बिक्री की अनुमति मिल जाएगी। उन्होंने कहा कि भारत ने समझौते के तहत गैर सेवा क्षेत्रों में भारतीय श्रमिकों की सुरक्षा के लिए एक बाध्यकारी प्रतिबद्धता भी हासिल की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर श्री गोयल का एक लेख साझा किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि यह समझौता रोजगार सृजन को बढ़ावा देने, किसानों के हितों की रक्षा करने और दोनों देशों के बीच साझा समृद्धि को बढ़ावा देने का अवसर प्रदान करता है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: दिशा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1-4-4-5-4 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने स्वतंत्र, खुले, शांतिपूर्ण, स्थिर और समृद्ध हिंद प्रशांत क्षेत्र को बनाए रखने में क्षेत्रीय साझेदारों के साथ सहयोग बढ़ाने के महत्व की पुष्टि की है। नई दिल्ली में दोनों देशों के रक्षा मंत्रियों के बीच दूसरी बैठक में क्षेत्र में निर्बाध व्यापार, नौवहन तथा हवाई उड़ान की स्वतंत्रता के महत्व पर बल दिया गया। बैठक की अध्यक्षता रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और ऑस्ट्रेलिया की रक्षा मंत्री रिचर्ड माल्स ने की। दोनों नेताओं ने भविष्य की प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देने पर चर्चा की। श्री माल्स ने भारत को ऑस्ट्रेलिया रक्षा विज्ञान प्रौद्योगिकी और अनुसंधान शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया। सरकार ने कहा है कि पूरे देश में पेट्रोल और डीजल का पर्याप्त भंडार है। पश्चिम एशिया के घटनाक्रमों पर नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सभी तेल विपणन कंपनियां पेट्रोल और डीजल की सक्रिय रूप से आपूर्ति कर रही हैं।
2: डोमेस्टिक एलपीजी घरेलू कुकिंग गैस के संबंध में पिछले 3 दिनों में 1,21,00,000 बुकिंग्स रिसीव हुई हैं, उसके अगेंस्ट 1,22,00,000 डिलीवरीज की गई हैं और 95% डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई हैं।
1: इस बीच सरकार ने उन फर्जी ईमेल का खंडन किया है जिनमें एलपीजी डीलरशिप और डिस्ट्रीब्यूटरशिप देने का दावा किया गया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने बताया कि info@lpg वितरक चयन पते से भेजे गए ईमेल फर्जी हैं और इनका आधिकारिक एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप चयन प्रक्रिया से कोई संबंध नहीं है। प्रामाणिक जानकारी केवल आधिकारिक एलपीजी वितरक चयन पोर्टल पर ही उपलब्ध है। पश्चिम बंगाल में आज मंत्रिपरिषद का विस्तार किया गया। राज्यपाल आरएन रवि ने कोलकाता के लोकभवन में 35 मंत्रियों को शपथ दिलाई। नवनियुक्त मंत्रियों के विभागों का आवंटन बाद में किया जाएगा। इस बीच तृणमूल कांग्रेस ने 2 विधायकों संदीप अंसाहा और ऋतव्रत बनर्जी को पार्टी विरोधी गतिविधियों, महत्वपूर्ण बैठकों में अनुपस्थित रहने और सार्वजनिक रूप से पार्टी नेतृत्व की आलोचना करने के आरोप में निष्कासित कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा को मौजूदा पेन और पेपर प्रारूप के स्थान पर कंप्यूटर आधारित परीक्षा आयोजित करने की मांग वाली याचिका खारिज कर दी। न्यायालय ने कहा कि कंप्यूटर आधारित पुनर्परीक्षा आयोजित करने का कोई सवाल ही नहीं है, क्योंकि परीक्षा रद्द होने के बाद से राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले से ही चुनौतियों का सामना कर रही है। अगली सुनवाई 27 जुलाई को होगी। इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने कहा है कि लोक अदालतों और जिला विधि सेवा प्राधिकरणों को तलाक का निर्णय देने का अधिकार नहीं है और विवाह भंग करने का अधिकार केवल पारिवारिक न्यायालयों के पास है। एक याचिका की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने कहा कि लोक अदालतों को केवल सौहार्दपूर्ण समझौते कराने का अधिकार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांतों से प्रेरित भारत में पिछले 12 वर्ष में अभूतपूर्व बदलाव आया है। आकाशवाणी समाचार विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सरकार के प्रयासों पर विशेष प्रस्तुति लेकर आया है। आज बात किसानों के कल्याण की दिशा में सरकार के कदमों की।
3: नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा पिछले 12 वर्षों में किसानों के कल्याण और उनकी आय बढ़ाने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए। इनमें सबसे प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है, जो देश की सबसे बड़ी किसान कल्याण योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत किसानों को हर साल 6,000 रूपए सीधे उनके बैंक खातों में दिए जाते हैं और अब तक लगभग 9,50,00,000 किसान परिवारों के खातों में 4,28,000 करोड़ रूपए से अधिक की राशि भेजी जा चुकी है। उत्तर प्रदेश के अयोध्या के किसान दिनेश कुमार जायसवाल ने बताया कि किसान सम्मान निधि योजना किसानों के लिए बहुत लाभकारी है।
4: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाई जा रही किसान सम्मान निधि योजना का मुझे भरपूर लाभ मिल रहा है। इससे मुझे काफी सहायता मिलती है। हम समय पर अपने खाद और बीज की खरीदारी कर लेते हैं।
3: प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना से सिंचाई व्यवस्था मजबूत हुई है और मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना के माध्यम से किसानों को मिट्टी की पोषक तत्वों की जानकारी दी जा रही है। साल 2014-15 से लेकर अब तक 26 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए जा चुके हैं। वहीं प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत करीब 23 करोड़ किसानों को 1,92,000 करोड़ रुपए के फसल बीमा दावों का लाभ मिला है। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना के तहत छोटे और सीमांत किसानों को 60 वर्ष की आयु के बाद हर महीने 3,000 रुपए की पेंशन सुनिश्चित की जा रही है। उत्तर प्रदेश के एक लाभार्थी गौरव त्यागी ने कहा कि यह किसानों के लिए बहुत फायदेमंद है।
5: किसान मानधन योजना चल रही है, बहुत ही लाभदायक है। प्रधानमंत्री की तो जितनी भी योजनाएं रही हैं वो सारी बड़ी महत्वपूर्ण रही हैं, किसान के हित में रही हैं। और ये बुढ़ापे में जो 3,000 रुपए के इसके मिलेंगे, ये जो बहुत ही बढ़िया टाइम की जो एज के हिसाब से
3: न्यूनतम समर्थन मूल्य किसानों के लिए एक मजबूत सहारा बना है, जिसके तहत किसानों को उनके उत्पादन लागत का 1.5 गुना मूल्य मिल रहा है। सरकार द्वारा उठाए गए ठोस नीतियों के कारण देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन 2013-14 के 265 मिलियन टन से बढ़कर 2024-25 में लगभग 358 मिलियन टन हो गया है। इसके अलावा भारत ने रिकॉर्ड 154 मिलियन टन से अधिक चावल का उत्पादन कर चीन को पीछे छोड़ते हुए दुनिया का सबसे बड़ा चावल उत्पादक देश बन गया है। आज भारत का किसान केवल अन्नदाता ही नहीं बल्कि देश की आर्थिक प्रगति और विकास का एक महत्वपूर्ण आधार भी बन चुका है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: ये आकाशवाणी है। मलेशिया ने 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसका उद्देश्य बच्चों को हानिकारक सामग्री, साइबर बुलिंग और ऑनलाइन गतिविधियों की लत से बचाना है। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया ने बच्चों के लिए सोशल मीडिया के उपयोग पर प्रतिबंध लगाए हैं। देश में विनिर्माण क्षेत्र में मजबूती से औद्योगिक उत्पादन सूचकांक में अप्रैल 2025 की तुलना में इस वर्ष अप्रैल में 4.9% की वृद्धि दर्ज की गई है। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने बताया कि विनिर्माण क्षेत्र में इस दौरान 6.2% की वृद्धि दर्ज की गई। मौसम विभाग ने राजस्थान, गुजरात, पश्चिमी मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक के लिए आंधी का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, उत्तराखंड, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल में हिमालय के तराई वाले क्षेत्र और सिक्किम में कल तक बिजली तथा तेज हवाएं चलने का अनुमान व्यक्त किया गया है। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे साप्ताहिक कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में लू के दौरान सुरक्षित रहें, सावधानियां, तैयारी और बचाव विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इसमें मौसम विभाग के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर डी आर पटनायक और सफदरजंग अस्पताल के चिकित्सा विभाग की डॉक्टर रूपाली मलिक भाग लेंगी। श्रोता इस विषय से संबंधित अपने प्रश्न टेलीफोन नंबर 011-233-10481 011-237-1717 पर प्रश्न पूछ सकते हैं। उत्तराखंड के चमोली जिले के यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल फूलों की घाटी को आज से पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। वन रेंज अधिकारी चेतना कांडपाल ने बताया कि फूलों की घाटी में वर्तमान में 300 से अधिक फूलों की प्रजातियां और वनस्पतियों की कई दुर्लभ किस्में हैं।
7: वैली 1 जून से 31 अक्टूबर तक ओपन रहती है। पहले बार इसकी डिस्कवरी फ्रैंक स्माइथ ने की थी 1931 में, जब वो कॉमेट के एक एक्सपीडिशन से लौट रहे थे। उसके बाद वो वैली दोबारा आई 1937 में और 1938 में उन्होंने एक बुक पब्लिश की जिसका नाम था वैली ऑफ फ्लावर्स। 2005 में यूनेस्को द्वारा वैली ऑफ फ्लावर्स को वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया।
1: अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और म्यांमार के राष्ट्रपति ऊ मिन आउ लाइन ने नई दिल्ली में वार्ता की। एक दूसरे के सुरक्षा हितों के खिलाफ अपनी भूमि के दुरुपयोग को रोकने पर बल दिया। भारत ओमान व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौता लागू। भारतीय निर्यातकों को ओमान की 98% उत्पाद श्रेणियों पर शुल्क मुक्त पहुँच प्राप्त होगी। भारत और ऑस्ट्रेलिया भावी प्रौद्योगिकी अनुसंधान में रक्षा औद्योगिक सहयोग को बढ़ावा देंगे। मलेशिया 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के सोशल मीडिया उपयोग पर प्रतिबंध लगाने वाले देशों में शामिल और राजस्थान, गुजरात, पश्चिम मध्य प्रदेश, ओडिशा और तटीय आंध्र प्रदेश में कल तक आंधी चलने का ऑरेंज अलर्ट जारी। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।

0: एक बार फिर से स्वागत और इस्तकबाल करती है आपकी अपनी आज सिंपल लॉट से सिंपल आप सभी का आपके अपने फरमाइशी प्रोग्राम में, जहाँ गीत तो बजते हैं लेकिन सिर्फ और सिर्फ बस आपके नाम से। और आपने एंजॉय किया है ये राउडी राठौर का गाना, श्रेया जी की आवाज में साजिद वाजिद का गाना, सिर्फ और सिर्फ राकेश वर्मा के बेटे कृष्णा वर्मा की फरमाइश पर। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ, बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। लेकिन इसके पहले एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत है आप सभी का, वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम। सो आई एम श्योर कि आप सभी ने अपना पेट पूजा भी कर लिया होगा और आप सभी ने देश दुनिया की खबरों के बारे में भी जान लिया होगा, रूबरू भी हो चुके होंगे। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है इट्स कुमार की एमपी रीवा से। इट्स कुमार को एमपी रीवा से सुनना है गाना वाई दिस कोलावरी दी। सो एंजॉय करते हैं धनुष का ये सुपर डुपर हिट नगमा इट्स कुमार की फरमाइश पर। स्टे ट्यून्ड।
1: Flop song.

0: रेड्डी। हमने एंजॉय किया है ये धनुष का सुपर डुपर हिट एकदम फाड़ू सॉन्ग सिर्फ सिर्फ इट्स कुमार की फरमाइश पर जो कि है एमपी रीवा से। स्टे ट्यून्ड एंड वेरी वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम इन योर शो नागेश्वर धाकड़। और इनका कहना है कि प्रेम को समझने के लिए हृदय चाहिए, तो हृदय तो मेरे पास में है। और मेरे सभी जानने वालों का कहना है कि मेरा हृदय एकदम मतलब मेरा हार्ट एकदम मोम जैसा है। और आप कह रहे हैं, इनका कहना है कि नागेश्वर धाकड़ का कहना है कि प्रेम को समझने के लिए हृदय चाहिए, निभाने के लिए धैर्य और पाने के लिए सौभाग्य। सो मेरे अगर हाथों की लकीरों को देखा जाए और मेरा डेट ऑफ बर्थ देखा जाए, उन सभी चीज़ों को अगर देखा जाए, और अगर जो सौभाग्य के लिए भी जितनी भी चीज़ें मानी जाती हैं, मिथ है या फिर जो भी है साइंटिफिक रीज़न है, उन सबको अगर वैलिड किया जाए, माना जाए, लॉजिक लगाया जाए उन सब के हिसाब से, तो सौभाग्य भी मेरे पास में है। और आप कह रहे हैं कि निभाने के लिए, प्रेम को निभाने के लिए धैर्य चाहिए होता है। धैर्य, पेशेंस, ओ माई गॉड, कितना पेशेंस चाहिए लोगों को, कितना पेशेंस। लेकिन वो कहते हैं ना कि निभाने के लिए धैर्य तो चाहिए होता है, लेकिन कोई कोई इच्छाएं ऐसी होती हैं कि जब चाहिए, जब इच्छा जागृत होती है, एक समय होती है उन इच्छाओं की, फिर उन समय के बाद में, उस समय सीमा के बाद में वो इच्छाएं भी खत्म हो जाती हैं। फिर वो चीज़ें अगर आपको मिले भी और ना मिले भी ना, तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो इंसान को इतना भी धैर्य करना नहीं सिखाना चाहिए नागेश्वर धाकड़ जी। और सब कुछ तो बल्ले बल्ले है। सो एंजॉय कर लेते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश। अगली फरमाइश हमारे पास में है, किसकी अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों? निब्बर जी की। और निब्बर जी को रानी बाजार सुनार गली गोंडा से सुनना है अपनी बीवी के लिए गाना, मेरी बीवी मायके चली गई। सो एंजॉय करते हैं ये सुपर डुपर हिट नगमा, किशोर कुमार का नगमा, हमारे निब्बर जी की फरमाइश पे जो कि रानी बाजार सुनार गली गोंडा से। दोस्तों इस गाने को उन्होंने अपनी बीवी को डेडिकेट किया है, क्योंकि इनकी बीवी कह रही हूँ, उनकी बीवी अक्सर चली जाती है मायके।
1: मैं के चली गई,
0: इसका मतलब आज फिर चली गई।

और फाइनली हल्ला बोल के इन्होंने शोर मचा दिया है कि इनकी बीवी मायके चली गई हैं और अब इनका घर खाली है पार्टी शार्टी करने के लिए। सो निब्बो जी एड्रेस भेज दीजिएगा हमें हमारे व्हाट्सएप पे, और हम सभी आप चाहें तो आप चैट बॉक्स में भी शेयर कर सकते हैं, आप अपने घर का एड्रेस शेयर करिए और हम सभी अभी प्रोग्राम के बाद में आपके घर पे आने वाले हैं पार्टी शार्टी करने के लिए। हाँ, मंडे ब्लडी मंडे नहीं, एकदम हैप्पी हैप्पी मंडे, एंटरटेनिंग मंडे, ओह माय गॉड। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, किसकी? मोहित की, मालवे नगर गोंडा से। उनको सुनना है गाना सच कह रहा है दीवाना और दिल ना किसी से लगाना, झूठी है प्यार के वादे सारे और झूठी है यार की कस्में।

सो हमने एंजॉय किया है ये गाना मोहित की फरमाइश पर जो कि है मालवे नगर गोंडा से। नाउ लेट्स गो टू अगले वाले डिमांड की तरफ। अगली डिमांड हमारे पास में है सौरभ की। सौरभ हैं गोड़वा घाट गोंडा से और सौरभ को गोड़वा घाट गोंडा से सुनना है। सौरभ मौर्या को गोड़वा घाट गोंडा से सुनना है गाना बोल राधा बोल तूने ये क्या किया। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना। स्टे ट्यून्ड एवरीवन।

0: एंजॉय किया है ये गाना। बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ। ये तो फरमाइश थी सौरभ मौर्य की गुड़वा घाट से। अब अगली फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों, किसकी आप सोच रहे होंगे ना, अगली फरमाइश हमारे पास में है चांदनी की, और चांदनी को सुनना है गाना। कदे इन्हें मरवावे कदे उन्हें पिटवावे के दाऊद की छोरी से। सो एंजॉय करते हैं ये वाला गाना, स्टे ट्यून्ड एवरीवन। और इस गाने को एंजॉय करेंगे, लेकिन उसके पहले हमारे एक लिसनर है नागेश्वर धाकड़, उनका कहना है कि उन्होंने बहुत ही ज्ञान की बात कही है। इनका कहना है कि मैम, किसी भी इंसान को समय से पहले भाग्य से ज़्यादा किस्मत के बिना कुछ नहीं मिलता है। अगर आपकी किस्मत में लिखा है कुछ मिलना, तो उसका धैर्य भी रखना पड़ेगा, तभी आपको मिलेगा। तो ये आपकी जो धैर्य, सौभाग्य और एक किस्मत की बातें कर रही हैं, इसका जवाब मैं इस वाले गाने के बाद में ज़रूर दूंगी, क्योंकि ये वाला गाना मेरा फेवरेट है। सो इन्जॉय करते हैं ये वाला गाना दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ चांदनी की फरमाइश पर, जो कि है गोंडा से। स्टे ट्यून्ड एवरीवन, आई लव दिस सॉन्ग।
1: लाहौर में भी चल रहे सतेरे चर्चे।

करवावे कदे उन्हें पिटवावे के दाऊद की छोरी से हमने एंजॉय किया सपना चौधरी का ये हरियाणवी तड़कता भड़कता सा नगमा। हमारी चांदनी की फरमाइश पे बढ़ते हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ जो की होगी हमारी आज की आखिरी फरमाइश। बढ़ेंगे हमारी आज की अगली फरमाइश की तरफ, लेकिन इसके पहले हमारे लिसनर ने जो कहा था उसका जवाब भी मैं देना चाहूंगी। तो जवाब कुछ इस तरीके से है नागेश्वर धाकड़ जी कि हाथ की लकीरों पर मत जाए दोस्त, हाथ की लकीरों पर मत जाए दोस्त, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। हाथ की लकीरों पर मत जाए दोस्त, नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। बैठकर इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है। बैठकर इंतजार करने वालों को सिर्फ उतना ही मिलता है जितना कोशिश करने वाले पीछे छोड़ जाते हैं। सो एंजॉय करते हैं हमारी आज की अगली और आखिरी फरमाइश, जिसके साथ में आपकी आज सिंपल नॉट से सिंपल लेना चाहेगी अलविदा। अगली और आखिरी फरमाइश हमारे पास में है दोस्तों नागेश्वर धाकड़ की, उनको सुनना है गाना मुंगड़ा। से एंजॉय करेंगे ये वाला गाना और इसी के साथ में आपकी आज सिंपल नॉट से सिंपल लेना चाहेगी आप सभी से अलविदा। सो अपना ख्याल रखना, अपनों का ख्याल रखना, मुस्कुराते रहना, हमेशा गुनगुनाते रहना और सुनते रहना रेडियो 89.6 FM गोंडा, शहर की धड़कन आपकी अपनी आज सिंपल नॉट से सिंपल के साथ में। सो गाइस हैव अ वेरी वेरी वेरी ग्रेट नाइट, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड फैमिली एज वेल, समवन स्पेशल का ध्यान रखना बिल्कुल मत भूलना, आजू बाजू वालों पर वालियों पर ध्यान देना कतई नहीं भूलने का है, और अपनी आरजी सिंपल नॉट से सिंपल को मिस करने का कोई सवाल नहीं बनता। क्यों? क्योंकि मैं कल फिर मिलूंगी, तब तक के लिए टाटा बाय बाय, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट, बहुत सारा प्यार आपकी आरजी सिंपल नॉट से सिंपल की तरफ से आप सभी के लिए, और आप सभी की तरफ से बेतहाशा प्यार आपकी आरजी सिंपल नॉट से सिंपल के लिए। लव यू ऑल, सो मच लव, सो मच ब्लेसिंग्स एंड टेक केयर, स्वीट ड्रीम्स, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, एंजॉय करते हैं ये वाला गाना मींस नागो बाबा मींस नागेश्वर धाकड़ की फरमाइश, स्टे ट्यून्ड। शायद हम में ही है, हर तरफ बस

0: लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, लग न जाए आग नफरत की हमारे शहर में, मैं मोहब्बत हूँ मेरी आंखों को बहने दीजिए। मैं हूँ आप सभी का दोस्त मनु और रोज लेकर आता हूँ आप सभी के लिए आप सभी का पसंदीदा प्रोग्राम बहारे गजल। हर शाम 9:15 से 10:30 पर हम होते हैं आपके साथ। किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, किस्सा बयान गम का तबस्सुम में करेंगे, हम आज जिक्र तेरा तरन्नुम में करेंगे। मैं नहीं कहता मेरे सब्र का फल कहता है, ये तेरा दर्द है जो मुझ में गजल कहता है। आइए अब वक्त हो चला है, आपको ले चलते हैं बहारों की दुनिया में। सुनिए बहारे गजल अपने दोस्त मनु के साथ। आइए अब इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं इस प्यारी सी गजल के साथ।
1: अरे सुना
2: क्या,
1: यही कि गीता इंटरनेशनल स्कूल सेशन 2026-27 के लिए दे रहा 500 एडमिशन्स पर एडमिशन फी पर 100% डिस्काउंट।
2: वाओ,
1: गीता इंटरनेशनल स्कूल फॉर अ बेटर टुमारो। एडमिशन्स ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। गीता इंटरनेशनल स्कूल, जहां आपको मिलता है साइंस एंड कॉमर्स स्ट्रीम, एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, ट्वाइक्वांडो क्लासेस और वाहन की सुविधा उपलब्ध है। पता है गोंडा रेलवे स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर जयनगर बलरामपुर रोड गोंडा। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9545583546।
3: शर्मा जी, आजकल के बच्चे मॉडर्न एजुकेशन तो ले रहे हैं, लेकिन उनमें डिसिप्लिन, संस्कार और कंसंट्रेशन कम होता जा रहा है। अरे भाई, सिर्फ मार्क्स से फ्यूचर थोड़े बनता है।
4: थैंक गॉड कि मैंने अपने बच्चे का एडमिशन वेदम इंटरनेशनल स्कूल में कराया है।
3: वेदम इंटरनेशनल स्कूल में ऐसा क्या है?
4: वहाँ मॉडर्न एजुकेशन के साथ वैल्यू बेस्ड एजुकेशन दी जाती है, जहाँ योग, ध्यान और प्राणायाम बच्चों के शरीर को मजबूत करता है। वहीं श्रीमद् भगवद् गीता का ज्ञान मन और कैरेक्टर को स्ट्रांग करता है। और तो और, वहाँ एस्ट्रोलॉजी की स्पेशल क्लासेस भी होती है, जिससे बच्चे सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, डिसीजन मेकिंग और लाइफ डायरेक्शन को बेहतर समझ पाते हैं।
3: मतलब पढ़ाई भी और संस्कार भी।
4: बिल्कुल, इसीलिए आज मेरा बच्चा कॉन्फिडेंट, डिसिप्लिन्ड और फोकस्ड है। वेदम इंटरनेशनल स्कूल, नियर न्यू सब्जी मंडी, उतराला रोड, गोंडा। आज ही एडमिशन ले, क्योंकि सच्ची शिक्षा वही है जो जीवन बनाना सिखाए। कॉल करे 888-100-9400।
5: त्योहार हो, शादी हो या कोई खास मौका, अगर चाहिए स्टाइल भी और आराम भी, तो याद रखिए एक ही नाम, कपड़ा फैक्ट्री गोंडा,
6: जहां लेडीज के लिए मिलती हैं लेटेस्ट और ट्रेंडी साड़ियां, सूट, कुर्तियां और हर बड़े ब्रांड के शानदार कलेक्शन।
5: और जेंट्स के लिए?
6: जेंट्स के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड आउटफिट्स, परफेक्ट फिटिंग के साथ, क्वालिटी, स्टाइल और बजट सब एक ही जगह।
5: तो आज ही विजिट करें विजय कॉम्प्लेक्स मेल्टिंग मोमेंट्स के सामने गोंडा, और हमारा दूसरा पता है रानीपुरवा नियर सिविल लाइंस गोंडा।
6: संपर्क करें 9125707093 और 9696674406। कपड़ा फैक्ट्री, फैशन जो बन जाए पहचान।
7: मुझे आर्किटेक्ट बनना है।
8: आई वॉन्ट टू बिकम अ साइंटिस्ट।
9: आई वॉन्ट टू बी एन IAS ऑफिसर।
10: रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, मगर दिशा नहीं। रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, जहां आपके बच्चों की यूनिकनेस को मिलते हैं पंख। गोंडा का सबसे पुराना कॉन्वेंट स्कूल, अचीवर ऑफ द बेस्ट स्कूल सर्टिफिकेट एट नेशनल लेवल। एडमिशंस ओपन फ्रॉम प्ले ग्रुप टू क्लास 12। स्पेसिफिकेशंस हैं 10+2 इन ऑल स्ट्रीम्स, साइंस, कॉमर्स एंड ह्यूमैनिटीज, एक्सलेंट इंफ्रास्ट्रक्चर, स्मार्ट क्लास एंड डिजिटल क्लास बोर्ड, कन्वीनियंस फैसिलिटीज, स्काउट गाइड, इवेंट्स, प्रोजेक्ट एंड एजुकेशनल टूर।
11: और सेशन 2026-27 में पहले 100 एडमिशंस पर एडमिशन फी बिल्कुल मुफ्त। एड्रेस है रवि चिल्ड्रंस एकेडमी, नियर दुखरननाथ मंदिर, पटेल नगर, गोंडा। संपर्क करें 9450944999।
12: बच्चे को आराम ही नहीं मिल रहा, क्या करें?
13: इसको तुरंत ऑल्टस किप्स ले चलो।
14: राजधानी लखनऊ में बच्चों के पहले सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल एल्टिस किप्स में दिल, गुर्दे, दिमाग या पेट की हर बीमारी का होता है बेहतरीन इलाज।
2: यहाँ 120 बेड ग्रेड 3 NICU एडवांस PICU की सुविधा के साथ ही HFO, INO, वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी, डायलिसिस के साथ साथ इमरजेंसी की सुविधा भी उपलब्ध है।
15: विजिट करें एल्टिस किप्स IIM रोड लखनऊ। संपर्क करें 0522 2711 827।

शुभ संध्या। शाम का सलाम कबूल करें आप। जी हाँ, आप सुन रहे हैं रेडियो गणेशली 89.6 FM, यह है गोंडा शहर की धड़कन। और अब कार्यक्रम चल चुका है बहारे गजल, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके थोड़ी सी और खास। ये वक्त लगभग रात का है। रात जख्मों को छुपाने के लिए आती है, रात जख्मों को छुपाने के लिए आती है, रात कुछ फूल खिलाने के लिए आती है, रात बिछड़ों को मिलाने के लिए आती है, रात होती नहीं मायूस ख्यालों के लिए, रात होती है फकत चाहने वालों के लिए। तो ये चाहने वालों की रात है, और इस चाहने वालों की रात में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, स्वागत है, इस्तकबाल है, खैर मकदम है। जिस शायर को आपके बीच हम आज लेकर आए हैं, उनका नाम है डॉक्टर नवाज देवबंदी। बहुत ही आसान लफ्जियात में जिंदगी के कई सारे पहलुओं को छूते हैं वो। उन्होंने लिखा कि दूसरा फैसला नहीं होता, इश्क में मशवरा नहीं होता, खुद ही सौ रास्ते निकलते हैं, खुद ही से सौ रास्ते निकलते हैं, जब कोई रास्ता नहीं होता, जब तलक रूबरू न हो कोई, आईना आईना नहीं होता, अपना समझा तो कह दिया वरना, गैर से तो गिला नहीं होता, कुछ न कुछ पहले खोना पड़ता है। देखिएगा साहब लाइन, कुछ न कुछ पहले खोना पड़ता है, मुफ्त में तजुर्बा नहीं होता। जी हाँ, अगर इंसान के पास तजुर्बा है अपनी ज़िंदगी में, तो इसका मतलब ये है कि उसने अपनी ज़िंदगी में कुछ खोया है, तो उसने तजुर्बा हासिल किया है। जी हाँ, हमारे साथ अनिल शास्त्री जी मौजूद हैं, प्रणाम करते हैं दादा आपको। इनके साथ ही मनी शर्मा जी हैं, वेलकम सर जी, आपका भी स्वागत है। और चलिए आपको ले चलते हैं पहली गज़ल की ओर, और पहली गज़ल के बाद फिर आपसे मुलाकात करेंगे इस संगीत में अंतराल के उस पार। सुनते रहिए और रेडियो गणेशली 89.6 FM में है गोंडा शहर की धड़कन, और मैं हूं मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप सभी के लिए।

मुझसे कुछ तेरी नजर पूछ रही हो जैसे। क्या बात है भाई, जगजीत सिंह का मखमली अंदाज और एक एक शब्द। हमारे साथ विशाल बिरादरी जी भी उपस्थित हैं, प्रणाम। और शुभ संध्या मनु जी, आपको भी प्रणाम। और मतलब ऐसा लगता है कि गीतकार ने एक एक शब्दों को खोजा है। जिंदगी तेज, बहुत तेज चली हो जैसे, जैसे शब्द को लाने का मतलब ख्याल ही अलग है। बात कर रहे हैं डॉक्टर नवाज देवबंदी की। उन्होंने लिखा कि वो रुलाकर हंस न पाया देर तक, वो रुलाकर हंस न पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक। वो रुलाकर हंस न पाया देर तक, जब मैं रोकर मुस्कुराया देर तक, भूल ना चाहा कभी उसको अगर, और भी वो याद आया देर तक। खुद बखुद बेसाख्ता में हंस पड़ा, खुद बखुद बेसाख्ता में हंस पड़ा, उसने इस दर्जा रुलाया देर तक, और भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए। अब इस दर्द को आप महसूस कर सकते हैं, भूखे बच्चों की तसल्ली के लिए माँ ने फिर पानी पकाया देर तक। और गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, गुनगुनाता जा रहा था एक फकीर, धूप रहती है न साया देर तक, कल अंधेरी रात में मेरी तरह, कल अंधेरी रात में मेरी तरह, एक जुगनू जगमगाया देर तक। जी हाँ, अगर जुगनू अंधकार में कहीं हल्की सी चमक दे दे तो कहा जाता है डूबते को तिनके का सहारा होता है, और ये साफ सच भी है। दुआ करो कि सलामत रहे मेरी हिम्मत, ये चराग कई आंधियों पे भारी है। तो हो सकता है कि जो एक जुगनू हो वो हमारे लिए उम्मीद की एक किरण हो। आइए अब आपको ले चलते हैं लता मंगेशकर की प्यारी सी आवाज में, और आपको सुनाते हैं एक बहुत ही प्यारी सी गजल। आप सबने सुनी होगी, और जो इसके ज़ाइलोफोन की आवाज है, आहा, वो जब आती है तो दिल खुश हो जाता है। आइए बिना देरी किए सुनाते हैं आपको लता मंगेशकर जी का एक प्यारा सा नगमा। पर्दे पर है हेमा मालिनी और आवाज है लता मंगेशकर जी की। फिल्म का नाम रज़िया सुल्तान।

जी हाँ, मेरे इश्क बहे दरिया की तरह, मतलब समझने वालों के लिए ये मोहम्मद अजीज की प्यारी सी आवाज की गजल वास्तव में गम में डूब जाती है। बात करें नवाज देवबंदी की, उन्होंने कहा कि वो बेवफा है, उसे बेवफा कहूं कैसे, वो बेवफा है उसे बेवफा कहूं कैसे, बुरा जरूर है लेकिन बुरा कहूं कैसे, बुरा जरूर है लेकिन बुरा कहूं कैसे, जो कश्तियों को डुबोता है लाके साहिल पर, जो कश्तियों को डुबोता है लाके साहिल पर, तुम ही बताओ उसे ना खुदा कहूं कैसे। ना खुदा मतलब कप्तान, जहाज का कप्तान। ये और बात बुरे को बुरा नहीं कहता, ये और बात बुरे को बुरा नहीं कहता, बुरा बुरा है बुरे को भला कहूं कैसे, वो मेरी सांसों में, दिल में, नजर में, गजलों में, वो मेरी सांसों में, दिल में, नजर में, गजलों में, मैं अपने आप को इसको जुदा कहूं कैसे, जो तुझसे कहना है दुनिया से वो छुपाना है, जो तुझसे कहना है दुनिया से वो छुपाना है, अगर गजल न कहूं तो बता कहूं कैसे, हवा की शह पे जलाता है घर गरीबों के, हवा की शह पे चलाता है घर गरीबों के, नवाज ऐसे दिए को दिया कहूं कैसे। जी, वो दिया जो घर जला दे उसे हम कैसे दिया कह सकते हैं। मतलब कलमकार अपनी लेखनी को दर्द में पिरो कर लिखता है। चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है, ये मुलाकात बड़ी देर के बाद आई है, आज की रात वो आए हैं बड़ी देर के बाद, आज की रात बड़ी देर के बाद आई है। जी हाँ नेहा जी, चांदनी रात बड़ी देर के बाद आई है। जी हाँ, हमारे साथ सविता शास्त्री जी हैं। शुभ संध्या सर जी। सविता शास्त्री जी, आप कैसे हैं, आपका स्वास्थ्य कैसा है, जरा हमको अवगत कराइए। चिंता है हमको, हम बताइए कि आप ठीक हैं कि नहीं। नेहा जी बैराज से हैं। आदाब सर जी, हाँ बिल्कुल, मैं इंशाल्लाह बहुत अच्छा हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप भी शानदार होंगी। धर्मेंद्र मोहन जी हैं। गुड मॉर्निंग सर जी, गुड इवनिंग, हम आशा करते हैं आप स्वस्थ होंगे और आप और हम गज़लों की दुनिया में मस्त होंगे। बिल्कुल साहब, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, दिल की भर जानते हैं। हमारे साथ गुड इवनिंग है रवि गोंडा जी, क्या बात है भाई, और वेरी नाइस सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और कैसे हैं आप? जी हाँ, जैसे आप लोग रख लीजिए, हम तो वैसे ही हैं साहब। आप ये हम कैसे हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि हमारे श्रोता हमको रखते कैसा है। जी हाँ, आइए अब आपको सुनाते हैं एक प्यारी सी गज़ल और मिलते हैं इस संगीत में अंतराल के उस पास। सुनते रहिए रेडियो गणेशली 89.6 FM, ये है गोंडा शहर की धड़कन और मैं हूँ मनु आप सभी के साथ, ताकि आपकी शाम हो सके बेहद खास। फिलहाल ये प्यारी सी गज़ल आप

जी जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, क्या बात है भाई। मतलब सलमान खान की इसमें जो डांस का वो स्टेप है जिसमें वो लेटकर हल्का सा डांस करते हैं, राहत फतेह अली खान की बहुत ही प्यारी सी आवाज और उस पर ये नृत्य, क्या बात है। इस गजल को बहुत बहुत खास बनाता है। मैंने शायद बहुत दिन के बाद ये गजल प्ले करी है और जी हाँ भाई मैं बिल्कुल ठीक हूँ सर, आप लोगों की दुआ है। जी हाँ बिल्कुल सविता जी, हम चाहते हैं कि आप स्वस्थ रहें और मौसमी बीमारी हो गई थी और अब ठीक हूँ, आराम कर रही हूँ। जी हाँ इम्तियाज जी हमारे साथ आए हैं। हाँ भाई भाई अभी आए, अभी बैठे, अभी दामन संभाला है तुम्हारी, जाऊं जाऊं ने हमारा दम निकाला है। अरे साहब अभी आप आए ही नहीं और जल्दी, मतलब इस तरह से बदल के मत जाओ। मैंने कदमों में दिल बिछाया है, यूं अचानक निकल के मत जाओ। इस तरह से बदल के मत जाओ, मैंने कदमों में दिल बिछाया है, चल के जाओ कुचल के मत जाओ। तो इम्तियाज जी आपसे उम्मीद है कि आप चल के जाएंगे, कुचल के नहीं जाएंगे। नव्या जी गोंडा से हैं, गुड इवनिंग सर, शुभ संध्या आपको भी। नव्या जी नेहा ने लिखा है नाइस सॉन्ग, बहुत बहुत धन्यवाद, अच्छा गीत, अच्छा बहाल, दिल सुलाने के लिए था बेकरार, क्या बात। धर्मेंद्र मोहन जी, मनीष शर्मा जी ने बहुत सारे स्टार दे दिए और मनीष शर्मा जी ने गुड नाइट कहने का अधिकार तो सिर्फ और सिर्फ हमको है जी। और भाई जब गुड नाइट की बात आएगी तो हम आपसे कहेंगे कि भाई अब गुड नाइट बोलने का वक्त आ चुका है, लेकिन ये हमारे अधिकार क्षेत्र में है, आपका अधिकार क्षेत्र गुड नाइट का नहीं है। और मैं चाहता हूं कि आप लोग हमारी इस फरमाइश को हमेशा कबूल रखें जी। और अब घड़ी की सुइयां बता रही हैं कि आपसे अनुमति लेने का वक्त आ चुका है, तो शुभ रात्रि, अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा, मुस्कुराते रहिएगा, प्रसन्न रहिएगा और प्रयत्न कीजिएगा कि आपकी वजह से किसी और के होंठों पर आ सके प्यारी सी मुस्कान। आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर 9:30 बजे आपसे यही मुलाकात होगी बहारे गजल में। तब तक सुनते रहिए रेडियो गणेशली 89.6 FM, है गोंडा शहर की धड़कन। आप सभी का धन्यवाद, आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, आसमान वाले ने चाहा तो कल फिर मिलेंगे आपसे 9:30 बजे आप ही के कार्यक्रम बहारे गजल में।

हेलो एंड वेलकम टू ज्ञानस्थली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु। आज एक बार फिर हूं आप सबके साथ और यूं ही आती रहूंगी ले चलने आप सबको मीठे एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ, ले चलने आपको वापस उन जज्बातों के समंदर में जहां से हम तो आगे बढ़ाए पर वहीं छोड़ आए एक प्यार भरी शाम जिसमें सारी जिंदगी बस यूं ही गुजार देने को जी करता था। मैं सुनाऊंगी आपको वो प्यार के एहसास में डूबी कहानियां जो टटोल देंगी आपका अंतर मन। तो आइए सुनते हैं इस कड़ी में मेरी आज की कहानी, कह ना सके। नीलू ससुराल से मायके महीना भर रहने को आई थी। नीलू यानी नीलोफर की शादी को 2 साल गुजर गए थे। ऐसा लगता था कि कल की ही बात हो। राज के जहन में जो यादें धुंधली पड़ गई थीं, वो एक एक करके सामने आने लगीं। नीलू की शादी में दर्द देने वाले डरावने मंजर धीरे धीरे जिंदा होने लगे थे। ये राज नीलू की अधूरी मोहब्बत का अंजाम था। निगाहों में हर पल बसने वाली नीलोफर को वो आज तक नहीं भूल पाया था। राज अपनी अधूरी मोहब्बत का इल्जाम पूरी तरह नीलू पर नहीं लगा सकता था। अपनी नाकाम मोहब्बत का वो खुद भी जिम्मेदार था। आने वाले तूफान से वो घबरा गया था। चांसी सूरत वाली नीलोफर राज पर अपनी जान लुटाती थी, पर नीलोफर का पिता अकरम गांव का दबंग शातिर झगड़ालू किस्म का इंसान था। गांव में कहीं भी झगड़ा फसाद राहजनी आगजनी यहां तक कि कई हत्याओं में भी उसका नाम जुड़ा होता था। आधे गांव ने तो अकरम का हुक्का पानी बंद कर रखा था। अकरम और राज के घरों की दीवारें आपस में मिली हुई थीं। बचपन के दिनों में मासूम राज गांव के स्कूल में पढ़ता था। नीलू भी वहीं पढ़ती थी। राज और नीलू घर से साथ साथ ही स्कूल जाते थे और घर आकर अपने घरों के सामने एक साथ खेलते थे। उन दिनों राज शाम के समय अपनी छत पर पतंग भी उड़ाया करता था। उस समय नीलू भी अपने घर की छत पर चढ़ जाया करती थी और राज को पेंच लड़ाने को उकसाया करती थी। जब राज नीलू के कहने पर किसी की पतंग काट देता था तो नीलू उछल उछल कर अपनी खुशी का इजहार किया करती थी। अगर पेंच लड़ाने के मुकाबले में राज की पतंग कट जाती तो वो उदास हो जाती थी। एक दिन राज बड़ी सी पतंग खरीद कर लाया। उसने स्केच पेन से पतंग पर कार्टून बनाकर नीचे शरारत से नीलू का नाम लिख दिया। कार्टून के नीचे अपना नाम लिखा देखकर नीलू गुस्से से भर उठी थी। राज बार बार उड़ती पतंग को नीलू पर झुकाकर उसके गुस्से को बढ़ा रहा था। अचानक राज की पतंग जरा ज्यादा झुक गई और नीलू के हाथ में आ गई। उसने राज की पतंग दबोच कर धागा खींचा और अपने घर के अंदर भाग गई।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है कह ना सके। अब तक आपने सुना, दिलोफर शादी के बाद मायके आई थी।

घर पर ही मौजूद थे। छोटे से राज की इतनी हिम्मत देखकर उन्होंने उसे दो तमाचे मारे और अपने घर से भगा दिया। उस समय राज मात्र 12 साल का था। वो रोता बिलखता अपने घर चला गया और पापा को बताया। राज के पापा रामदयाल शांत स्वभाव के आदमी थे। वो एक स्कूल में टीचर थे। उन्होंने अपराधी अक्रम के मुंह लगना ठीक नहीं समझा और राज को ही डांट डपट कर खामोश कर दिया। अब रामदयाल ने राज को जेब खर्च देना बंद कर दिया। इस तरह राज की पतंगबाजी पर रोक लग गई। राज नीलू से बेहद नाराज था। वो नीलू को अकेला देखकर उसे पीटने की फिराक में था। एक दिन स्कूल में खेलकूद का पीरियड चल रहा था। उस समय क्लास के तमाम सहपाठी अपने अपने मनपसंद खेल खेलने में मसरूफ थे। तभी राज ने देखा कि नीलू नल से पानी पीकर अकेली आ रही है। उसी समय राज ने नीलू को लपक कर उसका एक बाजू पकड़ा और गुर्राया, परसों शाम को मेरी पतंग पकड़कर क्यों खींची थी? वो पतंग मैं 2 रुपए की खरीद कर लाया था, जिसकी तूने ऐसी की तैसी कर दी। उस पर तो मेरा नाम लिखा था, इसलिए मैंने अपनी पतंग ले ली, तुम दूसरी पतंग उड़ा लेते। नीलू बोली, मैं तेरे दोनों हाथ और मुंह तोड़ दूंगा, तुझे बचाने इस समय कोई नहीं आएगा। राज चिल्लाया, लो मारो मुझे, मेरे दोनों हाथ तोड़ दो, सामने पड़ी ईंट उठाकर मेरे मुंह पर दे मारो। अगर मुझे मारने से तुम्हारी पतंग जुड़ जाए तो अपने मन की इच्छा पूरी कर लो, नीलू ने कहा। मगर राज का हाथ नीलू पर नहीं उठा। राज ने चेतावनी देते हुए नीलू को छोड़ दिया। 4-5 दिनों तक नीलू से उसकी कोई बात नहीं हुई। अब उसने घर जाना बंद कर दिया। उसे अपने पापा का डर भी था। सालाना इम्तिहान सिर पर आ गए थे। वो मन लगाकर अपनी पढ़ाई में जुट गया। एक दिन शाम के समय नीलू अपनी माँ के साथ राज के घर आई। उन दिनों नीलू के बड़े भाई की शादी होने वाली थी। नीलू की माँ उसके परिवार को शादी में शामिल होने का न्योता देने आई थी। नीलू सबसे नजरें बचाकर राज के कमरे में आ गई और उससे पूछने लगी कि वो अब पतंग क्यों नहीं उड़ाता। राज ने उदास मन से बताया कि अब उसे जेब खर्च नहीं मिलता। इतना सुनते ही नीलू ने छुपा कर लाई एक छोटी सी पोटली राज की तरफ उछाल दी और पतंग उड़ाने को कहकर चली गई।

शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे, प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है कह ना सके। अब तक आपने सुना, नीलू मायके आई थी और राज को उसकी और अपनी दोस्ती की बचपन की बातें याद आ रही थीं। अब आगे राज ने पोटली खोली तो उसके चेहरे पर बेशुमार खुशियों के भाव चमक उठे। उसके सामने सिक्कों का अंबार सा लगा था। शायद नीलू ने अपनी गुल्लक खाली कर दी थी। धीरे धीरे समय गुजरता चला गया। प्यार भरी शरारतें कब चाहत में बदल गईं, उन दोनों को पता ही नहीं चला। वो दोनों पल भर भी एक दूसरे से दूर होने पर परेशान हो जाते थे। अकरम को इस इश्क की भनक लग गई। वो दोनों प्रेमियों के बीच दीवार बनकर खड़ा हो गया। वो किसी भी सूरत में अपनी बेटी को गैर जात में ब्याहना नहीं चाहता था। उसने अनन फानन बेटी नीलोफर यानी नीलू का रिश्ता दूसरे गांव के गुलेमान के साथ पक्का कर दिया। अकरम अपनी बेटी को जल्दी ब्याह कर ससुराल भेजना चाहता था, पर उसे डर भी था कि कहीं नीलोफर बगावत न कर दे। जल्दबाजी में शादी की तारीख भी तय कर दी गई। 2-4 दिन बाद अकरम 4-5 बदमाश लेकर रामदयाल मास्टर के घर पहुंचा और धमकी दे आया कि वो अपने बेटे को समझा कर रखें, वरना पूरे परिवार को इसी घर में बंद करके आग लगा देगा। राज के पापा लड़ाई झगड़े से दूर रहना पसंद करते थे। उन्होंने प्यार से अपने बेटे पर दबाव डाला कि वो नीलू को भूल जाए। राज ने मन ही मन अपने पापा का कहना मानने का मन बना लिया, मगर कामयाब नहीं हो पा रहा था। एक दिन राज दोपहर के समय गांव के बाहर नीलू से मिला। नीलू ने उल्हाना देते हुए ना मिलने की वजह पूछी तो राज खामोश रहा। नीलू ने अपनी बात पर जोर देते हुए दोबारा पूछा, पर राज को कुछ भी बताना मुनासिब नहीं लग रहा था। राज की खामोशी देख नीलू ने राज का कॉलर पकड़ते हुए सारा माजरा गुस्से से पूछा। राज ने आखिरकार दुखी मन से सारी बातें नीलू को बता दी। नीलू गरजते हुए बोली कि उसे अपने निजी मामलों में पिता की दखलअंदाजी बिल्कुल मंजूर नहीं है। वो जिससे प्यार करती है उसी से शादी करेगी। राज ने नीलू को जिद ना करने की सलाह दी। ये भी समझाया कि अगर उन दोनों ने गलत कदम उठाया तो उसका अपराधी पिता उसके परिवार की हत्या कर देगा। मगर नीलू सारी बात सुनकर भी अपनी जिद पर ही अड़ी रही। कुछ देर सोचने के बाद नीलू ने एक सलाह दी तो राज सोच में पड़ गया। नीलू बोली, हम दोनों इस जालिम जमाने से बहुत दूर भाग चलते हैं, जहां हमारे प्यार का कोई दुश्मन ना हो। जब काफी समय बीत जाएगा तब पापा का गुस्सा अपने आप ठंडा हो जाएगा। ये सुनकर राज डर गया और बोला, नहीं नहीं नीलू, ये रास्ता बदनामी और तबाही की तरफ जाता है। ऐसा करने से हमारे परिवारों की बदनामी तो होगी ही, तुम्हारे पिता मेरे परिवार पर कहर बनकर टूट पड़ेंगे। इसका अंजाम बहुत बुरा होगा।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूं आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है कह ना सके। अब तक आपने सुना, जब नीलू मायके आई तो राज को पुरानी बातें याद आने लगीं कि किस तरह उन दोनों की दोस्ती के बारे में घर पे पता लगने पर नीलोफर के पिता ने राज के घर वालों को धमकाया था और राज ने नीलू से दूरी बना ली थी, पर नीलू फिर भी हर हाल में राज के साथ ही रहना चाहती थी। पर राज ने दुनिया का और अपने परिवार की सलामती का हवाला देकर उसे समझा दिया। अब आगे, राज ने खतरे का सुलगता हुआ आईना दिखाया तो नीलू सहम गई। नीलू बोली, सोच लो राज, आया समय एक बार हाथ से निकल गया तो दोबारा हमारे हाथ कभी नहीं आएगा। हिम्मत और कोशिश करने से हमारी समस्या का हल हो सकता है। मगर राज को अकरम का डर था, वो जल्लाद से कम नहीं था। राज अपने माँ बाप और बहन से बहुत प्यार करता था, इसलिए उसने अपनी मोहब्बत को कुर्बान करने का मन बना लिया। उस दिन के बाद से वो नीलू से नहीं मिला। मगर नीलू को दिल से भुलाना इतना आसान कहाँ था। अकरम ने हफ्ते भर में ही नीलू की शादी कर उसे ससुराल भेज दिया। आज जब राज को पता चला कि नीलू अपने मायके आई है, उसका दिल मिलने को मचल उठा। मिलने की चाहत लिए राज धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ नीलू के घर पहुंच गया। घर का मेन गेट अंदर से बंद था। उसने नीलू के घर का गेट खटखटाया तो वो खुल गया। सामने उसकी प्यारी नीलू ही खड़ी थी, शायद नहाकर निकली थी। पानी के मोती उसके काले लंबे बालों से गिर रहे थे। अरे राज, कैसे हो, अंदर आओ ना। राज को देखते ही नीलू खुशी से चहक उठी। अपनी क्या हालत बना ली है तुमने, अपने आप को संभालो राज। नीलू, जो मुसाफिर अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते उनका यही अंजाम होता है। लेकिन तुम मेरी हालत पर मत जाओ, अपनी सुनाओ, राज ने कांपती आवाज में पूछा। नीलू को लगा कि हालात से घबरा कर राज उससे दूर तो हो गया, मगर अपनी महबूबा को भूल नहीं पाया। मैं खुश हूं या नहीं इसका कोई मायने नहीं है, जब तुमने ही अपनी हालत से घबराकर मेरा कहा मानने से इनकार कर दिया तो मुझे हालात से समझौता करना ही था। मगर आज तुम्हारी ये हालत देखकर ऐसा लग रहा है कि तुम अधूरी मोहब्बत की आग में पूरी तरह झुलस रहे हो। बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या करूं। कहते हुए नीलू ने राज के दोनों हाथ थाम लिए।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और हम निकल पड़े हैं एहसासों के सफर पे प्यार भरी कहानियों के साथ। मेरी आज की कहानी है कह ना सके। अब तक आपने सुना नीलू और राज एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन नीलू के पिता अकरम काफी दबंग स्वभाव के थे और उन दोनों की दोस्ती के बारे में पता लगने पर उन्होंने राज के परिवार को धमकाया और नीलू की जबरदस्ती जल्दी से शादी कर दी। शादी के बाद नीलू मायके आई थी, राज उससे मिलने गया। राज की हालत देखकर नीलू का मन दुखी हो गया। वो समझ गई कि वो नीलू के साथ रहने की हिम्मत तो नहीं कर पाया, लेकिन उसके बिना जी भी नहीं पा रहा था। अब आगे, नीलू, मैं जो देखना और महसूस करना चाहता था वो सब देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि मेरी कुर्बानी कामयाब हो गई है। मैं जिंदगी भर तुम्हारी यादों को अपने दिल में सहेज कर रखूंगा। तुम खुशहाल रहोगी तो मैं समझूंगा कि मुझे सब कुछ मिल गया, राज ने कहा। नहीं राज, तुम मुझे कभी अपने से अलग मत समझना। मैं आज भी तुम्हारे साथ हूं, जहां चाहे ले चलो मैं तुम्हारी बनकर रहूंगी। कहते हुए नीलू ने राज के हाथ कस कर पकड़ लिए। नहीं नीलू, मेरी वजह से कोई तुम्हारे कैरेक्टर पर उंगली उठाए ये मैं कभी सह नहीं पाऊंगा, राज ने कहा। नीलू बोली, अब पता नहीं दोबारा कब आ सकूंगी। थोड़ी देर अंदर आओ, अपने मन की बात मैं तुम्हारे सामने रखना चाहती हूं। इतना कहकर नीलू ने राज का हाथ पकड़कर कमरे में ले जाना चाहा। नहीं नीलू, मुझसे ये नहीं हो पाएगा,

माफ कर देना। इतना कहकर राज उल्टे कदमों से गेट से बाहर आ गया। नीलू राज को रोकना तो चाहती थी मगर उसे रोक नहीं सकी।

आप सुन रहे हैं ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन। मैं हूँ आरजे तनु और ये थी मेरी आज की कहानी कह ना सके। आपको कैसी लगी हमें जरूर बताएं। इसके लिए आप ज्ञानस्थली ऐप पर कमेंट्स कर सकते हैं तो हमें रहेगा आपके संदेशों का इंतजार। सुनते रहिए ज्ञानस्थली 89.6 FM, गोंडा शहर की धड़कन।

यादों के गुलशन से चली एक बयार, जहां हर गीत है दिलों का इजहार। सुरों के मोती, लफ्जों की माला, भूले बिसरे नगमों का ये है शिवाला। नमस्कार दोस्तों, आपके दिलों की धड़कन, आपके अतीत की महक और सुरों की सौगात लेकर हाजिर हूँ मैं आपकी अपनी आरजे अनोखी इस खास शो भूले बिसरे गीत में, जहाँ लाएंगे हम वो नगमे जिन्हें सुनते ही आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएंगी। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं संगीत की उस दुनिया का, जहाँ हर धुन एक दास्तां कहती है। बने रहिए मेरे साथ, क्योंकि ये शो है भूले बिसरे गीत और आप सुन रहे हैं रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। श्रोताओं, आज हम बात करेंगे उस गायिका की जिसके गाए गानों की बदौलत एआर रहमान जैसे दिग्गज संगीतकारों ने हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में झंडे गाड़ दिए, जिसका गाया गाना 90s में नेशनल क्रेज बन गया था, जिसके गाने ने बीबीसी वर्ल्ड टॉप 10 म्यूजिक ओल्ड में जगह पाई। एक जमाने में कल्ट क्लासिक मानी जाने वाली फिल्म में नौसाद के अमर संगीत में 4 दशक बीत जाने के बाद दोबारा एक नई पहचान इसी गायिका की आवाज से पाई गई, जिसने न सिर्फ 14 साल की उम्र में एक मैच्योर माँ की ममता भरी आवाज में गीत गाकर लोगों को दांतों तले उंगली दबाने पर मजबूर कर दिया, बल्कि 15 वर्ष की आयु में अपनी मादक आवाज में कैबरे गाकर बड़े बड़े गायकों को बंगले झांकने पर भी मजबूर कर दिया। इन वर्सेटाइल सिंगर का नाम है स्वर्णलता, जिन्होंने बेशक हिंदी में बहुत कम गाने गाए, पर जो भी गाए वो यूनिक आवाज स्टाइल के साथ गाए और जो शायद ही कोई दोबारा गा सके स्टाइल के साथ, जो अपनी शहद कीसी आवाज के चलते भारत की हमिंग क्वीन कहलाई। नमस्कार, प्रणाम, आदाब, मैं हूं आपकी होस्ट एंड दोस्त आरजे अनोखी, जो लेके आई है आपका वो वाला शो जो आपको रात में उस जोन में लेके जाता है जहां आप बहुत सुकून पाते हैं, यानी कि उन सदाबहार नगमों की हम बात करते हैं इस शो में, जो कि हम कहीं भूल गए हैं या फिर कहीं पीछे छोड़ाए हैं आज के दौर के चलते। चलिए फिलहाल बता देते हैं कि क्या शो चल रहा है। शो है भूले बिसरे गीत, जी हाँ, और आप सुनने वाले हैं आज जिस कलाकार को, वो हैं स्वर्णलता, जिनको हम लेके आए हैं कहीं किसी गर्दिश में जो गुम थी वहीं से। चलिए फिलहाल इनकी आवाज में सुनते हैं एक प्यारा सा नगमा, पर आते हैं और इनके बारे में बहुत कुछ।

जी हाँ श्रोताओं, एक बार पुनः से आप सभी का स्वागत है आपके फेवरेट शो यानी के रात के सफर के भूले बिसरे गीत में। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त आर्जे अनोखी। आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञान असली 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं स्वर्णलता जी की। जी हाँ, एक मशहूर सिंगर जिनको सबसे ज्यादा पसंद करते थे AR रहमान साहब। जी हाँ, ये भी कई दफा सुनने में आया है। फिलहाल चलते हैं इनकी जीवनी की ओर, और जीवनी से पहले कुछ और बातें। स्वर्णलता जी ने जिस भी भाषा में गीत गाया उसे यादगार बनाकर छोड़ा, क्योंकि उन्होंने सिर्फ गाने के शब्द नहीं दोहराए बल्कि उस गीत की आत्मा को पहचान कर उसमें दिल भी जोड़ दिया। लेकिन क्योंकि इस गायिका की आवाज पिछले कई सालों से चुप है, किस डर के कारण वो सामाजिक मंच पर गाने से कतराती थी। कुछ खबरें तो ऐसी हैं जिन्होंने उन्हें मानसिक रूप से कमजोर तक बताया, क्योंकि वो किसी से बात करने से घबराती थी। लोगों से भरी इस दुनिया में उनका कोई दोस्त क्यों नहीं बन सका? आखिर इनके साथ कौन सी ऐसी ट्रेजेडी हुई कि कुदरती वो हसीन आवाज हमें फिर कभी सुनने को ही नहीं मिली? ये सब जानेंगे, पर उससे पहले एक सॉन्ग। चलिए पर सुन लेते हैं इस प्यारे से गीत को।

जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं स्वर्णलता जी की। स्वर्णलता जी का जन्म 29 अप्रैल 1973 में हुआ और इनकी मृत्यु भी हाल फिलहाल में कुछ ही वर्षों बाद हो गई, 12 सितंबर 2010 में। ये एक भारतीय पार्श्व गायिका थी। लगभग 22 वर्षों के अपने करियर यानी कि 1987 से उनकी मृत्यु तक में उन्होंने तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, हिंदी, उर्दू, बंगाली, उड़िया, पंजाबी और बड़ागा सहित कई भारतीय भाषाओं में 6000 से भी अधिक गाने रिकॉर्ड किए। फिल्म करुथमा के गीत पुराले पुनुथाई के गायन के लिए उन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला। इस गीत का संगीत AR रहमान ने तैयार किया था, जिनके संगीत निर्देशन में उन्होंने कई यादगार गाने रिकॉर्ड किए। वे AR रहमान के संगीत में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला पार्श्व गायिका भी थी। चलिए पर चलते हैं एक और प्यारे सनगमे की ओर। भाई, इतने यादगार गीतों को इन्होंने दिया है और आज का सफर तो वाकई आपको उसी दौर तक लेके जाने वाला है। फिलहाल हम बढ़ेंगे इस नगमे के साथ में आपके अपने शो भूले बिसरे गीत में।

तो हम मान सकते हैं कि इनका बैकग्राउंड काफी हद तक म्यूजिक इंडस्ट्री से जुड़ा हुआ था। बाद में स्वर्णलता का परिवार कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले के भद्रावती में बस गया, जहां उन्होंने अपनी शिक्षा प्राप्त की। उन्होंने 3 वर्ष की आयु से ही गाना शुरू कर दिया था। संगीतकारों और संगीत प्रेमियों से घिरे परिवारों में पली बड़ी स्वर्णलता ने कर्नाटक और हिंदुस्तानी संगीत का प्रशिक्षण लिया। उनकी बहन सरोजा उनकी पहली संगीत शिक्षिका थी। चलिए पर इनकी आवाज में कुछ और सुनते हैं।

स्वर्णलता का परिवार उनकी गायन प्रतिभा के लिए फिल्म उद्योग में अवसर तलाशने के लिए चेन्नई चला गया। पहला अवसर उन्हें 1987 में एमएस विश्वनाथन के साथ मिला, जब इन्होंने फिल्म निथिक्कु थंदनई में केजे येसुदास के साथ युगल गीत चिन्ना चिरु के लिए रिकॉर्ड किया। इसके बाद उन्होंने कई अन्य संगीत निर्देशकों के लिए गाने रिकॉर्ड किए। उन्हें निर्देशक पी वेणु के साथ काम करने का भी अवसर प्राप्त हुआ। उन्होंने इलैया राजा और एआर रहमान जैसे संगीतकारों के साथ अक्सर सहयोग किया। उन्होंने कुछ हिंदी गाने भी रिकॉर्ड किए, जिनमें सबसे उल्लेखनीय फिल्म रंगीला का

कैसे रहे, मतलब ये गाना जब भी आपके जहन में आएगा आप बिना गुनगुनाए रह ही नहीं पाएंगे। तो जिसे इन्होंने गायक हरिहरन जी के साथ में रिकॉर्ड किया, ये गाना बहुत ही फेमस था तब भी और आज भी। और इनके ऐसे ही कई सारे गाने हैं जैसे कि मुकाबला, और हाँ मुकाला मुकाबला होगा सुना ही होगा आपने। तो ऐसे ही बहुत सारे नगमे हैं, चलिए फिर इन्हीं में से एक नगमा हम आपको और सुनवाएंगे। लेकिन उससे पहले कुछ और आपको बता देते हैं कि तेलुगु में इन्होंने मणि शर्मा, रमना गोगुला, राजकोटी और वंदे मातरम श्रीनिवास के संगीत निर्देशन में कई गाने रिकॉर्ड किए। इनमें रम्मा चिलकम्मा, ओसे रामू लम्मा और निजाम बाबुलू जैसे शीर्ष श्रेणी के गाने शामिल हैं। एआर रहमान ने अपने कई गानों के लिए स्वर्णलता को नियुक्त किया। वे अपने समय की सबसे बहुमुखी गायिकाओं में से एक थीं, क्योंकि वे सत्रियान से मलाइल यारो, मंथोडू पेसा या करुथमा से पुराले पोनुथाई जैसी धुने गाने में सक्षम थी। साथ ही रहमान के प्रयोगात्मक गाने जैसे काधलान से मुकाबला या फिर पवित्रा से मोटू विट्टाधा भी गा सकती थी। कन्नड़ में उनका पहला गाना सारदाराबा बालिना 1989 में फिल्म परशुराम के लिए अभिनेता गायक डॉक्टर राजकुमार के साथ युगल गीत था। स्वर्णलता एआर रहमान के संगीत निर्देशन में राष्ट्रीय पुरस्कार पाने वाली पहली महिला पार्श्व गायिका थी। उन्हें यह पुरस्कार पुराले पोनुथाई गाने के लिए मिला था। उन्होंने संगीत निर्देशक देव, विद्यासागर, हैरिस जयराज, अनु मल्लिक, शंकर एहसान लाय, राजकोटी, युवान शंकर राजा, मणि शर्मा, हमस लेखा और कई अन्य लोगों के साथ कई गाने रिकॉर्ड किए। उन्होंने तमिल फिल्म अनारकली, हिंदी फिल्म जो कि मुगले आजम का डब संस्करण है, के लिए लता मंगेशकर और शमशाद बेगम द्वारा गाए गए सभी गाने रिकॉर्ड किए, और बॉलीवुड संगीत निर्देशक नौशाद अली से प्रशंसा प्राप्त की, जिसे उन्होंने अपने करियर का सबसे बेहतरीन पल भी माना। चलिए फिर चलते हैं इन्हीं के एक और खूबसूरत से नगमे की ओर, और फिर आते हैं आपसे और सारी जानकारी पे बात करेंगे। लेकिन उससे पहले इनकी आवाज़ में यानी कि स्वर्णलता की आवाज़ में एक और खूबसूरत सा नगमा।

जी हाँ श्रोताओं, शो चल रहा है आपका भूले बिसरे गीत और मैं हूँ आपकी होस्ट चंदू तारजी। अनोखी और अनोखी अनोखी बातों के साथ में अनोखे अनोखे नगमे लेके आई हूँ आपके लिए आपके अपने शो में। आपने ट्यून करके रखा हुआ है रेडियो ज्ञान असली 89.6 FM गोंडा शहर की धड़कन। और अब चलते हैं उस ओर जिस ओर हम चर्चा कर रहे थे स्वर्णलता जी की। स्वर्णलता जी ने कई टेलीविजन गायन प्रतियोगिताओं में जज के रूप में भाग लिया, जिनमें 2001 में विजय टीवी का रियलिटी शो और 2004 में जया टीवी का राग मालिका शामिल है। और अगर इनकी मृत्यु की बात करें तो स्वर्णलता का निधन 12 सितंबर 2010 को 37 वर्ष की बहुत ही अल्पायु में मलार हॉस्पिटल लिमिटेड अडयार चेन्नई में हुआ। इन्हें इडियोपैथिक पल्मोनरी फाइब्रोसिस था जिसके कारण इनकी मृत्यु हुई।

जी हाँ श्रोताओं, आज हम बात कर रहे हैं एक वर्सेटाइल सिंगर और साथ ही साथ में जिसको कहा जाता है हमिंग क्वीन, हाँ इंडिया की हमिंग क्वीन की। तो इनके नाम कई सारे पुरस्कार भी हैं, चलिए उससे भी आपको रूबरू कराते हैं। अगर पुरस्कार और सम्मान की बात करें तो राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्राप्त किया हमारी स्वर्णलता जी ने, साथ ही साथ में तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार इनको 3 बार मिले, सिनेमा एक्सप्रेस पुरस्कार इनको 5 बार प्राप्त हुए, कलाइमा मणि और कुल मिला के 10 पुरस्कार अतिरिक्त इन्हें और प्राप्त हुए। राष्ट्रीय पुरस्कार सिल्वर लोटस पुरस्कार रजत कमल भी इन्हें प्राप्त हुए हैं और साथ ही साथ में 1994 में करुथमा फिल्म के पुराले पोनुथाई गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। तमिलनाडु राज्य फिल्म पुरस्कार इनको, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि 3 बार प्राप्त हो चुके हैं। इसके अलावा 1991 में चिन्ना थंबी फिल्म के पोवम्मा गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का तमिलनाडु राज्य पुरस्कार इन्हें प्राप्त हुआ। 1994 में करुथमा फिल्म के गीत के लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ महिला गायिका का तमिलनाडु राज्य पुरस्कार प्राप्त हुआ और एक नेशनल अवार्ड भी इनके नाम है। 2000 में अलाई पायुथे फिल्म के येवानु गीत के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का तमिलनाडु राज्य पुरस्कार भी इन्हें प्राप्त है। सिनेमा एक्सप्रेस पुरस्कार, इसके अलावा और भी कई सारे पुरस्कार इनके नाम है। इंडियन फिल्म के अकडनु के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला पार्श्व गायिका का पुरस्कार भी इनके नाम है और इसी तरह ना जाने और कई सारे कितने पुरस्कार इनको प्राप्त हुए हैं। 2002 में थलपति जो कि 1991 की फिल्म थी, उसके गीत रकम्मा कया के लिए इन्हें BBC वर्ल्ड टॉप 10 संगीत सर्वेक्षण में शामिल किया गया था। इसे SP बालासुब्रमण्यम और स्वर्णलता जी ने मिलकर गाया था।

जी हाँ श्रोताओ, अब हम बात करेंगे स्वर्णलता जी ने किन मशहूर संगीतकारों के साथ में अपने गानों को सजाया। तो इसमें सबसे पहले बात करेंगे हम इलैया राजा की। स्वर्णलता जी ने इलैया राजा के लिए 200 से अधिक गाने गाए और 90 के दशक के प्रसिद्ध संयोजनों में से एक के रूप में पहचाने जाते हैं। फिल्म चिनाथम्बी के पोवामो और नी एनगा एन अनबे ये दो बहुत ही मशहूर हिट फिल्म रहे। तमिलनाडु सरकार ने उन्हें पुवामो गाने के लिए सर्वश्रेष्ठ गायिका का पुरस्कार भी दिया। इन्होंने इलैया राजा के लिए कई प्रयोगात्मक गीत गाए जैसे सोली वीडू, कन्ने इंद्रो और इलाई थुट्टू। अब बात करेंगे एआर रहमान की। एआर रहमान और स्वर्णलता की साझेदारी 1993 से शुरू हुई। इनकी जोड़ी मुकाबला और हाय रामा ये क्या हुआ जैसे जादुई गीतों के लिए जानी जाती है, जो 90 के दशक के हिट गाने हैं। और हिट होने के साथ में कहीं ना कहीं एक कल्ट क्लासिक और कई वैरायटी के गाने होने की वजह से नेशनल क्रेज तक बन गई। जी हाँ, और इनको एक प्यारा सा नाम तो आपने दिया ही था, यानी हम सभी ने मिलकर दिया था, हमिंग क्वीन का, जो इनकी मधुभरी वाणी पे एकदम सुटेबल है। ये रहमान के संगीत में राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला गायिका थी। इन्हें 1994 में रिलीज हुई फिल्म करुथमा के गीत पुराले के लिए ये पुरस्कार मिला था। इन्होंने रहमान के लिए लगभग 80 गाने गाए हैं। रहमान के साथ रिकॉर्ड किया गया उनका आखिरी गीत फिल्म सिलुनु ओरु कधल, जो कि 2006 में आई थी, का गाना था कुम्मी आदि, जो आज भी याद किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वर्णलता जी ने देवा जी के साथ में काम किया। जी हाँ, स्वर्णलता ने 1990 से देवा के साथ कार्य किया। गीत कन्ने वैगासी ने उनकी पहली संगति को चिन्हित किया। उनके द्वारा गाए गए अन्य गीत जैसे कि सेंथुरा पार्टी, जो कि आई थी 1993 में, रसीगन 1994 में, बाशा जो कि आई थी 1995 में, विष्णु 1995 की ही एक संगीत रचना है, मुगावरी 2000 में जो आई थी, और फिल्म में गाए गए कई सारे अतिरिक्त गाने, चुक्का थंगम 2003 की सबसे लोकप्रिय फिल्म और उसके गीत बहुत ही ज़्यादा लोकप्रिय रहे। तो ये सभी थे हमारे स्वर्णलता जी के साथ में कार्य करने वाले म्यूजिक डायरेक्टर्स। अभी चलेंगे हम इनके एक और नगमे की ओर और फिर आएंगे आपसे अलविदा करने। बने रहें।

तो दोस्तों आज हमने बात किया स्वर्णलता जी के बारे में। साल 2000 आते आते स्वर्णलता का सिंगिंग करियर धीमा हो गया। ये भी एक सच है कि कहीं ना कहीं वो इस सुनहरी दुनिया की राजनीति से प्रभावित हुई। इतनी अधिक टैलेंटेड होने के बाद भी कई सारे ऐसे गीत जो इनके लिए लिखे गए थे वो ऐसे सिंगर्स के पास चले गए जो इनके सामने कहीं भी टिकते नहीं थे। अपने हद से ज्यादा कैमरा शाई नेचर के चलते वो टीवी पर भी बहुत कम दिखाई देती थी, वहीं इनके कंटेम्प्रेरी सिंगर्स ने इसका भरपूर फायदा उठाया। ऐसा सुनने में भी आया कि कई बार इन्होंने स्टेज शो को भी कैंसिल इसीलिए किया क्योंकि वे लोग को फेस करने में कतराती थी। स्वर्णलता हमेशा से इंट्रोवर्ट थी जिन्हें हर किसी से बात करना पसंद नहीं था। यहाँ तक कि म्यूजिक इंडस्ट्री में भी किसी से इनकी कोई खास बातचीत नहीं होती थी। वे सिर्फ बंद स्टूडियो में गाना गाकर सहज महसूस करती थी। कुछ लोगों का मानना ये भी था कि उनको अपने लुक्स के चलते लोगों से दूर रहने की आदत है। उन्हें करीब से देखने वाले ये भी कहते हैं कि वे किसी न किसी मानसिक पीड़ा के साथ जी रही थी। हालांकि इस बात में कितनी सच्चाई है कहना काफी मुश्किल है। काफी कम उम्र में ही इन्होंने अपने माता पिता को खो दिया था और 37 की उम्र तक इन्होंने शादी भी नहीं की थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक बहुत ही कम उम्र में कई सारी बीमारियों ने इन्हें घेर लिया था। एक्यूट एयर सिकनेस के कारण अक्सर वो हवाई सफर नहीं कर पाती थी, जिसके चलते दूसरे राज्यों या विदेशों में ये परफॉर्मेंस भी नहीं दे पाती थी। ये स्वर्णलता के करियर का सबसे टेरिफिक पॉइंट साबित हुआ। दरअसल वो इडियोपैथिक फेफड़ों की बीमारी से ग्रस्त थी, जिसमें फेफड़े तक ऑक्सीजन पहुंचने में दिक्कत होती है। और आपको तो अच्छे से पता है कि एक संगीतकार के लिए, एक गायक के लिए ऑक्सीजन, वैसे तो ऑक्सीजन हर किसी के लिए ज़रूरी है, पर जो सिंगर्स होते हैं उनके लिए ऑक्सीजन कितना ज़रूरी है फेफड़ों तक पहुंचना, क्योंकि सारा काम तो फेफड़ों का ही होता है, जहां से आवाज़ आती जाती है या सांस आती जाती है, और सांस से ही तो सरगम और धुनें बनती हैं। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और आपको कुछ और बताते हैं और फिर आपसे बाय बाय करेंगे। तो स्वर्णलता की बीमारी ऐसी बीमारी थी जिसमें सीढ़ियां चढ़ने और छोटे मोटे काम करने पर भी सांस फूलती है। स्वर्णलता का इलाज कई बड़े डॉक्टरों ने किया, पर यह बीमारी किसी के भी हाथ में ना आ सकी, जिसके चलते हमिंग बर्ड ऑफ इंडियन सिंगिंग इंडस्ट्री का 12 सितंबर 2010 को निधन हो गया। इतनी कम उम्र में स्वर्णलता का यूं जाना न केवल फिल्म जगत का एक बड़ा लॉस था, बल्कि हम असमय एक जादुई और अद्भुत आवाज को खो बैठे। भारत के इस हमिंग क्वीन को हम सभी की ओर से श्रद्धांजलि। सुरों की मल्लिका स्वर्णलता अपने चाहने वालों के दिल में हमेशा जिंदा थी, हैं और रहेंगी। फिलहाल अब आपसे विदा लेने का वक्त हो चला है, तो चलिए चलते हैं और इस वादे के साथ फिर हम आपसे रूबरू होंगे कि हम फिर से किसी और जिंदगी को आपके दरमियान लाएंगे और उसकी जिंदगी के उस पल को आपसे साझा करेंगे जो कहीं ना कहीं हम लोगों के लिए भी रिलेटेबल होता है। और गीत तो हमारे जिंदगी से जुड़ा हुआ वो अभिन्न अंग है जो हम कभी अपने से दूर ही नहीं कर सकते। फिलहाल भूले बिसरे नगमे में मैं थी आपके होस्ट एंड दोस्त आरजे अनोखी, और शो आपने सुना और आपने ट्यून करके रखा हुआ था रेडियो ज्ञानस्ले 89.6 एफएम गोंडा शहर की धड़कन। फिर मिलेंगे किसी अन्य टॉपिक के साथ, किसी अन्य गायक के साथ या फिर किसी ऐसे लाइफ के पार्ट के साथ जो बेहद जरूरी होगा हमारे लिए, आपके लिए, और उसके बीच में होंगे वो नगमे जो हम कहीं गर्दिश में भूल आए हैं। फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। टेक अ वंडरफुल केयर ऑफ योर्स। टाटा, टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, शब खैर।